अगर सुने दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 14.1 मेगाहर्ट्ज पर एक छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम भोर सुहानी में। वक्त हो चुका है हमारे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक ठीक 5:33 और 10 सेकेंड। महफिल सजी है आपकी अपनी पसंदीदा भोर सुहानी और मैं हूं आपके साथ फिरोज। दोस्तों, कभी कभी आपने ये समझने की कोशिश ज़रूर की होगी, कई बार ऐसा हुआ होगा, आप आईने में अपना चेहरा देखते हैं अपने, और अचानक ऐसा महसूस होता है कि चेहरा तो वही है लेकिन वक्त कितना बदल गया है। कुछ ऐसी ही है हमारी ज़िंदगी, कल की कुछ तस्वीरें याद बन जाती हैं, कुछ लोग दास्तान बन जाते हैं और कुछ लम्हे दिल के किसी कोने में हमेशा जिंदा रहते हैं। लेकिन वक्त हमें सिर्फ बदलता नहीं, बहुत कुछ सिखाता भी है। वो सिखाता है कि हर खुशी को जी भरकर महसूस करना चाहिए, जी भरकर जीना चाहिए, और हर रिश्ते की कदर करनी बेहद ज़रूरी है, और गुजरे हुए कल को बार बार पकड़कर नहीं बैठना चाहिए। कोशिश ये करनी चाहिए कि जो वक्त खराब गुजरा है उसको आगे हम ठीक कर सकें, क्योंकि जो बीत गया वो हमारी कहानी का एक हिस्सा है, पूरी कहानी नहीं है। आज का दिन अभी हमारे पास है और यही सबसे बड़ी नेमत है। तो अगर कोई पुरानी याद आज दिल में दस्तक दे तो मुस्कुराइए, उसका शुक्रिया अदा कीजिए और फिर आगे बढ़ते जाइए, क्योंकि ज़िंदगी का खूबसूरत सफ़र पीछे मुड़कर देखने से नहीं, आगे की राह को उम्मीद से देखने से पूरा होता है। और अब ऐसे ही ख्यालात के साथ हम आगे बढ़ेंगे एक बेहद खूबसूरत नगमे के साथ, आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर वक्त हो चुका है ठीक 5:41:12। महफिल सजी है आपकी अपनी पसंदीदा भोर सुहानी की, जिसमें हम बातें करते हैं जिंदगी से जुड़ी हुई। आपके रास्ते में तमाम तरह की मुश्किलात आती हैं, तमाम तरह की परेशानियां आती हैं, हम सब की जिंदगी में आती हैं, लेकिन उन सब से डट कर मुकाबला करते हुए हम अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन दोस्तों, कभी आपने सोचा है हम सब अपनी अपनी जिंदगी के सफर में कितनी दूर निकल आए हैं? रास्ते बदलते रहे, लोग मिलते रहे, कुछ साथ चलते रहे और कुछ किसी मोड़ पर पीछे छूट गए, लेकिन सफर सफर हमेशा जारी रहा। शायद जिंदगी हमें यही सिखाती है कि रुकना नहीं है। हर मोड़ अपने साथ एक नया तजुर्बा लेकर आता है आपकी जिंदगी का। कभी रास्ते आसान होते हैं, कभी कदम भारी हो जाते हैं, लेकिन वही इंसान आगे बढ़ता है जो मुश्किल वक्त में भी अपने दिल में उम्मीद बचा कर रखता है। अगर आज आपका सफर थोड़ा मुश्किल है तो घबराएं मत, हो सकता है यही रास्ता आपको उस मंजिल तक ले जा रहा हो जिसका आपने कभी ख्वाब देखा था। बीते हुए कल को एक सबक की तरह जरूर याद रखें और आने वाले कल को एक उम्मीद की तरह देखें, क्योंकि मंजिल से ज्यादा कीमती वो सफर होता है जिसमें हम हर दिन थोड़ा बेहतर इंसान बनते जाते हैं, कुछ नया सीखते जाते हैं, कुछ नया करने की कोशिश में लगे रहते हैं और जिंदगी मुसाफिर की तरह बस यूं ही आगे बढ़ती जाती है। तभी तो कहते हैं आदमी मुसाफिर है, आता है और जाता है।

मोहम्मद रफ़ी साहब और लता जी की इन्हीं आवाज़ों के साथ मुझे यानी फ़ेरोज़ को अब दीजिए इजाज़त भोर सुहानी से। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे अगला कार्यक्रम, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

2028 26। सुबह के 5:53 और 42 सेकेंड हुए हैं। हमारे प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की 28वीं तिथि, तदनुसार 19 सितंबर 2000

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए आज के इस प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रमों का विवरण देते हुए हम आपके साथ आगे बढ़ें। अब से कुछ ही देर बाद यानी ठीक 6 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और 6:05 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार। छह बजकर 10 मिनट का समय होगा अर्पण कार्यक्रम का। डिवोशनल म्यूजिक का यह प्रोग्राम होगा जिसमें आप सुनेंगे ये कार्यक्रम और इस कार्यक्रम को लेकर आपके बीच रहेंगी सुनीता चौहान। छह बजकर 44 मिनट पर आप सुनेंगे श्री राम चरित मानस गान और आज आप सुनेंगे इसमें अयोध्या कांड भाग 58 और इसे लेकर रहेंगे आपके बीच एक बार फिर से सुनीता चौहान। 6:55 का समय होगा संस्कृत में समाचारों का और 7 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और 7:05 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार।

0: 7:10 का समय होगा गोल्ड सुप्रभात का। और गोल्ड सुप्रभात को लेकर आपके साथ रहेंगी सुनीता चौहान। सात बजकर 30 मिनट पर आप सुनेंगे आज सवेरे, और 8 बजे का समय रहेगा समाचार प्रभात का। तो ये थे आज के इस सभा में प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों के बारे में संक्षेप जानकारी। आकाशवाणी FM गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप, 6 बजने वाले हैं। आइए सुनते हैं अब समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण इस 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। इसमें पर्यावरण विशेषज्ञ और सर्वोच्च, उच्च तथा जिला न्यायालयों के न्यायाधीश शामिल होंगे। विभिन्न मंत्रालयों के सचिव और वरिष्ठ अधिकारी भी इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। सम्मेलन में राज्य न्यायिक अकादमियों, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों, राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समितियों, राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन आर्द्रभूमि प्राधिकरणों के प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे। इसमें 17 देशों के प्रतिष्ठित न्यायाधीश और न्यायिक प्रतिनिधि भी हिस्सा लेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी आज 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी संगठनों में चयनित 51,000 युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इस अवसर पर वे नवनियुक्त अभ्यर्थियों को संबोधित भी करेंगे। वर्ष 2025-26 में भारत का सॉफ्टवेयर सेवा निर्यात वार्षिक आधार पर 8.2% बढ़कर $221 अरब से अधिक हो गया है। रिजर्व बैंक के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवा निर्यात पर कल जारी वार्षिक सर्वेक्षण में ये जानकारी दी गई। पिछले वर्ष के दौरान भारत के कुल सॉफ्टवेयर निर्यात में बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग यानी BPO सेवाओं का हिस्सा सबसे ज्यादा रहा। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने चुने हुए जिलों के श्रम बाजार विवरण जारी कर दिए हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने पहली बार जिला स्तर पर भी श्रम बाजार के विवरण जारी किए हैं। लगभग 57.8% जिलों में महिलाओं की श्रम भागीदारी 40% से अधिक है। सबसे अधिक आबादी वाले 50% जिलों में श्रमिक जनसंख्या दर 37.3 से 76.7% के बीच रही है। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर गठित संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक कल नई दिल्ली में हुई। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने समिति के सदस्यों को विधेयक के प्रावधानों की जानकारी दी। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजने की मंजूरी दी गई थी। इस संशोधन विधेयक का उद्देश्य विदेशी योगदान के उपयोग को ज्यादा पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है। सरकार ने थोक उपभोक्ताओं के लिए चीनी के भंडारण की सीमा 15 दिन से बढ़ाकर 30 दिन कर दी है। ये छूट इस शर्त पर दी गई है कि मौजूदा 15 दिनों की सीमा से अधिक चीनी की मात्रा केवल अग्रिम प्राधिकरण योजना और टैरिफ दर कोटा के अंतर्गत आयातित चीनी से ही प्राप्त की जानी चाहिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू के साथ भारत और कनाडा के बीच समग्र आर्थिक साझेदारी समझौते को गति देने के लिए बैठक की। दोनों पक्षों ने बातचीत में तेजी लाने और जल्द से जल्द समझौते को अंतिम रूप देने के लिए अपनी अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। भारत को स्वीडिश चैम्बर ऑफ कॉमर्स इन इंडिया के नवीनतम बिजनेस क्लाइमेट सर्वे 2026 में 40 से अधिक वैश्विक बाजारों में व्यापारिक सुगमता के मामले में पहला स्थान मिला।

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर सुबह के 6:12 हो चले हैं। भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्पण लेकर शनिवार की सुबह आपके साथ हूं मैं सुनीता। नमस्कार, सुप्रभात।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

100.1 MHz पर आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड सुन रहे हैं आप। 6:33 और 36 सेकंड हो चले हैं। भक्ति संगीत का कार्यक्रम ये अर्पण है, आप इसका आनंद ले रहे हैं और शनिवार की सुबह मैं हूँ आपके साथ सुनीता।

यह आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है इसे, और अब समय हो चला है कि हम आनंद लें श्री रामचरितमानस कांड का। आइए सुनते हैं अयोध्या कांड से ये अंश।

शोक संतप्त तथा पश्चाताप की आग में झुलस रहे भरत को माता कौशल्या हृदय से लगाकर धीरज बंधा रही हैं। ज्ञान के उदय होने पर भी चाहे मन का मोह न मिटे, किंतु वो जानती हैं कि किसी अवस्था में भी भरत श्री राम से विमुख नहीं हो सकते। पुरोहित तथा कुलगुरु मुनिवर वशिष्ठ भरत को समयानुकूल उपदेश और लोकाचार की शिक्षा देकर दिवंगत महाराज के पार्थिव शरीर की अंत्येष्टि के लिए प्रवृत्त करते हैं। सरयू तट पर चंदन की सुंदर चिता सजाकर दाह संस्कार होता है और एक दिन शुभ घड़ी और लग्न देखकर राजसभा में मुनिवर वशिष्ठ मंत्रियों तथा महाजनों की उपस्थिति में युवराज भरत को नीति तथा धर्म पालन का उपदेश देते हैं।

सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान। और अब समय हो चला है समाचार का। संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी में अब आप सुनेंगे समाचार। और समाचार के बाद मैं सुनीता एक बार फिर होंगी आपके साथ लेकर प्रोग्राम गोल्ड सुप्रभात। और समय रहेगा 7:10। तो फिलहाल जानते हैं देश दुनिया का हाल और सुनते हैं समाचार।

विश्वविद्यालयस्य उत्तरपरिसरे स्थितस्य विश्वविद्यालय क्रीडांगणस्य बहुद्देशीय सभागारे भविष्यति। ऐषमः एशिया क्रीडा महोत्सवस्य 20तमस्य संस्करणस्य भव्योद्घाटन समारोहः अद्य जापान देशस्य आईजी नागोया स्थिते पालोमा मिजुहो क्रीडांगणे भारतीय समयानुसारं मध्याह्ने 2:30 आरप्स्यते। द्विवारं ओलंपिक पदक विजेत्री मनु भाकर अथ तजिंदर पाल सिंह तूरह च उद्घाटन समारोहे भारतस्य ध्वज वाहकौ भविष्यतः। एशिया क्रीडा अद्यारभ्य अक्टूबर मासस्य 4 दिनांक पर्यन्तं प्रवर्तिष्यते। इति वार्ताः।

0: people.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण इस 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। इसमें पर्यावरण विशेषज्ञ और सर्वोच्च, उच्च तथा जिला न्यायालयों के न्यायाधीश और विभिन्न मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे। सम्मेलन में 17 देशों के प्रतिष्ठित न्यायाधीश और न्यायिक प्रतिनिधि भी हिस्सा ले रहे हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी विभागों में चयनित 51,000 युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इस अवसर पर वे नवनियुक्त अभ्यर्थियों को संबोधित भी करेंगे। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर गठित संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक कल नई दिल्ली में आयोजित की गई। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने समिति के सदस्यों को विधेयक के प्रावधानों की जानकारी दी। बैठक के बाद श्री संजय जायसवाल ने कहा कि बैठक सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई और सदस्यों ने कई प्रश्न उठाए।
2: बहुत ही अच्छे से कॉर्डियल वे से पूरी मीटिंग चली। सभी सांसदों ने अपने अपने प्रश्न पूछे। हमें मैंडेट यही मिला हुआ है कि विंडो सेशन से पहले हमें अपनी रिपोर्ट दे देनी है। हम निश्चित देने में सफल हो पाएंगे। होम मिनिस्ट्री के तरफ से ब्रीफिंग थी। जाहिर बात है कि पहली ब्रीफिंग हमेशा डिपार्टमेंट की होती है, तो जो पेरेंट डिपार्टमेंट है उसने अपनी सारी ब्रीफिंग की।
1: वर्ष 2025-26 में भारत का सॉफ्टवेयर सेवा निर्यात वार्षिक आधार पर 8.2% बढ़कर $221 अरब से अधिक हो गया है। रिजर्व बैंक के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवा निर्यात पर जारी वार्षिक सर्वेक्षण में ये जानकारी दी गई है। भारत के सॉफ्टवेयर निर्यात के लिए 54% से अधिक की भागीदारी के साथ अमरीका सबसे बड़ा केंद्र बना रहा। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ नोएडा, हापुड़, गाजियाबाद, मेरठ और बुलंदशहर सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से जुड़े राज्य के 8 सीमावर्ती जिलों में वायु गुणवत्ता सुधार के लिए एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। श्री यादव ने बताया कि वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए कार्य योजना पर चर्चा की गई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू के साथ भारत और कनाडा के बीच समग्र आर्थिक साझेदारी समझौते को गति देने के लिए बैठक की। दोनों पक्षों ने बातचीत में तेजी लाने और समझौते को शीघ्र अंतिम रूप देने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। समग्र आर्थिक साझेदारी समझौते से वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार, निवेश तथा आर्थिक सहयोग के अन्य क्षेत्रों में नए अवसर सृजित होने की उम्मीद है। भारत को स्वीडिश चैम्बर ऑफ कॉमर्स इन इंडिया के नवीनतम बिजनेस क्लाइमेट सर्वे में 40 से अधिक वैश्विक बाजारों में व्यापारिक सुगमता के मामले में पहला स्थान मिला है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में यह जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि वैश्विक अस्थिरता के बीच भारत का कारोबारी माहौल स्थिरता, विकास और कारोबार सुगमता के लिए नए मानक स्थापित कर रहा है। सरकार ने थोक उपभोक्ताओं के लिए चीनी के भंडारण की सीमा 15 दिनों से बढ़ाकर 30 दिन कर दी है। ये छूट

7:10 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड। शनिवार की सुबह सुनीता है आपके साथ और यह है गोल्ड सुप्रभात की महफिल। शुरुआत 1969 की फिल्म महल के इस डुएट के साथ आशा भोसले किशोर कुमार की आवाजें हैं।

आनंद बख्शी ने लिखा, कल्याण जी आनंद जी ने कंपोज किया ये रोमांटिक गाना, और इस गाने से मुझे याद आ रही है एक प्यारी सी छोटी सी कविता कि इतना कुछ था दुनिया में लड़ने झगड़ने को पर ऐसा मन मिला कि जरा सा प्यार में डूबा रहा और जीवन बीत गया। 19 सितंबर 1927 को जन्म हुआ कवि कुंवर नारायण का, जिन्होंने इस कविता को लिखा था। साहित्य अकादमी ज्ञानपीठ पुरस्कार के साथ साथ उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था।

0: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो, इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ ऑनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ और ये ऑनवेलप्स ले लो।
1: मैम, मेरे वाले में तो HIV से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं
2: और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
3: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है
4: और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से HIV हो सकता है।
5: मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV का ज्यादा रिस्क।
0: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं, तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
6: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री AIDS हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
7: ये है आपका पसंदीदा आकाशवाणी FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। और बात अगर मौसम की करें तो 35 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम और 23 डिग्री सेल्सियस मिनिमम रहेगा तापमान। गोल्ड सुप्रभात एंजॉय कर रहे हैं आप सुनीता के साथ।

बहुत ही प्यारा सा गाना। ये फिल्म थी 1990 की आशिकी, सुपरहिट फिल्म, और इसे डायरेक्ट किया था महेश भट्ट साहब ने। और आप जानते हैं कि जो एफएम गोल्ड है वहाँ पर हम स्पेशल पर्सनालिटीज़ को याद करते हैं, उनकी बातें करते हैं और उनका जो अचीवमेंट है उसके बारे में भी बात होती है। तो आज महेश भट्ट साहब की बात होगी कलाकार बेमिसाल प्रोग्राम में दोपहर 1:10 पर। और जब मैं महेश भट्ट साहब के बारे में सोचती हूँ और उनके इंटरव्यूज़ देखती हूँ या उनके फिल्मों को जो सम्मान किया गया है उनका और उनके फिल्मों का, तो एक जो फिल्म है और एक जो गाना है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, हो सकता है आपको भी पसंद हो। और ये गाना जो है मैं अगला आप ही के लिए बजाने वाली हूँ, अलका याग्निक ने इसे गाया है, 1998 की फिल्म है ये। और कौन सी फिल्म है, कौन सा गाना है, पहले इंजॉय करते हैं।

0: अवार्ड विनिंग मूवी थी ये महेश भट्ट साहब की, और इसका गाना अभी हमने एंजॉय किया। और अब देखिए ना, घड़ी की सुइयां कह रही हैं कि अभी मुझे फिलहाल छोटा सा विराम लेना होगा, क्योंकि अब समाचार सेवा प्रभाग के प्रोग्राम आज सवेरे का वक्त हो चला है। 8:45 पर म्यूजिकल दिल्ली के साथ सुनीता फिर होगी आपके साथ। फिलहाल सुनते हैं आज सवेरे।
1: समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।

0: नमस्कार श्रोताओं, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन आप सभी का आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर कार्यक्रम आज सवेरे में। सुबह के 7:30 बज चुके हैं और अब तक के प्रमुख समाचार तथा बहुत सी रोचक जानकारी लेकर हम एक बार फिर से हाजिर हैं। आइए आगाज करते हैं इस कार्यक्रम का। और आज सवेरे के इस अंक में मैं हूं निखिल कुमार और मेरे साथ में है तन्वी खुराना। स्वागत है तन्वी आपका।
1: Thank you so much, Nikhil, and a very good morning to you and to all our listeners tuned into Akashwani FM Gold on 100.1 MHz and the entire Akashwani network. Well, yes, Nikhil has already introduced you to our daily news magazine program. This is Aaj Savere, and till 8 o'clock, we have a lot in store for all of you. Today is 19th of September 2026, and it's a Saturday, so a very happy Saturday to all of you. Here comes the weekend, so I really hope that you are going to enjoy each and every moment of this entire weekend. So let's begin our program with the news headlines. Prime Minister Narendra Modi will inaugurate the International Conference on the Future of Environment and Climate Dynamics today in New Delhi. The two-day conference is being organized by the National Green Tribunal. It will bring together environmental experts, judges of the Supreme Court and High Courts, and district court judges. Secretaries of various ministries and senior government officials will also participate in this event. Representatives from state judicial academics, state legal services authorities, state expert appraisal committees, state environment impact assessment authorities, and state wetland authorities will attend the conference. It will also bring together eminent judges and judicial representatives from 17 countries.
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी संगठनों में चयनित 51,000 युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस अवसर पर वे नव नियुक्त अभ्यर्थियों को संबोधित भी करेंगे।
2: 20वां रोजगार मेला देश भर की 45 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। इसके तहत नवनियुक्त कर्मचारी केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्य करेंगे। इनमें वित्त, रेल, गृह, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और रक्षा मंत्रालय शामिल हैं। इस 20वें रोजगार मेले के साथ ही लगभग 12,75,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र मिले हैं। रोजगार मेला युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने और देश की विकास यात्रा में उनकी ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित करने पर सरकार के लगातार ध्यान को दर्शाता है। अनुपम मिश्र के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: India has been ranked first in business climate among 40 plus global markets in the latest Business Climate Survey 2026 by the Swedish Chamber of Commerce in India. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal shared this information in a social media post. He said, India's business climate is setting the gold standard for stability, growth and ease of doing business amid global turbulence.
0: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ नोएडा, हापुड़, गाजियाबाद, मेरठ और बुलंदशहर सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से जुड़े राज्य के 8 सीमावर्ती जिलों में वायु गुणवत्ता सुधार के लिए एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। श्री यादव ने बताया कि वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए कई कार्ययोजनाओं पर चर्चा हुई। इसमें पुराने वाहनों से संबंधित उपाय करना, नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति, इलेक्ट्रिक बसें, अनिवार्य प्रदूषण प्रमाण पत्र और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर यात्रा सुविधा प्रदान करने वाले एग्रीगेटर वाहन शामिल हैं। औद्योगिक प्रदूषण के संबंध में अधिकारियों ने बताया कि लगभग 80% उद्योगों ने ऑनलाइन सतत

0: उत्सर्जन निगरानी प्रणाली और वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण स्थापित कर लिए हैं। शेष उद्योगों को भी इसमें शामिल करने के प्रयास जारी हैं। श्री यादव ने कहा कि बैठक में मशीनों से और गहन सफाई के माध्यम से धूल प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपायों पर भी समीक्षा की गई। उन्होंने कहा कि पड़ोसी राज्यों के साथ भी समन्वित प्रयासों को मजबूत किया जा रहा है। श्री यादव ने कहा कि हरियाणा और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठकें हो चुकी हैं, जबकि राजस्थान और पंजाब के साथ भी चर्चा की योजना बनाई जा रही है। इस बीच पराली प्रबंधन को लेकर राज्यों के साथ समन्वय भी किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में वायु प्रदूषण नियंत्रण उपायों को सशक्त बनाने के लिए पिछले वर्ष दिसंबर से अब तक 30 से अधिक बैठकें हो चुकी हैं, जिनमें स्थानीय निकायों, जन प्रतिनिधियों और अन्य हितधारकों के बीच समन्वय पर बल दिया गया है।
1: Moving towards the weather, the India Meteorological Department, IMD, has forecast heavy to very heavy rainfall over Andaman and Nicobar Islands today. The weather agency predicted heavy rainfall over East Rajasthan, Odisha, Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura, Andhra Pradesh, Telangana, South Interior Karnataka, Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal, Kerala and Mahe. According to IMD, thunderstorm accompanied with lightning may prevail over Gujarat, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, North Interior, Karnataka and Lakshadweep today. A low pressure area is likely to form over the North Andaman Sea and adjoining areas around this evening. According to the India Meteorological Department, the system is expected to intensify gradually and move west-northwestwards towards the South Odisha, North Andhra Pradesh coasts during the following 3 to 4 days. Its movement is likely to enhance rainfall activity over Odisha from around 22nd of September, particularly over southern parts of the state. More on this from our correspondent.
2: A fresh spell of rain is likely over Odisha from around 22nd of this month under the influence of a developing low pressure area over the Bay of Bengal. The India Meteorological Department says the system is likely to form over the North Andaman Sea and adjoining areas around today evening. It is expected to intensify gradually and move west-northwestwards towards the South Odisha, North Andhra Pradesh coast during the next 3 to 4 days. Southern Odisha is likely to receive increased rainfall as the system moves closer to the coast. The exact intensity and track of the system is being monitored closely by the Meteorological Department. Prakash Das for Akashvani News, Bhubaneswar.
0: पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के कोहाट जिले में कल एक मस्जिद के पास विस्फोट में 15 पुलिसकर्मियों सहित 21 लोग मारे गए और 100 से अधिक लोग घायल हुए हैं। शुक्रवार की नमाज के दौरान विस्फोट से मस्जिद के पास धमाका हुआ। हमलावरों ने भागने से पहले पुलिस चेक पोस्ट को भी निशाना बनाया। इत्तेहाद उल मुजाहिदीन पाकिस्तान नाम के एक संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है।
1: And moving towards sports, the grand opening ceremony of the 20th edition of the Asian Games 2026 will start at the Paloma Mizoha Stadium in Aichi Nagoya, Japan today at 2:30 p.m. India time. Double Olympic medalist Manu Bhakar and shot putter Tejinder Pal Singh Tur will be India's flag bearers at the opening ceremony. The Asian Games will run from today to 4th of October, with more than 500 Indian athletes set to compete across 37 sports. The Indian contingent will feature 5 individual Olympic medalists, despite the withdrawal of defending javelin throw champion Neeraj Chopra due to an ankle injury. PV Sindhu will spearhead the badminton campaign, while Mirabai Chanu leads the weightlifting contingent. Shooting will feature Manu Bhakar, Lovelina Borghain will compete in boxing, and Aman Sehrawat will represent India in wrestling.
0: और श्रोताओं, समय है प्रमुख महानगरों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद से जुड़ी कुछ प्रमुख खबरों को आप तक पहुंचाने का। तो तन्वी, कहां शुरू कर रहे हैं?
1: लेट्स बिगिन विद चेन्नई। Researchers from IIT Madras in collaboration with Sindhu Central University have established a high-altitude atmospheric observatory at SCU's campus in Ladakh at an elevation of 3,450 meters to study air chemistry and climate processes in the Himalayan region. The observatory uses a proton transfer reaction mass spectrometer to measure volatile organic compounds in the air online and in real time, even at concentrations of parts per trillion.
0: दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 के अंतर्गत मतदाता सूची को सही और अपडेट करने से जुड़ी प्रक्रिया के लिए 20 और 27

0: सितंबर को विशेष शिविर लगाया जाएगा। ये शिविर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित होंगे। इनमें मतदाता अपना नाम और विवरण जांचने के साथ जरूरी फॉर्म जमा करने की जानकारी भी ले सकेंगे। नोटिस चरण और दावों या आपत्तियों का निपटान 29 अक्टूबर तक चलेगा। एसआईआर के अंतर्गत अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 4 नवंबर को होगा। इस बीच दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के लिए कल मतदान संपन्न हो गया। विश्वविद्यालय छात्र संघ के लिए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव पदों के लिए मतदान कराया गया। वोटों की गिनती आज नॉर्थ कैंपस स्थित विश्वविद्यालय के स्पोर्ट्स स्टेडियम परिसर में होगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद जीत का कोई जुलूस नहीं निकाला जाएगा।
1: And moving towards Bangalore, the Karnataka government has approved the Karnataka Sustainable Data Center Policy 2026-2031, targeting a cumulative 1 gigawatt data center load by 2031 and 10-12% of India's AI-ready data center capacity. With a revised budget of over 1,300 crore rupees, the five-year policy focuses on attracting investments in data centers, parks, edge data centers, cable landing stations, and allied infrastructure. The policy emphasizes renewable energy, energy efficiency, advanced cooling, water management, and carbon reduction while promoting data center development beyond Bangalore.
0: केंद्र सरकार ने दिल्ली में एमबीबीएस की 100 सीटें बढ़ाने का प्रावधान कर दिया है। ये सीटें मैदान गढ़ी में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स से जुड़े केंद्रीय सशस्त्र पुलिस फोर्स संस्थान को दी गई हैं। उधर महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कल यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के मुंबई परिसर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ये परिसर मुंबई को ज्ञान, नवाचार, प्रौद्योगिकी और प्रतिभा के वैश्विक केंद्र के रूप में विकसित करने के महाराष्ट्र के प्रयासों को नई गति प्रदान करेगा। श्री फडणवीस ने कहा कि ये परिसर विद्यार्थियों को वैश्विक स्तर की शिक्षा और वित्तीय संस्थानों, बहुराष्ट्रीय कंपनियों, प्रौद्योगिकी फर्मों, स्टार्टअप और अनुसंधान संगठनों से जुड़ने का अवसर प्रदान करेगा। इस बीच मध्य रेलवे ने कहा कि पुणे और महाराष्ट्र के बीड के बीच में बहुप्रतीक्षित दैनिक रेल सेवा सोमवार से शुरू होगी। ये रेलगाड़ी उरुली, दोंड कार्ड लाइन, श्रीगोंडा रोड, अहिल्यानगर, नारायण दोहो, न्यू आष्टी और अमलनेर भंड्याच स्टेशनों पर रुकेगी।
1: And about Hyderabad, Telangana Chief Secretary Sanjay Jaju chaired a high-level review meeting at the Dr. B.R. Ambedkar State Secretariat to evaluate arrangements for the upcoming Khelo India Youth Games scheduled from 11th of December to 22nd of December, urging all departments to work in coordination for the smooth execution of the event. He announced that the sports meet will take place across Hyderabad and five other districts, including Hanamkonda, Karimnagar, Nizamabad, Mehboobnagar and Khammam. The Under-18 National Sports Spectacle will feature 27 different sporting events.
0: पश्चिम बंगाल के पर्यटन विभाग ने पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से संतरा महोत्सव, खाद्य महोत्सव और चाय महोत्सव जैसे मौजूदा आयोजनों के साथ साथ विभिन्न नए महोत्सवों का आयोजन करने का निर्णय लिया है। राज्य पर्यटन मंत्री शंकर घोष ने कल कोलकाता में पतंग महोत्सव का उद्घाटन करने के अवसर पर इसकी घोषणा की। उन्होंने बताया कि पुरुलिया जिले में पलाश के फूलों को खिलने पर केंद्रित एक भव्य उत्सव आयोजित करने की भी योजना बनाई जा रही है और इस संबंध में एक विशेष प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने पिछले 15 वर्षों में विभाग की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला और पिछले 4 महीनों में शुरू की गई कई विकास गतिविधियों का भी विवरण दिया। इसके अलावा पर्यटन मंत्री ने कहा कि राज्य विभाग तकनीकी और सामाजिक बदलावों के कारण समय के साथ लुप्त हो चुकी स्थानीय संस्कृति को भी पुनर्जीवित करने के लिए सक्रिय कदम उठा रहा है। तो ये थी महानगरों से जुड़ी हुई कुछ प्रमुख खबरें। और श्रोताओं, अब हम लेते हैं हाल मौसम। तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस जबकि अधिकतम तापमान के 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है। उधर मुंबई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना व्यक्त की गई है। कोलकाता की बात करें तो वहां पर आमतौर पर बादल छाए रहेंगे, कहीं कहीं पर हल्की बारिश हो सकती है। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस जबकि अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास तक जा सकता है।
1: And Chennai is likely to see generally thunder showers would occur towards evening or night. The temperatures are expected to range between minimum of 26 degrees and maximum of 34 degrees Celsius. Bangalore is to experience generally cloudy sky with heavy rain. The minimum

0: Temperature is expected to be 21 degrees, while the maximum may reach 31 degrees. And Hyderabad is likely to see generally partly cloudy sky with the possibility of rain or thunderstorm or even dust storm. Temperatures are expected to range from 24 degrees to 34 degrees Celsius.
1: समय है अब इतिहास के पन्नों को पलटने का और अपने श्रोताओं को उन कुछ प्रमुख घटनाओं के बारे में बताने का जिन्होंने आज के दिन अपनी खास पहचान दर्ज की है। श्रोताओं, आज है 19 सितंबर और आपको हम बता दें कि वर्ष 1891 में आज के दिन ही विलियम शेक्सपियर के प्रसिद्ध नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस का मैनचेस्टर में पहली बार मंचन किया गया था। वहीं 1893 में न्यूजीलैंड में निर्वाचन अधिनियम 1893 के तहत सभी महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया गया।
0: इन द ईयर 1957 द यूनाइटेड स्टेट्स कंडक्टेड इट्स फर्स्ट अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट इन द नेवाडा डेजर्ट।
1: इससे पहले वर्ष 1955 में अर्जेंटीना की सेना और नौसेना ने विद्रोह किया और राष्ट्रपति जुआन पेरोन को पद से हटा दिया था।
0: इन द ईयर 1960 द इंडस वाटर ट्रीटी वाज साइंड इन कराची बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान।
1: वर्ष 1982 में आज के दिन ही स्कॉट फॉरमैन ऑनलाइन संदेश का इस्तेमाल करने वाले पहले व्यक्ति बने थे और 1983 में आज के दिन ही ब्रिटिश उपनिवेश कैरेबियन द्वीप सेंट किट्स और नेविस आजाद हुए।
0: इन द ईयर 1983 सेंट किट्स एंड नेविस गेन्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम।
1: वर्ष 1996 में आज के दिन ही एलेजा इजित बोगोविक युद्धोत्तरीन कालीन बोस्निया के पहले राष्ट्रपति बने थे।
0: एंड इन द ईयर 2007 युवराज सिंह मेड क्रिकेटिंग हिस्ट्री बाय हिटिंग 6 कंसेक्यूटिव सिक्सेस इन वन ओवर ड्यूरिंग द इनॉग्रल आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप इन डर्बन अगेंस्ट इंग्लैंड।
1: वर्ष 2000 में आज के दिन ही कर्णम मल्लेश्वरी ने ओलंपिक में भारोत्तोलन स्पर्धा में भारत के लिए कांस्य पदक जीता और 2007 में साइबर वॉर की संभावना को देखते हुए अमेरिकी एयरफोर्स ने अस्थाई कमांड का गठन किया था। और श्रोताओं, अब समय हो चला है जानी मानी हस्तियों को याद करने का। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि याद कर रहे हैं आज विष्णु नारायण भातखंडे को, जिनकी आज पुण्यतिथि है। उन्हें आधुनिक भारत में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को व्यवस्थित और वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत करने वाले प्रमुख संगीत शास्त्री के रूप में जाना जाता है। उन्होंने कानून की पढ़ाई की और वकालत की। उसके बाद उन्होंने संगीत के गहन अध्ययन के प्रति अपना जीवन समर्पित किया और देश के विभिन्न हिस्सों की यात्रा की और अलग अलग घरानों के संगीतकारों गायकों से मिलकर रागों तथा बंदिशों का अध्ययन किया। भातखंडे ने अपने ज्ञान को लिखित और व्यवस्थित रूप दिया और आपको हम बता दें कि उन्होंने हिंदुस्तानी संगीत के रागों को वर्गीकृत करने के लिए 10 थाट प्रणाली विकसित की, जो आज भी संगीत शिक्षा में व्यापक रूप से प्रचलित है। उन्होंने रागों के आरोह अवरोह पकड़ स्वर विन्यास और बंदिशों को भी व्यवस्थित रूप से दर्ज किया था। उनकी प्रमुख कृति है हिंदुस्तानी संगीत पद्धति, जो कि एक क्रमिक पुस्तक मालिका भी मानी जाती है।

श्रोताओं, आज ही पुण्यतिथि है सरस्वती प्रसाद की। वे हिंदी की चर्चित लेखिका थी और सुमित्रा नंदन पंत की मानस पुत्री के रूप में भी जानी जाती हैं। उनकी प्रमुख प्रकाशित कृतियों में नदी पुकारे सागर और एक थी तरु शामिल हैं, जो कि एक बहुत जानी मानी रचना है। उनकी अन्य रचनाओं में कादम्बिनी, साप्ताहिक हिंदुस्तान और नैन्सी जैसी पत्रिकाओं में भी देखा गया। वे समकालीन

0: कवयित्री रश्मि प्रभा की माता थी और सरस्वती प्रसाद का साहित्यिक जीवन ऐसा रहा है जहां पर उन्होंने मानवीय संवेदनाओं, प्रकृति और सामाजिक सरोकारों की अभिव्यक्ति हमारे सामने रखी और हिंदी साहित्य में उनकी लेखनी और साहित्य संबंधों के लिए आज भी उन्हें मुख्य रूप से याद किया जाता है।
1: एंड टुडे वी आर रिमेम्बरिंग प्रिया तेंदुलकर, एन इंडियन एक्ट्रेस, सोशल एक्टिविस्ट एंड अ राइटर हु इज मोस्ट नोन फॉर

0: श्रोताओं, प्रिया तेंदुलकर ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत मराठी रंगमंच से की थी और बाद में श्याम बेनेगल की फिल्म अंकुर से उन्होंने फिल्मों में कदम रखा। उन्होंने हिंदी के अलावा कन्नड़ फिल्मों में भी काम किया। हालांकि पहचान उन्हें दूरदर्शन से सबसे ज्यादा रजनी से ही मिली थी। इसके अलावा उन्होंने कई अन्य सीरियल्स में काम किया, जिसमें हम पांच, किस्से मियां बीवी के और दामिनी जैसे जो धारावाहिक हैं उन्हें खूब पसंद किया जाता है। आज भी हम पांच में उनका निभाया हुआ जो किरदार था उसे सुन करके ही हंसी आ जाती है। आइए सुनते हैं उनका एक छोटा सा ये डायलॉग।
1: ए, खबरदार जो मेरी बेटी को बहरी कहा।
2: गलती हो गई बस। अब सुबह सुबह तुम मत शुरू होना मेरी माँ।
1: क्या अभी बीवी को माँ कहते हुए शर्म नहीं आती?
2: मरने के बाद बोलते हुए तुमको शर्म नहीं आती?
3: And we are also remembering today Prakash Kaur. Today is her birth anniversary. She's an Indian folk singer. She's the elder sister of Surinder Kaur, a famous Punjabi singer-songwriter. In her early life, Prakash Kaur drew inspiration from Rababi women who would sing during weddings and festive occasions. She was granted approval to sing on Indian radio around 1940. That was before independence. She made her professional debut with a live performance on Peshawar radio in 1941 as she was born in Lahore in undivided India. And then on 31st of August 1943, the two sisters performed their first duet, Mava Ditiya Ral Baithiya. That means a mother and a daughter are bonding together. And this is one of the amazing tracks that I loved from Prakash Kaur and Surinder Kaur. And the title is Kut Kut Bajra Mein Kuthe Utte Paniya. So let's hear that.

0: She was already an accredited artist of All India Radio Lahore. And in 1943, she took her 13-year-old sister, Surinder Kaur, along to the studios of All India Radio Lahore. And to the surprise of everyone at the radio station, even Surinder Kaur passed the audition test. And the two sisters churned out most popular duets one after the other from 1952 to 1982. That was those three decades were all by them. And they must have recorded something like 500 records in their entire lifespan. And before Prakash Kaur's death, she was in great demand at All India Radio Delhi.
1: श्रोताओं, आज जयंती है श्रीपाद दामोदर सातवलेकर की। वे भारत के प्रसिद्ध चित्रकार, संस्कृत विद्वान, वेदों के अध्येता और समाजसेवी थे। उन्होंने चित्रकला के साथ साथ संस्कृत और वेदों का गहन अध्ययन किया था तथा भारतीय संस्कृति और वैदिक साहित्य के प्रचार प्रसार के लिए महत्वपूर्ण काम किया। वे वैदिक संस्कृति और भारतीय ज्ञान परंपरा के प्रबल समर्थक रहे। उन्होंने वेदों के अध्ययन और उनके सरल हिंदी भाष्य के माध्यम से सामान्य लोगों तक भी वैदिक ज्ञान पहुंचाने का प्रयास किया। सातवलेकर ने पुरुषार्थ नामक पत्रिका का भी लंबे समय तक संपादन किया। वे स्वतंत्रता के आंदोलन से जुड़े रहे और स्वदेशी तथा भारतीय संस्कृति के प्रचार में लगे रहे। चित्रकला के क्षेत्र में उन्होंने कई महत्वपूर्ण कृतियां बनाई और भारतीय विषयों को अपनी कला का आधार बनाया था।
0: And today, it's the birthday of A.M. Thuraz, an Indian poet and lyricist. He has worked in TV, music albums and films. He has written the lyrics for many Bollywood films, be it Badla, Padmavat, Guzarish and many more. Let's just hear one of the title tracks, one of the tracks written by him from Sanjay Leela Bhansali's Padmavat, where the Hindi lyrics are written by him, but the Rajasthani lyrics are written by Swaroop Khan.

0: श्रोतों, इसी कड़ी में हम याद कर रहे हैं कुंवर नारायण को, जो कि हिंदी के प्रसिद्ध कवि, लेखक और चिंतक थे। वे हिंदी की आधुनिक कविता के प्रमुख रचनाकारों में गिने जाते हैं और नई कविता आंदोलन से जुड़े रहे। उनकी रचनाओं में इतिहास, मिथक, दर्शन, मानवीय संवेदना और समकालीन जीवन के सवालों का गहरा प्रभाव दिखाई देता है। उनकी प्रमुख रचनाओं की हम बात करें तो चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, आत्मजयी, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं और इन दिनों शामिल हैं। वर्ष 2005 में उन्हें साहित्य अकादमी फेलोशिप प्रदान की गई थी और साहित्य में उनके विशिष्ट योगदान को देखते हुए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार और पद्म भूषण सहित कई सम्मान मिले थे। उन्हें आधुनिक हिंदी साहित्य में उनके गंभीर, चिंतनशील और मानवीय दृष्टिकोण के लिए विशेष रूप से याद किया जाता है।
1: And today is the birthday of Sunita Lynn Williams, an American retired Navy captain and NASA astronaut. She has served aboard the International Space Station as a flight engineer for Expedition 14, Expedition 15, Expedition 32 and Expedition 71 and commander of Expedition 33 and also Expedition 72. She is one of the most experienced spacewalkers. Her 9 spacewalks are second most by a woman and her total spacewalk time of 62 hours and 6 minutes is fourth overall and the most by a woman. We have an interview of hers where she's telling about all the things that she took with her in space.
2: Really appreciate my Indian heritage and was glad I could bring part of it with me to space. Ganesh has always been in my house. Everywhere I've lived, I've had Ganesh, and so he had to come with me to space, of course. And Indian food, you can never get enough of Indian food. I was so excited to come here to know that I would be eating Indian food, so I had to make sure I had samosas in space with me. Bhagavad Gita, and this last time I brought a small copy interpretation of Upanishad with me. I also brought, along with the Bhagavad Gita, the Odyssey, and I thought that was also quite appropriate to be in space and have those types of things to reflect and read about.
0: श्रोताओं, आज जन्मदिन है कल्पना कार्तिक का। वे हिंदी सिनेमा की जानी मानी अभिनेत्री रही हैं। शिमला में पढ़ी लिखी और पढ़ाई के दौरान ही मिस शिमला चुनी गई थी। उन्होंने अभिनेता चेतन आनंद के साथ में फिल्मबाजी के जरिए 1951 में हिंदी फिल्मों में अपना करियर शुरू किया। फिल्म में उन्होंने डॉक्टर की भूमिका निभाई और देव आनंद साहब के साथ उनकी जोड़ी को काफी पसंद किया गया। इसके बाद उन्होंने आंधियां, हम सफर, टैक्सी ड्राइवर, हाउस नंबर 44, 9211 जैसी फिल्मों में देव साहब के साथ काम किया था।

श्रोताओं, आज जन्मदिन है लकी अली का। लकी अली ने गायन के साथ साथ संगीत रचना और अभिनय के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई और 1990 के दशक में एल्बम सुनो ने उन्हें देशभर में लोकप्रिय पहचान दिलाई और ओ सनम जैसे गीतों ने एक अलग पहचान कायम की।

0: श्रोताओं को बता दें कि लखियली की आवाज में सादगी, गहराई और सूफियाना अंदाज का एक विशेष मेल दिखाई देता है जो उनकी आवाज को काफी दिलकश बना देता है। और फिलहाल आज सवेरे में हमारे पास आपके लिए इतना ही है, तो श्रोताओं एक नई मुलाकात के वादे के साथ अनुमति दीजिए निखिल और तन्वी को कार्यक्रम यही संपन्न करने की।
1: थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन, हैव अ सुपर्ब डे,
0: नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 20वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते की वार्ता को गति देने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। स्वीडिश चैंबर ऑफ कॉमर्स की रिपोर्ट, 41 वैश्विक बाजारों में व्यापारिक सुगमता में भारत पहले स्थान पर। रिजर्व बैंक ने कहा, भारत में सॉफ्टवेयर सेवाओं के निर्यात में वर्ष 2025-26 में वार्षिक आधार पर 8.2% की वृद्धि। और 20वें एशियाई खेलों का शुभारंभ आज से जापान में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी विभागों में चयनित 51,000 युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इस अवसर पर वे नवनियुक्त अभ्यर्थियों को संबोधित भी करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: 20वां रोजगार मेला देश भर की 45 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। इसके तहत नवनियुक्त कर्मचारी केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्य करेंगे। इनमें वित्त, रेल, गृह, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और रक्षा मंत्रालय शामिल हैं। इस 20वें रोजगार मेले के साथ ही लगभग 12,75,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र मिले हैं। रोजगार मेला युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने और देश की विकास यात्रा में उनकी ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित करने पर सरकार के लगातार ध्यान को दर्शाता है। अनुपम मिश्र के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण इस 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। इसमें पर्यावरण विशेषज्ञ और सर्वोच्च, उच्च तथा जिला न्यायालयों के न्यायाधीश और विभिन्न मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे। सम्मेलन में 17 देशों के प्रतिष्ठित न्यायाधीश और न्यायिक प्रतिनिधि भी हिस्सा ले रहे हैं। ये सम्मेलन न्यायिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक ज्ञान, पर्यावरण से जुड़ी सुशासन प्रक्रियाओं और संस्थागत अनुभवों के आदान प्रदान के लिए एक मंच प्रदान करेगा। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर गठित संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक कल नई दिल्ली में आयोजित की गई। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने समिति के सदस्यों को विधेयक के प्रावधानों की जानकारी दी। बैठक के बाद श्री संजय जायसवाल ने कहा कि बैठक सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई और सदस्यों ने कई प्रश्न उठाए।
2: बहुत ही अच्छे से कॉर्डियल वे से पूरी मीटिंग चली। सभी सांसदों ने अपने अपने प्रश्न पूछे। हमें मैंडेट यही मिला हुआ है कि विंडो सेशन से पहले हमें अपनी रिपोर्ट दे देनी है। हम निश्चित देने में सफल हो पाएंगे। होम मिनिस्ट्री के तरफ से ब्रीफिंग थी। जाहिर बात है कि पहली ब्रीफिंग हमेशा डिपार्टमेंट की होती है, तो जो पेरेंट डिपार्टमेंट है उसने अपनी सारी ब्रीफिंग की।
0: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ नोएडा, हापुड़, गाजियाबाद, मेरठ और बुलंदशहर सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से जुड़े राज्य के 8 सीमावर्ती जिलों में वायु गुणवत्ता सुधार के लिए एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद श्री यादव ने बताया कि वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए कार्य योजनाओं पर चर्चा की गई।
3: व्हीकल पॉल्यूशन को लेकर जो ओल्ड व्हीकल है उनको निदान किया जाए। नई ईवी पॉलिसी में बसों की हमने समीक्षा करी, उसके साथ ही प्रदूषण सर्टिफिकेट की अनिवार्यता के विषय पे हमने करी। एग्रीगेटर वाहन है उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा करी और व्हीकल पॉल्यूशन को लेकर के क्या और प्रभावी कार्य किए जा सकते हैं उसकी समीक्षा करी। इस क्षेत्र में आने वाला जो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन है उसमें हमने देखा है कि 80% इंडस्ट्रीज ने OCMs और APD जो है वो लगा ली है।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
4: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@airnewshindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनका जीवन जन सेवा से राष्ट्र सेवा के मंत्र और निरंतर समर्पण से जुड़ा रहा है। सेवा और सुशासन की इसी सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के इन प्रयासों से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। इसी कड़ी में प्रस्तुत है वर्ष 2020 से शुरू हुई भारतीय अंतरिक्ष नीति पर हमारी विशेष श्रृंखला।
5: स्पेस सेक्टर रिफॉर्म्स की वजह से स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काफी सुधार देखा जा रहा है। आईआईटी मद्रास के इंजीनियरों की टीम द्वारा शुरू किए गए स्पेस स्टार्टअप गैलेक्स आई इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। इस स्टार्टअप ने दुनिया का पहला एप्टो एसएआर सैटेलाइट मिशन दृष्टि विकसित किया है। गैलेक्सी आई के सीईओ और को फाउंडर सूर्य सिंह ने आकाशवाणी से खास बातचीत में स्पेस सेक्टर में हुए सुधारों के फायदों के बारे में बताया है।
6: The government is supporting the sector through technology transfers.
7: सरकार टेक्नोलॉजी ट्रांसफर R&D और ज्यादा फंडिंग के जरिए इस सेक्टर को सपोर्ट कर रही है। इसमें 1,000 करोड़ रुपए का स्पेस सेक्टर वेंचर कैपिटल फंड और स्पेस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड जैसी पहल शामिल हैं। इससे हमारी जैसी नई कंपनियों को मुश्किल चुनौतियों का सामना करने, भारत में अहम टेक्नोलॉजी विकसित करने और भारत के स्पेस प्रोग्राम को अगले चरण में ले जाने के लिए सार्थक योगदान का आत्मविश्वास मिलता है।
5: गैलेक्सी आई के सीईओ सूर्य सिंह का कहना है कि स्पेस सेक्टर में हुए सुधारों ने प्राइवेट कंपनियों और इंडस्ट्रीज के लिए वैल्यू चेन के रास्ते खोल दिए हैं। साथ ही इन स्पेस इंडस्ट्री को मंजूरी दिलाने और इसरो की सुविधाओं, इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्निकल जानकारी तक पहुंचाने में मदद कर रहे हैं। इससे हमें सैटेलाइट सिस्टम और मिशन ऑपरेशन के क्षेत्र में अपनी इन हाउस क्षमताएं बढ़ाने में भी मदद मिल रही है। इसके अलावा सरकार टेक्नोलॉजी ट्रांसफर R&D और जरूरी फंडिंग के जरिए इस सेक्टर को सपोर्ट कर रही है, जिसमें स्पेस सेक्टर वेंचर कैपिटल फंड और स्पेस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड जैसी पहल शामिल है। उन्होंने कहा कि नई कंपनी के लिए इससे मुश्किल चुनौतियों का सामना करने में मदद मिलेगी और भारत में जरूरी टेक्नोलॉजी विकसित करने और भारत के स्पेस प्रोग्राम के अगले चरण में अहम योगदान देने में भी मदद मिल रही है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते की वार्ता को गति देने की प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू के साथ भारत और कनाडा के बीच समग्र आर्थिक साझेदारी समझौते को गति देने के लिए बैठक की। दोनों पक्षों ने बातचीत में तेजी लाने और जल्द से जल्द समझौते को अंतिम रूप देने की अपनी अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। समग्र आर्थिक साझेदारी समझौते से वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार, निवेश तथा आर्थिक सहयोग के अन्य क्षेत्रों में नए अवसर सृजित होने की उम्मीद है। भारत को स्वीडिश चैंबर ऑफ कॉमर्स इन इंडिया के नवीनतम बिजनेस क्लाइमेट सर्वे में 41 वैश्विक बाजारों में व्यापारिक सुगमता के मामले में पहला स्थान मिला है।
8: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि वैश्विक अस्थिरता के बीच भारत का कारोबारी माहौल स्थिरता, विकास और कारोबार सुगमता के लिए नया मानक स्थापित कर रहा है। ग्लोबल बिजनेस क्लाइमेट सर्वे 2026 में 41 बाजारों के बारे में जानकारी दी गई है। ये सर्वेक्षण विदेशों में कारोबार करने को लेकर स्वीडिश कंपनियों के अनुभव और दृष्टिकोण को सामने रखता है। इसका उद्देश्य प्रमुख स्वीडिश निर्यात बाजारों में आर्थिक प्रदर्शन, कारोबारी संभावनाओं और कामकाज की परिस्थितियों की तुलना के लिए एक आधार उपलब्ध कराना है। समाचार कक्ष से मैं हिमांशु कांडपाल।
0: वर्ष 2025-26 में भारत का सॉफ्टवेयर सेवा निर्यात वार्षिक आधार पर 8.2% बढ़कर $221 अरब से अधिक हो गया है। रिजर्व बैंक के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवा निर्यात पर जारी वार्षिक सर्वेक्षण में यह जानकारी दी गई।
7: वार्षिक सर्वेक्षण के लिए 7,569 सॉफ्टवेयर निर्यात कंपनियों से संपर्क किया गया था, जिनमें से 2,363 कंपनियों ने जवाब दिया। कुल अनुमानित सॉफ्टवेयर निर्यात में इन कंपनियों की हिस्सेदारी लगभग 89% थी। पिछले वर्ष के दौरान भारत में कुल सॉफ्टवेयर निर्यात में बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग यानी BPO सेवाओं का हिस्सा सबसे ज्यादा रहा था। भारत के सॉफ्टवेयर निर्यात के लिए 54% से अधिक की भागीदारी के साथ अमरीका सबसे

0: बड़ा केंद्र बना रहा। 31.8% के साथ यूरोप दूसरे स्थान पर था। ब्रिटेन की हिस्सेदारी 15.4% थी। रिजर्व बैंक ने यह भी बताया कि भारतीय कंपनियों की विदेशी सहयोगी कंपनियों का स्थानीय सॉफ्टवेयर व्यापार वर्ष 2025-26 में $14 अरब से बढ़कर लगभग $18 अरब हो गया। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: मौसम विभाग ने आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने पूर्वी राजस्थान, ओडिशा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल, केरलम और माहे में भी तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आज गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, उत्तर आंतरिक कर्नाटक और लक्षद्वीप में गरज चमक के साथ आंधी चलने की संभावना है। ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि आज शाम उत्तरी अंडमान सागर और उससे सटे इलाकों में कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। इसके प्रभाव से 22 सितंबर के आसपास ओडिशा में खासकर दक्षिणी हिस्सों में वर्षा की संभावना बढ़ सकती है।
2: बंगाल की खाड़ी में बन रहे कम दबाव के क्षेत्र के कारण इस महीने की 22 तारीख के आसपास उड़ीसा में फिर से बारिश होने की संभावना है। मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि ये सिस्टम आज शाम के आसपास उत्तरी अंडमान सागर और उसे सटे इलाकों में बन सकता है। उम्मीद है कि ये धीरे धीरे और मजबूत होगा और अगले 3-4 दिनों में पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ते हुए दक्षिण उड़ीसा, उत्तरी आंध्र प्रदेश के तटों की तरफ बढ़ेगा। जैसे जैसे ये सिस्टम तट के करीब आएगा, दक्षिणी उड़ीसा में बारिश बढ़ने की संभावना है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बताया है कि अमेरिका ने ग्रीनलैंड में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ाने के लिए डेनमार्क के साथ समझौता किया है। इसके साथ ही ग्रीनलैंड को खरीदने की ट्रंप की बार बार की मांगों को लेकर महीनों से चल रहा तनाव समाप्त हो गया है। समझौते के अंतर्गत ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का अधिकार बना रहेगा। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि इस समझौते से अमरीका को ग्रीनलैंड में सुरक्षा और अन्य सभी जरूरतों पर स्थायी नियंत्रण मिल जाएगा। जापान के आइची नागोया में 20वें एशियाई खेलों का भव्य उद्घाटन आज भारतीय समयानुसार दोपहर 2:30 बजे से पालोमा मिजुहो स्टेडियम में होगा। दो बार की ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर और शॉटपुट खिलाड़ी तजिंदर पाल सिंह तूर उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक होंगे। एशियाई खेल आज से 4 अक्टूबर तक चलेंगे। भारत के 500 से अधिक खिलाड़ी 37 खेल स्पर्धाओं में हिस्सा लेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं निखिल कुमार।
3: जी विशाल, तृणमूल कांग्रेस के दोनों गुटों को नए नाम और चुनाव चिन्ह आवंटन आज के अधिकतर अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर हैं। दैनिक जागरण की सुर्खी है, ममता को दोहरा झटका, बगावत के चलते निर्वाचन आयोग ने पार्टी का चुनाव चिन्ह किया जब्त। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, बंगाल में खेला तृणमूल में अब फुटबॉलर वर्सेस लिफाफा। पंजाब केसरी का कहना है, निर्वाचन आयोग का ये फैसला, दो उपचुनावों के लिए अंतिम निर्णय बाद में। दो न्यायाधीशों की पीठ जाएगी एनटीए मुख्यालय। जनसत्ता के अनुसार एनटीए मामले की सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने कहा, सुधारों को देखने के लिए खुद जाएंगे राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी। पीठ ने मामले में मांगी है प्रगति रिपोर्ट। वायुसेना को तेजस की मिली अंतिम खेप। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने भारतीय वायुसेना को 20 तेजस विमानों की डिलीवरी का अनुबंध पूरा किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, युद्ध की बदलती तस्वीर को देखते हुए स्वदेश में विकसित प्रौद्योगिकी समय की मांग। रेटिंग एजेंसियों मूडीज और जेफरीज ने भारत का ग्रोथ अनुमान बढ़ाकर किया 7%। दैनिक भास्कर लिखता है, ईरान युद्ध और महंगे कच्चे तेल के बीच 5 महीने में भारत की ग्रोथ स्टोरी की तस्वीर बदली। पंजाब के अमृतसर में ASI की गोली मारकर हत्या, दैनिक ट्रिब्यून के पहले पन्ने पर है। ड्यूटी के दौरान दो हमलावरों ने वारदात को दिया अंजाम। विपक्षी दलों ने आम आदमी पार्टी सरकार को निशाना बनाते हुए राज्य में कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। 17 साल में सबसे सूखा रहा 2026 का मानसून। राजस्थान पत्रिका के अनुसार अलनीनो के लगातार बढ़ते असर से देश में 346 जिले प्रभावित, खरीफ उत्पादन घटने की आशंका।
1: धन्यवाद निखिल। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 20वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते की वार्ता को गति देने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। स्वीडिश चैंबर ऑफ कॉमर्स की रिपोर्ट, 41 वैश्विक बाजारों में व्यापारिक सुगमता में भारत पहले स्थान पर। रिजर्व बैंक ने कहा, भारत में सॉफ्टवेयर सेवाओं के निर्यात में वर्ष 2025-26 में वार्षिक

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज दोपहर 20वें रोजगार मेले में 9 मुकर्रा नौजवानों को 51,000 से ज्यादा तकर्रुरनामे तकसीम करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोदी आज नई दिल्ली में माहौलियात और आबोहवा के मुहर्रिकात का मुस्तकबिल के मौजू पर एक बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। भारत और कनाडा ने इक्तिसादी ताल्लुकात में मजीद गहराई लाने के लिए जामे इक्तिसादी शराकतदारी मुआहदे पर तेजी से अमल दरामद के तहत अपने अज़्म को दोहराया है। आरबीआई ने कहा है कि भारत की सॉफ्टवेयर खिदमात की बरामदात में साल ब साल की बुनियाद पर 8.2% का इजाफा हुआ। इस तरह ये 2025-26 में 221 अरब डॉलर से ज्यादा मालियत की हो गई। आज से जापान में 20वें एशियन गेम 2026 का आगाज होगा। तफसील से, वज़ीर-ए-आज़म जनाब नरेंद्र मोदी 20वें रोजगार मेले के मौके पर आज दोपहर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नए तकर्रुरशुदा नौजवानों को 51,000 से ज्यादा तकर्रुरनामे तकसीम करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इस मौके पर इन नौजवानों से खिताब भी करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
1: मुल्क भर में 45 मकामात पर 20वें रोजगार मेले का इनेकाद किया जाएगा। नए तकर्रुरशुदा उम्मीदवारों को वजारत खजाना, रेलवे, उमूर दाखिला, सेहत और ख़ानदानी बहबूद और वजारत दिफा समेत मुख्तलिफ वजारतों और हुकूमत के मुख्तलिफ महकमों में भर्ती किया जाएगा। 20वें रोजगार मेले के साथ ही मजमूई तौर पर तकरीबन 12,75,000 नौजवान तकर्रुरनामे हासिल करेंगे। रोजगार मेला नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा करने और मुल्क की तरक्की के सफर में उनकी शराकतदारी को बढ़ाने को यकीनी बनाने के हुकूमत के मुसलसल अज़्म की अक्कासी करता है। नई दिल्ली से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद शहजाद।
0: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में माहौलियात और आबोहवा के मुहर्रिकात का मुस्तकबिल के मौजू पर एक बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। इस दो रोज़ा कॉन्फ्रेंस का एहतमाम नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कर रहा है। कॉन्फ्रेंस में माहौलियात के माहिरीन, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स और जिला अदालतों के जजेज यकजा होंगे। मुख्तलिफ वजारतों के सेक्रेटरीज और सीनियर सरकारी अफसरान भी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। रियासती अदलिया से मुतालिक एकेडमीज, कानूनी खिदमात की रियासती अथॉरिटीज, माहिरीन की रियासती अप्रेजल कमेटियां, माहौलियात के असरात का जायजा लेने वाली रियासती अथॉरिटीज और दलदली जमीन से मुतालिक रियासती अथॉरिटीज इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगी। इसमें 17 मुल्कों के मुमताज जजेस और अदलिया के नुमाइंदे भी शिरकत करेंगे। कॉन्फ्रेंस से अदलिया से मुतालिक नज़रियात के इजहार, साइंसी मालूमात, माहौलियात से मुतालिक हुकुमरानी के तौर तरीकों और इदारा जाती तजुर्बात के लिए एक प्लेटफॉर्म होगा। शुरका अहम माहौलियाती और आबोहवा की तब्दीली के मामलात पर बातचीत करेंगे। इनमें पॉलिसी साजी, अमल दरामद और पॉलिसी लागू करना शामिल है। कॉन्फ्रेंस में माहौलियात, हुकुमरानी और इदारा जाती तआवुन को मुस्तहकम बनाने के तौर तरीके भी तलाश किए जाएंगे। आदाद व शुमार और प्रोग्राम पर अमल दरामद की वजारत ने कुछ मुंतखब जिलों की मेहनत मार्केट का मुख्तसर जायजा पेश किया है। आदाद व शुमार के कौमी दफ्तर ने जिला सतह की बुनियादी मेहनत मार्केट के अंदिये पहली बार जारी किए। तकरीबन 57.8% जिलों में खवातीन की अफरादी कुव्वत की शिरकत की शरह LFPR 40% या इससे ज्यादा रिकॉर्ड की गई। ज्यादा आबादी वाले सरकर्दा 50% जिलों की कारकुनों की आबादी का तनासुब WPR 37.3% से लेकर 76.7% तक रिकॉर्ड किया गया। सबसे ज्यादा आबादी वाले 100 जिलों के तहत गुजरात के शहर सूरत में LFPR और WPR की सबसे ज्यादा सतहें रिकॉर्ड की गईं, जबकि ये बिहार के शहर दरभंगा में LFPR और WPR की सबसे कम शरें थीं। गैर मुल्की अतियात के जाब्तों में 2026 के तरमीमी बिल से मुतालिक मुश्तरका पार्लियामानी कमेटी की पहली मीटिंग कल नई दिल्ली में मुनाकिद हुई। वजारत दाखिला के नुमाइंदों ने लोकसभा मेंबर पार्लियामेंट संजय जायसवाल की सदारत में कमेटी को बिल की दफात के बारे में जानकारी दी। मीडिया से

0: बात करते हुए कमेटी के चेयरमैन संजय जायसवाल ने कहा कि मीटिंग दोस्ताना माहौल में हुई और अरकान ने बहुत से सवाल किए।
1: बहुत ही अच्छे से कॉर्डियल वे से पूरी मीटिंग चली। सभी सांसदों ने अपने अपने प्रश्न पूछे। हमें मैंडेट यही मिला हुआ है कि विंडो सेशन से पहले हमें अपनी रिपोर्ट दे देनी है, हम निश्चित देने में सफल हो पाएंगे। होम मिनिस्ट्री के तरफ से ब्रीफिंग थी। जाहिर बात है कि पहली ब्रीफिंग हमेशा डिपार्टमेंट की होती है, तो जो पैरेंट डिपार्टमेंट है उसने अपनी सारी ब्रीफिंग की।
0: कमेटी में स्पीकर की तरफ से नामजद लोकसभा के 21 अरकान और राज्यसभा के 10 अरकान शामिल हैं। 12 अगस्त को पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों ने गैर मुल्की अतियात के जाब्तों में 2026 के तरमीमी बिल पर मजीद गौर खौस के लिए मुश्तरका पार्लियामानी कमेटी के सामने पेश किए जाने से इत्तेफाक किया था। बिल का मकसद गैर मुल्की अतियात को मजीद शफाफ और जवाबदही पर मबनी बनाने के लिए 2010 के इस बिल में तरमीम करना है। भारत में स्वदेशी चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने 2026 में कारोबारी माहौल का ताजा तरीन सर्वे कराया था। उसमें 40 से ज्यादा आलमी मार्केट्स के कारोबारी माहौल में भारत का पहला मकाम रहा है। तिजारत और सनत के वजीर पीयूष गोयल के सोशल मीडिया में मालूमात फराहम की हैं। उन्होंने कहा है कि भारत का कारोबारी माहौल इस्तेहकाम, तरक्की और कारोबार को आसान बनाने के लिए बेहतरीन पैमाने मुकर्रर कर रहा है। हालांकि आलमी सतह पर एक तरह का बोहरान पाया जाता है। कारोबारी माहौल के 2026 के सर्वे में 21 मार्केट्स का गहराई से जायजा पेश किया गया है, जिससे बैरून मुल्क कारोबार के स्वदेशी कंपनियों के तनाजुर का एक वसी मंजर फराहम होता है। सर्वे का मकसद बुनियादी स्वदेशी बरामदाती मार्केट्स में इक्तसादी कारकर्दगी, खाके और कामकाज के हालात के तकाबुल के लिए एक फ्रेमवर्क फराहम करना है। इस जायजे में कंपनियों को दरपेश चैलेंजेस भी जाहिर किए गए हैं और उन स्वदेशी कंपनियों के लिए मौके की निशानदेही भी की गई है जो नई मार्केट्स में दाखिले या मौजूदा मार्केट्स में तौसी में गौर खौस कर रही हैं। नंदीग्राम असेंबली हलके के लिए होने वाले जिमनी इंतखाबात में कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान को 2007 के एक पुराने अराजी के हुसूल के खिलाफ तहरीक के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस सराय ने बताया कि इस मामले में प्रधान के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया था। 2007 की नंदीग्राम तहरीक से मुतालिक मुख्तलिफ मामलों में मुबैना तौर पर उनका नाम सामने आया था। कांग्रेस ने इस गिरफ्तारी के वक्त पर सवाल उठाया है और इसके लिए बीजेपी पर बदले की सियासत का इल्जाम आयद किया है। बीजेपी ने इन इल्जाम को ये कहते हुए मुस्तरद कर दिया है कि पुलिस की कार्रवाई कानून के मुताबिक की गई है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। तिजारत और सनत के वजीर जनाब पीयूष गोयल ने भारत कनाडा जामे इक्तसादी शराकतदारी मोहदे CEPA पर तबादला ख्याल के लिए कनाडा के बैन अलाक्वामी तिजारत के वजीर मनिंदर सिद्धू के साथ मीटिंग की। कल नई दिल्ली में मीटिंग के दौरान फरीकैन ने बातचीत में तेजी लाने और मोहदे की जल्द अज जल्द तकमील की यकीन दहानी की। तवक्को है कि CEPA सामान, खिदमात, सरमायाकारी और इक्तसादी तावुन के दीगर शोबों में तिजारत के नए मौके पैदा करेगा। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब गोयल ने इसे एतमाद का इजहार किया कि CEPA की जल्द तकमील से दोतरफा तिजारत और भारत कनाडा इक्तसादी ताल्लुकात में मजीद गहराई पैदा करने में नुमाया पेशरफ्त हासिल होगी। भारत के खलाई शोबे की असलाहत जो भारत की खलाई पॉलिसी 2020 में शुरू की गई थी, उससे मुल्क का खलाई प्रोग्राम हुकूमत की इजारादारी से एक मुतहर्रिक मुकाबला जाती सरकारी प्राइवेट इको निज़ाम में तब्दील हो गया है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: खलाई शोबे की असलाहत से खलाई टेक्नोलॉजी को तरक्की देने में मदद मिल रही है। खला से मुतालिक स्टार्टअप गैलेक्स आई, जिसकी बुनियाद IIT मद्रास में इंजीनियरों की एक टीम ने रखी थी, उसने मिशन दृष्टि तैयार किया है जो दुनिया के पहले ऑप्टो SAR सैटेलाइट के तौर पर इसका एक सबूत है। खलाई शोबे में असलाहत सरकारी प्राइवेट शोबे के लिए हौसला अफजा हैं और इसमें खला के शोबे में इको निज़ाम तख्लीक देने और कामकाज में इजाफे में मदद मिल रही है। बेंगलुरु से सुधेंद्रू की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
0: भारत की सॉफ्टवेयर खिदमात की बरामदात साल ब साल की बुनियाद पर 2025-26 में 8.2% इजाफे के साथ 221.4 अरब डॉलर तक पहुंच गई हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और IT पर मबनी खिदमात की बरामदात से मुतालिक कल शाया हुए सालाना सर्वे के मुताबिक 7,569 सॉफ्टवेयर बरामदकार कंपनियों से सर्वे के लिए राबता किया गया, जिनमें कुछ बड़ी कंपनियों समेत 2,363 कंपनियों ने रद्द अमल जाहिर किया। इन कंपनियों का मुल्क की कुल तखमीना चाइना सॉफ्टवेयर बरामदात में तकरीबन 89%

0: हिस्सा है जो मस्कूरा साल के दौरान भारत की मजमूई सॉफ्टवेयर खिदमात के बरामदात का दो तिहाई से ज्यादा है, जबकि बीपीओ खिदमात आईटी से वाबस्ता खिदमात की बरामदात के सबसे बड़े जुजू के तौर पर बरकरार रही। अमरीका को की गई 54.1% बरामदात के साथ अमरीका भारतीय सॉफ्टवेयर बरामदात की सबसे बड़ी मार्केट रहा है। इसके बाद यूरोप 31.8% भारतीय सॉफ्टवेयर बरामदात के साथ दूसरे नंबर पर है, जबकि बरतानिया का हिस्सा कुल बरामदात का 15.4% रहा। सॉफ्टवेयर खिदमात ज्यादातर ऑफ साइट मोड के जरिए फराहम की गई, जिनका हिस्सा 91.7% रहा। सॉफ्टवेयर खिदमात की मजमूई बरामदात में बैरून मुल्क तिजारती बरामदात भी शामिल हैं। 2025-26 में यह बरामदात 9.5% से बढ़कर 239.3 अरब डॉलर हो गई। भारतीय रिजर्व बैंक ने मुतला किया है कि भारतीय कंपनियों की गैर मुल्की जैली कंपनियों के मकामी सॉफ्टवेयर कारोबार की मालियत 2025-26 में बढ़कर 17.9 अरब डॉलर हो गई, जो एक साल पहले 13.9 अरब डॉलर थी। इसके साथ ही अमरीका और बरतानिया भारत के लिए बदस्तूर अहम मार्केट का दर्जा रखते हैं। भारतीय महकमा मौसमियात ने शिमाली अंडमान समंदर पर आज शाम तक हवा के कम दबाव का हल्का बनने का इम्कान जाहिर किया है। महकमे के मुताबिक अगले 3 से 4 दिन में आहिस्ता आहिस्ता इसमें शिद्दत आने और मगरबी शुमाल मगरब समत में दाखिल होने और जनूबी ओडिशा से शिमाली आंध्र प्रदेश के साहिलों की जानेब बढ़ने का इम्कान है, जिसके नतीजे में 2 सितम्बर के आसपास ओडिशा में खासतौर पर रियासत के जनूबी हिस्सों में बारिश में इजाफा हो सकता है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: खलीज बंगाल के ऊपर हवा का कम दबाव बनने के तनाजुर में 2 सितंबर के आसपास ओडिशा में बारिश में दोबारा इजाफा हो सकता है। भारतीय महकमे मौसमियात के मुताबिक हवा के दबाव के हल्के के ओडिशा के साहिल की जानिब बढ़ने के साथ ही वहां बारिश की शिद्दत में इजाफे का इम्कान है। मौसमियात का महकमा मौसमी सूरत हाल की मुसलसल निगरानी कर रहा है। भुवनेश्वर से प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद शहजाद।
0: पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे के कोहाट जिले में एक मस्जिद के नजदीक कल हुए धमाके में 15 पुलिस जवानों समेत 21 अफराद हलाक और 100 से ज्यादा जख्मी हो गए। कोहाट अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर ताहिर शाह के मुताबिक इस वाकये में 73 पुलिस जवान और 30 शहरी जख्मी हुए हैं। पुलिस ने बताया कि यह धमाका नमाज जुमा के दौरान हुआ और उसकी शिद्दत से मस्जिद के नजदीक एक गहरा गढ़ा बन गया। पुलिस ने मजीद बताया कि नामालूम हमलावरों ने जाय वाकये से बचकर निकलने से पहले चेक प्वाइंट को निशाना बनाया था। अलबत्ता मिलिटेंट ग्रुप इत्तेहादुल मुजाहिदीन ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। 20वें एशियन गेम्स की शानदार इफ्तिताही तकरीब आज जापान में एची नोगाया के पोलामो मिजुहो स्टेडियम में भारतीय वक्त के मुताबिक दोपहर 2:30 बजे मुनाकिद होगी। 2 बार की ओलंपिक मेडलिस्ट मनु भाकर और शॉटपुट खिलाड़ी तेजेंद्र सिंह टूर इस तकरीब के परचमबरदार होंगे। एशियन गेम्स का इनेकाद आज से 4 अक्टूबर तक होगा और इसमें 37 खेलों में 500 से ज्यादा भारतीय एथलीट मुकाबला करेंगे। भारतीय दस्ते में चोट की वजह से नेजा फेंकने वाले खिलाड़ी नीरज चोपड़ा के नाम वापस लिए जाने के बावजूद इनफरादी जुमरे में एक ओलंपिक मेडल जीतने वाले 5 एथलीट शामिल हैं। और अब अखबारात के आईने के साथ हैं मोहम्मद शहजाद।
1: शुक्रिया शबाना। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले बेशतर उर्दू अखबारात ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के जरिए आज 20वें रोजगार मेले में मुख्तलिफ सरकारी इदारों में नए मुंतखब होने वाले अफराद को तकरीरी नामे तकसीम किए जाने की खबर को अव्वलियत के साथ शाये किया है। रोजनामा प्रताप की सुर्खी है, मोदी रोजगार मेले में 51,000 तकरीरनामे करेंगे तकसीम। रोजनामा प्रताप ने वजीर खाजा एस जयशंकर के भूटान दौरे को भी नुमाया तौर पर शाये किया है। अखबार ने लिखा है कि भारत भूटान में रियायती कर्ज पर तवानाई समेत 5 तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज करेगा। इसके अलावा मरकजी हुकूमत के जरिए दिल्ली में MBBS की सीटों को बढ़ाने की मंजूरी दिए जाने को भी अखबारात ने अहमियत के साथ शाये किया है। इंतखाबी कमीशन के जरिए तृणमूल कांग्रेस के इंतखाबी निशान और नाम के तनाजे को हल किए जाने को भी उर्दू अखबारात ने नुमाया किया है।
0: आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज दोपहर 20वें रोजगार मेले में 9 मुकर्रर नौजवानों को 51,000 से ज्यादा तकरीरनामे तकसीम करेंगे। वजीर आजम मोदी आज नई दिल्ली में माहौलियात और आबोहवा के मुहर्रिकात का मुस्तकबिल के मौजू पर एक बैन अल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। भारत और कनाडा ने इक्तिसादी ताल्लुकात में मजीद गहराई लाने के लिए जामे इक्तिसादी शराकतदारी मुआहदे पर तेजी से अमल दरामद के तहत अपने अज़्म को दोहराया है। स्वदेशी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की रिपोर्ट के मुताबिक 41 आलमी मार्केट्स में कारोबारी माहौल के जिम्न में भारत का पहला मकाम है। آر بی آئی نے کہا ہے کہ بھارت کی سافٹ ویئر خدمات کی برآمدات میں سال بسال کی بنیاد پر 8.2% کا

100.1 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड। घड़ी का इशारा 8:45 और 50 सेकंड। स्पेशल दिन, स्पेशल मूड और स्पेशल सॉन्ग्स। गेस कीजिए इसकी वजह और एंजॉय कीजिए ये पहला गाना। ये है म्यूजिकल दिल्ली। मैं हूँ सुनीता।

अगर आपको लगता है कि डांस करने से आपका शरीर फिट रहता है, ब्लड प्रेशर कम होता है और आप में ऊर्जा का संचार होता है, तो आपको बिल्कुल सही लगता है। और यही नहीं, आपकी मेमोरी को बूस्ट करने और आपके फोकस को बढ़ा

0: विराम और उसके बाद हो जाएगी थोड़ी सी बल्ले बल्ले।
1: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो, इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
2: मैम, मेरे वाले में तो HIV से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
3: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है
4: और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से HIV हो सकता है। मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV का ज्यादा रिस्क।
1: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं, तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
5: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री AIDS हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: संगठनों में चयनित 51,000 युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इस अवसर पर वे नवनियुक्त अभ्यर्थियों को संबोधित भी करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: 20वां रोजगार मेला देश भर के 45 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। इसके तहत नवनियुक्त कर्मचारी केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्य करेंगे। इनमें वित्त, रेल, गृह, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और रक्षा मंत्रालय शामिल हैं। इस 20वें रोजगार मेले के साथ ही लगभग 12,75,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र मिले हैं। रोजगार मेला युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने और देश की विकास यात्रा में उनकी ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित करने पर सरकार के लगातार ध्यान को दर्शाता है। अनुपम मिश्र के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण इस 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। इसमें पर्यावरण विशेषज्ञ और सर्वोच्च, उच्च तथा जिला न्यायालयों के न्यायाधीश और विभिन्न मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे। सम्मेलन में 17 देशों के प्रतिष्ठित न्यायाधीश और न्यायिक प्रतिनिधि भी हिस्सा ले रहे हैं। ये सम्मेलन न्यायिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक ज्ञान, पर्यावरण से जुड़ी सुशासन प्रक्रियाओं और संस्थागत अनुभवों के आदान प्रदान के लिए एक मंच प्रदान करेगा। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर गठित संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक कल नई दिल्ली में हुई। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने समिति के सदस्यों को विधेयक के प्रावधानों की जानकारी दी। बाद में श्री संजय जायसवाल ने कहा कि बैठक सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई और सदस्यों ने कई प्रश्न उठाए। इस संशोधन विधेयक का उद्देश्य विदेशी योगदान के उपयोग को ज्यादा पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ नोएडा, हापुड़, गाजियाबाद, मेरठ और बुलंदशहर सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से जुड़े राज्य के 8 सीमावर्ती जिलों में वायु गुणवत्ता सुधार के लिए एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद श्री यादव ने बताया कि वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए विभिन्न कार्य योजनाओं पर चर्चा हुई। भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते की वार्ता को गति देने की प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू के साथ भारत और कनाडा के बीच समग्र आर्थिक साझेदारी समझौते पर वार्ता को गति देने के लिए बैठक की। समग्र आर्थिक साझेदारी समझौते से वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार, निवेश तथा आर्थिक सहयोग के अन्य क्षेत्रों में नए अवसर सृजित होने की उम्मीद है। श्री गोयल ने भरोसा जताया कि साझेदारी समझौते के शीघ्र पूरा होने से आपसी लाभ के लिए द्विपक्षीय व्यापार को और बढ़ाने तथा भारत कनाडा आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के साझा दृष्टिकोण को साकार करने में मदद मिलेगी। वर्ष 2025-26 में भारत का सॉफ्टवेयर सेवा निर्यात वार्षिक आधार पर 8.2% बढ़कर $221 अरब से अधिक हो गया है। रिजर्व बैंक के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवा निर्यात पर जारी वार्षिक सर्वेक्षण में ये जानकारी दी गई है। भारत स्थित स्वीडन के वाणिज्य मंडल के नवीनतम व्यापारिक सर्वे में भारत को 41 वैश्विक बाजारों में व्यापारिक सुगमता के मामले में पहला स्थान मिला है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि वैश्विक अस्थिरता के बीच भारत का कारोबारी माहौल स्थिरता, विकास और कारोबार सुगमता के लिए नए मानक स्थापित कर रहा है। जापान के आइची नागोया में 20वें एशियाई खेलों का उद्घाटन आज भारतीय समयानुसार दोपहर 2:30 बजे से पालोमा मिजुहो स्टेडियम में होगा। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता निशानेबाज मनु भाकर और शॉटपुट खिलाड़ी तजिंदर पाल सिंह तूर उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक होंगे। एशियाई खेल आज से 4 अक्टूबर तक चलेंगे। भारत के 500 से अधिक खिलाड़ी 37 स्पर्धाओं में हिस्सा ले रहे हैं। भारतीय दल में 5 व्यक्तिगत ओलंपिक पदक विजेता शामिल हैं। बैडमिंटन में पीवी सिंधु, भारोत्तोलन में मीराबाई चानू और निशानेबाजी में मनु भाकर भारत का नेतृत्व करेंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय तन्वी खुराना। Prime Minister Narendra Modi will distribute more than 51,000 appointment letters to newly

0: ये आकाशवाणी है। विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के दूसरे संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा 25 वर्ष जनहित से जन विश्वास तक। इसमें भाग ले रहे हैं नीति आयोग के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत और राजनीतिक विश्लेषक प्रफुल्ल केतकर। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं आकाशवाणी संवाददाता प्रियंका अरोड़ा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी की विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा में आपका स्वागत है। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के तौर पर जनसेवा के 25 वर्ष, ये केवल एक समय अवधि नहीं है बल्कि ये एक यात्रा है अनुभवों की, चुनौतियों की और प्रयासों की। और ये एक ऐसी यात्रा है जिसमें शासन को अधिक पारदर्शी, जवाबदेही और जन केंद्रित बनाया गया है। लेकिन इसके पीछे सिर्फ ये सोच नहीं थी, लेकिन आज सवाल सिर्फ ये नहीं है कि क्या पहल की गई थी, बल्कि ये है कि इसके पीछे प्रशासनिक सोच क्या रही और जमीनी स्तर पर इन परियोजनाओं को, इन योजनाओं को पूरा करने के लिए क्या पहल की गई थी। और इन सब पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए आज हैं नीति आयोग के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत और वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक प्रफुल्ल केतकर। आप दोनों का स्वागत है कार्यक्रम में। अमिताभ जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहती हूँ, 25 वर्ष बहुत ही लंबा सफर होता है किसी भी नेता के लिए, इतने साल पूरा करना। तो अगर आप देखें इस दौरान शासन में और जवाबदेही में किस तरह का बदलाव आया, क्या सिर्फ ये टेक्नोलॉजी तक सीमित रहा या इसमें जो जवाबदेही है वो भी बढ़ी?
2: मेरी पहली मुलाकात माननीय प्रधानमंत्री से हुई जब ये मुख्यमंत्री थे। मैं उस समय दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का मुख्य अधिकारी था और मैं सारे चीफ मिनिस्टर्स के पास जा रहा था कि नए शहर बनाने के लिए जमीन करीब 150 किलोमीटर एक शहर बनाने के लिए चाहिए थी, तो सारे मुख्यमंत्री ने मना कर दिया। पर जब मैं गुजरात गया तो चीफ मिनिस्टर से जब मिला तो उन्होंने कहा कितनी जमीन चाहिए, तो मैंने कहा कि साहब करीब 150 स्क्वायर किलोमीटर चाहिए। तो उन्होंने कहा 150 की बात मत करो मेरे से, मैं तुमको 750 स्क्वायर किलोमीटर देता हूँ, तुम्हें बनाना है नया शहर तो जो कि आगे चल के सिंगापुर से भी अच्छा एक शहर बने उस तरह का। तो इस तरह धुलेरा शहर की शुरुआत वहां से हुई, फिर उसकी मास्टर प्लानिंग कराई। तो लगातार मैं गुजरात जाता रहा और मैं उसके बाद मैंने वाइब्रेंट गुजरात में भी 2 साल भाग लिया। मुझे ये लगा कि चीफ मिनिस्टर मोदी साहब बहुत विजनरी हैं और आगे की सोचते हैं। फिर उसके बाद जब वो प्रधानमंत्री बन के आए, उस समय मैं सचिव था डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी और प्रमोशन का, तो मेक इन इंडिया किया, स्टार्टअप इंडिया किया। फिर बाद में जब नीति आयोग में सीईओ बना तो फिर उस समय ये सारा डिजिटाइजेशन किया, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम किया, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव प्रोग्राम किया। और मेरे विचार से ये हमेशा लगा मुझे कि एक तो ये अगले 30 वर्ष आगे की सोचते हैं।
1: और जैसा आपने उदाहरण दिया कि आप इतनी जगह गए तो उन्होंने आपको सुना। और प्रधानमंत्री मोदी की खासियत ये है कि जब उनके पास कोई आता है वे उनको सुनते हैं, समझते हैं और फिर कोई प्रतिक्रिया देते हैं, और विजनरी हैं, दूर की सोचते हैं। सरकार समय समय पर योजनाओं और नीतियों की समीक्षा के लिए चिंतन शिविर आयोजित करती है। आइए सुनते हैं इस संबंध में एक रिपोर्ट।
0: सरकारी योजनाओं और नीतियों को लागू करने में अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने मिशन कर्मयोगी शुरू किया। इसका उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों की क्षमता और कौशल को लगातार मजबूत करना है। नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग यानी मिशन कर्मयोगी को सितंबर 2020 में मंजूरी दी गई थी। इसका एक प्रमुख उद्देश्य सरकारी व्यवस्था में रूल बेस्ड से रोल बेस्ड तरीके की ओर बढ़ना है, यानी अधिकारी और कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी और भूमिका के अनुसार जरूरी क्षमताएं विकसित कर सकें। मिशन कर्मयोगी का डिजिटल प्लेटफॉर्म है आई गॉट कर्मयोगी। इस

0: जिसके जरिए सरकारी कर्मचारियों को अलग अलग विषयों पर ऑनलाइन प्रशिक्षण और सीखने के अवसर मिलते हैं। अगस्त 2026 में संसद में दी गई जानकारी के अनुसार आई गॉट कर्मयोगी पर 1,70,00,000 से ज्यादा रजिस्टर्ड यूजर्स हैं और प्लेटफॉर्म पर 5,600 से ज्यादा कोर्स उपलब्ध हैं। ये कोर्स डोमेन, फंक्शनल और बिहेवियर क्षमताओं से जुड़े हैं। प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कोर्स 23 भाषाओं में है, जिनमें हिंदी और दूसरी भारतीय भाषाएं भी शामिल हैं। अब तक आईगॉट पर 14,42,00,000 से ज्यादा कोर्स कम्प्लीशन दर्ज किया जा चुका है। प्लेटफॉर्म पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती तकनीकों से जुड़े 218 कोर्स भी उपलब्ध हैं। सरकार के अनुसार केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय और विभाग तथा सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश आईगॉट प्लेटफॉर्म पर ऑनबोर्ड हो चुके हैं। मिशन कर्मयोगी को लागू करने के लिए 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ द्विपक्षीय समझौते भी किए गए हैं।
1: प्रफुल्ल जी, प्रधानमंत्री मोदी विजनरी हैं, यही सोच उनको यहाँ तक लेकर आई है। 25 वर्ष पूरे किए हैं और इसमें उन्होंने जन भागीदारी को सबसे बड़ा जो है अपना एक एस्पेक्ट बनाया है।
2: हम 25 वर्ष किसी एग्जीक्यूटिव रोल में चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, वो रोल तो देखते हैं, उसके पीछे 15 वर्ष उनकी संगठनात्मक यात्रा और उससे पूर्व 15 वर्ष सामाजिक काम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, तो जो जमीनी वास्तविकता है वो स्वयं नीचे से आने के कारण उनको उसकी बहुत अच्छी समझ, लेकिन उसके साथ साथ उनको टेक्नोलॉजी और बदलते हुई दुनिया की भी बहुत अच्छी समझ, तो उस कारण से पार्टिसिपेशन एंड टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन इनका गवर्नेंस में उन्होंने बहुत प्रयोग किया। मतलब जब चीफ मिनिस्टर बने तो स्वागत जैसी उन्होंने ये की, मुझे ध्यान में जब 20 वर्ष पूरे हुए तो गुजरात जैसे राज्य में लोग ये कहते थे कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ग्रीवेंसेस लेकर कौन जाएगा, बट दैट हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल मॉडल। और जब वो सेंटर में लेकर आए तो माईगॉव के प्लेटफॉर्म के द्वारा उसी को और भी नए आयाम उसमें जोड़े, तो केवल ग्रीवेंसेस नहीं, आप आइडियाज भी शेयर कर सकते हो। तो पार्टिसिपेशन और उसका स्केल, प्रधानमंत्री मोदी जी की खासियत यह है कि वो, अभी जैसे अमिताभ जी ने बताया कि आप 150 क्यों मांग रहे हो, 750, तो वो बड़े स्केल पर सोचते हैं। तो केवल दूर की नहीं, उसका स्केल, उसका स्पीड और उसका ग्राउंड पर इम्प्लीकेशन क्या होगा, इसकी पूरी सोच रख के फिर वो उसको करते हैं। और इसी कारण से गवर्नेंस के जो पैरामीटर्स माने जाते हैं, आपने अकाउंटेबिलिटी की बात की, जवाबदेही या ट्रांसपेरेंस, पारदर्शिता, फिर उसके साथ साथ डिलीवरी, बार बार वो इस पर जोर देते हैं कि गवर्नेंस जो है वो डिलीवरी पर सबसे खासियत यदि किसी इसमें रही है, तो आप किसी भी पावर सेक्टर से लेकर किसी भी स्कीम को आप एक डैशबोर्ड पर, उनकी सीएम थे तब भी वो खासियत थी, आज भी वो खासियत है, डैशबोर्ड पर आप नंबर्स देख सकते हो एग्जैक्टली क्या डिलीवर हुआ है, कितना डिलीवर हुआ है, और उसके साथ साथ फिर पार्टिसिपेट। तो ये गवर्नेंस के चारों पैरामीटर्स किस तरीके से कवर होंगे और वो भी भारत की वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए,
1: जी
2: ये उनकी खासियत है। मुझे लगता है कि इसी कारण से ये 25 साल जो है एक एग्जीक्यूटिव के रूप में उनका रहना, ये एक अलग गवर्नेंस के मॉडल को प्रेजेंट करता है, जो गुजरात मॉडल पहले जाना गया, अब वो भारत के विकास का या विकसित भारत की तरफ जाने का मॉडल के रूप में देखा जाता है।
1: बिल्कुल, कहते हैं जो सीमित सोच के साथ आगे बढ़ता है कोई नेता तो उसके परिणाम भी सीमित होते हैं, लेकिन जो बड़ी सोच के साथ आगे बढ़ते हैं तो उसके जो परिणाम है उल्लेखनीय आते हैं, और ये प्रधानमंत्री मोदी ने सिद्ध किया है अपने कार्यों के जरिए। योजनाओं और नीतियों को लागू करने में कर्मचारियों की विशेष भूमिका रहती है, इसके लिए शुरू किया गया आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म। इस संबंध में एक खास रिपोर्ट सुनते हैं।
0: सरकार में बेहतर कामकाज के लिए जरूरी है कि समय समय पर योजनाओं और नीतियों की समीक्षा की जाए, उनकी चुनौतियों को समझा जाए और आगे की रणनीति तय की जाए। इसी उद्देश्य से अलग अलग मंत्रालयों और विभागों में चिंतन शिविर आयोजित किए जाते हैं। चिंतन शिविर में संबंधित मंत्रालय के मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी, विशेषज्ञ और दूसरे हितधारक एक साथ बैठकर प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करते हैं। इसमें योजनाओं की प्रगति, उनमें आने वाली दिक्कतों और आगे की प्राथमिकताओं पर विचार किया जाता है। हाल के वर्षों में कई मंत्रालयों ने ऐसे चिंतन शिविर आयोजित किए हैं। उदाहरण के लिए फरवरी 2026 में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने बिहार के राजगीर स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय राष्ट्रीय चिंतन शिविर आयोजित किया। इसमें

0: केंद्र और राज्य के मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल हुए। इस चिंतन शिविर में बुनियादी ढांचे, सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण, वक्फ प्रबंधन और हज प्रबंधन जैसे विषयों पर चर्चा हुई। मंत्रालय के अनुसार इसका उद्देश्य योजनाओं के मौजूद कमियों की पहचान करना, अलग अलग क्षेत्रों की अच्छी कार्य प्रणालियों को साझा करना और आगे के लिए ठोस सुझाव तैयार करना था। इसी तरह अप्रैल 2026 में आयुष मंत्रालय ने भी 2 दिवसीय चिंतन शिविर आयोजित किया। इसमें नीति, शोध, सेवा, वितरण, डिजिटल व्यवस्था, क्षमता निर्माण और जनसंपर्क जैसे विषयों पर चर्चा हुई। शिविर के अंत में समयबद्ध और कार्रवाई योग्य रणनीति तैयार करने पर जोर दिया गया। यानी चिंतन शिविर का मुख्य उद्देश्य है समीक्षा, संवाद और आगे की कार्य योजना।
1: भागीदारी की बात की जाए तो एक उनका प्लेटफॉर्म है प्रगति, तो उसमें उन्होंने सबको एक साथ लाने की कोशिश की है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसमें राज्यों की और केंद्र की जो परियोजना है उनकी समीक्षा की जाती है और उसमें छोटी से छोटी बात पर चर्चा की जाती है, क्या किस स्तर तक पहुंची। सिर्फ ये नहीं कि रिपोर्ट्स देख ली और काम हो गया, नहीं, उसका जो वाकई जो जमीनी स्तर पर क्या असर पड़ा है और कितना होना चाहिए उस पर भी चर्चा होती है। आपने 14 साल उनके साथ काम किया है अमिताभ जी, तो आपने किस तरह से ये फर्क महसूस किया है।
2: हमारे देश में बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के, खासकर जो सड़क हो, ट्रांसमिशन लाइन हो, ग्रिड हो, पानी के कनेक्शन हो, ये सारे के सारे जमीन पर जब आप जाते हैं तो लास्ट माइल पर प्रॉब्लम आती है और ये सब फंस जाते हैं, जिसकी वजह से जिसको कहते हैं टाइम एंड कॉस्ट ओवररन होते हैं। 2014 से पहले देखें तो हमारे यहाँ जो प्रोजेक्ट 1.5 साल में कंप्लीट होना था वो 10 साल 12 साल ले रहा था। तो प्रधानमंत्री जी का जो प्रोएक्टिव गवर्नमेंट अप्रोच थी, प्रगति क्या है, प्रोएक्टिव गवर्नेंस है, तो उन्होंने कहा कि मैं खुद मीटिंग लूंगा। तो सारे सेक्रेटरीज और चीफ सेक्रेटरी स्टेट्स के, तो एक तो ये फेडरल एस्पेक्ट आ गया कि आपने चीफ सेक्रेटरीज को इन्वॉल्व कर लिया, क्योंकि भारत सरकार की जो स्कीमें हैं वो सारे स्टेट्स में हैं, कहीं जमीन नहीं मिल रही है, कहीं एजिटेशन चल रहा है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो वो उसमें जब वो रिव्यू लेते हैं तो उसके पहले सारे ऑफिसर्स अपना रिव्यू लेने लगते हैं। उसमें आधी से ज्यादा 80% तो चैलेंजेस जो है वो वहीं स्कीम्स की प्रॉब्लम्स जो होती हैं उसके पहले, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी रिव्यू लेने जा रहे हैं उसके पहले सारी रिव्यूज होती हैं, तो उसमें ही सारी प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट हो जाती हैं। जो 20-25, क्योंकि वो डेट फिक्स कर देते हैं कि इस दिन मैं रिव्यू लूंगा, तो जो स्टेट का जो डीएम है वो भी जाता है फील्ड में, चीफ सेक्रेटरी है जो वो भी जाता है, यहाँ का सेक्रेटरी उनके पीछे पड़ता है, और फिर उसमें कैबिनेट सेक्रेटरी भी रहते हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी रहते हैं, स्टेट्स के लोग भी रहते हैं, तो सारे ऑफिसर्स मिलके फिर वो काम करते हैं और उसकी वजह से सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स धड़ाधड़ अप्रूवल हुए, धड़ाधड़ इंप्लीमेंटेशन हुआ, जो लास्ट मिनट प्रॉब्लम हुई उसमें इंप्रूवमेंट आया। तो इसमें बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट आया प्रोजेक्ट डिलीवरी में, और प्रोजेक्ट डिलीवरी के साथ साथ कई नई चीजें हुई, जैसे गति शक्ति प्रोग्राम आया जिसमें करीब 523 के उसके नीचे आई, तो सब प्रोजेक्ट प्रिपरेशन, उसके कॉन्सेप्चुलाइजेशन में, उसके इम्प्लीमेंटेशन में, टेक्नोलॉजी के उपयोग में, ये सारी चर्चा करने के बाद पूरे देश में एक बदलाव आया इंफ्रास्ट्रक्चर डिलीवरी में। और यही कारण है हमें समझना जरूरी है कि हमारी जनसंख्या के लिए भारत में जो बदलाव आया है कि हमने देखिए ना, हम ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या से ज्यादा तो हमने घर बना दिए यहाँ लोगों के लिए, जो ब्राजील की जनसंख्या है उससे ज्यादा तो हमने पानी कनेक्शन दे दिए यहाँ, कनाडा की जो जनसंख्या है उससे ज्यादा तो हमने बिजली कनेक्शन दे दिए यहाँ पर, और हमने करीब जितनी सड़कें थी उससे करीब 95,000 ज्यादा सड़कें बनाई यहाँ। तो सड़क हो, घर हो, बिजली कनेक्शन हो, पानी कनेक्शन हो, इसका जो फायदा मिला है भारत की जनसंख्या लास्ट माइल और जो साधारण व्यक्ति है उसकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आया उसकी।
1: बिल्कुल,
2: तो ये हुआ है।
1: बिल्कुल, और जैसे हम कहते हैं कि प्रधानमंत्री खुद समीक्षा करते हैं और उनको एक टारगेटेड चाहिए, इस टाइम तक ये पूरा होना है, और अक्सर लोग ऐसा भी कहते हैं, आलोचना भी होती है कि प्रधानमंत्री छोटी से छोटी परियोजना के लिए भी खुद जाते हैं, लेकिन इसके पीछे की भी एक सोच है कि जब वे खुद जाते हैं वो छोटी परियोजना भी बहुत बड़ी होती है और वो छोटी परियोजना कैसे अंतिम व्यक्ति तक उसको लाभ पहुंचाने वाली है ये सिर्फ शायद वे ही जानते हैं। तो इस सोच में और इस जो अवधारणा में वो किस तरह से बदलाव आप देखते हैं प्रफुल्ल जी?
3: मैं प्रधानमंत्री जी का और एक एस्पेक्ट पर ध्यान दूंगा जिससे आपको ये ध्यान में आएगा जो आपने कहा परियोजना के बारे में वो कैसा सोचते हैं। आप

0: प्रगति का देख लीजिए,
1: जी
0: आप नीति का देख लीजिए, टर्मिनोलॉजीज सारी एब्रिवेशन में है,
1: जी
0: लेकिन उन शब्दों का अर्थ भारत की सांस्कृतिक धरातल पर है।
1: बिल्कुल
0: वैश्विक सोच, वैश्विक दृष्टि रहते हुए भी भारत की रूट्स के साथ कैसे जुड़े रहना, और वो यदि दृष्टि रही तो गवर्नेंस में उसका क्या रिफ्लेक्शन होता है। जैसे पहली बार आपको ध्यान में होगा जब लाल किले से प्रधानमंत्री जी ने शौचालयों की बात की थी, तो सार्वजनिक स्तर पर, वैचारिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर बहुत लोगों ने इसका मजाक उड़ाया था
1: जी
0: कि ये भी कोई मतलब 15 अगस्त के भाषण में बोलने का विषय है।
1: जी जी
0: लेकिन 70 साल बाद हमको इस विषय पर बोलना पड़ रहा है, ये दिखाता है ग्राउंड की वास्तविकता क्या है और उससे जुड़े हुए डायमेंशंस कितने हैं।
1: बिल्कुल,
0: मतलब वो डिग्निटी के डायमेंशंस है, सुरक्षा के डायमेंशंस है, हेल्थ के डायमेंशंस है, इकोनॉमिक डायमेंशंस है, या मान लीजिए कोई उज्ज्वला योजना जैसी स्कीम है। तो इसमें जो बड़ा ये लगता है ना कि आपने जो पूछा कि योजना कोई भी छोटी बड़ी नहीं होती है, उसके पीछे की सोच जो है वो यदि ठीक है तो वो डिलीवर हो रही या नहीं। मतलब बहुत सारे ऐसे स्कीम्स है जिनको तो 30-30, 35-35, 37 साल बाद कोई कोई डैम्स, कोई कोई प्रोजेक्ट्स तो प्रधानमंत्री जी ने उसको राष्ट्र को समर्पित किया है।
1: बिल्कुल,
0: तो इसमें हुआ क्या है, सबसे बड़ा बदलाव जो मैं देखता हूं कि उन्होंने महिला को और महिला के साथ परिवार को योजनाओं के संदर्भ में केंद्र में लाया।
1: बिल्कुल,
0: और जो इंडिविजुअल सेंट्रिक अप्रोच था किसी भी स्कीम को सोचने का, वो परिवार केंद्रित हो गया। भारत की दृष्टि केवल विश्व के लिए परिवार की नहीं, वो परिवार संकल्पना जब विकसित होती है तब वो विश्व तक पहुंचती है। लेकिन उसके लिए पहले आप आवास योजना में देख लीजिए, आप किसी भी बेनिफिशियरी स्कीम्स के बारे में देख लीजिए, महिला आती है तो एडिशनल बेनिफिट है, और महिला के साथ आती है तो पूरा परिवार आता है।
1: बिल्कुल,
0: तो मुझे लगता है कि हमको केवल, मतलब अमिताभ जी इंफ्रास्ट्रक्चरल स्कीम्स के बारे में ज्यादा बता पाएंगे, लेकिन मैं जब पत्रकार के नाते सोशल और उसके इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डायमेंशंस के बारे में सोचता हूं, तो मुझे लगता है कि इंक्लूसिविटी का एक नया अप्रोच इस गवर्नेंस मॉडल ने दिया है। और इसीलिए मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी छोटी सी छोटी योजनाओं को भी माइन्यूट मॉनिटरिंग भी करते हैं, और उसकी डिलीवरी होती है तो उसके साथ साथ उस समाज के कौन से घटकों का उसको सीधा बेनिफिट मिलने वाला है उसके साथ कनेक्ट भी करते हैं। तो उस दृष्टि से मुझे लगता है कि वो योजना कोई उनके लिए छोटी बड़ी नहीं है, उसका इम्पैक्ट फैक्टर उनके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट।
1: बिल्कुल, जैसे शौचालय की आपने बात की, जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो वे स्वयं जाकर लोगों की परेशानियां, दिक्कत देखते थे, और उन्होंने देखा कि महिलाओं को आज भी ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो उन्होंने शौचालय मतलब बनाने की मुहिम शुरू की, जो जब वे प्रधानमंत्री बने तो राष्ट्रीय स्तर तक आ गई। तो उनका जो सोचने का तरीका है, वे आउटकम बेस्ड गवर्नेंस है कि उसके परिणाम दिखने चाहिए, सिर्फ कागजों पर नहीं रहने चाहिए। तो आप इस संदर्भ में क्या कहेंगे अमिताभ जी, की आउटकम बेस्ड गवर्नेंस पे किस तरह से आज काम हुआ?
2: एक कैबिनेट मीटिंग
1: जी
2: के बाद उन्होंने मुझे बुलाया बड़े प्यार से, कहा कि चाहूंगा कि आप प्रोजेक्ट तैयार करके आइए, मुझे ये जो सबसे पिछड़े हुए जिले हैं 115 उनमें बदलाव लाना है।
1: जी।
2: तो हम लोगों ने बहुत मेहनत की और जाकर प्रेजेंटेशन किए एक बार दो बार, और उसके बाद ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, आकांक्षी जिलों का प्रोग्राम, ये बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स है। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा इसको बैकवर्ड मत बोलो, इसको एस्पिरेशनल बोलो। और ये जो उन्होंने एक चीज और कही कि मैं इसमें पैसे नहीं दूंगा तुमको, तुम इसमें बदलाव करके दिखाओ, उन्होंने हम लोग को चैलेंज किया कि मैं तुमको पैसे नहीं दूंगा, तुम बिना पैसे के इसमें बदलाव लाओ। सारा आउटकम बेस्ड हम लोगों ने किया, हेल्थ आउटकम्स, एजुकेशन आउटकम, एग्रीकल्चर आउटकम्स क्या होंगे उसको पहले डिफाइन, और उसके बाद हमने उन आउटकम्स के बेसिस इन सारे जिलों को चैलेंज किया, क्योंकि भी कई बार मीटिंग्स की। ये 115 जिलों में केवल आउटकम बेस्ड कॉम्पिटिशन किया, और हर महीने हम इसकी रैंकिंग निकालते थे कि कौन सा जिला आगे गया, कौन सा जिला पीछे, और उसकी रैंकिंग और कितना आगे गया और किस आउटकम पे आगे गया, किस आउटकम में पीछे रह गया। तो वहां की जो जनता है उसको मालूम होना चाहिए, वहां का जो कलेक्टर है उसको मालूम होना चाहिए कि क्यों वो पीछे गया, क्यों आगे गया, और ये सारा का सारा हमने डैशबोर्ड पे रखा था और उसको हम पब्लिक में रिलीज करते थे। तो हर एमएलए को, हर एमपी को, हर चीफ मिनिस्टर को मालूम है कौन सा जिला आगे गया, कौन सा पीछे गया और क्यों गया। और इतने जोरों का कॉम्पिटिशन हुआ इसकी वजह से कि जो आकांक्षी जिले थे, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट थे, वो जो उस स्टेट्स के जो सबसे अच्छे जिले थे उनसे भी ज्यादा अच्छा करने लगे। तो ये आउटकम बेस्ड जो इनका ओरिएंटेशन है कि आप क्या फिजिकल अचीवमेंट करते हो, कितना पैसा खर्च करते हो, उस पे फिजिकल और फाइनेंशियल में मुझे नहीं जाना, तुम बदलाव करके दो
1: जी।
2: तो बदलाव वो लिटरेसी में इंप्रूवमेंट आया, हेल्थ में इंप्रूवमेंट आया, कृषि उत्पादन में इंप्रूवमेंट आया, और वो केवल आउटकम बेस्ड सारा का सारा रहा। इसी तरह मैंने जब उन्होंने कहा कि स्टार्टअप इंडिया हमने शुरू किया, तब देश में केवल 356 स्टार्टअप्स थे, आज आप देखिए देश में करीब 300,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स हैं। और इसकी वजह से जियोस्पेशियल सेक्टर खुला, डिजिटल सेक्टर खुला, स्पेस सेक्टर खुला, ड्रोन सेक्टर खुला, डिफेंस सेक्टर खुला, ये सारे के सारे सेक्टर्स खुलते चले गए और हर सेक्टर में स्टार्टअप्स ने बदलाव किया। और आजकल जितना इस देश में जितनी तरक्की हो रही है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, वो सारे स्टार्टअप्स की वजह से हो। तो मेरे विचार से उनकी जो विचारधारा है, टेक्नोलॉजी का उपयोग कीजिए, टेक्नोलॉजी को उपयोग करके देश को आगे ले जाइए, इसी तरह उनका जो विश्वास है कि युवा वर्ग में, कि युवा वर्ग ही बदलाव ला सकता है, ये स्टेटस को बड़े लोग नहीं कर पाएंगे, ये आज का युवा वर्ग कर पाएगा। मैं अब इंडिया में आप इंश्योरेंस हो, स्टॉक मार्केट हो, क्रेडिट हो, फास्ट पेमेंट हो, ये सबका सब लोग मोबाइल से करते हैं, किसी और देश में नहीं है। तो बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट ने कहा कि जो भारत ने 7 वर्ष में किया है वो 50 वर्ष लगते, जो 7 वर्ष में किया है, ये डिजिटल लीप फ्रॉगिंग हुई है।
1: बिल्कुल। तो ये जो नजरिया है, मतलब सोचने का, अब जैसे बैकवर्ड जिलों की बात की तो हम कहते थे पहले कि ये पिछड़े जिले हैं, लेकिन नहीं, आप किसी चीज को अगर पॉजिटिव वे में सोचते हैं तो उसके रिजल्ट भी पॉजिटिव आते हैं। और खासकर ऐसा सुना है कि जब प्रधानमंत्री मोदी कोई बैठक लेते थे तो उसमें जब उनसे समस्याएं किसी परियोजना को लेकर बताई जाती थी तो ये नहीं पूछते थे ये मुश्किल क्यों है, वे कहते थे इसको पूरा करने के लिए क्या जरूरी है। तो सिर्फ नजरिए का फर्क है। आप क्या सोचते हैं कि इस नजरिए ने भारत की तस्वीर किस तरह से बदली है? केतकर जी,
0: मानव के सारे आचरण में तो मन केंद्र में है ना। अब ब्यूरोक्रेट साथ में बैठे इसलिए कहता हूं, स्टील फ्रेम और ब्यूरोक्रेसी और नहीं होता इस सर कहने वाली, उनको उन्होंने कर्मयोगी बना दिया
1: जी।
0: अब कहने के लिए तो ये नॉमिनक्लेचर बदला है, बैकवर्ड का आकांक्षी जिले हो गया। पर्सन हम बोलते हुए बोलते थे कि नहीं नहीं ये तो हैंडीकैप है,
1: नहीं
0: वो अब दिव्यांग हो गया, वो स्पेशल एबिलिटी उस शब्द में आ गई ना। तो आपका देखने का, बात करने का, उस व्यक्ति के प्रति केवल उसकी डिग्निटी का, और उसके साथ साथ उसके बारे में फिर परियोजनाएं जब बनेगी तो उस डिग्निटी को ध्यान में रखते हुए बनेगी। तो मुझे लगता है कि ये जो पूरी की पूरी सोच में, ये जो मूलतः उसके पीछे मानसिक दृष्टि को बदलना, नजरिया तो केवल आपका देखने का होता है लेकिन उसके पीछे के मन को बदलना ये बड़ा मुश्किल काम होता है। प्रधानमंत्री जी गवर्नेंस में मूलतः गवर्नेंस के जितने भी सारे एक्टर्स हैं, इंक्लूडिंग पीपल, मतलब जो उसमें स्टेक होल्डर्स जिनको कहा जाता है, तो उनका आप देख लीजिए, सारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट, सारे लैंड रिकॉर्ड्स, एग्रीकल्चर, मैक्सिमम डिपार्टमेंट्स तो स्टेट्स के पास है या तो फिर कंकरेंट लिस्ट में है। तो आपने योजना कितनी भी अच्छी बना ली हो, यदि इसमें सहभागिता नहीं है और उसके लिए फिर अलग तरीके का मुख्यमंत्रियों के साथ चिंतन भी शुरू हुआ
1: जी, जी।
0: तो वो भी एक अलग से ये थी, तो वो केवल फेडरलिज्म को लेकर हम कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस एनुअली ले रहे, ये नहीं है, ये चिंतन है
1: बिल्कुल।
0: हम पूरे भारत को लेकर, और उन्होंने एक उसमें कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव स्पिरिट क्रिएट किया जो कॉन्फ्लिक्चुअल था
1: जी।
0: तो फेडरलिज्म का अर्थ कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है, सेपरेटिज्म नहीं होता है, हम अलग है ये भावना नहीं होती है, हम मिलकर प्रतिस्पर्धा के साथ भी, सहयोग के साथ भी मिलकर क्या कर सकते हैं अच्छा, एक दूसरे के साथ स्पर्धा भी करेंगे लेकिन एक दूसरे का सहयोग भी करेंगे, ये भाव मन में जगाना, मुझे लगता है ये मन परिवर्तन होता है तो गवर्नेंस में वो आपने जो पूछा तो आउटकम ओरिएंटेड रिजल्ट्स अपने आप आते हैं।
1: ये हेल्दी कंपटीशन की बात होती है और इसी सोच के साथ बना था नीति आयोग जिसमें सहकारी संघवाद को प्रमुखता से रखा गया। तो आप नीति आयोग के पूर्व सीईओ रहे हैं अमिताभ जी, आपने क्या चीजें इसमें देखी और क्या परिवर्तन रहा, क्योंकि उसमें राज्य और केंद्र मिलकर परियोजनाओं पर काम करते थे।
2: तो सबसे पहला जब ये माननीय प्रधानमंत्री बने 2014 में, तो सबसे पहला प्रेजेंटेशन मेरा ही था और भारत की रैंकिंग वर्ल्ड बैंक के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 148 रैंक, तो उस पे प्रधानमंत्री जी ने मुझे कहा कि आप इसको लग के भारत की रैंकिंग को ठीक करिए पहले। तो लोग लगे बहुत, क्योंकि गवर्नमेंट क्या होता है, हर डिपार्टमेंट साइलो में काम करता है, वो सोचता है कि मैं ही मालिक हूं इसका और ये पोजीशन इंप्रूव नहीं करेगी जब तक कि हम सब मिलके काम नहीं करें। तो फाइनेंस हो, टैक्स हो, कस्टम्स हो, इनकम टैक्स हो, सबको मिलके

0: काम करना आवश्यक। तो हम लोग लगे बहुत, और जितनी कागजी कार्रवाई थी उसको हटाया क्योंकि सब डिजिटल करना आवश्यक था। तो जब ईपीएफओ के पास गए उन्होंने डिजिटल तो किया, पर उन्होंने कहा कागजी कार्रवा भी रखेंगे। पर ये क्योंकि प्रधानमंत्री जी खुद पीछे पड़े इसके, तो सारे डिपार्टमेंट इसमें आगे बढ़े और उसकी वजह से भारत ने 2.5 साल के अंदर करीब 80 पोजीशन का जंप किया, किसी देश ने इतना नहीं। और हम, ये भारत एक अकेला देश है जिसने करीब 35,000 लॉ जिनको हटा दिया है। और ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से शुरू हुआ, पर उनका माननीय प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्य था साधारण व्यक्ति के लिए ईज ऑफ लिविंग होना चाहिए, और वही इसीलिए सारी कागजी कार्रवाई हटाई गई और सब चीज डिजिटाइज किया। तो ये उनका लक्ष्य हमेशा ये रहा है कि कैसे साधारण व्यक्ति की जिंदगी में कैसे उसको सरल किया जाए। और ये बहुत मेरे विचार से, जो भी वो विचारधारा रखते हैं वो हमेशा यही सोचते हैं कि साधारण व्यक्ति की जिंदगी पे बदलाव।
1: जी बिल्कुल सही कहा। और प्रफुल्ल जी, जैसे अब राज्यों और केंद्र की हम कह सकते हैं कि तनातनी कहीं ना कहीं किन्हीं मुद्दों पर रहती है, अब जैसे नीति आयोग में भी बात है तो वो संतुलन कायम करना, क्योंकि उनकी मांगे अपनी होती हैं और उधर से जो आपूर्ति होती है वो डिपेंड करता है कि किस तरह से देना है, तो वो समन्वय संतुलन जो कायम किया गया है इतने वर्षों में उसे आप
2: देते। उसमें नीति आयोग आने के कारण छोटी छोटी चीजों में भी एक बहुत बड़ा डायनेमिज्म, मतलब एनर्जी सेक्टर में देखिए, हम हमारे कार्बन इमिशन को लेकर जो टारगेट्स थे वो 2030 के टारगेट्स हमने ऑलरेडी अचीव कर लिए। तो क्या हम अभी 5 साल का प्लान हमारा है इसलिए हम 2029 के चुनाव के बाद अभी अगला 5 साल का प्लान करेंगे, अभी कार्बन वाले इशू पर कुछ भी नहीं करें, ऐसे थोड़ी होता है। सो यू हैव टू थिंक डिफरेंटली नाउ, बिकॉज नाउ द थिंग्स आर चेंजिंग सो फास्ट। यूर आपकी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स बदल रही है, वैश्विक परिदृश्य बदल रहा है, पूरे पश्चिम एशिया में घमासान मचा हुआ है, ऐसे में आपको आपकी ऊर्जा आवश्यकता, सुरक्षा, इस सारे परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए करनी पड़ेगी। तो ऐसे में फिर नीति आयोग को स्पेशली अभी टास्क दिया गया है ऊर्जा वाले इस पर कि आपको रिपोर्ट बना के देना। तो उस समय मुझे ध्यान में है जब ये बदलाव हुआ तो प्रधानमंत्री ने कहा था कि ये गवर्नमेंट का थिंक टैंक के रूप में काम करेगा। मुझे, क्योंकि मैं बहुत समय में थिंक टैंक्स में रहा हूं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि कोई भारत का राजनेता कम से कम ये कह रहा है कि सरकार को भी थिंक टैंक की आवश्यकता है। पहले तो गुजरात ही अकेला था, आज लगभग हर स्टेट अपना इन्वेस्टर समिट करता है। तो ये सोच में ही बदलाव आया है ना कि भाई वी आर इन्वेस्टर फ्रेंडली स्टेट, ये प्रोजेक्ट करने में हर सरकार को, हर राज्य को इस पर गर्व है कि हम इन्वेस्टर फ्रेंडली है।
1: बिल्कुल, ऐसे सम्मेलन की बात हो ही रही है तो अभी हाल ही में जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ है और इससे पहले जो G20 था, मतलब इंटरनेशनल मीडिया ने तारीफ की है कि इस तरह का सम्मेलन आयोजित करना और खासकर जो ब्रिक्स में महाशक्तियों, भर्ती महाशक्तियों का एक साथ आना और ऐसे जो बिंदुओं पर आम सहमति बनाना, ये शायद आम बात नहीं थी।
0: तो देखिए, मैं G20 में प्रधानमंत्री जी का शेरपा रहा हूँ और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये बड़े, उस समय बहुत बड़ा जियोपॉलिटिक्स में देखिएगा तो रशिया और यूक्रेन का बड़ा, बहुत बड़ा युद्ध चल रहा था। ये हालत थी कि उनके शेरपा लोग, यूरोप के जो शेरपा थे, रशिया के साथ बैठ के चाय पीने को भी तैयार नहीं थे, और वो न चाइना के साथ बैठते थे न रशिया के साथ बैठते थे। और इस हालात में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इसको सबसे एग्रेसिव करो, सबसे एम्बिशियस करो और सबसे डायनेमिक करो। तो हम लोगों ने करीब, हमने कहा कि दिल्ली में करने से अच्छा है इसको सारे स्टेट्स में ले जाएं। तो हमने करीब 350 मीटिंग्स की, हर स्टेट में गए। हर स्टेट में जाने के बाद सारे स्टेट्स में इंफ्रास्ट्रक्चर का इम्प्रूवमेंट हुआ, वहां के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट सामान को हमने प्रमोट किया, वहां के आर्ट और कल्चर को हमने प्रमोट किया, हर स्टेट के कल्चर को हमने प्रमोट, और हर स्टेट ने रोल प्ले किया, हर यूनियन टेरिटरी ने रोल प्ले किया। उसके बावजूद जब भारत मंडपम में जब आखिरी सारे लीडर्स आए तो ये किसी ने नहीं सोचा था कि कंसेंसस डॉक्यूमेंट निकलेगा
1: जी।
0: और सारे इश्यूज पर लगाकर हमारा एक कंसेंसस डॉक्यूमेंट निकला जो यूनाइटेड नेशंस नहीं कर पाया, वो भारत ने करके दिया। और यही हुआ अभी हाल की जो ब्रिक्स समिट हुई, ब्रिक की समिट में न केवल रशिया यूक्रेन का इश्यू था, एक और इश्यू था बहुत बड़ा, ईरान था, यूएई था, सऊदी अरेबिया था, ये तो युद्ध में दो तरफ थे, आपस में लड़ रहे थे। भारत में बैठ के ईरान के राष्ट्रपति और यूएई के राष्ट्रपति ने मिलकर मीटिंग की। तो ये दिखाता है कि भारत जियोपॉलिटिकल क्षेत्र में इसने बड़ी डायनेमिक रोल प्ले किया है लीडरशिप। और ये लीडरशिप, प्रधानमंत्री जी ने मुझे कभी नहीं कहा कि तुम ये करो या ये करो, उन्होंने कहा इसको आप एग्रेसिव कीजिए, इसको आप एम्बिशियस बनाइए और फिर उसके बाद वो सारी फ्रीडम आपको दे देते हैं। वो विश्वास पे बहुत बिलीव करते हैं, अगर विश्वास करते हैं फिर उसके बाद पूरा छोड़ देते हैं, फिर आपके ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है कि आप इसको करके दीजिए। कोई नेता आप

0: पे विश्वास कर रहा हो तो आपकी तो जिम्मेदारी 100 गुना बढ़ जाती है। तो उसके लिए फिर सारी मेहनत करनी पड़ती है और उसको करके हम लोगों ने दिखाया, और पर उनकी जो विजन है उसको हम लोग इम्प्लीमेंट कर पाए।
1: बिल्कुल, वे जिम्मेदारी सौंपते हैं और जिम्मेदारी की अपेक्षा भी करते हैं, यही उनकी सोच है। और जैसे वसुधैव कुटुंबकम के जो मंत्र के साथ वे चलते हैं, चाहे वे भारत की बात करें या विश्व स्तर की बात करें, और यही हर सम्मेलन में और हर जगह प्रदर्शित होता है। केतकर जी,
2: बिल्कुल देखिए, जैसे G20 की बात चली, किसी ने ये नहीं सोचा था कि भारत एक प्रस्ताव लाएगा और अफ्रीकन यूनियन 21वें मेंबर के रूप में G20 में शामिल होगा। G20 तो एक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के रूप में उभरा था, जो अर्थव्यवस्था में जो उथल पुथल होती है उसको डील करने के लिए। ब्रिक्स वैसे ही एक अल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म के रूप में उभरा है। मतलब आप देखिए कि जिसको कहा जाता है कि आप यदि टेबल पर नहीं हो तो फिर आप मेनू में हो। भारत आज हर जगह टेबल पर है, G20 में है, G7 में इन्वाइटेड मेंबर है, ब्रिक्स जैसे संस्थान में है, फिर इंडियन ओशन रिम में भारत की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। तो बिग पावर्स के बीच में जो भी स्ट्रगल चलता रहेगा, हर कोई आज कहता है कि यदि भारत मध्यस्थता करता है और प्रधानमंत्री मोदी बातचीत करते हैं तो शायद इसमें से रास्ता निकल सकता है। और ये केवल बोलने के लिए नहीं रह जाता कि युद्ध का नहीं बुद्ध का समय है, प्रधानमंत्री बार बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कहते हैं। भारत की आज वो साख है कि आज वो यूक्रेन से भी बात कर सकते हैं और रशिया से भी बात कर सकते हैं,
1: बिल्कुल
2: वो चाइना के साथ बॉर्डर टेंशन्स होते हुए निगोसिएशंस भी कर सकते हैं, ट्रेड भी कर सकते हैं, और फिर भी चाइनीज प्रेसिडेंट भारत में आके ब्रिक्स में शामिल होते हैं। तो ये हमारी क्रेडिबिलिटी का लक्षण है। वो क्रेडिबिलिटी बड़ी है क्योंकि उसके पीछे लीडरशिप है। वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस में दिखा, वो इंटरनेशनल जब योगा डे जब डिक्लेयर हुआ तो उस समय दिखा। तो ये सारा दिखाता है कि एक लीडर की विजन हो तो उस देश की भी विजन विश्व पटल पर बड़ी होती हुई दिखती है।
1: बिल्कुल। और अमिताभ जी, बस अंत में ये पूछना चाहती हूँ कि जनहित से जन विश्वास की जो यात्रा है वे आप किस तरह से देखते हैं?
0: देखिए, सबसे जरूरी है समझना कि प्रधानमंत्री जी का एक विजन है, उन्होंने जो देश का विजन आगे रखा है कि भारत एक पूरा विकसित राष्ट्र बन के उभरे 2047। और इसका मतलब ये कि हम न केवल विकसित बने, न केवल हम 4 ट्रिलियन से 30 ट्रिलियन से अधिक कि हमारी GDP बढ़े, उसका मतलब है कि हर व्यक्ति की जिंदगी में बदलाव आए, और इसका मतलब है कि हम 9-10% से हर साल बढ़ते जाएं आगे
1: जी।
0: और उसका जो गुण मिले वो साधारण व्यक्ति को मिले, और साधारण व्यक्ति का मतलब है कि उसके पास पानी हो, बिजली हो, घर हो, और उसकी जिंदगी में एक बदलाव आए। तो ये मेरे विचार से एक रोड मैप तैयार कर देना और हर व्यक्ति को समझना कि उसकी भी जिम्मेदारी है इस देश में बदलाव लाना, ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। क्योंकि जब हम विकसित भारत का सपना रखते हैं तो हर व्यक्ति को अपना एक रोल प्ले करना आवश्यक है।
1: बिल्कुल सही कहा। बस यही कहेंगे कि जो लोकतंत्र में सरकार और जो नागरिक की भूमिका है वे केवल योजनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि असली कसौटी ये है कि सरकार उस नागरिकों की जरूरतों को कितने अच्छे से समझ पाती है और कितनी जल्दी अमली जामा पहना पाती है। अमिताभ जी और प्रफुल्ल जी, आप हमारे साथ आए और इस बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की, इसके लिए आप दोनों का धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
3: विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के दूसरे संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा 25 वर्ष जनहित से जन विश्वास तक। इसमें भाग ले रहे थे नीति आयोग के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत और राजनीतिक विश्लेषक प्रफुल्ल केतकर। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी आकाशवाणी संवाददाता प्रियंका अरोड़ा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।

दिल में छिपाने के लिए दिल में जगह बनानी पड़ती है और दिल में जगह बनाने के लिए लोगों के लिए कुछ करना पड़ता है। ऐसी ही एक योजना है प्रधानमंत्री श्रम योगी

मानधन योजना, जिसमें ना जितने भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स हैं यानी कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिक हैं, जैसे कि रेड़ी पटरी वाले, रिक्शा चालक, निर्माण मजदूर, घरेलू कामगार, दर्जी या फिर खेतीहर मजदूर, इन सब के लिए ये योजना है। और इस योजना के अंतर्गत जो है ना वो हर महीने 3,000 रुपए की पेंशन मिलती है 60 साल के जब हो जाए।

आपको पैसे जमा करने होते हैं, मतलब आपकी आय के हिसाब से और आपकी उम्र के हिसाब से 50-55 रुपए से लेकर 200-250 रुपए तक का अमाउंट होता है जो आप भरते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि जितने पैसे आप भरेंगे उतने ही पैसे भारत सरकार भी आपके खाते में डालेगी, और फिर आपको 60 साल का होने के बाद वो पैसे पेंशन के रूप में मिलने शुरू हो जाएंगे। और इसके लिए अगर आप अभी 18 से 40 साल के बीच की उम्र के हैं या 40 साल के हैं तो आप इस योजना का हिस्सा बन सकते हैं। आप असंगठित क्षेत्र में काम करना जो है वो आपका जरूरी होना चाहिए, जैसे कि मैंने बताया ना, रेहड़ी पटरी वाले, रिक्शा चालक, निर्माण मजदूर, घरेलू कामगार, दर्जी, खेतिहर मजदूर, आप इनमें से कोई भी हो सकते हैं। 15,000 या उससे कम की आपकी मासिक आय होनी चाहिए और आप कोई भी टैक्स पे ना करती हो, ये बहुत जरूरी है इस योजना का हिस्सा बनने के लिए।

0: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो? इस बॉक्स में आप सब के लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
1: मैम, मेरे वाले में तो HIV से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
2: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है
3: और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से HIV हो सकता है।
4: मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV का ज्यादा रिस्क।
0: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं। तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ, ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
5: HIV एड्स से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
6: समय मिला लीजिए 9:56 और 58 सेकंड हो गए हैं। 100.1 MHz आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल, प्रोग्राम म्यूजिकल दिल्ली और मैं हूँ आपके साथ भावना।

0: है गुरु
1: तो क्या हुआ
0: हो गया मेरा बहुत जरूरी
1: चल पगली।

इसी के साथ अब करिए इस भावना का नमस्कार स्वीकार, क्योंकि अब से थोड़ी ही देर में होंगे समाचार। समाचारों के बाद आप हमसे जुड़े रहिएगा आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी संगठनों में चयनित 51,000 युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इस अवसर पर वे नवनियुक्त अभ्यर्थियों को संबोधित भी करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: 20वां रोजगार मेला देश भर के 45 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। इसके तहत नवनियुक्त कर्मचारी केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्य करेंगे। इनमें वित्त, रेल, गृह, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और रक्षा मंत्रालय शामिल हैं। इस 20वें रोजगार मेले के साथ ही लगभग 12,75,000 युवाओं को नियुक्ति

0: पत्र मिले हैं। रोजगार मेला युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने और देश की विकास यात्रा में उनकी ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित करने पर सरकार के लगातार ध्यान को दर्शाता है। अनुपम मिश्रा के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन भी करेंगे। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण इस दो दिवसीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। इसमें पर्यावरण विशेषज्ञ और सर्वोच्च उच्च तथा जिला न्यायालयों के न्यायाधीश और विभिन्न मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे। सम्मेलन में 17 देशों के प्रतिष्ठित न्यायाधीश और न्यायिक प्रतिनिधि भी हिस्सा ले रहे हैं। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर गठित संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक कल नई दिल्ली में हुई। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने समिति के सदस्यों को विधेयक के प्रावधानों की जानकारी दी। इस संशोधन विधेयक का उद्देश्य विदेशी योगदान के उपयोग को ज्यादा पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ नोएडा, हापुड़, गाजियाबाद, मेरठ और बुलंदशहर सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से जुड़े राज्य के 8 सीमावर्ती जिलों में वायु गुणवत्ता सुधार के लिए एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद श्री यादव ने बताया कि वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए विभिन्न कार्ययोजनाओं पर चर्चा की गई। नंदीग्राम विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान को नंदीग्राम में 2007 के भूमि अधिग्रहण विरोधी आंदोलन से जुड़े एक हत्याकांड मामले में गिरफ्तार किया गया है। ये गिरफ्तारी उस समय हुई जब पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने उम्मीदवार के नाम वापस लेने के बाद 6 अक्टूबर को होने वाले उपचुनाव में प्रधान को अपने दल का समर्थन देने की घोषणा की। पुलिस ने बताया कि प्रधान के खिलाफ इस मामले में गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। प्रधान का नाम 2007 के नंदीग्राम आंदोलन से जुड़े कई मामलों में है। भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते की वार्ता को गति देने की प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू के साथ भारत और कनाडा के बीच समग्र आर्थिक साझेदारी समझौते पर वार्ता को गति देने के लिए बैठक की। श्री गोयल ने भरोसा जताया कि साझेदारी समझौते के जल्द पूरा होने से आपसी लाभ के लिए द्विपक्षीय व्यापार को और बढ़ाने तथा भारत कनाडा आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने के साझा दृष्टिकोण को साकार करने में मदद मिलेगी। वर्ष 2025-26 में भारत का सॉफ्टवेयर सेवा निर्यात वार्षिक आधार पर 8.2% बढ़कर $221 अरब से अधिक हो गया है। रिजर्व बैंक के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवा निर्यात पर जारी वार्षिक सर्वेक्षण में ये जानकारी दी गई है। भारत स्थित स्वीडन के वाणिज्य मंडल के नवीनतम व्यापारिक सर्वे में भारत को 41 वैश्विक बाजारों में व्यापारिक सुगमता के मामले में पहला स्थान मिला है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि वैश्विक अस्थिरता के बीच भारत का कारोबारी माहौल स्थिरता, विकास और कारोबार सुगमता के लिए नए मानक स्थापित कर रहा है। ये सर्वेक्षण विदेश में कारोबार करने के लिए स्वीडन की कंपनियों के अनुभव और दृष्टिकोण को सामने रखता है। जापान के आईजी नागोया में 20वें एशियाई खेलों का उद्घाटन आज भारतीय समय के अनुसार दोपहर 2:30 बजे से पालोमा मिजोह स्टेडियम में होगा। दो बार के ओलंपिक पदक विजेता निशानेबाज मनु भाकर और शॉटपुट खिलाड़ी तजिंदर पाल सिंह तूर उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक होंगे। एशियाई खेल आज से 4 अक्टूबर तक चलेंगे। मौसम विभाग ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने पूर्वी राजस्थान, ओडिशा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरलम और माहे में भी तेज बारिश के आसार व्यक्त किए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Tanvi Khurana. Prime Minister Narendra Modi will distribute more than 51,000 appointment letters to newly appointed youth in various government organizations at the 20th Rozgar Mela this afternoon through video conferencing. The Prime Minister will also address the newly selected candidates on the occasion. More on this from our correspondent.
0: The 20th Rozgar Mela will be held at 45 locations across the country. The newly recruited candidates will be joining various ministries and departments of the Government of India, including Ministries of Finance, Railways,

0: विस्फोट में 21 लोगों की मौत, 100 से अधिक घायल। और 20वें एशियाई खेलों का शुभारंभ आज से जापान में। अब समाचार विस्तार से। भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते की वार्ता को गति देने की प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू के साथ भारत और कनाडा के बीच समग्र आर्थिक साझेदारी समझौते को गति देने के लिए बैठक की। दोनों पक्षों ने बातचीत में तेजी लाने और जल्द से जल्द समझौते को अंतिम रूप देने की अपनी अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। समग्र आर्थिक साझेदारी समझौते से वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार, निवेश तथा आर्थिक सहयोग के अन्य क्षेत्रों में नए अवसर सृजित होने की उम्मीद है। श्री गोयल ने भरोसा जताया कि साझेदारी समझौते के जल्द पूरा होने से आपसी लाभ के लिए द्विपक्षीय व्यापार को और बढ़ाने तथा भारत कनाडा आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के साझा दृष्टिकोण को साकार करने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण NGT इस 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। इसमें पर्यावरण विशेषज्ञ और सर्वोच्च, उच्च तथा जिला न्यायालयों के न्यायाधीश और विभिन्न मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे। सम्मेलन में 17 देशों के प्रतिष्ठित न्यायाधीश और न्यायिक प्रतिनिधि भी हिस्सा ले रहे हैं। ये सम्मेलन न्यायिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक ज्ञान, पर्यावरण से जुड़ी सुशासन प्रक्रियाओं और संस्थागत अनुभवों के आदान प्रदान के लिए एक मंच प्रदान करेगा। भारत को स्वीडिश चैम्बर ऑफ कॉमर्स इन इंडिया के नवीनतम बिजनेस क्लाइमेट सर्वे में 41 वैश्विक बाजारों में व्यापारिक सुगमता के मामले में पहला स्थान मिला है। एक रिपोर्ट।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि वैश्विक अस्थिरता के बीच भारत का कारोबारी माहौल स्थिरता, विकास और कारोबार सुगमता के लिए नया मानक स्थापित कर रहा है। ग्लोबल बिजनेस क्लाइमेट सर्वे 2026 में 41 बाजारों के बारे में जानकारी दी गई है। ये सर्वेक्षण विदेशों में कारोबार करने को लेकर स्वीडिश कंपनियों के अनुभव और दृष्टिकोण को सामने रखता है। इसका उद्देश्य प्रमुख स्वीडिश निर्यात बाजारों में आर्थिक प्रदर्शन, कारोबारी संभावनाओं और कामकाज की परिस्थितियों की तुलना के लिए एक उपलब्ध कराना है। समाचार कक्ष से मैं हिमांशु कांडपाल।
0: वर्ष 2025-26 में भारत का सॉफ्टवेयर सेवा निर्यात वार्षिक आधार पर 8.2% बढ़कर $221 अरब से अधिक हो गया है। रिजर्व बैंक के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवा निर्यात पर जारी वार्षिक सर्वेक्षण में ये जानकारी दी गई।
2: वार्षिक सर्वेक्षण के लिए 7,569 सॉफ्टवेयर निर्यात कंपनियों से संपर्क किया गया था, जिनमें से 2,363 कंपनियों ने जवाब दिया। कुल अनुमानित सॉफ्टवेयर निर्यात में इन कंपनियों की हिस्सेदारी लगभग 89% थी। पिछले वर्ष के दौरान भारत में कुल सॉफ्टवेयर निर्यात में बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग यानी BPO सेवाओं का हिस्सा सबसे ज्यादा रहा था। भारत के सॉफ्टवेयर निर्यात के लिए 54% से अधिक की भागीदारी के साथ अमरीका सबसे बड़ा केंद्र बना रहा। 31.8% के साथ यूरोप दूसरे स्थान पर था। ब्रिटेन की हिस्सेदारी 15.4% थी। रिजर्व बैंक ने यह भी बताया कि भारतीय कंपनियों की विदेशी सहयोगी कंपनियों का स्थानीय सॉफ्टवेयर व्यापार वर्ष 2025-26 में $14 अरब से बढ़कर लगभग $18 अरब हो गया। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका ने ग्रीनलैंड में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ाने के लिए डेनमार्क के साथ एक समझौता किया है। इसके साथ ही ग्रीनलैंड को खरीदने की श्री ट्रंप की बार बार की मांगों को लेकर महीनों से चल रहा तनाव समाप्त हो गया है।
3: सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इस समझौते से अमेरिका को ग्रीनलैंड में सुरक्षा और अन्य सभी जरूरतों पर स्थायी नियंत्रण मिल जाएगा। डेनमार्क ने कहा कि इस समझौते पर अगले सप्ताह संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान अमेरिका, डेनमार्क और ग्रीनलैंड की सरकारें हस्ताक्षर करेंगे। समझौते को लागू करने के लिए डेनमार्क और ग्रीनलैंड की संसद की मंजूरी की जरूरत होगी। डेनमार्क और ग्रीनलैंड के नेताओं ने कहा कि यह समझौता संप्रभुता और आत्मनिर्णय के अधिकार की रक्षा करता है, जबकि अमेरिका ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से एक बड़ी उपलब्धि बताया है। पिछले एक वर्ष से श्री ट्रंप ग्रीनलैंड को अमेरिका को बेचने के लिए डेनमार्क पर दबाव बना रहे थे। उनका तर्क था कि ये द्वीप अमेरिका की सुरक्षा के लिए बहुत आवश्यक है। डेनमार्क नेटो का सहयोगी देश है। इसके बावजूद श्री ट्रंप ने सैन्य बल के जरिए ग्रीनलैंड को हासिल करने की संभावना से भी इनकार नहीं किया था। विश्व

0: पण के लिए निखिल कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में मीडिया चैनल CNN, MS नाउ और पॉलिटिको की पहुंच पर रोक लगा दी है। श्री ट्रंप ने आरोप लगाया है कि ये मीडिया संस्थान उनके प्रशासन के बारे में लगातार झूठी या काल्पनिक खबरें प्रकाशित करते हैं। उन्होंने संकेत दिया कि आने वाले समय में अन्य मीडिया संस्थानों पर भी पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। ट्रंप प्रशासन ने सत्ता में वापसी के बाद न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉल स्ट्रीट जर्नल और BBC सहित कई समाचार संस्थानों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की है। रूस ने यूरोपीय संघ के प्रतिनिधियों के लिए देश में प्रवेश पर रोक वाली सूची में और लोगों के नाम शामिल किए हैं। 23 जुलाई को यूरोपीय संघ द्वारा रूस के विरुद्ध 21वीं बार प्रतिबंधों का दायरा बढ़ाए जाने के बाद रूस ने ये कदम उठाया है।
2: रूस के विदेश मंत्रालय ने कहा कि यूरोपीय संघ के गैर कानूनी निर्णयों के जवाब में यूरोपीय संस्थानों, यूरोपीय संघ सदस्य देशों और रूस विरोधी नीति का समर्थन करने वाले कई यूरोपीय देशों के प्रतिनिधियों की प्रतिबंध सूची में और लोगों को डाला गया है। इस सूची में वो लोग हैं जो यूक्रेन को सैन्य सहायता देने, रूस की क्षेत्रीय अखंडता को कमजोर करने वाली गतिविधियों में शामिल होने, रूस विरोधी प्रतिबंध लगाने, विकासशील देशों के साथ रूस के संबंधों को नुकसान पहुंचाने और रूसी समुद्री परिवहन में बाधा डालने से फैसलों में शामिल रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि रूस के प्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार रखने वाले यूरोपीय देशों के नागरिक, कार्यकर्ताओं और शैक्षणिक समुदाय के प्रतिनिधियों के साथ साथ यूरोपीय संघ सदस्य देशों की राष्ट्रीय संसदों और यूरोपीय संसद के उन सदस्यों के खिलाफ भी प्रतिबंधात्मक उपाय किए गए हैं जिन्होंने रूस विरोधी प्रस्तावों और कानूनों के मसौदे के पक्ष में मतदान किया था। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से अमीषा।
1: इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस की अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों को निशाना बनाने वाले प्रतिबंध को कानून के रूप में पारित कर दिया है। इसका उद्देश्य यूक्रेन के खिलाफ जारी युद्ध को लेकर रूस पर दबाव बनाना है। एक साल से अधिक समय से विचाराधीन ये विधेयक सीनेट में और प्रतिनिधि सभा में भारी बहुमत से पारित हो गया। इस कानून का उद्देश्य रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को यूक्रेन में युद्ध जारी रखने के लिए आवश्यक संसाधनों से वंचित करना है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के कोहाट जिले में कल एक मस्जिद के पास विस्फोट में 15 पुलिसकर्मियों सहित 21 लोग मारे गए और 100 से अधिक घायल हो गए। शुक्रवार की नमाज के दौरान विस्फोट से मस्जिद के पास एक गड्ढा बन गया। अज्ञात हमलावरों ने भागने से पहले पुलिस चेकपोस्ट को भी निशाना बनाया। पुलिस ने बताया कि अब तक 6 आतंकवादी मारे जा चुके हैं। इत्तेहाद उल मुजाहिदीन पाकिस्तान नाम के आतंकी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी ली है। जापान के आईची नागोया में 20वें एशियाई खेलों का भव्य उद्घाटन आज भारतीय समयानुसार दोपहर 2:30 बजे से होगा। दो बार की ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर और शॉटपुट खिलाड़ी तजेंद्र पाल सिंह तूर उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक होंगे। एशियाई खेल आज से 4 अक्टूबर तक चलेंगे। भारत के 500 से अधिक खिलाड़ी 37 खेल स्पर्धाओं में हिस्सा लेंगे। बैडमिंटन में PV सिंधु, भारोत्तोलन में मीराबाई चानू और निशानेबाजी में मनु भाकर भारत की अगुवाई करेंगी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते की वार्ता को गति देने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। ग्रीनलैंड में अमरीकी सैन्य उपस्थिति मजबूत करने के लिए अमरीका और डेनमार्क के बीच समझौता। यूरोपीय संघ के 21वीं बार प्रतिबंधों के जवाब में रूस ने देश में प्रवेश प्रतिबंधों की सूची का विस्तार किया। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में विस्फोट में 21 लोगों की मौत और 100 से अधिक घायल। और 20वें एशियाई खेलों का शुभारंभ आज से जापान में। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: now a short film on NGT.
1: NGT Mobile Application एक ऐसा स्मार्ट प्लेटफॉर्म जो न्यायिक सेवाओं को आपके मोबाइल तक लेकर आता है। अब अपने केस की जानकारी प्राप्त करना पहले से कहीं अधिक आसान है। बस केस नंबर, ईयर और जोनल बेंच दर्ज करें और कुछ ही सेकंड में केस स्टेटस आपके सामने होगा। अगली सुनवाई की तारीख जाननी हो या कॉज लिस्ट देखनी हो, सभी आवश्यक जानकारी अब आपकी उंगलियों पर उपलब्ध है। जजमेंट एंड ऑर्डर सेक्शन के माध्यम से आप अपने केस से संबंधित आदेश और निर्णय कभी भी देख सकते हैं। वहीं डिस्प्ले बोर्ड फीचर आपको एनजीटी, सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट की उस समय की चल रही कार्यवाही से जुड़े रखता है। ई फाइलिंग, लेटेस्ट अनाउंसमेंट्स, करियर एंड रिक्रूटमेंट तथा अन्य महत्वपूर्ण नोटिफिकेशंस भी अब एक ही ऐप पर उपलब्ध हैं, जिससे समय की बचत होगी और जानकारी तक आपकी पहुंच और भी आसान बनेगी। आप अपनी आवश्यक जानकारी को फेवरेट्स में सेव कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर केवल एक क्लिक में उसे फिर से देख सकते हैं। एनजीटी मोबाइल एप्लीकेशन का उद्देश्य केवल डिजिटल सुविधा प्रदान करना नहीं, बल्कि न्यायिक प्रक्रिया को अधिक ट्रांसपेरेंट, एफिशिएंट और सिटीजन फ्रेंडली बनाना है। आइए तकनीक को अपनाएं, पर्यावरण संरक्षण के इस मिशन में अपनी भागीदारी बढ़ाएं और न्यायिक सेवाओं को एक नई डिजिटल पहचान दें। एनवायरमेंटल जस्टिस, एनी टाइम, एनी वेयर।
2: तो अब एनवायरमेंटल जस्टिस,
0: दैट वॉज अ शॉर्ट फिल्म ऑन द फीचर्स ऑफ द नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल मोबाइल एप्लीकेशन एंड द plenary session is packed with the delegates and domain experts and legal numeraries and the honorable judges of the honorable high courts of various states of India and also the Supreme Court of India, and everyone is eagerly looking forward to the inaugural address of the Future of Environment and Climate Dynamics Conference by the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi.
3: जी कौशिक जी, दो दिवसीय सम्मेलन में विश्व भर से न्यायाधीश, पर्यावरण विशेषज्ञ, भारत के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, जिला न्यायालयों के न्यायाधीश, विभिन्न मंत्रालयों के सचिव, वरिष्ठ अधिकारी, राज्य न्यायिक अकादमियों के प्रतिनिधि, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के सदस्य यहां पर मौजूद हैं।
0: एंड नाउ द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी।
4: कार्यक्रम में उपस्थित भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे साथी भूपेंद्र यादव जी, भारत के अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी जी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी के अध्यक्ष जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव जी, या हॉल में उपस्थित सभी सम्मानित महानुभाव देवी और सज्जनों, प्रकृति और पर्यावरण के विषय पर सदियों तक भारत ने एक तरह से विश्व का मार्गदर्शन किया है। अपने उस वैचारिक कमिटमेंट को लेकर, अपने सांस्कृतिक अनुभवों को आधार बनाकर भारत अब आधुनिक क्लाइमेट चैलेंजेस के समाधान भी दे रहा है, और साथ ही भारत मानवता के सामूहिक प्रयासों के लिए आह्वान भी कर रहा है। मुझे खुशी है एनजीटी की ये कॉन्फ्रेंस उसी मिशन को आगे बढ़ा रही है। इस आयोजन के लिए मैं एनजीटी के सभी पदाधिकारियों को, इससे संबंधित सभी महानुभावों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, हम सब जानते हैं अक्सर कार्बन एमिशन की जिम्मेदारी गलत तरीके से विकासशील देशों पर डाली जाती रही है। यहां बहुत सारे ग्लोबल साउथ के मेरे साथी बैठे हैं, जबकि ऐतिहासिक सच्चाई ये है, आज भी प्रति व्यक्ति कार्बन एमिशन में भारत का योगदान ग्लोबल एवरेज के आधे से भी कम है। विकसित देशों में भारत की तुलना में 6 गुना ज्यादा प्रति व्यक्ति कार्बन एमिशन हो रहा है, 6 गुना ज्यादा। भारत ये तथ्य मजबूती के साथ वैश्विक मंचों पर रखता है, और मैं हर भारतवासी से कहूंगा, आप भी दम दिखाइए। हमने अपनी परंपराओं और उनकी ताकत को भी दुनिया के सामने रखा है। इन्हीं विषयों को लेकर पेरिस में COP21 के दौरान हमने कन्वीनियंट एक्शन कंटिन्यूटी फॉर चेंज उस बुक को भी लॉन्च किया था। हम दुनिया को साथ लेकर पर्यावरण सुरक्षा के नए मापदंड स्थापित कर रहे हैं। वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड की सोच हो या इंटरनेशनल सोलर अलायंस, CDRI, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, मिशन लाइफ, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट, ऐसा हरेक मंच क्लाइमेट और एनवायरमेंट पर भारत के डेडिकेटेड कमिटमेंट्स का प्लेटफॉर्म बन रहा है। साथियों, आज का भारत पर्यावरण सुरक्षा के अपने प्राचीन विचारों को आधुनिक विजन में पिरोते हुए आगे बढ़ रहा है। बीते 12 वर्षों में पर्यावरण से जुड़े हर क्षेत्र में, हर सेक्टर में भारत ने असाधारण प्रगति की है। हमारा बड़ा फोकस रिन्यूएबल एनर्जी पर रहा है, और इसने पर्यावरण सुरक्षा में बड़ी भूमिका निभाई है। भारत G20 में इकलौता ऐसा देश है, मैं G20 के बड़े बड़े लोग हैं ना, उनके सामने बता रहा हूं जी, इकलौता भारत ऐसा देश है जिसने पेरिस में COP21 समिट में जो भी कमिटमेंट्स किए थे, उन सारे कमिटमेंट्स को समय से पहले पूरा करके दिखाया है। ये हिंदुस्तान की ताकत की मैं बात कर रहा हूं। नॉन फॉसिल फ्यूल सोलर एनर्जी कैपेसिटी, कार्बन एमिशन पर रोकथाम, हर पैरामीटर पर भारत की परफॉर्मेंस दुनिया में आज सकारात्मक रूप से चर्चा का विषय है। आप आंकड़ों को देखिए, 12 साल पहले भारत की सोलर एनर्जी कैपेसिटी करीब 2 गीगावाट थी। 12 साल पहले 2 गीगावाट, अगर यहां वकील बैठे हैं तो जरा ध्यान रखें, आंकड़े कभी काम आएंगे। आज यह 160 गीगावाट से ज्यादा हो चुकी है।

दो गीगावाट से 160 गीगावाट 12 साल में हमने पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत घरों को ही सोलर पावर जनरेशन का केंद्र बनाने का मिशन शुरू किया। इस योजना के तहत अब तक 50 लाख से ज्यादा घरों में रूफटॉप सोलर पैनल्स लग चुके हैं। ये दुनिया के कई देशों के टोटल घरों से ज्यादा है। इसके लिए सरकार ने हर घर को करीब 80,000 रुपये तक की आर्थिक मदद दी है। कुसुम योजना के तहत सरकार ने 30 लाख किसानों के खेतों में सोलर पंप्स लगाने का काम किया है। हमने वन नेशन वन ग्रिड का एम्बिशियस प्रोजेक्ट भी पूरा कर लिया है। इतना ही नहीं, घरों में एलईडी बल्ब, जो बिजली की बचत करने में सफल पुरवार हुआ है, करोड़ों की तादाद में एलईडी बल्ब घरों में पहुंचाए हैं। और इन प्रयासों के परिणाम आज हमारे सामने हैं। अकेले सोलर एनर्जी से ही भारत में करीब, ये आंकड़ा भी वकीलों के लिए है, भारत में करीब 20 करोड़ टन कार्बन एमिशन रोकने में सफलता मिली है। साथियों, सोलर एनर्जी के साथ साथ क्लीन एनर्जी के दूसरे सेक्टर में भी भारत ने बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। बीते 12 साल में देश की विंड एनर्जी कैपेसिटी 3 गुना बढ़ी है। हाइड्रो एनर्जी कैपेसिटी में काफी बढ़ोतरी हुई है। और अब देश न्यूक्लियर एनर्जी जनरेशन पर तेजी से काम कर रहा है। और जो लोग एनवायरनमेंट पर लंबे लंबे भाषण झाड़ते रहते हैं, ये जब न्यूक्लियर एनर्जी का काम मैं आगे बढ़ाऊंगा, जब अदालतों में जाके खड़े हो जाएंगे रोकने के लिए। इस सेक्टर में प्राइवेट प्लेयर्स को भी लाने का रास्ता बनाया गया है। इन कोशिशों की वजह से आज भारत की नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी करीब करीब 4 गुना बढ़ गई है। भारत कोयले के और अधिक स्वच्छ उपयोग के लिए कोल गैसिफिकेशन जैसी टेक्नोलॉजी को भी बढ़ावा दे रहा है। साथियों, भारत आज क्लीन मोबिलिटी और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे क्षेत्रों में तेजी से काम कर रहा है। अभी कुछ दिन पहले भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चली है और ये दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन ट्रेन है। ये क्लीन मोबिलिटी के एक नए युग की शुरुआत है। साथियों, 12 वर्षों में हमारे देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की संख्या में करीब 950 गुना का इजाफा हुआ है। 950 गुना 2014 से पहले के साल में भारत में 3,000 से भी कम ईवी की बिक्री थी। 3,000, वही पिछले साल करीब 25 लाख ईवी भारत में बिकी है। यानी ईवी रिवॉल्यूशन के इस अवसर को भारत पूरी ताकत से अपना रहा है और इससे पर्यावरण की भी मदद

हो रही है। हमारे हाईवेज और एक्सप्रेसवेज पर फास्ट टैग की आधुनिक व्यवस्था से भी टोल बूथ पर वेटिंग कम हुआ है। इससे टोल बूथ पर जो फ्यूल वेस्ट होता है वो बंद हुआ है। साथियों, 2014 तक हमारे देश के 5 शहर में करीब 250 किलोमीटर का मेट्रो नेटवर्क था, ये भी मेरे वकील मित्र याद रखे। 2014 के पहले सिर्फ 5 शहरों में 250 किलोमीटर से कम। आज देश के 20 से ज्यादा शहरों में मेट्रो चल रही है और भारत दुनिया के उन देशों में शामिल हो गया है जिनके पास 1000 किलोमीटर से ज्यादा का मेट्रो नेटवर्क है। साथियों, रेलवे का लगभग 100% शत प्रतिशत इलेक्ट्रिफिकेशन होने से भी करोड़ों करोड़ लीटर डीजल जलने से बचा है, पर्यावरण की रक्षा हुई है। इसी महीने कुछ दिन पहले करीब 3000 किलोमीटर लंबे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का लोकार्पण किया गया है। इस पर चलने वाली हर ट्रेन एक बार में सैकड़ों ट्रक्स का लोड लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच रही है। डबल स्टैक कंटेनर मालगाड़ी का संचालन अपने आप में ऐतिहासिक है। आप कल्पना कर सकते हैं कि इससे कितने बड़े लेवल पर पर्यावरण की भी मदद होती है। साथियों, देश में आज करीब 5000 किलोमीटर लंबे वाटरवेज पर ट्रांसपोर्टेशन होने लगा है, जो सबसे ज्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली मोबिलिटी है। इन पर चलने वाला एक स्टैंडर्ड इनलैंड वेसल एक यात्रा में दर्जनों ट्रक्स के बराबर लोड ले जाता है। इससे भी पर्यावरण संरक्षण में बड़ी सहायता मिल रही है। साथियों, अकेले मोबिलिटी सेक्टर में ये सारे बदलाव इस बात के गवाह हैं कि हमारा डेवलपमेंट स्पीडी भी है और सस्टेनेबल भी है। साथियों, आज करोड़ों लोगों की भागीदारी से भारत में जल संरक्षण पर भी अभूतपूर्व काम हो रहा है। मुझे खुशी है कि देश में 70,000 से ज्यादा अमृत सरोवर का निर्माण हुआ है। कैच द रेन अभियान के तहत देश में करीब 1.5 करोड़ वॉटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बने हैं जिसमें बारिश का पानी संरक्षित हो रहा है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के जरिए आज 2 करोड़ से ज्यादा किसान सिंचाई की आधुनिक सुविधाओं से जुड़े हैं। पर ड्रॉप मोर क्रॉप जैसे इनिशिएटिव से भी पानी की बचत हो रही है। श्री अन्न यानी मिलेट्स, ये भी एक बहुत बड़ा सफल उदाहरण है। भारत मिलेट श्री अन्न की पैदावार को बढ़ावा दे रहा है, जो पानी की खपत कम करते हैं। बीते वर्षों में देश में मिलेट्स का उत्पादन भी बढ़ा है और निर्यात भी बढ़कर करीब 1.5 लाख टन हो गया है। इससे किसानों के लिए नए मौके तो बन ही रहे हैं, पानी की भी बचत हो रही है। और इसी मॉडल के कारण दुनिया भी हमारे साथ जुड़ रही है। भारत के प्रयासों के कारण
2023

0: 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में सेलिब्रेट किया गया है। साथियों, नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग के तहत आज देश में करीब 12.5 लाख हेक्टर में नेचुरल फार्मिंग के 24,000 क्लस्टर्स बन चुके हैं। यही नहीं, देश में क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स की भी करीब 3,000 वैरायटीज विकसित हो चुकी हैं। एग्रो फॉरेस्ट्री को बढ़ावा देकर भी हम कार्बन फुटप्रिंट्स को कम कर रहे हैं। साथियों, हमारे ये प्रयास कितने व्यापक है इसका एक उदाहरण भारत का फॉरेस्ट कवरेज भी है। ये भी मैं वकील मित्रों के लिए बताता हूं, बीते 12 वर्षों में हमारा वेरी डेंस फॉरेस्ट कवर 22% से ज्यादा बढ़ा है। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। एक पेड़ मां के नाम इस अभियान के तहत भी देश में करोड़ों पेड़ लगाए गए हैं और यह अभियान निरंतर जारी है। साथियों, पर्यावरण के सामने एक बड़ी चुनौती प्लास्टिक वेस्ट की भी रही है और इसलिए भारत ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक लगाई है। हमने रिड्यूस, रीयूज और रीसाइकल के मंत्र के साथ सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा दिया है। आज भारत में हर रोज हजारों टन वेस्ट को रीसाइकल किया जा रहा है। गोवर्धन योजना के माध्यम से गांवों में गोबर और दूसरे ऑर्गेनिक वेस्ट को भी उपयोगी संसाधन में बदला जा रहा है। हमारी कोशिश यही है कि वेस्ट को समस्या न मानकर उसे वेस्ट टू वेल्थ मॉडल पर एक रिसोर्स में बदला गया है। साथियों, ये सारे के सारे आंकड़े केवल भारत के विकास के आंकड़े नहीं है, ये मानवता के भविष्य के लिए भारत के योगदान के आंकड़े हैं। साथियों, हमारा सांस्कृतिक विचार है माता भूमि ही पुत्रो अहम पृथ्वीव्याः, अर्थात ये धरती हमारी मां है और हम इसकी संतान है। इसी सोच के साथ भारत भी एक रिस्पॉन्सिबल सस्टेनेबल भविष्य बनाने के लिए काम कर रहा है। मुझे विश्वास है कि इस कॉन्फ्रेंस में होने वाले डिस्कशंस उससे जो नए विचार, नए समाधान सामने आएंगे, वो हो सकता है कि आने वाले पीढ़ी के लिए एक बहुत बड़ा संबल बनकर के निकलेंगे। एक बार फिर इस कॉन्फ्रेंस के लिए आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: That, ladies and gentlemen, Honorable Prime Minister delivered the inaugural address at the Future of Environment and Climate Dynamics Conference organized by the National Green Tribunal here at the plenary session of Vigyan Bhavan. And now the Honorable Prime Minister is departing from the plenary hall. He's shaking hands with the Union Minister for Environment, Forest and Climate Change, Shri Bhupendra Yadav, and the Chairperson of the NGT, Justice Prakash Srivastava, and the Chief Justice of India, Justice Shri Suryakant, and the Attorney General for India, Shri R. Venkatramani. And the dignitaries have now departed from the plenary hall of Vigyan Bhavan. And Kamal, the Prime Minister, in very unequivocal terms, mentioned about India's commitment, deep commitment to nature and environment since the dawn of

0: of civilization. The Prime Minister complimented the NTG for organizing this timely conference, and he said that carbon emission is wrongly blamed on developed countries, especially of the global south. The historical truth is that the Honorable Prime Minister mentioned that per person emission in India is below 50% of the global average. The developed countries have a per person emission that is more than six times that of India. The Prime Minister mentioned that our traditions and strengths are being shared with the world today. At the Conference of Parties 21 in Paris, the Prime Minister mentioned that India mentioned about convenient action and conformity for change. The Prime Minister mentioned the initiatives of India, such as the One Sun, One World, One Grid, the International Solar Alliance, the CDRI, the Global Biofuel Alliance, the Big Cat Alliance, and Mission Lifestyle for Environment. India's ancient knowledge and its deep commitment to environment is well known. Today, India is a key player in the world of renewable energy. In the last 12 years, solar energy increased from just 2 gigawatts to more than 160 gigawatts now. Through the PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana, more than 50 lakh houses have solar rooftop panels now, and 80,000 rupees per house has been given as financial help. Through the Kusum Yojana, 30 lakh solar pumps are now functional. The One Nation, One Grid has been completed, and with the LED bulbs, the question of environment pollution has been taken care of. 20 crore tons of carbon emission have been saved. Wind energy, nuclear energy are now open to private players. Non-fossil fuel capacity has increased by four times. India is now committed to coal gasification. India is committed to the welfare of mankind and will be a responsible and sustainable nation, ensuring the future of our civilization, said the Honorable Prime Minister of India.
1: Kaushik, waise jalvayu parivartan ki chunauti to badi zarur hai, लेकिन वैज्ञानिक सोच, जिम्मेदार नीतियों, तकनीकी नवाचार और जन भागीदारी के माध्यम से हम इसके प्रभाव को कम करने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, और भारत ने इस दिशा में काफी आगे कदम बढ़ा भी दिए हैं। प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर विकास करना ही सुरक्षित, स्वस्थ और टिकाऊ भविष्य की सबसे बड़ी मजबूत नींव है। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के पहले दिन के सत्र का सीधा प्रसारण आप सुन रहे थे। चलते चलते हम आपकी जानकारी के लिए ये बता दें कि कल 20 सितंबर 2026 को समापन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की गरिमामय उपस्थिति में आयोजित होगा। और अब अपने तकनीकी सहयोगों कमल सिंह, सुमित कटियार, ओब इंचार्ज विवेक तोमर, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर प्रमोद कुमार के साथ मैं यानी कि कमल किशोर बड़ाइक और अपने साथी कमेंटेटर कौशिक रॉय के साथ अन्य कार्यक्रमों के लिए वापस आपको आकाशवाणी के दिल्ली के स्टूडियो लिए चलते हैं। नमस्कार।
2: श्रोताओं, अभी आप नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामय उपस्थिति में आयोजित दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र का सजीव विवरण विज्ञान भवन से सुन रहे थे। विवरण दे रहे थे कमल किशोर बड़ाई और कौशिक रॉय। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, टीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत पर।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। यह है प्रोग्राम तस्वीर। मैं हूं आपके साथ भावना लेपाक्षी। आंध्र प्रदेश का एक ऐतिहासिक और पौराणिक शहर जिसकी आज रेडियो तस्वीर बनाने की कोशिश करेंगे हम, अपनी शानदार वास्तुकला के लिए, अपने रामायण काल से जुड़े इतिहास के लिए इसे जाना जाता है। खास है यहाँ का वीरभद्र मंदिर। ये 16वीं सदी का मंदिर वास्तुकला का एक अद्भुत चमत्कार है। विजयनगर साम्राज्य जो है इसकी शैली में बसे इस मंदिर की दीवारों पर खूबसूरत नक्काशी और प्राचीन पेंटिंग्स यानी भित्ति चित्र देखने को मिलते हैं। उन चित्रों में प्रकृति की खूबसूरती को बहुत ही प्रेम से उकारा गया है, उभारा गया है। और जब हम इस नक्काशी को, इन पेंटिंग्स को देखते हैं, तो जितना जितना हम अपने देवी देवताओं के करीब जाते हैं, उतना ही अपनी प्रकृति के करीब भी जाते हैं।

वीरभद्र मंदिर जिसकी हम बात कर रहे थे लिपाक्षी का, ये मंदिर जो है बहुत ही खास है यहाँ का। और सबसे बड़ा आकर्षण जो है ना यहाँ का, वो है रहस्यमयी हैंगिंग पिलर, यानी ये खंबा हैंगिंग पिलर क्यों कहलाता है, जमीन को नहीं छूता, हवा में लटका हुआ है ये मंदिर का खंबा। पर्यटक अक्सर जो है इसे नीचे से कपड़ा या कागज़ दिखा निकाल कर जो है वो देखते हैं कि मतलब ये लटका हुआ है, या हिलाकर उसको दूर से जो है वो कपड़े को या कागज़ को उसको चेक करने की कोशिश करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है ये, और बड़ा आश्चर्यजनक भी है कि किस तरह से एक खंबा जो है वो लटका हुआ हो सकता है। लेकिन ये है यहाँ का ऐसा विशालकाय नंदी प्रतिमा। मंदिर से थोड़ी ही दूर पर ग्रेनाइट पत्थर को काटकर बनाई गई भारत की सबसे बड़ी नंदी प्रतिमाओं में से एक यहाँ पर है। ये अखंड मूर्ति जो है शिल्प कला का बेहतरीन प्रदर्शन है, और ये बहुत पसंद आती है उन सभी को जो नंदी के, भगवान शिव के उपासक हैं।

रामायण काल से जुड़ी बहुत सारी चीज़ें लिपाक्षी में देखने को मिलती हैं। ऐसा ही यहाँ का एक बहुत ही खास जटायु पार्क। रामायण महाकाव्य के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र जटायु यहाँ पर गिरे थे। लोगों ने उन्हें उठने की प्रार्थना की थी और यहीं पर छोटी पहाड़ी है जहाँ पर जटायु जी की एक विशाल प्रतिमा का निर्माण किया गया है और अब इसे एक पार्क में बदल दिया है। तो जो भी पर्यटक यहाँ आते हैं वो इस प्रतिमा को भी देखते हैं और इस पार्क में भी घूमते हैं, इसका आनंद लेते हैं। बहुत ही खूबसूरत जो है प्राकृतिक नज़ारे यहाँ पर देखने को मिलते हैं। हरा भरा सुंदर बगीचा है, पैदल मार्ग है जिस पर लोग चलते हैं और अपने आप को प्रकृति के साथ महसूस करते हैं।

लिपाक्षी मंदिर, जिसे वीरभद्र मंदिर के नाम से जाना जाता है, इस मंदिर परिसर में ही एक बड़े चट्टान पर खुदा हुआ विशाल सात फनों वाला नागलिंग है, जो शिवलिंग की रक्षा करते हुए दिखाई देता है। लोग इसे भी देखने दूर दूर से आते हैं। यहाँ का इतिहास और यहाँ की वास्तुकला को अगर आपको समझना है तो यहाँ के जो लोकल गाइड्स हैं आप उनकी सहायता ले सकते हैं। और यहाँ पर जो पत्थर की नक्काशी है, पिलर्स हैं, नंदी की विशाल मूर्ति है, फोटोग्राफी के लिए ये सब बहुत अच्छा है और लोग इसे बैकड्रॉप में रखकर अपनी फोटोज खिंचवाते हैं। और आंध्र प्रदेश की एक झलकी जो है वो इसमें दिखाई देती है। अगर आप आंध्र प्रदेश के खूबसूरत छोटे से शहर, या कोई कोई लोग तो इसे छोटा सा गांव भी कहते हैं, तो यहाँ पर आप हैंडलूम और सिल्क साड़ियों की खरीदारी कर सकते हैं। पारंपरिक हथकरघा कला के लिए इसे जाना जाता है। बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जिनके लिए इस जगह को जाना जाता है, जो यहाँ पर आने वाले लोग खरीदते हैं, जैसे कि बंजारा कढ़ाई, पीतल के बर्तन, सूती और जूट की दरी, और महाकाव्यों और प्राकृतिक दृश्यों के रंगीन चित्रण वाली कलमकारी पेंटिंग, मुलायम लकड़ी से बड़े जो है कोंडापल्ली खिलौने, चेरियल स्क्रॉल पेंटिंग और चांदी की नक्काशी वाली बिदरी शिल्पकला, ये यहाँ की खासियत है। अब हमने सब खासियत आपको बता दी, आपको यहाँ आना है, इसलिए अपना प्रोग्राम बनाइए। बहुत ही खूबसूरत जगह है लिपाक्षी आंध्र प्रदेश में, और बहुत ही खास है यहाँ का इतिहास, यहाँ की वास्तुकला। तो बस अब प्रोग्राम बनाइए और चले आइए यहाँ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन में भारत का योगदान वैश्विक औसत के आधे से भी कम है। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन पर यह बात कही। श्री मोदी ने कहा कि विकासशील देशों को अक्सर कार्बन उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, जो कि अनुचित है। उन्होंने कहा कि भारत G20 का एकमात्र ऐसा देश है जिसने पेरिस में आयोजित COP21 शिखर सम्मेलन में की गई प्रतिबद्धताओं को समय से पूर्व ही सफलतापूर्वक पूरा किया है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत ने पर्यावरण से संबंधित हर क्षेत्र में असाधारण प्रगति की है।
1: प्रकृति और पर्यावरण के विषय पर सदियों तक भारत ने एक तरह से विश्व का मार्गदर्शन किया है। अपने उस वैचारिक कमिटमेंट को लेकर, अपने सांस्कृतिक अनुभवों को आधार बनाकर भारत अब आधुनिक क्लाइमेट चैलेंजेस के समाधान भी दे रहा है, और साथ ही भारत मानवता के सामूहिक प्रयासों के लिए आह्वान भी कर रहा है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत दुनिया के अन्य देशों के साथ मिलकर काम कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का प्रमुख ध्यान नवीकरणीय ऊर्जा पर रहा है और इसने पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
1: हम दुनिया को साथ लेकर पर्यावरण सुरक्षा के नए मापदंड स्थापित कर रहे हैं। वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड की सोच हो या इंटरनेशनल सोलर अलायंस CDRI, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, मिशन लाइफ, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, ऐसा हर एक मंच क्लाइमेट और एनवायरनमेंट पर भारत के डेडिकेटेड कमिटमेंट्स का प्लेटफॉर्म बन रहा है।
0: इस अवसर पर भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि पर्यावरण संबंधी न्यायाधिकरणों, नियामक तंत्रों और अनुपालन ढांचों के अस्तित्व में आने से बहुत पहले ही देश में पृथ्वी संरक्षण का विचार मौजूद था। इस अवसर पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेन्द्र यादव ने कहा कि पर्यावरण के प्रति भारत का दृष्टिकोण उसकी प्राचीन सभ्यतागत विचारधारा में गहराई से निहित है, जो पृथ्वी को संपत्ति नहीं बल्कि एक साझा विरासत और पवित्र धरोहर मानता है। प्रधानमंत्री मोदी आज 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी संगठनों में चयनित 51,000 युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नवनियुक्त अभ्यर्थियों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश भर के 45 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। इसके तहत नवनियुक्त कर्मचारी केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्य करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंतर्राज्यीय परिषद से जुड़े नियमों में संशोधन किया है। इसके अंतर्गत पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर और दिल्ली के उपराज्यपालों को इन केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रपति शासन लागू होने की स्थिति में परिषद की बैठकों में भाग लेने की अनुमति होगी। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के दूसरे चरण में ग्रामीण विकास मंत्रालय अगले महीने से अधिकांश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 34,000 ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देना शुरू करेगा। पहले चरण में बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु सहित 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशिक्षण बैच शुरू करने की तैयारियों की समीक्षा की गई। मंत्रालय ने बताया कि अगले वर्ष 31 दिसंबर तक 3,57,000 से अधिक ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। भारत ने सुरक्षा परिषद में अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करने की अपनी मांग दोहराई है और कहा है कि वाणिज्यिक समुद्री आवाजाही भू राजनीतिक तनाव का निशाना नहीं बननी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने बृहस्पतिवार को सुरक्षा परिषद में कहा, समुद्री आवाजाही के अधिकारों पर जबरदस्ती, धमकियों, गैरकानूनी प्रतिबंधों या मनमाने दखल का अवसर नहीं पड़ना चाहिए। जापान के आइची नगोया में 20वें एशियाई खेलों का उद्घाटन आज भारतीय समय के अनुसार दोपहर 2:30 बजे से पालोमा मिजुहो स्टेडियम में होगा। एशियाई खेल 8 से 4 अक्टूबर तक चलेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Anuja Kumar. Prime Minister Narendra Modi has said that India's contribution to per capita carbon emissions is less than half of global average, inaugurating the International Conference on the Future of Environment and Climate Dynamics. In New Delhi today, Mr. Modi said that developing countries have often been unfairly held responsible for carbon emissions. He highlighted that India is the only country in the G20 that has successfully fulfilled the commitments made at the COP21 summit in Paris ahead of schedule. The Prime Minister said, over the past 12 years, India has made extraordinary progress in every field related to the environment.
1: Carbon emission ki zimmedari galat tarike se vikasshil deshon par dali jati rahi hai. Jabki aitihasik sachchai ye hai, aaj bhi प्रति व्यक्ति कार्बन एमिशन में भारत का योगदान ग्लोबल एवरेज के आधे से भी कम है. विकसित देशों में भारत की तुलना में 6 गुना ज्यादा प्रति व्यक्ति कार्बन एमिशन हो रहा है. भारत ये तथ्य मजबूती के साथ वैश्विक मंचों पर रखता है.
2: Prime Minister Modi said India is working with the rest of the world and setting new standards for environmental protection through initiatives such as the International Solar Alliance, Global Biofuels Alliance, International Big Cat Alliance and Mission Life. Mr. Modi said that over the past 12 years, India has made extraordinary progress in every field related to the environment. The Prime Minister said India's major focus has been on renewable energy and played a significant role in environmental protection. On the occasion, Chief Justice of India Surya Kant said the idea of preserving the earth existed in the country much before the emergence of environmental tribunals, regulatory mechanisms.

वक्त हो चला है 12:15 और 15 सेकेंड। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। और जिंदगी को अगर किसी एक जुमले में समझना हो तो शायद यही गीत काफी है। जिंदगी एक सफर है सुहाना, होता तो यही है ना दोस्तों कि मंजिल की फिक्र में रास्तों की खूबसूरती को हम भूलते चले जाते हैं। और यही तो इस गीत की सबसे प्यारी बात है, किशोर कुमार की आवाज में जैसे जिंदगी खुद मुस्कुराती हुई सुनाई दे रही है।

फिल्म वक्त से आशा जी की आवाज में आपने ये खूबसूरत सा गीत सुना। हर दिन हमें एक नया मौका देता है आज को जीने का। कल क्या होगा ये तो हमारे हाथ में है नहीं, लेकिन आज की सांस, आज की खुशी और आज का हर एक लम्हा हमारे हाथ में है, हमारे पास में है। और इस गीत में यही बयां किया गया था। एक और खूबसूरत सा गीत जो यकीनन आपको बहुत पसंद आएगा, मुझे भी बहुत पसंद है, फिल्म है रात और दिन, और गीत ये रहा।

0: ये आकाशवाणी है। आज भारत सरकार द्वारा देश के विभिन्न हिस्सों में आयोजित किए गए 20वें रोजगार मेले में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। आइए सुनते हैं इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का संबोधन।
1: आरंभ करने के लिए सर्वप्रथम मैं माननीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से अनुरोध करती हूं कि वे अपना स्वागत संबोधन दें।
2: परमादरणीय प्रधानमंत्री जी, आपने अपने बहुमूल्य समय में से कुछ क्षण निकालकर हमारे बीच है, हमारी हौसला अफजाई की है, आपका बहुत बहुत आभार। सन 2023 में आपके द्वारा प्रारंभ किए गए रोजगार मेला के इस क्रम में आज हम 20वां अंक लेकर के आपके सामने उपस्थित हैं। यदि अभी तक हुए रोजगार मेला के कार्यक्रमों का आकलन किया जाए तो समझ में आता है कि जहां एक तरफ सरकारी नौकरियों में होने वाली नियुक्तियों की संख्या में वृद्धि हुई, वहां साथ ही साथ नियुक्ति प्रणाली में पारदर्शिता भी आई है, टाइमलाइन डिसिप्लिन भी। और यदि आंकड़ों की बात करें तो केंद्र की तीन प्रमुख रिक्रूटमेंट एजेंसीज यूपीएससी, एसएससी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा जहां यूपीए के 10 वर्षों में होने वाली नियुक्तियों की संख्या रही 7,22,000, वहां एनडीए की 10 वर्षों में संख्या रही 10,96,000, यानी कि 1.5 गुना ज्यादा। और यदि हिसाब लगाया जाए 12 साल का तो ये आंकड़ा 13 लाख तक पहुंचता है। बैकलॉग रिजर्व्ड कैटेगरी में होने वाली नियुक्तियों की संख्या यूपीए के कार्यकाल में रही मात्र 1,08,000, एनडीए के कार्यकाल में लगभग 5 गुना अधिक 4,79,000। इसी तरह से वर्षों से प्रमोशंस में स्टैग्नेशन आ चुकी थी, जिसके परिणाम स्वरूप कर्मचारियों में डीमोटिवेशन देखने को मिल रहा था। आपके नेतृत्व में गत 23 लाख से अधिक गत 12 सालों में प्रमोशंस को क्लियर किया गया है। नियुक्ति प्रणाली में सुधार हेतु अनेकों कदम उठाए गए, इंटरव्यू की प्रथा समाप्त कर दी गई, हिंदी और अंग्रेजी के अतिरिक्त 13 क्षेत्रीय भाषाओं में भी परीक्षा हो रहा है, और एसएससी पोर्टल में जाकर के एग्जामिनेशन सेंटर की चॉइस देने का भी प्रावधान उपलब्ध करवा दिया गया है, आंसर की को एक्सेस दिया गया है और ग्रीवंस पोर्टल पर दर्ज कराई जा सकती है। यदि यूपीएससी की बात करें तो दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए सेंटर ऑफ चॉइस का प्रावधान इंट्रोड्यूस किया गया है, और प्रतिभा सेतु यानी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के वो उम्मीदवार जो आखिरी चरण में किसी कारण असफल रहे उन्हें अपनी अनुकूलता से जॉब का ऑप्शन मिल सके। मिशन कर्मयोगी यानी नई जिम्मेवारी ग्रहण करने से पहले अपने आप को प्रशिक्षित किया जा सके।

इसके लिए अभी तक 1,72,00,000 यूजर्स अपना नाम रजिस्टर करवा चुके हैं। पब्लिक एग्जामिनेशंस में मैल प्रैक्टिसेस पर अंकुश लगाने हेतु सन 2024 में प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट लाया गया और इसी वर्ष 2026 में उसका अमेंडमेंट। प्रधानमंत्री जी, आपके द्वारा शुरू किए गए रोजगार मेला के सफल प्रयोग से प्रेरित होकर के अनेकों राज्य सरकारों ने भी अपने अपने

देशों में इस प्रकार के आयोजन प्रारंभ किए हैं। पिछले मात्र डेढ़ दो वर्षों के भीतर 6,79,000 से अधिक प्रदेश स्तर की नियुक्तियां हुई हैं। राजस्थान, बिहार, असम, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तराखंड, उड़ीसा, हरियाणा, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा आदि राज्यों में। गत 11 वर्षों में आपने रोजगार एवं जीविका के अनेकों विकल्प उपलब्ध करवाए हैं।

0: अपनी जीविका कमाने हेतु 2,72,00,000 याचिकाएं प्राप्त हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री जी, आज भी हर बार की तरह आपके द्वारा बटन दबाते ही एक साथ देश भर में 91,000 से अधिक नियुक्ति पत्र जारी कर दिए जाएंगे, जिसमें से 50% लगभग 26,000 का ताल्लुक फाइनेंस एंड रेवेन्यू सर्विसेज के साथ है। अंत में प्रधानमंत्री जी, केवल इतना ही कहना है कि आज जबकि हर योजना की कल्पना विकसित भारत के लक्ष्य को सामने रख करके की जाती है, तो ये एक सुखद संयोग है कि आज ये नौजवान जो आपके हाथों से नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे हैं, ये सरकारी नौकरी के माध्यम से राष्ट्र सेवा का संकल्प एक ऐसे समय में ले रहे हैं जबकि सारा देश सेवा संकल्प अभियान मना रहा है। इनके संकल्प को सिद्धि प्राप्त हो, भारतवर्ष को शीर्ष स्थान प्राप्त हो, इसी कामना से आपका एक बार पुनः धन्यवाद।
1: धन्यवाद माननीय मंत्री जी। आज पूरा विश्व तेजी से विकसित होते भारत की ओर उम्मीद और गौरव से देख रहा है। आज का ये रोजगार मेला भारत की विकास यात्रा में युवाओं के लिए नए अवसरों का संदेश लेकर आया है। इस अवसर पर प्रस्तुत है एक लघु फिल्म।
2: दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ती बड़ी इकॉनमी भारत, बीते 12 वर्षों से लगातार अपने सपनों, संकल्पों और सामर्थ्य के दम पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और भारत की हर उपलब्धि के केंद्र में है भारत के युवा और उनकी अटूट संकल्प शक्ति। और जब राष्ट्र सेवा का अवसर स्वयं सरकार में हो, तब संकल्प मिशन मोड में बदलता है। यही कारण है कि रोजगार मेला आज पारदर्शी, समयबद्ध भर्ती और युवा सशक्तिकरण का एक राष्ट्रीय अभियान बन चुका है। इसी कड़ी में एक बार फिर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 20वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। चयनित युवा गृह मंत्रालय, राजस्व विभाग, भारतीय रेल, स्वास्थ्य विभाग, वित्त मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, डाक विभाग तथा केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों में विभिन्न पदों पर सेवाएं देंगे। देश के कोने कोने से चुने गए ये युवा बनेंगे कहीं सुरक्षा की ढाल, कहीं स्वास्थ्य का भरोसा, कहीं बैंकिंग की गति, कहीं शिक्षा की नींव, कहीं रेल की रफ्तार, तो कहीं राजस्व प्रशासन के माध्यम से देश की ताकत। ये सभी कर्मयोगी बनेंगे विकसित भारत 2047 के अहम भागीदार।
3: विकसित भारत की यात्रा में युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। इतना ही नहीं, विकसित भारत का सबसे बड़ा लाभार्थी भी मेरे देश का युवा है और इसलिए हमें विकसित भारत के लक्ष्य को युवाओं के साथ जोड़ करके आगे बढ़ाना है।
2: टेक्नोलॉजी आधारित सिस्टम, निष्पक्ष चयन और मातृभाषा में परीक्षा की सुविधा ने हर क्षेत्र और आर्थिक पृष्ठभूमि से आने वाले युवाओं के लिए अवसरों का दायरा बढ़ा दिया है। साथ ही सरकारी नौकरी में चयनित युवा आज के समय की जरूरत के हिसाब से बेहतर भूमिका निभा सके, इसीलिए मिशन कर्मयोगी के आई गॉट प्लेटफॉर्म पर 1.7 करोड़ से अधिक लर्नर्स और 8 करोड़ से अधिक कोर्स कम्प्लीशंस हर कर्मचारी को फ्यूचर रेडी, सक्षम और सिटीजन सेंट्रिक बना रहे हैं। भारत सरकार का हर नया कर्मयोगी ईमानदारी, दक्षता और सेवा के साथ विकसित भारत की आर्थिक नींव को और मजबूती देगा, क्योंकि जब युवा कर्तव्य से जुड़ता है, राष्ट्र निर्माण की शक्ति और बढ़ती है। रोजगार मेला, नियुक्ति से राष्ट्र निर्माण तक।

0: मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करती हूं कि रोजगार मेले के इस अवसर पर अपने आशीर्वचनों से हम सबको अनुग्रहित करें।
1: मेरे प्यारे युवा साथियों, देश में त्योहारों का समय शुरू हो चुका है। इन खुशियों के बीच आज का दिन हजारों परिवारों के जीवन में एक नई खुशी लेकर आया है। आज देश के 51,000 से अधिक युवाओं को सरकारी सेवा के लिए नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं। आज आप जिस मुकाम पर पहुंचे हैं उसके पीछे आपकी मेहनत तो है ही, साथ ही आपके माता पिता और आपके परिवारजनों की भी तपस्या है। मैं आप सभी युवा साथियों को और आपके परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। जीवन की इस नई शुरुआत के लिए आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज आप सभी एक ऐसे समय में भारत सरकार से जुड़े हैं जब देश एक बहुत बड़े लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है, और ये लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनाने का। इसमें आप जैसे युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। सरकार में रहते हुए आपको हर वो निर्णय लेना है जो विकसित भारत के अभियान को, आत्मनिर्भर भारत के अभियान को निरंतर सशक्त करे। युवा होने के नाते विशेष तौर पर अन्य युवाओं के प्रति आपकी विशेष जिम्मेदारी है। आज आप देख रहे हैं हमारे युवाओं के टैलेंट और स्किल्स ने पूरी दुनिया का भरोसा जीता है। दुनिया को हमारे इनोवेटर्स, हमारे एंटरप्रेन्योर्स और हमारी युवा शक्ति से बहुत उम्मीदें हैं। अभी कुछ दिन पहले ही ब्रिक्स समिट संपन्न हुई। भारत का प्रयास रहा है कि ब्रिक्स कोऑपरेशन केवल सरकारों तक सीमित न रहे। हमारे एंटरप्रेन्योर्स, हमारे किसान, हमारी महिलाएं, हमारे युवा, हर कोई इस पार्टनरशिप का सक्रिय भागीदार बने। इसी सोच के साथ ब्रिक्स कनेक्ट और ब्रिक्स एमएसएमई कोऑपरेशन पोर्टल की भी पहल की गई है। साथियों, भारत ने बीते कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किए हैं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स एफटीए हमारे युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार बना रहे हैं। इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए नई पार्टनरशिप्स के रास्ते खुलते हैं, नए मार्केट्स के रास्ते खुलते हैं और हमारे युवाओं के लिए

करियर में नई पॉसिबिलिटीज बनती हैं। साथियों, बीते वर्षों में भारत सरकार का निरंतर जोर युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करने पर रहा है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, स्किल इंडिया मिशन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना या अप्रेंटिसशिप को बढ़ावा देने का प्रयास, हमारी कोशिश है कि युवाओं की पढ़ाई और उनकी स्किल्स बदलती इकोनॉमी की जरूरतों के साथ चले। जैसे एक उदाहरण है पीएम सेतु। इस योजना के माध्यम से 60,000 करोड़ रुपए के निवेश से 1,000 सरकारी आईटीआईस को आधुनिक बनाया जा रहा है। इसमें इंडस्ट्री की सीधी भागीदारी सुनिश्चित की गई है। साथियों, भारत के युवाओं के सामर्थ्य की एक और तस्वीर हमारे स्टार्टअप इकोसिस्टम में दिखाई देती है। भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है और भारत की स्टार्टअप स्टोरी अब केवल बड़े शहरों की कहानी नहीं है। आज करीब आधे रिकॉग्नाइज स्टार्टअप्स टीयर टू और टीयर थ्री शहरों में है। यानी आज गांव, कस्बे और छोटे शहर का युवा भी भारत की नई इकोनॉमी में अपनी भूमिका बड़ी बना रहा है। छोटे शहरों के हमारे युवा अपने आइडियाज पर काम कर रहे हैं, नई कंपनीज बना रहे हैं और अपने साथ दूसरे युवाओं के लिए भी रोजगार के नए अवसर तैयार कर रहे हैं। साथियों, हमारा प्रयास है कि प्राइवेट सेक्टर में भी रोजगार के नए अवसर तेजी से बढ़ें। इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना शुरू की गई है। इस योजना पर करीब 1,00,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इस योजना की मदद से करीब 2 करोड़ युवाओं को पहली बार वर्क फोर्स का हिस्सा बनने का मौका मिलेगा। सरकार द्वारा इस योजना के तहत पहली बार नौकरी पाने वाले युवाओं का 15,000 रुपये तक का इंसेंटिव भी दिया जा रहा है। नए रोजगार पैदा करने वाले एम्प्लॉयर्स को भी सरकार प्रोत्साहन दे रही है। यानी देश में रोजगार बढ़ाने के लिए सरकार हर मोर्चे पर काम कर रही है। साथियों, युवाओं के लिए नए अवसर तभी बनते हैं जब देश की इकोनॉमी आगे बढ़ती है, जब इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, नए उद्योग लगते हैं और नए सेक्टर्स का विस्तार होता है। आज भारत तेजी से ग्रो करने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था है। इस फाइनेंशियल ईयर की पहली तिमाही में भारत की ग्रोथ रेट 7.8% रही है। इन्वेस्टमेंट में करीब 12% की बढ़ोतरी हुई है। रेटिंग एजेंसियां भारत की रेटिंग सुधार रही है और ये प्रगति ऐसे समय में हो रही है जब दुनिया अनेक अनिश्चितताओं से गुजर रही है। भारत की इस ग्रोथ के पीछे बीते वर्षों के रिफॉर्म्स का बड़ा योगदान है। आपको अपने कार्यकाल में निरंतर रिफॉर्म्स को और गति देनी है। टैक्स और कंप्लायंसेस को सरल बनाना हो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाना हो, एजुकेशन और स्किलिंग में रिफॉर्म हो या नए सेक्टर्स को इनोवेशन के लिए खोलना हो या ईज ऑफ लिविंग की बात हो, हर स्तर पर देश में रिफॉर्म एक्सप्रेस का लगातार फुल स्पीड में चलना

जरूरी है और सरकारी कर्मचारी होने के नाते वर्तमान और आने वाले वर्षों में इसमें आप सभी की बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। साथियों, मैंने कुछ दिन पहले कहा था, सूरज हमारा हो, समंदर भी हमारा हो, सूरज हमारा हो, समंदर भी हमारा हो, नाव हमारी हो, नाव हमारी हो, नाविक भी हमारा हो, लहरों पर विजय लिखे, लहरों पर विजय लिखे, वो हौसला हमारा हो। आज भारत का युवा इसी हौसले के साथ आगे बढ़ रहा है। अब आप सभी की भारत सरकार में रहते हुए ये जिम्मेदारी है कि देश के युवाओं की आकांक्षाओं को समझते हुए आप अपने काम को बखूबी निभाएं। मेरा फ्री आग्रह होगा, आपका हर निर्णय, हर फाइल पर किया गया सिग्नेचर युवा एस्पिरेशंस को आगे बढ़ाने वाला होना चाहिए। आपको अपने कार्यकाल में देखना होगा, युवाओं के रास्ते की बाधाएं हटे, उनके आइडियाज को आगे बढ़ाने का अवसर मिले, इनोवेशन से इन्वेस्टमेंट बढ़े और इन्वेस्टमेंट से एम्प्लॉयमेंट के नए अवसर बने। साथियों, अब आप स्वयं सरकारी व्यवस्था का हिस्सा बनना जा रहे हैं, इसलिए आप

0: देश के किसी नागरिक को सहनी न पड़े ये काम आपको सरकारी व्यवस्था में आते ही करना चाहिए। साथियों, आज देश में हर क्षेत्र में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। आप लगातार सीखते हुए यहां तक पहुंचे हैं, अब यहां से निरंतर सीखते रहने की एक नई यात्रा शुरू हो रही है। आपको लगातार अपनी स्किल्स को बेहतर करना है, नई टेक्नोलॉजी और नए सिस्टम को समझना है। मिशन कर्मयोगी इसी उद्देश्य को पूरा करने में आपकी मदद करता है। आई गॉड कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर आज 1,70,00,000 से अधिक सरकारी कर्मचारी जुड़ चुके हैं और आप जैसे नए साथियों के लिए कर्मयोगी प्रारंभ को विशेष रूप से तैयार किया गया है। आप जितना खुद को बेहतर बनाएंगे उतना ही बेहतर देश के नागरिकों की सेवा कर पाएंगे। साथियों, आपको एक और बात हमेशा याद रखनी है, सरकार की असली ताकत देश के नागरिकों का विश्वास होता है। आप किसी भी मंत्रालय में हो, किसी भी विभाग में हो, आपका काम किसी न किसी रूप में देश के सामान्य नागरिक के जीवन को छुएगा। किसी बुजुर्ग की पेंशन आपके काम से आगे बढ़ेगी, किसी विद्यार्थी की स्कॉलरशिप आपकी जिम्मेदारी से जुड़ी होगी, किसी किसान को मिलने वाली सुविधा आपके डिपार्टमेंट से हो जाती होगी। हो सकता है किसी नागरिक के लिए आप ही सरकार का चेहरा हो। आपका व्यवहार, आपकी संवेदनशीलता, आपकी एफिशिएंसी, आपकी ईमानदारी, इन सब से तय होगा कि उस नागरिक का सरकार के साथ अनुभव कैसा रहता है। इसलिए साथियों, सरकारी सेवा में हमारा मंत्र होना चाहिए, नागरिक देवो भव, नागरिक देवो भव, नागरिक की सेवा राष्ट्र की सेवा है। आपकी सफलता तब और बड़ी होगी जब आपके काम से किसी नागरिक का जीवन आसान होगा। मुझे विश्वास है आप जहां भी रहेंगे, जिस भी विभाग में रहेंगे, कर्तव्य और सेवा भाव से अपने दायित्व को निभाते रहेंगे। मैं एक बार फिर आप सभी को बधाई देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी है, अभी आप सुन रहे थे 20वें रोजगार मेले के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का संबोधन।
2: मैंने

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी संगठनों में चयनित 51,000 युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नियुक्ति पत्र सौंपे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने नवनियुक्त अभ्यर्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि विकसित भारत बनाने में युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है।
1: आज आप सभी एक ऐसे समय में भारत सरकार से जुड़े हैं जब देश एक बहुत बड़े लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है, और ये लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनाने का। इसमें आप जैसे युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। सरकार में रहते हुए आपको हर वो निर्णय लेना है जो विकसित भारत के अभियान को, आत्मनिर्भर भारत के अभियान को निरंतर सशक्त करे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। ये रोजगार मेला देश भर के 45 स्थानों पर आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा है कि प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन में भारत का योगदान वैश्विक औसत के आधे से भी कम है। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन पर ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में भारत ने पर्यावरण से संबंधित हर क्षेत्र में असाधारण प्रगति की है।
1: प्रकृति और पर्यावरण के विषय पर सदियों तक भारत ने एक तरह से विश्व का मार्गदर्शन किया है। अपने उस वैचारिक कमिटमेंट को लेकर, अपने सांस्कृतिक अनुभवों को आधार बनाकर भारत अब आधुनिक क्लाइमेट चैलेंजेस के समाधान भी दे रहा है, और साथ ही भारत मानवता के सामूहिक प्रयासों के लिए आह्वान भी कर रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया के अन्य देशों के साथ मिलकर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत का प्रमुख ध्यान नवीकरणीय ऊर्जा पर रहा है और इसने पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
1: हम दुनिया को साथ लेकर पर्यावरण सुरक्षा के नए मापदंड स्थापित कर रहे हैं। वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड की सोच हो या इंटरनेशनल सोलर अलायंस CDRI, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, मिशन लाइफ, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, ऐसा हरेक मंच क्लाइमेट और एनवायरमेंट पर भारत के डेडिकेटेड कमिटमेंट्स का प्लेटफॉर्म बन रहा है।
0: इस अवसर पर भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि पर्यावरण संबंधी न्यायाधिकरणों, नियामक तंत्रों और अनुपालन ढांचों के अस्तित्व में आने से बहुत पहले ही देश में पृथ्वी संरक्षण का विचार मौजूद था। इस अवसर पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेन्द्र यादव ने कहा कि पर्यावरण के प्रति भारत का दृष्टिकोण उसकी प्राचीन सभ्यतागत विचारधारा की गहराई में निहित है, जो पृथ्वी को संपत्ति नहीं बल्कि एक साझा विरासत और पवित्र धरोहर मानता है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के दूसरे चरण में ग्रामीण विकास मंत्रालय अगले महीने से अधिकांश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 34,000 ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देना शुरू करेगा। पहले चरण में बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु सहित 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशिक्षण बैच शुरू करने की तैयारियों की समीक्षा की गई। भारत ने नेपाल को राहत सामग्री की एक और खेप भेजी है। इसमें दवाएं, फॉरेंसिक सामग्री, टेंट, हाइजीन किट, स्लीपिंग बैग और अन्य जरूरी चीजें शामिल हैं। नेपाल को बाढ़ त्रासदी से उबरने में सहायता के लिए राहत सामग्री ले जाने वाला ये वायुसेना का 9वां विमान था। पिछले महीने नेपाल में भीषण बाढ़ आई थी जिससे जान माल का काफी नुकसान हुआ। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत नेपाल को सहायता करना जारी रखेगा। भारत ने सुरक्षा परिषद में अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करने की अपनी मांग दोहराई है और कहा है कि वाणिज्यिक समुद्री आवाजाही भू राजनीतिक तनाव का निशाना नहीं बननी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने बृहस्पतिवार को परिषद में कहा कि समुद्री आवाजाही के अधिकारों पर जबरदस्ती, धमकियों, गैरकानूनी प्रतिबंधों का मनमाने दखल का असर नहीं पड़ना चाहिए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. Prime Minister Narendra Modi today distributed more than 51,000 appointment letters to newly appointed youth in various government organizations at the 20th Rozgar Mela this afternoon through video conferencing. Speaking on the occasion, Mr. Modi said that free trade agreements are opening new doors of opportunity for the country's youth. He said such trade agreements paved the way for new partnerships and markets for countries' entrepreneurs and create new career possibilities for the youth. He said the talent and skills of country's youth have won the trust of the entire world.
1: आज भारत तेजी से ग्रो करने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था है. इस फाइनेंशियल ईयर की पहली तिमाही में भारत की ग्रोथ रेट 7.8% रही है. इन्वेस्टमेंट में करीब 12% की बढ़ोतरी हुई है. रेटिंग एजेंसियां भारत की रेटिंग सुधार रही है और ये प्रगति ऐसे समय में हो रही है जब दुनिया अनेक अनिश्चितताओं से गुजर रही है. भारत की इस ग्रोथ के पीछे बीते वर्षों के रिफॉर्म्स का बड़ा योगदान है.
2: On the occasion, Minister of State for Personnel, Public Grievances and Pensions, Dr. Jitendra Singh said, an assessment of employment generation and recruitment through Rozgar Mela has shown that there has been a significant increase in government appointments along with a greater transparency. Prime Minister Narendra Modi has said that India's contribution to per capita carbon emissions is less than half of global average, inaugurating the International Conference on the Future of Environment and Climate Dynamics in New Delhi today. Mr. Modi highlighted that India is the only country in the G20 that has successfully fulfilled the commitments made at the conference of the parties 21 summit in Paris ahead of schedule. The Prime Minister said, over the past 12 years, India has made extraordinary progress in every field related to the environment.
1: कार्बन एमिशन की जिम्मेदारी गलत तरीके से विकासशील देशों पर डाली जाती रही है, जबकि ऐतिहासिक सच्चाई ये है, आज भी प्रति व्यक्ति कार्बन एमिशन में भारत का योगदान ग्लोबल एवरेज के आधे से भी कम है. विकसित देशों में भारत की तुलना में 6 गुना ज्यादा प्रति व्यक्ति कार्बन एमिशन हो रहा है. भारत ये तथ्य मजबूती के साथ वैश्विक मंचों पर रखता है.

वक्त हो चला है 1:57 आकाशवाणी दिल्ली का ये एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम है कलाकार बेमिसाल और कलाकार बेमिसाल में मैं संगीता हूँ आप सभी के साथ। दोस्तों, हिंदी फिल्मों की दुनिया में महेश भट्ट का नाम एक ऐसे फिल्मकार के तौर पर लिया जाता है जिसने अपनी फिल्मों में जिंदगी को बहुत करीब से देखा। रिश्ते, प्यार, तन्हाई, परिवार, टूटन और इंसान के अंदर चलने वाली हलचल, ये सब उनके सिनेमा का हिस्सा रहे। 20 सितंबर 1948 में मुंबई में जन्म हुआ महेश भट्ट का और 1974 में मंजिलें और भी हैं से बतौर निर्देशक उन्होंने अपना फिल्मी सफर शुरू किया। शुरुआत आसान बिल्कुल नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई। उनकी खास बात थी कि वो चमक दमक के पीछे भागने के बजाय इंसान की कहानी को कैमरे के सामने लाते थे और शायद इसी वजह से उनकी फिल्मों में हमें पर्दे पर किरदार कम और अपने आसपास के लोग ज्यादा नजर आते हैं। कल यानी 20 तारीख को उनका जन्मदिन है, हम उन्हें जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं।

दोस्तों, एफएम गोल्ड की तरफ से एक बार फिर से हम महेश भट्ट को उनके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। महेश भट्ट के सिनेमा की एक दिलचस्प बात यह है कि उनकी कई कहानियों में उनकी अपनी जिंदगी की झलक मिलती है। अर्थ हो, डैडी हो या जख्म जैसी फिल्मों में निजी

रिश्तों और परिवार से जुड़े अनुभवों की छाप दिखाई देती है। 1982 के अर्थ में शादी, रिश्ते और एक औरत के अपने पैरों पर खड़े होने की कहानी थी फिर सारांश आई, जिसमें बेटे को खो चुके माता पिता के दर्द और जिंदगी को दोबारा समझने की कोशिश दिखाई देती है। यानी महेश भट्ट की कहानियां सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं है, वो अक्सर दर्शक को रोककर पूछती थीं, रिश्तों के बीच इंसान खुद कहां खड़ा है।

कलाकार बेमिसाल और कलाकार बेमिसाल में आज हम याद कर रहे हैं निर्माता निर्देशक महेश भट्ट को। महेश भट्ट को सिर्फ गंभीर फिल्मों का निर्देशक कहना भी ठीक नहीं होगा। उनके सफर में एक तरफ अर्थ, सारांश, डैडी और जख्म जैसी फिल्में हैं तो दूसरी तरफ आशिकी है, दिल है कि मानता नहीं, सड़क और हम है राही प्यार के जैसी फिल्में भी हैं। यानी कि वो एक ही तरह का सिनेमा नहीं रच रहे थे। कभी रिश्तों की उलझन दिखाई, कभी नौजवान दिलों की मोहब्बत, कभी परिवार की कहानी तो कभी समाज के मुश्किल सवाल। 90 का दशक तो उनके करियर का ऐसा दौर था जब उनकी फिल्में लगातार आती रहीं और उनके साथ जुड़े गीत संगीत ने भी लोगों के दिल में खास खास जगह बनाई।

कार्यक्रम है कलाकार बेमिसाल, और आज कलाकार बेमिसाल में हम महेश भट्ट को याद कर रहे हैं। महेश भट्ट के फिल्मी सफ़र में 1990 के साल की अगर बात करें तो ये ख़ास जगह रखता है। आशिकी ने राहुल रॉय और अनु अग्रवाल को घर घर में पहचान दी, और उफ नदीम श्रवण का संगीत क्या कहा जाए, आज भी दिल को छूता है। उस दौर में आशिकी के गीतों ने जिस तरह से लोगों के बीच अपनी जगह बनाई वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। इसके बाद दिल है कि मानता नहीं, आमिर खान और पूजा भट्ट की जोड़ी और फिल्म के गीतों ने इसे भी दर्शकों की पसंद बना दिया। यानी महेश भट्ट ने ये तो समझ लिया था कि कहानी के साथ साथ अगर संगीत दिल को छू जाए तो फिल्म का असर और भी गहरा हो जाता है। उनकी फिल्मों के गीत सिर्फ बीच में आने वाला हिस्सा नहीं थे, कई बार वो कहानी के जज्बात को आवाज़ देते थे, कई बार वो कहानी को आगे बढ़ाने का काम करते थे। चलिए हम आपको एक और खूबसूरत सा गीत सुनाते हैं। फिल्म है फिर तेरी कहानी याद आई।

कार्यक्रम कलाकार बेमिसाल और कलाकार बेमिसाल में आज हम याद कर रहे हैं महेश भट्ट को और उनके फिल्मी सफ़र की हम बात कर रहे हैं। महेश भट्ट के फिल्मी सफ़र की एक और ख़ास बात का जिक्र करना बहुत ज़रूरी है, वो है नए कलाकारों पर भरोसा करना। सारांश में अनुपम खेर को एक बेहद मुश्किल किरदार दिया उन्होंने और अनुपम खेर ने भी उसे यादगार बना दिया। आशिकी ने राहुल रॉय और अनु अग्रवाल को रातों रात लोकप्रिय कर दिया। पूजा भट्ट ने भी

के साथ काम करते हुए अपनी अलग पहचान बनाई। लेकिन महेश भट्ट का काम सिर्फ नए चेहरों को लॉन्च करने तक सीमित नहीं रहा, वो ऐसे कलाकारों और संगीतकारों के साथ भी काम करते रहे जिन्हें उस समय नई पहचान की जरूरत थी। बाद में विशेष फिल्म के जरिए उन्होंने निर्माता के तौर पर भी कई प्रतिभाओं को मौका दिया, यानी कैमरे के पीछे उनकी एक और भूमिका थी नई आवाजों को सुनना और उन्हें अपनी जगह बनाने का मौका देना।

आज हम महेश भट्ट को याद कर रहे हैं कार्यक्रम कलाकार बेमिसाल में, और महेश भट्ट के काम को सम्मान भी मिला, उन्हें कई जो है फिल्म फेयर पुरस्कार मिले, उन्हें राष्ट्रीय अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। लेकिन निर्देशन के साथ साथ वो निर्माता भी रहे। अपने भाई मुकेश भट्ट के साथ मिलकर उन्होंने विशेष फिल्म्स के जरिए कई कामयाब फिल्में बनाई, जिसमें राज की बात कर सकते हैं, जिस्म है, मर्डर है, गैंगस्टर है, इस तरह की फिल्में रहीं जिसमें संगीत केंद्रित सिनेमा को उन्होंने जगह दी। महेश भट्ट के फिल्मी सफर को देखें तो इसके कई रंग दिखाई देते हैं, जहां संघर्ष है, शोहरत है, कामयाबी है, विवाद है, गंभीर फिल्में हैं, रोमांस है और संगीत से भरी हुई कहानियां हैं। लेकिन इन सब के ऊपर है उनकी अपनी एक आवाज। वो एक ऐसे फिल्मकार रहे जिन्होंने बार बार इंसान के रिश्तों और उसके अंदर की दुनिया को अपनी कहानियों का हिस्सा बनाया। 1974 से निर्देशन में शुरू हुआ ये सफर आगे चलकर लेखन, निर्माण और टेलीविजन तक पहुंचा। 90 का दशक उनकी लोकप्रियता का वो दौर रहा और बाद के वर्षों में उन्होंने निर्देशन से ज्यादा फिल्म निर्माण पर ध्यान दिया। तो फिल्म पापा कहते हैं से ये खूबसूरत गीत आपके लिए।

उसके। फिलहाल वक्त हो चला है आपसे इजाजत लेने का, तो संगीता को इजाजत दीजिए। आप बने रहिए एफएम गोल्ड के साथ, अब भी आप सुनेंगे उर्दू में समाचार और कार्यक्रमों का सिलसिला तो चलता रहेगा। नमस्कार।

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं हबीब रहमान। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज़ादाना तिजारती मुआहदे मुल्क के नौजवानों के लिए नए इम्कानात पैदा कर रहे हैं। उन्होंने 20वीं रोजगार मेले के दौरान नौजवानों में 51,000 से ज्यादा तकर्रुनामे में तकसीम किए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कार्बन इखराज में भारत का फीकस हिस्सा दुनिया के औसत हिस्से के निस्फ से भी कम है। उन्होंने वाजे किया कि भारत G20 का ऐसा वाहिद मुल्क है जिसने COP21 समिट के दौरान किए गए वादों को वक्त से पहले पूरा किया है। मरकजी हुकूमत दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना 2M के तहत ज्यादातर रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के 34,000 देही नौजवानों को तरबियत देगी। भारत ने अद्वियात और फोरेंसिक सप्लाईज समेत नेपाल को 11 टन राहती साजो सामान की खेप रवाना की है। अक्वामे मुत्तहिदा ने पाकिस्तान को अफगान पनाहगुजीनों को जबरी तौर पर मुल्क बदर करने से मुतालिक खबरदार किया है। माहिरीन ने भी पाकिस्तान के तिब्बी इदारों से अफगान तलबा को निकालने से मुतालिक हुक्मनामे पर तशवीश का इजहार किया है। मशहूर गुलकार, कंपोजर और सकाफती शख्सियत जुबिन गर्ग को उनकी पहली बरसी पर आसाम में याद किया जा रहा है। और एशियाई खेल 2026 का 20वां एडिशन आज दोपहर जापान में शुरू होगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 20वें रोजगार मेले में हुकूमत के मुख्तलिफ महकमों में नए मुकर्रर किए नौजवानों को 51,000 से ज्यादा तकर्रुनामे तकसीम किए। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि आज़ादाना तिजारती मुआहदों से मुल्क के नौजवानों के लिए नए मौके पैदा हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस तरह के मुआहदे मुल्क के सनअतकारों के लिए नई शराकतदारियों और बाजारों की राह हमवार करते हैं और नौजवानों के लिए रोजगार के नए इम्कान तश्कील देते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क के नौजवानों के टैलेंट और उनकी सलाहियतों ने पूरी दुनिया का भरोसा जीता है।
1: आज भारत तेजी से ग्रो करने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था है। इस फाइनेंशियल ईयर की पहली तिमाही में भारत की ग्रोथ रेट 7.8% रही है। इन्वेस्टमेंट में करीब 12% की बढ़ोतरी हुई है। रेटिंग एजेंसियां भारत की रेटिंग सुधार रही है और ये प्रगति ऐसे समय में हो रही है जब दुनिया अनेक अनिश्चितताओं से गुजर रही है। भारत की इस ग्रोथ के पीछे बीते वर्षों के रिफॉर्म्स का बड़ा योगदान है।
0: इस मौके पर अमले, अवामी शिकायत और पेंशन के वजीर मम्लकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि रोजगार मेले के जरिए रोजगार की तश्कील और तकर्रुरी के जायजे से जाहिर है कि सरकारी तकर्रुरियों में काबिल जिक्र इजाफा हुआ है। साथ ही इस अमल में ज्यादा शफाफियत आई है।

0: ने पाकिस्तानी हुकाम से अपील की है कि वह मुल्क बदर करने से पहले इस बात का पता लगाएं कि क्या मुल्क बदर किए जाने वाले अफराद को जुल्म व जबर, तशद्दुद या दीगर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों जैसे खतरात का सामना है। आज मायनाज गुलोकार, मौसीकार और सकाफती अहमियत के हामिल जुबीन गर्ग की पहली बरसी के मौके पर उनको याद किया जा रहा है। लाखों लोग जुबीन गर्ग की मौसीकी के दिलदादा हैं। आज रियासत भर में मुख्तलिफ तकरीबात और प्रोग्रामों का इनेकाद किया जा रहा है। 20वें एशियन गेम्स की शानदार इफ्तिताही तकरीब आज जापान के आइची नागोया के पालोमा मिजोहो स्टेडियम में भारतीय वक्त के मुताबिक दोपहर 2:30 बजे मुनाकिद होगी। आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज़ादाना तजारती मुआहदे मुल्क के नौजवानों के लिए नए इम्कानात पैदा कर रहे हैं। उन्होंने 20वें रोजगार मेले के दौरान नौजवानों में 51,000 से ज्यादा तकरीरनामे तकसीम किए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कार्बन अखराज में भारत का फी का हिस्सा दुनिया के औसत हिस्से के निस्फ से भी कम है। उन्होंने वाज़ह किया कि भारत G20 का ऐसा वाहिद मुल्क है जिसने COP21 समिट के दौरान किए गए वादों को वक्त से पहले पूरा किया। हुकूमत दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना 2M के तहत ज्यादातर रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के 34,000 देही नौजवानों को तरबियत देगी और एशियाई खेल 2026 का 20वां एडिशन आज दोपहर जापान में शुरू होगा। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: गुड आफ्टरनून, this is Akashwani and I am Anuja Kumar with the midday news. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says free trade agreements are opening new doors of opportunities for the country's youth. Distributes more than 51,000 appointment letters at 20th Rozgar Mela. Prime Minister Modi says India's contribution to per capita carbon emissions is less than half of global average. Highlights, India is the only country in G20 that fulfilled commitments made at COP21 ahead of schedule. Government to train 34,000 rural youth under Deen Dayal Upadhyay Grameen Kaushalya Yojana 2.0 across most states and union territories. India dispatches 11 tons of fresh relief material to flash flood recovering Nepal. UN warns Pakistan against forcibly deporting Afghan refugees, also raises concerns over a directive requiring medical institutions to remove Afghan students. Assam remembers iconic singer, composer and cultural figure Zubeen Garg on his first death anniversary. And 20th Asian Games to begin in Japan this afternoon. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today distributed more than 51,000 appointment letters to newly appointed youth in various government organizations at the 20th Rozgar Mela this afternoon through video conferencing. Speaking on the occasion, Mr. Modi said that in recent years, the central government has consistently focused on equipping the youth with the skills and opportunities needed to prepare for the future.
2: आज देश के 51,000 से अधिक युवाओं को सरकारी सेवा के लिए नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं। मैं आप सभी युवा साथियों को और आपके परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज आप सभी एक ऐसे समय में भारत सरकार से जुड़े हैं जब देश एक बहुत बड़े लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है और ये लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनाने का।
1: He said the government's endeavor has also been to ensure that the education and skills of the country's youth keep pace with the needs of the changing economy. Prime Minister Modi said the government is also working to rapidly expand employment opportunities in the private sector. He said with this objective, the Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana has been launched with an outlay of around 1 lakh crore. Prime Minister Modi said that India has signed free trade agreements with nearly 40 countries in the past few years, which is opening new doors of opportunity for the country's youth.
2: भारत ने बीते कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किए हैं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स FTA हमारे युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार बना रहे हैं। इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए नई पार्टनरशिप्स के रास्ते खुलते हैं।

0: शहरों के युवा देश की नई अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि रोजगार मेले के माध्यम से रोजगार सृजन और भर्ती के आकलन से पता चला है कि सरकारी नियुक्तियों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ी है। 20वां रोजगार मेला देश के 45 स्थानों पर आयोजित किया गया। नवनियुक्त युवा वित्त, रेल, गृह, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा रक्षा सहित भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्यभार संभालेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा पर्यटन राज्य मंत्री सुरेश गोपी और केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने आज केरलम के एर्नाकुलम में 2 स्थानों पर आयोजित रोजगार मेलों का उद्घाटन किया। ये मेले 20वें राष्ट्रव्यापी रोजगार मेले के अंतर्गत आयोजित किए गए। श्री चौधरी ने कहा कि लोगों के सामूहिक प्रयासों से वर्ष 2047 से पहले ही विकसित भारत का सपना साकार किया जा सकता है। श्री सुरेश गोपी ने कहा कि रोजगार राष्ट्र निर्माण के प्रति केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन में भारत का हिस्सा वैश्विक औसत के आधे से भी कम है। आज नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
1: कार्बन एमिशन की जिम्मेदारी गलत तरीके से विकासशील देशों पर डाली जाती रही है, जबकि ऐतिहासिक सच्चाई ये है आज भी प्रति व्यक्ति कार्बन एमिशन में भारत का योगदान ग्लोबल एवरेज के आधे से भी कम है। विकसित देशों में भारत की तुलना में 6 गुना ज्यादा प्रति व्यक्ति कार्बन एमिशन हो रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत ने पर्यावरण से संबंधित हर क्षेत्र में असाधारण प्रगति की है।
1: भारत G20 में इकलौता ऐसा देश है जिसने पेरिस में COP21 समिट में जो भी कमिटमेंट्स किए थे उन सारे कमिटमेंट्स को समय से पहले पूरा करके दिखाया है। नॉन फॉसिल फ्यूल, सोलर एनर्जी कैपेसिटी, कार्बन एमिशन पर रोकथाम, हर पैरामीटर पर भारत की परफॉर्मेंस दुनिया में आज सकारात्मक रूप से चर्चा का विषय है।
0: श्री मोदी ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए भारत अन्य देशों के साथ मिलकर लगातार काम कर रहा है।
1: हम दुनिया को साथ लेकर पर्यावरण सुरक्षा के नए मापदंड स्थापित कर रहे हैं। वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड की सोच हो या इंटरनेशनल सोलर अलायंस CDRI, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, मिशन लाइफ, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, ऐसा हर एक मंच क्लाइमेट और एनवायरमेंट पर भारत के डेडिकेटेड कमिटमेंट्स का प्लेटफॉर्म बन रहा है।
0: इस अवसर पर भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसमें सुधार करने तथा प्राणियों के प्रति करुणा रखने के प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्य के महत्व का उल्लेख किया। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि भारत की कुल स्थापित विद्युत क्षमता में अब गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों का योगदान 54% से अधिक है, जो पूर्व निर्धारित लक्ष्य से कहीं अधिक है। श्री यादव ने वनों, घास के मैदानों और आर्द्र भूमि के संरक्षण और पुनर्स्थापन के लिए भारत द्वारा किए जा रहे प्रयासों का भी उल्लेख किया।
2: भारत ने मैंग्रोव यानी समुद्र तटों पर उगने वाले पेड़ों और वनस्पतियों के संरक्षण के साथ साथ तटीय समुदायों की आजीविका मजबूत करने के लिए मिष्टी कार्यक्रम शुरू किया है। इसके तहत मैंग्रोव क्षेत्रों को फिर से विकसित करने, नए पौधे लगाने और स्थानीय लोगों की भागीदारी से पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ रोजगार के अवसरों को बढ़ावा दिया जा रहा है।
3: लाइवलीहुड एंड इकोलॉजिकल रेजिलियंस।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड और कर्नाटक उच्च न्यायालयों में 14

0: न्यायिक अधिकारियों को न्यायाधीश और अपर न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। विधि और न्याय मंत्रालय ने बताया कि ये नियुक्तियां भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद की गई हैं। निवेदिता अनिल शर्मा और निशा सहाय सक्सेना को दिल्ली उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इसके अलावा 5 न्यायाधीशों को दिल्ली उच्च न्यायालय का अपर न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, जबकि एक एक न्यायाधीश को जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के लिए नियुक्त किया गया है। मनोज प्रसाद, अखिल कुमार और राम शर्मा को झारखंड उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इसके अलावा 3 न्यायाधीशों को कर्नाटक उच्च न्यायालय का अपर न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने कहा है कि वर्तमान में विश्व के सेमीकंडक्टर डिजाइन कार्यबल का लगभग 20% हिस्सा भारत में है। श्री कृष्णन ने कहा कि सरकार ने डिजाइन प्रतिभा पर विशेष बल दिया है और लगभग 85,000 डिजाइन इंजीनियरों को प्रशिक्षित करने का कार्यक्रम जारी है। नई दिल्ली में सेमीकॉन इंडिया 2026 के दौरान उन्होंने कहा कि सरकार कौशल विकास के सभी पहलुओं को प्राथमिकता देगी, जिसमें सेमीकंडक्टर विनिर्माण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। भारत ने नेपाल को राहत सामग्री की एक और खेप भेजी है। इसमें दवाएं, फोरेंसिक सामग्री, टेंट, हाइजीन किट, स्लीपिंग बैग और अन्य जरूरी चीजें शामिल हैं। नेपाल को बाढ़ त्रासदी से उबरने में सहायता के लिए राहत सामग्री ले जाने वाला ये वायुसेना का 9वां विमान था। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत नेपाल को सहायता करना जारी रखेगा। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के दूसरे चरण में ग्रामीण विकास मंत्रालय अगले महीने से अधिकांश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 34,000 ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देना शुरू करेगा। पहले चरण में बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु सहित 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशिक्षण बैच शुरू करने की तैयारियों की समीक्षा की गई। मंत्रालय ने बताया कि अगले वर्ष 31 दिसंबर तक 3,57,000 से अधिक ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन सेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ सार्वजनिक सेवा को समर्पित 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन की इसी सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। युवाओं को राष्ट्र निर्माण से जोड़ने और देश सेवा का अवसर देने के लिए सरकार ने कई पहल की हैं। इन्हीं में से एक है अग्निपथ योजना। इस विशेष श्रृंखला में आज हम अग्निपथ योजना के अंतर्गत युवाओं को मिल रहे नए अवसरों के बारे में जानकारी दे रहे हैं।
1: युवाओं को देश की सेवा का अवसर देने के लिए सरकार ने वर्ष 2022 में अग्निपथ योजना शुरू की। इसके तहत सशस्त्र सेनाओं में शामिल होने वाले युवाओं को अग्निवीर कहा जाता है। अग्निवीर 4 वर्ष तक सेवा करते हैं और इस दौरान उन्हें सैन्य प्रशिक्षण, अनुशासन और विभिन्न कौशल का अनुभव मिलता है। उत्तराखंड की सैन्य परंपरा में युवाओं की सेना में सेवा की विशेष भूमिका रही है। अग्निपथ योजना के तहत राज्य के युवा भी भर्ती प्रक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं। इस वर्ष फरवरी और मार्च में चंपावत के बनबसा में आयोजित अग्निवीर भर्ती रैली में बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया। 4 वर्ष की सेवा पूरी होने के बाद प्रत्येक बैच के अधिकतम 25% अग्निवीरों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत सशस्त्र सेनाओं के नियमित कैडर में शामिल किए जाने का प्रावधान है। अन्य अग्निवीरों को सेवानिधि पैकेज और कौशल प्रमाण पत्र दिया जाता है। उत्तराखंड में सेवा मुक्त अग्निवीरों के लिए वर्ष 2025 में समूह गा की विभिन्न वर्दीधारी सेवाओं में 10% क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसमें पुलिस, अग्निशमन, कारागार, वन, आबकारी और सचिवालय रक्षक जैसे पद शामिल हैं। निर्धारित शर्तों के अनुसार उन्हें आयु सीमा और शारीरिक दक्षता परीक्षा में भी छूट का प्रावधान है। संतोष थपलियाल, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के वरिष्ठ वैज्ञानिक और विज्ञान सचिव श्री एम गणेश पिल्लई ने अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधारों पर आकाशवाणी से विशेष बातचीत की है।
2: इंडिया स्पेस प्रोग्राम,
3: भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम ने संचार, नौवहन, मौसम पूर्वानुमान, आपदा प्रबंधन और कृषि सहित राष्ट्रीय विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसरो, गगनयान, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, चंद्र अभियान और अन्य अत्याधुनिक तकनीकों पर काम कर रहा है।
2: प्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन एंड लूनर लैंडिंग।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने अफगान शरणार्थियों को जबरन उनके देश वापस भेजने पर पाकिस्तान को चेतावनी दी है और अधिकारियों से कहा है कि शरणार्थियों को निर्वासित करने से पहले ये आकलन किया जाना चाहिए कि क्या अफगानिस्तान में ऐसे लोगों को उत्पीड़न, यातना या अन्य गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों का खतरा है। विशेषज्ञों ने पाकिस्तान के चिकित्सा और दंत चिकित्सा संस्थानों को अफगान छात्रों को वापस भेजने के निर्देश पर भी चिंता व्यक्त की। रिपोर्ट के अनुसार 100 अफगान छात्र, जिनमें से 20 से 40 महिलाएं शामिल हैं, इससे प्रभावित हैं। असम के प्रसिद्ध गायक, संगीतकार और सांस्कृतिक हस्ती जुबिन गर्ग की आज पुण्यतिथि है। उनको श्रद्धांजलि देने के लिए राज्य में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 17 सितंबर से 3 दिन का जुबिन दिवस भी मनाया जा रहा है। जापान के आइची नागोया में 20वें एशियाई खेलों का उद्घाटन आज भारतीय समय के अनुसार दोपहर 2:30 बजे से पालोमा मिजुहो स्टेडियम में होगा। एशियाई खेल आज से 4 अक्टूबर तक चलेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मुक्त व्यापार समझौतों से देश के युवाओं के लिए अवसरों के नए द्वार खुल रहे हैं। श्री मोदी ने आज 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी संस्थानों में चयनित 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया और 20वें एशियाई खेलों का आज जापान के आइची नागोया में औपचारिक उद्घाटन होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

वक्त हो चला है 2:30 आकाशवाणी दिल्ली का ये एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 MHz पर। कार्यक्रम है संगीत.com और मैं संगीता हूँ आज आप सभी के साथ। तो मैंने सोचा कि इस कार्यक्रम की शुरुआत किस फिल्म के गीत से की जाए। दिल जाके अटक गया 1992 की फिल्म दीवाना पर। दीवाना का जो गीत हम आपको सुनाने जा रहे हैं, इसमें कुमार सानू की आवाज़ है, नदीम श्रवण का संगीत है। और एक मज़ेदार बात ये कि ये वो फिल्म थी जिसमें पहली बार शाहरुख खान ऋषि कपूर के साथ बड़े पर्दे पर नज़र आए थे। यानी एक तरफ ऋषि कपूर का रोमांटिक अंदाज था तो दूसरी तरफ उस सितारे की पहली दस्तक थी जो आगे चलकर हिंदी सिनेमा का एक बहुत बड़ा नाम बना।

वैसे इस फिल्म की अगर बात करें तो इस फिल्म के सारे ही गाने एक से बढ़कर एक हैं। दीवाना की बात कर रही हूँ मैं, और शाहरुख खान की क्या ज़बरदस्त एंट्री होती है इस फिल्म में। मुझे याद है अभी हाल फिलहाल में मैंने इस फिल्म को दोबारा देखा। अगली कौन सी फिल्म का गीत हम आपको सुनाने जा रहे हैं, वो फिल्म है राजा हिंदुस्तानी। और करिश्मा कपूर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनके अब तक के करियर का ये उनका पसंदीदा गाना है, तो मुझे लगता है कि जो उनका पसंदीदा गाना है वो हमारी भी पसंद है और हम उस गाने को ज़रूर सुनाएंगे। और उन्होंने एक ये भी कहा कि एक यंग लड़की के तौर पर जब वो इस गाने को परफॉर्म कर रही थी तो इमोशंस का पूरा रोलर कोस्टर महसूस होता था। तो जब भी हम कोई गीत को सुनते हैं तो ऐसा होता है ना कि उस फिल्म से जुड़ा कोई किस्सा याद आता है या फिर अपनी ही जिंदगी का कोई किस्सा याद आता है, है ना। चलिए सुनते हैं ये गीत।

फिल्म कहाँ देखी थी, किस शहर में देखी थी, कौन से सिनेमा हॉल में देखी थी। इस गाने को सुनते हुए मुझे याद आया कि मैंने इस फिल्म को कहाँ देखा था, बनारस में देखा था, सिनेमा हॉल में। और अब कौन सा गाना हम आपको सुनाने जा रहे हैं, ये फिल्म दिल तो पागल है और गाना ले गई ले गई, आशा जी की आवाज़ और उत्तम सिंह का संगीत। लेकिन इस गीत में एक छोटी सी शरारती हरकत सुनाई देती है और वो संयोग नहीं था। उत्तम सिंह ने एक इंटरव्यू में बताया था कि ले गई के बाद आशा जी ने खुद ये खास हरकत जोड़ने का सुझाव दिया था और ये एक छोटी सी अदा जो है वो इस गीत को खास बना ले जाती है। यानी कि इस गीत में, इस गाने में आशा जी सिर्फ गा नहीं रही थी बल्कि अपनी तरफ से थोड़ा सा रंग भी भर रही थी। तो चलिए सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत।

कुछ फिल्में ऐसी होती हैं ना जो सिर्फ फिल्में नहीं होती हैं बल्कि वो जादू होती हैं जिसके असर में आप ताज़िंदगी रहते हैं। और 90s की अगर एक और कलाकार की बात की जाए वो हैं सलमान खान, तो मुझे लगता है कि सलमान खान और SB बाला सुब्रमण्यम जैसे एक दूसरे के पूरक थे, क्योंकि 90s में उन्होंने उनकी जितनी भी फिल्में आईं SB बाला सुब्रमण्यम ने उनको आवाज़ दी, और SP बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ में सलमान की शरारत, मासूमियत और रोमांस इतना घुल गया था कि 90s के दर्शकों के लिए दोनों की आवाज़ और चेहरा लगभग एक दूसरे के पर्याय बन गए थे। और मुझे तो SP की आवाज़ बहुत ज़्यादा पसंद है।

संगीत। इस फिल्म के लिए यश चोपड़ा एक ऐसी आवाज ढूंढ रहे थे जो डर के हीरो शाहरुख खान की आवाज लगी, और तलाश खत्म हुई उदित नारायण पर। यानी इस फिल्म में एक तरफ शाहरुख का जुनूनी किरदार और दूसरी तरफ उदित की आवाज।

वक्त हो चला है आपसे इजाजत लेने का, तो संगीता को इजाजत दीजिए, जल्दी ही आपसे फिर मुलाकात होगी। लेकिन आपसे कहना यह है कि आप जुड़े रहिए एफएम गोल्ड के साथ, बने रहिए एफएम गोल्ड के साथ। सीमा वर्मा स्टूडियो में आ चुकी हैं और अभी आप सुनेंगे समाचार। कार्यक्रमों का सिलसिला तो चलता रहेगा, फिर मिलेंगे। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 20वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाने के लिए काम कर रही है। इसी उद्देश्य से करीब 1,00,000 करोड़ रूपये के परिव्यय के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना शुरू की गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पिछले कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते किए हैं, जिससे देश के युवाओं के लिए अवसरों के नए द्वार खुल रहे हैं।
1: भारत ने बीते कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किए हैं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA हमारे युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार बना रहे हैं। इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए नई पार्टनरशिप्स के रास्ते खुलते हैं और हमारे युवाओं के लिए करियर में नई पॉसिबिलिटीज बनती हैं।
0: कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि रोजगार मेले के माध्यम से रोजगार सृजन और भर्ती के आकलन से पता चला है कि सरकारी नियुक्तियों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता भी बढ़ी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन में भारत का हिस्सा वैश्विक औसत के आधे से भी कम है। आज नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत ने पर्यावरण से संबंधित हर क्षेत्र में असाधारण प्रगति की है। श्री मोदी ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए भारत अन्य देशों के साथ मिलकर लगातार काम कर रहा है।
1: हम दुनिया को साथ लेकर पर्यावरण सुरक्षा के नए मापदंड स्थापित कर रहे हैं। वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड की सोच हो या इंटरनेशनल सोलर अलायंस CDRI, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, मिशन लाइफ, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, ऐसा हर एक मंच क्लाइमेट और एनवायरनमेंट पर भारत के डेडिकेटेड कमिटमेंट्स का प्लेटफॉर्म बन रहा है।
0: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि भारत की कुल स्थापित विद्युत क्षमता में अब गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों का योगदान 54% से अधिक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड और कर्नाटक उच्च न्यायालयों में 14 न्यायिक अधिकारियों को न्यायाधीश और अपर न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। विधि और न्याय मंत्रालय ने बताया कि ये नियुक्तियां भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद की गई हैं। निवेदिता अनिल शर्मा और निशा सहाय सक्सेना को दिल्ली उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इसके अलावा 5 न्यायाधीशों को दिल्ली उच्च न्यायालय का अपर न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, जबकि एक एक न्यायाधीश को जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के लिए नियुक्त किया गया है। मनोज प्रसाद, अखिल कुमार और राम शर्मा को झारखंड उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इसके अलावा 3 न्यायाधीशों को कर्नाटक उच्च न्यायालय का अपर न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के दूसरे चरण में ग्रामीण विकास मंत्रालय अगले महीने से अधिकांश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 34,000 ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देना शुरू करेगा। पहले चरण में बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु सहित 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशिक्षण बैच शुरू करने की

0: तैयारियों की समीक्षा की गई। बिहार में 29 जिलों में 29 बहुउद्देशीय हाईटेक परीक्षा भवन बनाए जाएंगे। इससे विद्यार्थियों को बेहतर और सुरक्षित परीक्षा सुविधा उपलब्ध कराने तथा विद्यालयों में पठन पाठन की निरंतरता बनाए रखने में सुविधा होगी। संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने अफगान शरणार्थियों को जबरन उनके देश वापस भेजने पर पाकिस्तान को चेतावनी दी है और अधिकारियों से कहा है कि वे शरणार्थियों को निर्वासित करने से पहले ये आकलन किया जाना चाहिए कि क्या अफगानिस्तान में ऐसे लोगों को उत्पीड़न, यातना या अन्य गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों का खतरा है। 20वें एशियाई खेलों का उद्घाटन समारोह जापान के आइची नागोया में पालोमा मिजुहो स्टेडियम में चल रहा है। एशियाई खेल आज से 4 अक्टूबर तक चलेंगे। बैडमिंटन में पीवी सिंधु, भारोत्तोलन में मीराबाई चानू और निशानेबाजी में मनु भाकर भारत का नेतृत्व करेंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Prime Minister Narendra Modi today distributed more than 51,000 appointment letters to newly appointed youth in various government organizations at the 20th Rozgar Mela this afternoon through video conferencing. Speaking on the occasion, Mr. Modi said that in recent years, the central government has consistently focused on equipping the youth with the skills and opportunities needed to prepare for the future.
2: आज देश के 51,000 से अधिक युवाओं को सरकारी सेवा के लिए नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं। मैं आप सभी युवा साथियों को और आपके परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज आप सभी एक ऐसे समय में भारत सरकार से जुड़े हैं जब देश एक बहुत बड़े लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है और ये लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनाने का।
1: Prime Minister Modi said the government is also working to rapidly expand employment opportunities in the private sector. He said with this objective, the Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana has been launched with an outlay of around 1 lakh crore. The scheme is expected to enable nearly 2 crore young people to enter the workforce for the first time. Prime Minister Modi said that India has signed free trade agreements with nearly 40 countries in the past few years, which is opening new doors of opportunity for the country's youth. He said such trade agreements pave the way for new partnerships and markets for countries' entrepreneurs and create new career possibilities for the youth. Prime Minister Modi said that India is today the world's third largest startup ecosystem.
2: Bharat aaj duniya ka teesra sabse bada startup ecosystem hai aur Bharat ki startup story ab keval bade shaharon ki kahani nahi hai. Aaj kareeb aadhe रिकॉग्नाइज स्टार्टअप टीयर टू और टीयर थ्री शहरों में है, यानी आज गांव, कस्बे और छोटे शहर का युवा भी भारत की नई इकोनॉमी में अपनी भूमिका बड़ी बना रहा है।
1: The Prime Minister highlighted that young people from smaller cities are working on their ideas, founding new companies and creating employment opportunities for others. Prime Minister Narendra Modi has said that India's contribution to per capita carbon emissions is less than half of global average, inaugurating the International Conference on the Future of Environment and Climate Dynamics in New Delhi today. Mr. Modi said that developing countries have often been unfairly held responsible for carbon emissions.
2: Carbon emission ki zimmedari galat tarike se vikasshil deshon par dali jati rahi hai. जबकि ऐतिहासिक सच्चाई ये है, आज भी प्रति व्यक्ति कार्बन एमिशन में भारत का योगदान ग्लोबल एवरेज के आधे से भी कम है। विकसित देशों में भारत की तुलना में 6 गुना ज्यादा प्रति व्यक्ति कार्बन एमिशन हो रहा है। भारत ये तथ्य मजबूती के साथ वैश्विक मंचों पर रखता है।
1: President Draupadi Murmu has appointed 14 judicial officers as judges and additional judges of Delhi, Jammu and Kashmir, Ladakh, Jharkhand and Karnataka High Courts. The Ministry of Law and Justice said that the appointments have been made after consultation with the Chief Justice of India. Secretary, Ministry of Electronics and IT S. Krishnan today said that India currently accounts for nearly 20% of the world's semiconductor design workforce. He said that the government has placed substantial emphasis on design talent with an ongoing program to train approximately 85,000 design engineers. Talking to media on the sidelines of Semicon India 2026 in New Delhi, Mr. Krishnan said that the government will give priority to all aspects of skill development with a strong focus on semiconductor manufacturing. The grand opening ceremony of the 20th edition of the Asian Games 2026 has started at Paloma Mizuho Stadium in Aichi, Nagoya in Japan today. The Asian Games will run from today to 4th of October with more than 500 Indian athletes set to compete across 37 sports. And that is the end of this news bulletin.

0: सभी श्रोताओं को नमस्कार। पूर्वोत्तर डायरी के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कमल कुमार प्रजापति।
1: पूर्वोत्तर डायरी।
2: श्रोताओं, हम आपको सबसे पहले लिए चलते हैं असम। असम में निवेश और उद्योगों के विकास के प्रस्तावों को तेज गति देने के लिए सरकार ने अब प्रयास तेज कर दिए हैं। हम सभी जानते हैं कि पूर्वोत्तर भारत में असम निवेश और उद्योग का एक बहुत बड़ा केंद्र बनने जा रहा है। तो क्या ये प्रस्ताव रहे हैं और कैसे सरकार इन प्रस्तावों को तेज गति प्रदान कर रही है, इस रिपोर्ट में आपको विस्तार से सुनवाते हैं।
3: बैठक में अंबुजा सीमेंट्स, स्टार सीमेंट, डालमिया सीमेंट, अडानी पावर, SJVN ग्रीन एनर्जी, हिंदुजा ग्रुप, ग्रीनको एनर्जीज, NEEPCO और NLC इंडिया रिन्यूएबल्स जैसी कंपनियों से जुड़े प्रस्तावों की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों को परियोजनाओं के रास्ते में आने वाली अड़चनों को समयबद्ध तरीके से दूर करने के निर्देश दिए। उन्होंने सरकार और निवेशकों के बीच लगातार समन्वय बनाए रखने पर भी जोर दिया, ताकि परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाया जा सके। औद्योगिक गतिविधियों के लिए बेहतर बुनियादी ढांचे की जरूरत को देखते हुए लोक निर्माण विभाग को परियोजना स्थलों तक सड़क संपर्क मजबूत करने के निर्देश दिए गए। सरकार का उद्देश्य है कि सड़क या अन्य सुविधाओं की कमी के कारण निवेश से जुड़े काम प्रभावित न हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि एडवांटेज असम 2.0 के तहत किए गए निवेश वादों को धरातल पर उतारना सरकार की प्राथमिकता है। इससे राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ने, आर्थिक गतिविधियों को गति मिलने और लोगों के लिए लंबे समय तक नए अवसर तैयार होने की उम्मीद है। एडवांटेज असम 2.0 का आयोजन फरवरी 2025 में गुवाहाटी में किया गया था। इसके बाद मार्च 2026 में असम सरकार ने 69 संगठनों के साथ निवेश संबंधी समझौते किए थे, जिनमें करीब 1,67,000 करोड़ रुपए से प्रस्तावित निवेश और लगभग 1,00,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसरों का अनुमान लगाया गया था। निवेश प्रस्तावों की लगातार निगरानी और परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाने की कोशिशों के साथ असम औद्योगिक विकास, रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को नई गति देने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। निशा साहू की रिपोर्ट के साथ पूर्वोत्तर डायरी के लिए मैं विशेष शुक्ला।
2: श्रोताओं, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन 6 से 9 सितंबर तक पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्यों के दौरे पर रहे। तो पूर्वोत्तर भारत का उपराष्ट्रपति का ये दौरा कैसा रहा, आइए आपको विस्तार से इस रिपोर्ट में बताते हैं।
4: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने अपने 4 दिवसीय दौरे की शुरुआत असम से की। गुवाहाटी में उन्होंने गीतानगर कॉलेज के स्वर्ण जयंती समारोह और श्रीमंत शंकरदेव यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लिया। इसके बाद उन्होंने गुवाहाटी विश्वविद्यालय में विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की आधारशिला रखी और विद्यार्थियों, शिक्षकों तथा नागरिकों से संवाद किया।
5: इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट्स पॉसिबिलिटीज, बट इट इज द क्वालिटी ऑफ द टीचिंग दैट इज व्हाट ओनली टीचर्स एंड प्रोफेसर्स कैन शेप द स्टूडेंट in the right way. Learning, research and character building within those spaces that ultimately creates excellence. The real excellence is the efficiency of the students, the efficiency of the degree holders who are coming out of the institution. Assam today is witnessing remarkable phase of progress.

0: and transformation. Assam is doing much more than transformation. It is positioning itself as a confident, connected and aspirational state. As we move confidently towards the vision of our Honorable Prime Minister Narendra Modi's Viksit Bharat, our education institutions will be the most important engines of transformation. Degrees may open the doors, but character determines what you do after these doors have been opened for you.
1: शिलोंग में उन्होंने सार्वजनिक स्वागत और सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी भाग लिया।
2: मेघालय इज अ लैंड ऑफ इमेंस नेचुरल ब्यूटी, रिच कल्चरल हेरिटेज एंड अ वेरी वाइब्रेंट ट्रेडिशंस। द प्रोग्रेस ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इंटीग्रल टू द प्रोग्रेस ऑफ इंडिया। द प्रोजेक्ट्स बीइंग लॉन्च्ड टुडे रिफ्लेक्ट द स्ट्रांग पार्टनरशिप बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट ऑफ मेघालय। These projects are more than just investment in infrastructure. They represent the investments in the future of Meghalaya and the development of Meghalaya. Development must go hand in hand with the preservation of our own environment, culture and traditions. Meghalaya has shown how communities can live in close harmony with nature.

0: 8 सितंबर को उपराष्ट्रपति मणिपुर पहुंचे। इम्फाल में उन्होंने सैनिक स्कूल का दौरा किया, यहां युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की और कैडेटों से भी बातचीत की। उन्होंने विद्यार्थियों के साथ स्कूल के मेस में दोपहर का भोजन भी किया। कैडेटों को संबोधित करते हुए उन्होंने अनुशासन, साहस और नेतृत्व के महत्व पर जोर दिया।
1: Yes, Saini School Imphal enters into 56th year of journey. I believe this school must continue to look ahead with ambition. The world around you is changing rapidly. Artificial intelligence, space technology, biotechnology, cyber security, robotics and other emerging new science fields are creating opportunities that previous generations couldn't imagine even. Therefore, while you must preserve the timeless values of discipline, integrity and patriotism, you must also become adaptable, innovative and technically aware of the things. The official mission of Sainik School Imphal emphasizes the all-round development of cadets through academics, sports and co-curricular activities along with discipline, optimism, patriotism, high moral values and persistent hard work. These values should become habits and that will accompany you throughout your life.
0: मणिपुर के मोइरांग में उन्होंने ऐतिहासिक INA संग्रहालय और युद्ध स्मारक का दौरा किया। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय सेना के शौर्य और बलिदान को नमन किया और उस स्थान का भी दौरा किया जहां आजाद हिंद फौज ने भारत की धरती पर पहली बार तिरंगा फहराया था। उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को पुष्पांजलि अर्पित की। दौरे के अंतिम चरण में उपराष्ट्रपति अरुणाचल प्रदेश पहुंचे। ईटानगर में उन्होंने विधानसभा के विशेष सत्र में हिस्सा लिया और विधानसभा संग्रहालय का दौरा किया। इसके अलावा उन्होंने नेहरू राज्य संग्रहालय, नेदार नामलो और दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए डोनी पोलो मिशन स्कूल का भी दौरा किया। इस 4 दिन के दौरे में शिक्षा, संस्कृति, इतिहास, युवा और राष्ट्रीय एकता से जुड़े कई पहलुओं को प्रमुखता मिली है। पूर्वोत्तर डायरी के लिए मैं मुकेश कुमार बल।
2: श्रोताओं, अब हम जानते हैं कि किस तरह से पूर्वोत्तर भारत का राज्य मिजोरम HIV एड्स को लेकर विशेष अभियान से राज्य में विशेष जागरूकता के महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। तो आइए इस रिपोर्ट में जानते हैं मिजोरम के एक जिले की HIV एड्स से लड़ने की कहानी।

95 95 95 रणनीति के तहत पहला लक्ष्य है कि HIV से संक्रमित कम से कम 95% लोगों को अपनी स्थिति की जानकारी हो। दूसरा, संक्रमित लोगों में से 95% लोगों को एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी यानी ART मिलना और तीसरा, इलाज ले रहे 95% लोगों में वायरल लोड को नियंत्रित करना है।

0: लोगों के मोबिलाइजेशन एड्स सुरक्षा अभियान में इन तीनों लक्ष्यों के आधार पर जिलों का आकलन किया जाता है। तीनों मानक पूरे करने वाले जिलों को सुरक्षित श्रेणी दी जाती है। वहीं दो लक्ष्य हासिल करने वाले जिले सक्षम और एक या कोई लक्ष्य पूरा नहीं करने वाले जिले संघर्षशील श्रेणी में रखे जाते हैं। तीनों लक्ष्यों के साथ माँ से बच्चे में HIV संक्रमण का शून्य प्रसार हासिल करने वाले जिले को सुरक्षित प्लस दर्जा दिया जाता है। मिजोरम में यह अभियान फरवरी 2026 से सक्रिय रूप से चलाया जा रहा है। सैतुअल की इस उपलब्धि में गैर सरकारी संगठनों, चर्चों और सामुदायिक नेताओं का भी सहयोग महत्वपूर्ण रहा। इनके माध्यम से HIV जांच और जागरूकता गतिविधियों को बढ़ाने में मदद मिली। सैतुअल के उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जोथन पारी छकछुआक ने इस उपलब्धि को बनाए रखने के लिए लगातार जांच और जागरूकता पर जोर दिया। उन्होंने HIV से संक्रमित लोगों से ARTकी दवाएं नियमित रूप से लेने की अपील की। मिजोरम स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी के अनुसार अक्टूबर 1990 में राज्य में पहला मामला सामने आने के बाद से अब तक 34,930 HIV संक्रमित लोगों का मामला पता चला है। जुलाई 2026 तक 29,217 लोगों ने ARTI के लिए पंजीकरण कराया था, जिनमें से 26,382 ने उपचार शुरू कर दिया था। सैतुअल की यह उपलब्धि दिखाती है कि समय पर जांच, नियमित उपचार, जागरूकता और सामुदायिक सहयोग से HIV नियंत्रण के लक्ष्य हासिल किए जा सकते हैं। अब जिले के सामने इस प्रगति को बनाए रखने और आगे बढ़ाने की चुनौती है। पूर्वोत्तर डायरी के लिए मैं प्राची वाजपेयी।
1: श्रोताओं, अब हम आपको सफलता की एक ऐसी कहानी सुनवाते हैं जिसमें एक उद्यमी ने फूलों की खेती से अपनी आजीविका और रोजगार के नए अवसर खोले और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अपने मन की बात कार्यक्रम में भी उनकी इस प्रेरक कहानी का जिक्र किया। तो नागालैंड के इस व्यक्तित्व ने, इस उद्यमी ने कैसे फूलों की खेती से अपने जीवन में एक नया कीर्तिमान बनाया, अपने जीवन को एक नया मोड़ दिया, आइए आपको सुनवाते हैं।
2: वेसालू पूरो का संबंध एक किसान परिवार से है। बचपन से ही उन्होंने अपने माता पिता को खेतों में काम करते और घर के आसपास फूल उगाते देखा। पुणे से सोशल वर्क में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद उन्होंने 2013 में नागालैंड सरकार के भूमि संसाधन विभाग में काम शुरू किया। करीब 7 वर्षों तक उन्होंने गांवों में जाकर महिलाओं, स्वयं सहायता समूहों और किसानों को आजीविका से जुड़ा प्रशिक्षण दिया। इसी दौरान उनका जुड़ाव खेती से और गहरा हुआ। साल 2021 में उन्होंने फेक जिले के फुटसेरू में छोटे स्तर पर फूल उगाना शुरू किया। शादी, चर्च कार्यक्रमों, त्योहारों और सामाजिक आयोजनों में फूलों की बढ़ती मांग को देखते हुए उन्होंने इसे व्यावसायिक रूप देने का फैसला किया। शुरुआत में गुणवत्तापूर्ण बीज और पौध सामग्री हासिल करना, स्थानीय मौसम के अनुकूल किस्म चुनना और सही समय पर बुआई व कटाई करना उनके लिए चुनौती थी। इस दौरान ICSR कृषि विज्ञान केंद्र फेक और CSIR NEIST जोरहाट से मिले वैज्ञानिक मार्गदर्शन ने उनकी काफी मदद की। ICSR कृषि विज्ञान केंद्र ने उन्हें ग्लेडियोलस की उन्नत किस्म अर्का अमर के 6,000 कंद उपलब्ध कराए। वेसालू ने केवल 1/4 एकड़ जमीन पर इन्हें लगाया और करीब 5,400 बाजार योग्य फूलों की इंडिया तैयार की। इसे उन्हें 81,000 रुपए की सकल आय और करीब 52,000 रुपए का शुद्ध लाभ हुआ। इस सफलता के बाद वेसालू ने फूलों की खेती का विस्तार किया। आज उनके फार्म में हाइड्रेंजिया, पियोनी, डेल्फिनियम, स्टॉक, यूकेलिप्टस और ग्लेडियोलस समेत करीब 400 किस्मों के फूल उगाए जा रहे हैं। उनके उत्पाद नागालैंड के बाजारों के साथ साथ दिल्ली और मुंबई तक पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में वेसालू की यात्रा को इस बात का उदाहरण बताया कि एक छोटा सा शौक भी सही मेहनत और मार्गदर्शन के साथ नए अवसरों का रास्ता खोल सकता है।
3: कभी हमारा एक छोटा सा शौक जीवन में एक बड़ी संभावना का रास्ता खोल देता है। नागालैंड के फेक जिले की वेसालू पुरोजी की यात्रा भी कुछ ऐसी ही है। वेसालू जी किसान परिवार में पली बढ़ी। बचपन से उन्होंने अपने माता पिता को खेती करते देखा था और उन्हें खुद फूलों से बहुत लगाव। साल 2021 में उन्होंने इसी शौक के साथ छोटे स्तर पर फूल उगाने की शुरुआत की। धीरे धीरे उन्हें इसमें एक संभावना दिखाई देने लगी। उन्होंने देखा कि शादी विवाह हो या फिर अन्य त्योहार, फूलों की मांग हमेशा बनी रहती है।
2: वेसालू का फार्म अब सिर्फ फूलों की खेती तक सीमित नहीं है। यहाँ विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक भ्रमण भी आयोजित किए जाते हैं और खेती

0: के साथ उद्यमिता की संभावनाओं के बारे में जानकारी दी जाती है। उनका यह प्रयास ग्रामीण युवाओं और महिलाओं को व्यावसायिक खेती की ओर प्रेरित कर रहा है। फूलों के प्रति एक छोटे से शौक से शुरू हुई वेसालुपुरो की यात्रा आज नागालैंड में महिला उद्यमिता और आधुनिक कृषि की मिसाल बन चुकी है। वैज्ञानिक प्रशिक्षण, मेहनत और सही मार्गदर्शन के साथ उन्होंने खेती को आय और रोजगार के नए अवसर में बदला है। आसुनुओ की रिपोर्ट के साथ पूर्वोत्तर डायरी के लिए नेहा गोस्वामी, आकाशवाणी कोहिमा।
1: श्रोताओं, ये कार्यक्रम आपको निश्चित तौर पर पसंद आया होगा। आप अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचा सकते हैं। आप हमसे जुड़ने के लिए हमें ईमेल भेज सकते हैं, हमें व्हाट्सएप के माध्यम से अपना संदेश भेज सकते हैं और इस कार्यक्रम में सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। आलेख व संकलन कमल कुमार प्रजापति, प्रस्तुति सहायक दानिश जैदी।

मन भावन प्रोग्राम की शुरुआत तरन्नुम भरे लहजे में तो हो गई है, लेकिन आवाज के जरिए आपकी दोस्त सीमा वर्मा आप सभी का स्वागत करती है। शनिवार की दोपहर है साहब, और 3:26 हो गए हैं। स्वागत आप सभी का, और नंबर 9868686875 अपनी फरमाइशें हम तक इस नंबर से पहुँचाइए।

0: दुनिया बसाऊंगा तेरे घर के सामने, एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने।
1: वेल दोस्तों, घर बनाना एक शुरू से इंसान का सपना रहा है। कई बार माँ बाप की तरफ से गिफ्ट तो मिल ही जाता है, लेकिन अगर आपको खुद घर बनाना हो तो उसके लिए बड़ी जद्दोजहद तो करनी पड़ती है, लेकिन उस सपने को बिल्कुल साकार करना होता है और खुली आंखों से सपना देखना होता है। बहरहाल पहला गीत बिल्कुल आप तक पहुँच गया, और आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दूं कि आप कहाँ हैं और क्या सुन रहे हैं। ठीक साहब, एफएम गोल्ड 100.1 में एक बार फिर आप सभी का स्वागत। आपकी दोस्त सीमा वर्मा करती है। मनभावन प्रोग्राम है। 9868868753 नंबर है जिस पर आप हमें अपनी फरमाइश भेजेंगे। शनिवार का दिन है, कुछ खास आपको कहना है, कोई गीत याद आ रहा है, आज मूड ऑफ है, आज मूड ऑन है, आज आपके घर में कोई मांगलिक कार्य है, आज आप बहुत बिजी हैं या फिर कोई काम नहीं है करने को, आप इस नंबर से जुड़िए और अपनी फरमाइश हम तक पहुंचाइए और हम आपके जो मैसेज हैं जानते हैं कैसे लेंगे, ऐसे लेंगे। जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया जी, नमस्कार। एंजल हैं आपके साथ, सोनू है, तमन्ना भाटिया। बहुत शुक्रिया आपके संदेशे के लिए। इस तरह से हम आपके जो संदेशे हैं वो लेंगे। और मुंबई से हमारे पास अहमद भाई फूलवाले साहब हैं, इनका संदेशा आया है। इमरान अहमद साहब हैं, इनके साथ आमना है, और आसमा है, इनके साथ नसरीन भी हैं, और इकबाल साहब भी हैं, और पूरा का पूरा जो फूल वालों का जो परिवार है वो है। और ऐसा परिवार है जहाँ पर जो फूलों की महक है 24 घंटे आती होगी, है ना। अब एक और संदेशा हमने लेना है। अफरोज़ शेख साहब हैं, और इन्होंने कहाँ से हमें, बिहार से हमें संदेशा भेजा है। इसी तरह आप हमें अपने संदेशे भेजिए, और जैसे जैसे हमारी आँखें आपके संदेशा देखती चली जाएंगी, हम आप तक और आपके अपनों तक आपका संदेशा पहुँचाते चले जाएंगे। कस्बा बिलराम से, रुक जाइए, आप और टाइप कर रहे हैं, आपका नाम ही मैं ले रही हूँ। इरशाद अहमद शाह साहब हैं, शाहजहाँ बेगम हैं, इनके साथ मरियम हैं और जैनब हैं। बहुत शुक्रिया आपके संदेशे के लिए। अब यहाँ पर शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्कीन हैं, वीना मस्कीन हैं, आशीष राजा हैं, और चैतन्य हैं, मेघा हैं, इनके साथ चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, किशु रिधान खुराना है। आपके जो संदेश हैं हमें आ रहे हैं, एक बार मैं ये भी बता दूं कि जिन्होंने अभी अभी ट्यून इन किया है, नंबर है जी 9868868753 जिस पर आपको हमें अपना संदेशा भेजना है। और ये किसने लिखा है जी, महिंद्रा पार्क कैलाश चंद जी हैं, इनके साथ दिनेश साहब भी हैं। और अगर मैं ऐसे संदेशे पढ़ती रहूँगी तो बस फिर जो गीत हैं वो रह जाएंगे, तो मुझे लगता है कि अपनी बातों के बीचों बीच गीतों की दिलकश दखलअंदाजी होती रहनी चाहिए। और इसी वजह से अब आखिरी संदेशा, अभी गीत से पहले चंडीगढ़ से सतीश अनेजा साहब, बिमला अनेजा, और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपका मैंने नाम जो है वो पढ़ दिया है और आपको नमस्ते कह दिया है, तो फिर आप अपने बाकी के जो भाईजन हैं उनको मौका दीजिए कि उनका संदेशा भी हम ले।

0: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: वेलकम बैक जी, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड रेडियो स्टेशन 100.1 मेगाहर्ट्ज। और शनिवार की दोपहरी आपके साथ मैं सीमा वर्मा, मेरे साथ एक जादुई नंबर है जी जिस पर आप हमें व्हाट्सएप कर रहे हैं और अपनी जो फरमाइश है वो हम तक पहुंचा रहे हैं। हम

और घर में अगर आपकी पूरी छुट्टी की छुट्टी है तो फिर क्या बात है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोने को भी मन करता है, थोड़ा सुस्ताने को मन करता है, या कई बार कुछ छुट्टियां ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा बिजी होती हैं, इतना काम होता है कि पता ही नहीं चलता छुट्टी कब आई और कब चली गई। कुछ भी है, आप जी जुड़िए 9868 6886875 3। थोड़ी सी अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है तो एक बार फिर से नंबर सुन लीजिए, 9868 6887 5 3। इस पर अपनी आपने फरमाइश भेजनी है जी, और आपकी फरमाइश जो है वो हमने बिल्कुल लेनी है, और जिस तरह से हम अभी तक फरमाइशें ले रहे हैं, ले ही रहे हैं। सीमा जी, आप कहाँ से हमारा नाम कहते हैं? नांगलोई से आपने हमारा हमें कहा है जी, गीत चलाना है, लेकिन मैं वही आपका नाम ढूंढ रही हूँ, कहाँ गया आपका नाम। इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ कि गौरी शंकर जी हैं आप, इसीलिए कहती हूँ अपना नाम जो है वो एक के नीचे ने एक आप लिखेंगे ना तो थोड़ी सी सुविधा हमें हो जाती है। बहरहाल चलिए, आपने अपना मैसेज तो कर दिया है, गीत की फरमाइश भी की है। छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा जी हैं, पूनम है इनके साथ, ज्योति हैं, शिवांश वर्मा है, बहुत शुक्रिया आपके संदेशे के लिए। सहारनपुर से हमारे पास आशा नारंग जी का संदेश आया, साथ में सुरेश है इनके साथ, सोनाली पाठक हैं। और अगला संदेश अगर हम देखें, हरिद्वार उत्तराखंड से आपका संदेश आया, ताज मोहम्मद अंसारी साहब हैं, गुलाम साबिर राही हैं और महराज जहाँ हैं, बहुत शुक्रिया आपके संदेशे के लिए। उत्तम नगर से बोधराज खोरवाल जी, कमरा रानी, भानु प्रकाश, गीतिका खोरवाल, आपका संदेशा भी आया है। और ये मानकर चलिए कि जिस जिस के संदेश से मैं पढ़ती चली जा रही हूँ, हर किसी का कोई ना कोई फरमाइशी गीत है। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि हमारा सिर्फ और सिर्फ नाम शामिल कर लें आप, तो गाना तो किसी एक की फरमाइश का होगा ना। चलिए एक और मराठवाड़ा का संदेशा ले लेते हैं। सुधाकर राजे जाधव देशमुख जी हैं, इनका परिवार है साथ में, डॉक्टर प्रशांत हैं, जगुताई हैं, सचिन हैं, प्रथमेश हैं और सरवद हैं, हर्षित हैं, साथ में सानवी हैं और प्रणाली देशमुख हैं। आपके संदेशे के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद साहब। और यहाँ पर कौन है जी? और कोई नहीं है। चलिए मुझे लग रहा है पढ़ लिया है मैंने नाम, लेकिन जिनके नाम नहीं आया ना वो उनको लगता है कि अरे और थोड़ा सा एक दो नाम और पढ़ लिया जाए। तो चलिए, मध्य प्रदेश से हमारे पास हुकुम कर्माकर साहब हैं, सुनीता हैं इनके साथ, और हार्दिक जी हैं, प्राची और तनु हैं। जो घर में सबसे छोटा बच्चा होता है ना उसका नाम सबसे लास्ट में ही आता है, होता है ना। और वो मैं किस लिए ऐसे कह रही हूँ, क्योंकि छोटा सा जो नाम होता है वो फिर बच्चों का ही होता है, निक नेम्स जो होते हैं छोटे छोटे। धर्मेंद्र चिंपा जी, मैंने आपका संदेशा ले लिया है शायद, है ना, तो आपने एक और बार मुझे संदेशा भेजा है, तो मैं यही कह रही हूँ कि अगर आप अपने बाकी के जो साथी हैं उनको भी थोड़ा मौका दें कि उनका मैसेज जो है वो हम ले सके। अंजलि है, अथर्व है, और कौन है जी, ये कहाँ से इन्होंने मैसेज किया है। चलिए अगले संदेशे की तरफ। यही बात है कि जल्दी जल्दी भागना होता है। नागपुर से हमारे पास प्रकाश जी हैं, भारती हैं, जानवी हैं और वैष्णवी हैं, और हर्षल जी हैं, इन्होंने हमें संदेशा भेजा है। वहीं बहुत सारी फरमाइशें आ रही हैं फिल्मी गीतों की। कस्बा गुन्नेर उत्तर प्रदेश से हमारे पास फारूक अली खान साहब हैं, और फैजी फराज हैं, और फरहीन हैं, फरहान हैं, और फारिया ताहिरा हैं। मैं हमेशा टंग स्लिप हो जाती है, एक साथ आप एक ही पढ़ते हैं ना, जब राइमिंग से वर्ड्स जो हो जाते हैं। नवाब अहमद भारती साहब और शबाना भारती हैं इनके साथ, और कौन है, अरहान हैं इनके साथ, और सूफिया नवाब हैं इनके साथ। और अगला संदेशा जो है, फटाफट आपके मैसेजेस आ रहे हैं, अच्छा भी लगता है, लेकिन कई बार खुद को भी बुरा लगता है अगर मुझसे कोई छूट जाता है तब। आप तो खैर नाराज़गी बताते हैं, मुझे खुद को बहुत बुरा लगता है। विष्णु गार्डन से हमारे पास राकेश कुमार जी हैं, मनीष कुमार हैं, उमेश कुमार हैं, और खैला विष्णु गार्डन से आपने हमें अपना संदेशा भेजा है। तो अब यहाँ पर जी मैं लगाती हूँ अपनी वाणी को विराम, और जिनका मैंने नाम सबसे पहले लिया था उनकी फरमाइश का गीत सुनते हैं।

वेलकम बैक जी, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड रेडियो स्टेशन 100.1। आज शनिवार की दोपहर ही आपके साथ मैं सीमा वर्मा, और ये तो पूछ ही सकती हूँ कि ये ऐसा समय है, खाना वगैरह तो आपने खा ही लिया होगा, और इस वक्त बड़े आराम से और सुस्ताते हुए आप एफएम गोल्ड सुन रहे हैं। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप फर्स्ट टाइम हमें कोई फरमाइश भेज रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, तो आप ज़रूर लिखिए कि हम पहली बार आपको मैसेज कर रहे हैं, क्योंकि हमें भी अच्छा लगता है और हमें भी इस बात का हर्ष होता है कि एफएम गोल्ड का जो परिवार है वो आगे विस्तार कर रहा है। 9868686853 ये नंबर है जी, इस पर आपको हमें मैसेज करना है। यहाँ पर हमें कौन लिखकर भेजता है जी, कौन है जी आप? ये गौरीशंकर नांगलोई से आपने हमें संदेशा भेजा है। वहीं ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी साहब, नमस्कार। निगत परवीन, शहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान, अब्बासी परिवार पूरा का पूरा हमारे साथ इस वक्त शामिल है। बहुत शुक्रिया आपके संदेशे के लिए। और नमस्कार, हमें कौन भेज रहे हैं यहाँ पे, कौन किसने नमस्कार भेजा है अभी देखते हैं जी। और गिरीश बाम है हमारे साथ, वैशाली हैं वडोदरा से, मॉडल टाउन करनाल से, सुधीर नूतन हैं, संदीप गुगलानी हैं, जगमोहन प्रजापति हैं, और इनके साथ

एक दो नाम और है, किरण ठाकुर और जग्गी दुआ है इनके साथ, और गीत बड़ा खूबसूरत है, अपने समय का गीत है। 1981 में ये फिल्म आई और गाने आज जब हम सुनते हैं तो बड़े प्यारे, बड़े खिले खिले से गीत हैं कह सकते हैं।

मोहब्बत रंग लाती है मगर आहिस्ता आहिस्ता, कितनी सच्ची बात है, क्योंकि कहते हैं धीमी आंच में जब हम खाने को पकाते हैं तो उसका स्वाद ही कुछ अलग होता है। उसी तरह मोहब्बत भी धीमी धीमी आंच में जब पकती है, आगे अपना साथी समझ आता है, तब बात कुछ और बनती है। बहरहाल आपको याद दिला दें जी, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड रेडियो स्टेशन 100.1। आपके साथ मैं सीमा वर्मा, हमारे बीचों बीच मनभावन प्रोग्राम है जो आपके मन को भा रहा है। आप हमें 9868886853 पर भेज रहे हैं, जैसे सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से यशमीत यशु का संदेश आया है, निरंजन है इनके साथ, सौम्या है और अविरल सिंह है। बहुत शुक्रिया आपके संदेशे के लिए। और उसी तरह एक और संदेशा आया है, कहाँ से आया है देखना होगा, बहुत सारे संदेश

से आते हैं एक के बाद एक, कभी कभी ओवरलैप भी हो जाते हैं। दिलीप डाबरिया हैं, शानू जी हैं, और इनके साथ इन्होंने नाम लिखा है मादीपुर दिल्ली से ये हमें संदेशा भेजते हैं। बहुत शुक्रिया आपके संदेशे के लिए। रामशरण विश्वकर्मा हैं, साहिल विश्वकर्मा हैं, मंजू हैं, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा हैं। आपने भी हमें उत्तर प्रदेश से ये संदेशा भेजा है, बहुत शुक्रिया आपके संदेशे के लिए। और मैं एक तरफ घड़ी भी देखती चली जा रही हूँ। शामिल कर लीजिए सीमा जी, हमें भी शामिल कर लीजिए। ये कौन कह रहा है? ये जो कह रहे हैं वो अभी मुस्कुरा रहे होंगे क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने ये लिखा है तीन बार। छत्तीसगढ़ से है कौशल्या देवगन, हेमलता, डिंपल देवगन और रोशन देवगन हैं। जी आप इतनी बार ऐसे ना कहें, अगर कभी बाई चांस हो जाता है, मिस हो जाता है, तो फिर आप बुरा भी ना माने। यहाँ पे भवानी से हमारे पास कृष्ण मेहरा है, कोमल मेहरा है, किरण है, कपिल मेहरा है और कुणाल मेहरा है। साथ में इन्होंने हमें नमस्ते भी कहा है। सबको नमस्ते, बिल्कुल नमस्ते। और अब एक

ऐसे गीतों को ना मोहब्बत की चाशनी में लिपटे हुए मासूम गीत भी कहा जा सकता है। मेरठ से दिग्दर्शन और कविता गौड़ ने लिखा है कि इतने बज गए हैं जी, अभी तक हमारा नंबर नहीं आया है, तो अब आपका नंबर आ गया है और मैं आपको अगर समय बताऊंगी तो आपको लगेगा कि अब तो जाना है, क्योंकि सीमा ने फिर लौट कर दोबारा तो ज़रूर आना है। रघुवीर नगर से ये दिलावर खान साहब हैं, हसीना बानो हैं, लिजिया नवाब हैं और लड्डू हैं जी। और अब मुझे लग रहा है कि गीत मैं आखिरी जो कार्यक्रम का है वो आपकी नज़र कर देती हूँ, क्योंकि अब सच में जाना है। मास्टर खिल्लू परवेज़, बेगम इमराना नाज हैं और राधा नामदेव हैं, ये उत्तर प्रदेश से हमें मैसेज करते हैं। और अब आज के कार्यक्रम का अंतिम गीत रफ़ी साहब की आवाज़, बहुत अलग सा गीत है, सुनिए ज़रा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार निजी क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाने के लिए काम कर रही है। उन्होंने बताया कि इसके लिए करीब 1,00,000 करोड़ रुपए के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना शुरू की गई है। श्री मोदी ने आज 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि कई देशों के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौते से युवाओं के लिए नए अवसर सृजित हुए हैं।
1: भारत ने बीते कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किए हैं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA हमारे युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार बना रहे हैं। इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए नई पार्टनरशिप्स के रास्ते खुलते हैं और हमारे युवाओं के लिए करियर में नई पॉसिबिलिटीज बनती है।
0: इससे पहले नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य पर एक सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन में भारत का हिस्सा वैश्विक औसत के आधे से भी कम है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत ने पर्यावरण से संबंधित हर क्षेत्र में असाधारण प्रगति की है। श्री मोदी ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए भारत अन्य देशों के साथ मिलकर लगातार काम कर रहा है।
1: हम दुनिया को साथ लेकर पर्यावरण सुरक्षा के नए मापदंड स्थापित कर रहे हैं। वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड की सोच हो या इंटरनेशनल सोलर अलायंस CDRI, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, मिशन लाइफ, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, ऐसा हर एक मंच क्लाइमेट और एनवायरनमेंट पर भारत के डेडिकेटेड कमिटमेंट्स का प्लेटफॉर्म बन रहा है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड और कर्नाटक उच्च न्यायालयों में 14 न्यायिक अधिकारियों को न्यायाधीश और अपर न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। ये नियुक्तियां मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद की गई हैं। निवेदिता अनिल शर्मा और निशा सहाय सक्सेना को दिल्ली उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इसके अलावा 5 न्यायाधीशों को दिल्ली उच्च न्यायालय का अपर न्यायाधीश और एक एक न्यायाधीश को जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के लिए नियुक्त किया गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता रवनीत सिंह बिट्टू को आज पंजाब पुलिस ने हिरासत में ले लिया। वे लुधियाना में पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के पास उस समय विरोध प्रदर्शन कर रहे थे जब मुख्यमंत्री भगवंत मान का काफिला वहां से गुजर रहा था। श्री बिट्टू ने बताया कि भाजपा पंजाब से जुड़े मुद्दे उठाती रहेगी और जब भी जरूरत होगी मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों और कार्यालयों के बाहर शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शन करेगी। पश्चिम बंगाल पुलिस ने आज कलिम्पोंग के पहाड़ी जिले से अवैध अफगानी घुसपैठियों को गिरफ्तार किया है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने 28 वर्ष के सैयद बिलाल खान को पकड़ा। वो पिछले कई महीनों से कलिम्पोंग शहर में किराएदार के तौर पर अवैध रूप से रह रहा था। नेपाल के वित्त मंत्री स्वर्णिम वागले ने कहा है कि भारत और नेपाल के पास पहले से मौजूद मजबूत रिश्तों के आधार पर अपनी साझेदारी को नया रूप देने का अवसर है। नई दिल्ली में एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में डॉ. वागले ने संपर्क सुविधा और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने तथा दोनों देशों द्वारा मिलकर हासिल की जा सकने वाली बड़ी संभावनाओं को साकार करने पर बल दिया। थल सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में मिखाइलोव्स्काया मिलिट्री आर्टिलरी अकादमी का दौरा किया। उन्होंने अकादमी के संकाय सदस्यों से प्रशिक्षण पद्धतियों और तोपखाने के आधुनिकीकरण के मुद्दों पर बातचीत की। जनरल सेठ ने प्रशिक्षण के विभिन्न पहलुओं और आधुनिक समय की सैन्य जरूरतों के मुताबिक तोपखाने को विकसित करने पर चर्चा की। एशियाई खेलों के टैगबॉल स्पर्धा में भारत की क्विंसी डिसूजा कल कांस्य पदक मुकाबला खेलेंगी। महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में आज इंडोनेशिया की सुमाया ने क्विंसी डिसूजा को 2-1 से हराया। आज एशियाई खेलों का भव्य उद्घाटन समारोह हुआ। भारतीय निशानेबाज मनु भाकर और कबड्डी खिलाड़ी पवन सहरावत ने 501 सदस्य भारतीय दल की अगुवाई की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Sahira Mujtaba. Prime Minister Narendra Modi today distributed more than 51,000 appointment letters to newly appointed youth in various government organizations at the 20th Rozgar Mela this afternoon through video conferencing. Speaking on the occasion, Mr. Modi said that in recent years, the central government has consistently focused on equipping the youth with the skills and opportunities needed to prepare for the future.
1: आज देश के 51,000 से अधिक युवाओं को सरकारी सेवा के लिए नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं। मैं आप सभी युवा साथियों को और आपके परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज आप सभी एक ऐसे समय में भारत सरकार से जुड़े हैं जब देश एक बहुत बड़े लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है और ये लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनाने का।
2: Prime Minister Modi said the government is also working to rapidly expand employment opportunities in the private sector. He said with this objective, the Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana has been launched with an outlay of around 1 lakh crore rupees. The scheme is expected to enable nearly 2 crore young people to enter the workforce for the first time. Prime Minister Modi said that India has signed free trade agreements with nearly 40 countries in the past few years, which is opening new doors of opportunity for the country's youth. He said such trade agreements pave the way for new partnerships and markets for countries' entrepreneurs and create new career possibilities for the youth. Prime Minister Modi said that India is today the world's third largest startup ecosystem.
1: Bharat aaj duniya ka teesra sabse bada startup ecosystem hai. और भारत की स्टार्टअप स्टोरी अब केवल बड़े शहरों की कहानी नहीं है। आज करीब आधे रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप्स टीयर टू और टीयर थ्री शहरों में है। यानी आज गांव, कस्बे और छोटे शहर का युवा भी भारत की नई इकोनॉमी में अपनी भूमिका बड़ी बना रहा है।
2: Prime Minister Narendra Modi has said that India's contribution to per capita carbon emissions is less than half of global average. Inaugurating the International Conference on the Future of Environment and Climate Dynamics in New Delhi today, Mr. Modi said that developing countries have often been unfairly held responsible for carbon emissions. He highlighted that India is the only country in the G20 that has successfully fulfilled the commitments made at the COP21 summit in Paris ahead of schedule. The Ministry of Rural Development will begin training nearly 34,000 rural youth under the Deen Dayal Upadhyay Grameen Kaushalya Yojana 2.0 across most states and union territories from next month. Preparedness for the commencement of training batches was reviewed with 14 states and UTs, including Bihar, Madhya Pradesh, Rajasthan, West Bengal, Himachal Pradesh and Tamil Nadu in the first phase. The ministry said over 3,57,000 rural youth will be trained by the 31st of December next year. Secretary, Ministry of Electronics and IT, S. Krishnan, today said that India currently accounts for nearly 20% of the world's semiconductor design workforce. He said that the government has placed substantial emphasis on design talent with an ongoing program to train approximately 85,000 design engineers. Talking to media on the sidelines of Semicon India 2026 in New Delhi, Mr. Krishnan said that the government will give priority to all aspects of skill development with a strong focus on semiconductor manufacturing. The grand opening of the 20th edition of the Asian Games 2026 has started at the Paloma Mizuho Stadium in Aichi, Nagoya, Japan today. The Asian Games will run till 4th of October, with more than 500 Indian athletes set to compete across 37 sports. The Indian contingent will feature 5 individual Olympic medalists, despite the withdrawal of defending javelin throw champion Neeraj Chopra due to an ankle injury. And the Met Department has predicted heavy rainfall over Andaman and Nicobar Islands, coastal Andhra Pradesh, Karnataka, Keralam, Mahe, Madhya Maharashtra.

सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड रेडियो स्टेशन 100.1 MHz। आइए साथियों, आपको बताते हैं आपके मनपसंद FM गोल्ड पर आने वाले घंटों में आप कौन कौन से कार्यक्रमों का आनंद ले सकते हैं। अब से कुछ ही देर बाद आप और हम मिलकर सुनेंगे एम्प्लॉयमेंट न्यूज और रोजगार समाचार। समय रहेगा 4:20। 4:30 बजे का वक्त न्यूज सर्विसेज डिवीजन के कार्यक्रम परिक्रमा का रहेगा। आप जानते हैं साथियों, हर घंटे आप FM गोल्ड 100.1 पर समाचार सुनते हैं और इसी कड़ी में शाम 5 बजे हिंदी में समाचार होंगे और 5:05 पर अंग्रेजी में समाचार होंगे। 5:10 का वक्त कार्यक्रम गाते गुनगुनाते का रहेगा, जिसमें आप मेरे यानी सीमा वर्मा के साथ रहेंगे और हम होंगे कुछ खूबसूरत रेट्रो गीतों के साथ। कार्यक्रम संपन्न होगा 6 बजे। 6 बजे आप हिंदी में समाचार सुनेंगे, 6:05 पर अंग्रेजी में समाचार होंगे और 6:10 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम विश्लेषण। शाम 6:20 पे आप सुन सकते हैं संस्कृत में समाचार। वहीं 6:30 बजे का वक्त रहेगा मार्केट मंत्रा का। शाम 7 बजे आप हिंदी में समाचार सुनेंगे, 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे और 7:10 पर एक विशेष कार्यक्रम होगा जनसेवा से देश सेवा। 7:45 पर प्रादेशिक समाचार होंगे। वहीं शाम 8 बजे हिंदी में समाचार और 8:05 पर अंग्रेजी में समाचार होंगे। 8:10 पर मधुरिमा कार्यक्रम आप सुन सकते हैं और आपके साथ इस कार्यक्रम में रहेंगी नूपुर गुप्ता। ये कार्यक्रम अपने आप में बहुत खास है साथियों, इसे सुनिएगा ज़रूर। इस कार्यक्रम में जो गीत हम आपकी नज़र करते हैं, उन गीतों के रागों पर हम बात करते हैं कि किस राग पर आधारित वो गीत हैं, और ये अपने आप में साझा करना बहुत मीठी अनुभूति होती है। वहीं इन गीतों को सुनकर आपके दिल में भी ऐसी ही अनुभूति जरूर होगी। आइए अब सुनते हैं बहुत खूबसूरत सा गीत। इस गीत के बाद बाकी के कार्यक्रम

स्वागत एक बार फिर आप सभी का आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड रेडियो स्टेशन 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। साथियों, आपको हम एफएम गोल्ड के कार्यक्रमों की जानकारी दे रहे हैं। 8:30 बजे आप स्पॉट स्कैन सुन सकते हैं और 8:45 पर समाचार संध्या हिंदी में, रात 9 बजे News@9 अंग्रेजी में आप सुन सकते हैं। 9:15 पर कार्यक्रम स्पॉटलाइट होगा। और अगर हम फिल्मी गीतों की बात करें तो हमारा कार्यक्रम आप हर श्रृंगार ज़रूर सुनिएगा। 10:30 बजे रात आपके साथ होंगे विकास जुच्छी। और रात 11:40 पर गीत मेरे मन में थे, एक बार फिर आप विकास के साथ होंगे। और 11:10 पर मार्केट मंत्रा साथियों सुनना ना भूलिएगा। तो ये तो जानकारी हमने आपको दी आज आप तक पहुंचने वाले सभी कार्यक्रमों के बारे में। और अब कुछ ही देर में आप और हम मिलकर सुनेंगे एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ और रोज़गार समाचार। चलते चलते साथियों, आपसे बस यही कहना है कि ज़िंदगी में प्यार और मोहब्बत बहुत मायने रखती है। हम अपनों से तो प्यार करें ही, लेकिन दूसरों के प्रति हमारी जो संवेदनाएं हैं वो भी जागरूक रहनी चाहिए। किसी की आंख अगर नम होती है तो हमारी भी आंख नम हो जाती है। यही वो धड़कन के तार हैं जो हमें एक दूसरे से जोड़ते हैं। और इसीलिए

0: scientific officer, NDT, through the composite method of deputation, including short-term contract. The post is General Central Service Group B gazetted, non-ministerial, in pay level 8. Detailed eligibility, experience and application terms available under the vacancy section of National Test House. The last date of applications is 60 days from the date of publication of this advertisement in the Employment News. For details, do refer to the website, that is at www.nth.gov.in. And now we have the Employment News in Hindi.
1: आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है रोजगार समाचार। नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक में मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए जानकारी लेते हैं किन रिक्तियों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोवा आमंत्रित कर रहा है इन पदों के लिए आवेदन। कुल सचिव एक पद, अधीक्षण अभियंता और तकनीकी अधिकारी भी एक एक पद। विस्तृत विज्ञापन के लिए देखिए IIT गोवा की वेबसाइट iitgoa.ac.in/careers-iitgoa। शिक्षा मंत्रालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, भारत सरकार के अंतर्गत स्वायत्त संस्थान राष्ट्रीय बाल भवन इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। उपनिदेशक कार्यक्रम समन्वयन और अनुसंधान, सहायक निदेशक विज्ञान तथा क्यूरेटर म्यूजियम। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, वेतनमान, आरक्षण और तैनाती के स्थान आदि की विस्तृत जानकारी के लिए देखिए बाल भवन की वेबसाइट www.nationalbalbhavan.nic.in। मौलाना अबुल कलाम आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ एशियन स्टडीज में प्रतिनियुक्ति आधार पर सीधी भर्ती द्वारा संस्थान के निदेशक पद के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। अपेक्षित शैक्षिक और अन्य योग्यताएं हैं, इतिहास सामाजिक विज्ञान में डॉक्टरेट डिग्री, इतिहास सामाजिक विज्ञान के क्षेत्रों में किसी भी बड़े एशियाई देश से संबंधित उच्च योग्यता का प्रकाशित अनुसंधान कार्य, कम से कम 5 वर्ष के लिए एक जिम्मेदार पद पर प्रशासनिक अनुभव सहित कम से कम 10 वर्ष का पढ़ाने और अनुसंधान का अनुभव। आवेदन के साथ प्रमाण पत्रों और दस्तावेजों की सभी प्रतियां निदेशक मौलाना अबुल कलाम आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ एशियन स्टडीज कोलकाता के पास रोजगार समाचार में इस विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि से 3 हफ्ते के भीतर पहुंच जाने चाहिए। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत कृषि एवं किसान कल्याण विभाग में प्रतिनियुक्ति के आधार पर उपनिदेशक का एक पद भरा जाना है। इसके लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पद और योग्यता की शर्तों, वेतनमान, तैनाती के स्थान आदि की विस्तृत जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट www.agriwelfare.gov.in। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में हिंदी प्रशिक्षक का एक पद रिक्त है, जिसे प्रतिनियुक्ति अथवा अल्पकालिक अनुबंध के आधार पर भरा जाना है। वेतन, अनिवार्य योग्यताएं, अन्य पात्रता मानदंड और आवेदन पत्र आप देख सकते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी की इस वेबसाइट पर www.svpnpa.gov.in/vacancies। रक्षा मंत्रालय में प्रधान सिविलियन स्टाफ अधिकारी स्टोर्स ग्रुप क राजपत्रित के 2 पद भरे जाने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। विस्तृत पात्रता मानदंड, आवेदन प्रारूप और अन्य जानकारियां उपलब्ध हैं इस वेबसाइट पर indianarmy.nic.in तथा रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट mod.gov.in। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
2: दिस प्रोग्राम वॉज प्रोड्यूस्ड एंड प्रेजेंटेड बाय द न्यूज सर्विसेज डिवीजन ऑफ आकाशवाणी।

0: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
1: नमस्कार श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन परिक्रमा का। इसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सभी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जगत के समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे क्या कुछ है उनके पास खास। इसके अलावा खेल जगत की गतिविधियों पर भी हमारी नजर रहेगी और उन विशेष व्यक्तियों को भी हम याद करेंगे जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिवस। तो श्रोताओं, परिक्रमा के संघ के साथ मैं हूं मुकेश कुमार और मेरे साथ है मेरी सहयोगी सायरा मुज्तबा। सायरा, आपको भी मेरा नमस्कार।
2: नमस्कार मुकेश, आदाब एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स हु हैव जॉइंड अस इन दिस वेरी वेरी फ्रेश एपिसोड ऑफ परिक्रमा। हज़्ब दस्तूर लाते हैं आपके लिए ताज़ा तरीन खबरें, बट बिकॉज दिस शो इज ऑल अबाउट डूइंग परिक्रमा ऑफ द कंट्री, सो वील गो टू डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ द कंट्री एंड सी वॉट इंटरेस्टिंग स्टोरीज आर कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैव फ्रॉम देयर। एंड ऑफ कोर्स इन आर लास्ट सेगमेंट, जैसा कि मुकेश ने ऑलरेडी बताया, वील रिमेंबर सम ऑफ द पर्सनैलिटीज हु ईदर हैव देयर बर्थ एनिवर्सरीज, बर्थ डेज और डेथ एनिवर्सरीज, all of that in the roughly next half an hour, but first let's start with the headlines Mukesh.
1: जी बिल्कुल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मुक्त व्यापार समझौते देश के युवाओं के अवसरों के नए द्वार खोल रहे हैं। श्री मोदी ने आज 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी संस्थानों में चयनित 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे।
2: Prime Minister Modi says India's contribution to per capita carbon emissions is less than half of global average. Highlights India is the only country in G20 that fulfilled commitments made at COP21 ahead of schedule.
1: सरकार दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के दूसरे चरण में अधिकांश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 34,000 ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देगी।
2: India dispatches 11 tons of fresh relief material to flash flood recovering Nepal.
1: संयुक्त राष्ट्र ने अफगान शरणार्थियों को जबरन स्वदेश वापस भेजने पर पाकिस्तान को चेतावनी दी।
2: And 20th edition of Asian Games begin in Japan. And Mukesh, as always, we start Parikrama with our special segment, Dateline India, in which we talk about some important topics. Today, we are going to talk about the Swachhta Hi Seva campaign.
1: बिल्कुल सायरा, पूरे देश में 17 सितंबर से स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान शुरू हो चुका है और यह अभियान 2 अक्टूबर को समाप्त होगा। ये स्वच्छता के सामूहिक प्रयासों के लिए नागरिकों, संस्थाओं और सरकारों को एक साथ ला रहा है।

0: Yes, we are going to talk about a movement that reminds us of a simple truth that cleanliness is not just someone else's responsibility, it's a way of life and it belongs to all of us. The theme this year, Mukesh, is Swachhta Mein Sehbhag, Swachh Bharat, Viksit Bharat. In other words, participation in cleanliness for a clean India and a developed India.
1: ये अभियान पूरे सरकारी तंत्र और पूरे समाज को एक साथ लेकर चलने के दृष्टिकोण पर आधारित है। इसका मतलब है कि सफाई का काम सिर्फ नगर निगम के कर्मचारियों या सरकारी विभागों तक ही सीमित नहीं है। इसमें नागरिकों, समुदायों, संस्थानों, संगठनों और अन्य संबंधित पक्षों की भागीदारी की जरूरत है।
0: That's right, Mukesh. And of course, a special focus has been on our youth. After all that, you know, young people can turn any campaign, especially if it's a cleanliness campaign, into a lasting habit. Whether we talk about schools or colleges, even workplaces, neighborhoods and public spaces.
1: बिल्कुल सारा, ये अभियान सभी संबंधित पक्षों की जिम्मेदारियों और सामूहिक भागीदारी पर भी बल देता है. इस वर्ष ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2026 के बारे में

0: अधिक जागरूकता फैला रहा है और ये लोगों को ये समझने में सहायता कर रहा है कि अलग अलग पक्ष बेहतर कचरा प्रबंधन में कैसे योगदान दे सकते हैं।
1: That's right, Mukesh, because managing waste doesn't begin when garbage reaches a collection point. It begins right at home with responsible consumption, segregation and proper disposal as well.
0: जी हाँ, और स्वच्छता ही सेवा में नागरिकों की भागीदारी का सबसे स्पष्ट तरीका है श्रमदान। श्रमदान का मतलब है समुदाय की भलाई के लिए अपनी मर्जी से समय और मेहनत देना, यानी निस्वार्थ सेवा के तौर पर अपनी मेहनत का योगदान देना।
1: So well, whether it is joining a community cleanliness drive, helping clean a public space, spreading awareness about waste segregation, or encouraging others to keep their surroundings clean, every contribution can become part of a larger collective effort.
0: जी हाँ, स्वच्छता ही सेवा अभियान वर्ष 2017 से प्रत्येक वर्ष मनाया जा रहा है। यह अभियान स्वच्छ भारत मिशन की व्यापक जनभागीदारी यानी लोगों की भागीदारी वाले नजरिए से शुरू हुआ।
1: एंड मुकेश, इसकी टाइमिंग भी बहुत सिग्निफिकेंट है। द कैंपेन लीड्स अप टू स्वच्छ भारत दिवस ऑन 2nd October, दैट इज ऑफकोर्स गांधी जयंती, एंड दैट्स ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। स्वच्छता ही सेवा 2026 इज नॉट जस्ट अबाउट क्लीनिंग, इट इज ऑल्सो अबाउट पार्टिसिपेशन, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड मेकिंग अ लास्टिंग चेंज। लेट्स टेक अ क्विक लुक एट इट्स 5 कोर एक्टिविटी पिलर्स।
0: जी हाँ, पहला स्तंभ है सफाई के लिए चुने गए स्थानों और सार्वजनिक जगहों को साफ सुथरा बनाना। जिन जगहों पर कचरा जमा होने पर भी ध्यान नहीं दिया जाता और जहाँ सफाई करना मुश्किल होता है, वहाँ सफाई की जाएगी, उन्हें सुंदर बनाया जाएगा और उनका रखरखाव किया जाएगा। इस अभियान में बाजार, स्कूल, अस्पताल, ट्रांसपोर्ट हब, पार्क और जलाशय भी शामिल हैं। नागरिक स्वच्छता ऐप के जरिए सफाई और कचरे से जुड़ी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं।
1: द सेकेंड पिलर, स्वच्छ पाठशाला युवा फॉर स्वच्छता। वेल, यंग पीपल आर एट द हार्ट ऑफ सस्टेन्ड बिहेवियरल चेंज। स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लासेस 6 to 12 विल पार्टिसिपेट इन स्वच्छता ज्ञान यात्रास, लर्निंग अबाउट वेस्ट मैनेजमेंट एंड सैनिटेशन। स्कूल्स विल ऑल्सो एनकरेज डिस्कशंस ऑन हाइजीन, हैंड वॉशिंग, मेंस्ट्रुअल हाइजीन, वाटर कंजर्वेशन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर।
0: और तीसरा स्तंभ है सफाई मित्र सुरक्षा सेवा और सम्मान शिविर। ये अभियान सफाई कर्मचारियों के योगदान को मान्यता देता है और उनके कल्याण पर ध्यान केंद्रित करता है। विशेष शिविरों के माध्यम से सफाई मित्रों और उनके परिवारों को स्वास्थ्य सेवाएं, सुरक्षा उपकरण और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदान किया जाएगा।
1: The fourth pillar is Jan Bhagidari or public participation for cleanliness or Swachhta. People's participation remains central, of course. Activities include awareness about the solid waste management rules 2026, demonstrations of four-way waste segregation, home composting awareness, campaigns against littering and single-use plastics, rallies, human chains, Swachhta pledges and collection drives for reusable household items.
0: और स्वच्छ पर्व हरित पर्व भी हैं जो त्योहारों को ज्यादा पर्यावरण अनुकूल और प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। और अंत में पांचवा स्तंभ स्वच्छता से समृद्धि, जहां रिड्यूस, रियूज और रिसाइकल यानी कम इस्तेमाल, दोबारा इस्तेमाल और फिर उपयोग के योग्य बनाना के जरिए कचरे को कंचन में बदलने पर जोर दिया जाएगा। हर साल सितंबर के तीसरे शनिवार को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस भी मनाया जाता है, जो आज है। इसका मकसद समुद्र के प्रदूषण के बारे में जागरूकता फैलाते हुए समुद्र तटों और जलमार्गों से समुद्री कचरे और प्लास्टिक वेस्ट को हटाना है।
1: And Mukesh, towards this goal, the Indian Coast Guard marked the International Coastal Cleanup Day with a large-scale cleanliness drive across 25 beaches in Goa, drawing enthusiastic participation from more than 4,000 volunteers. Let's hear more from our correspondent.
2: Speaking at the event, Goa Governor Pusapati Ashok Gajapati Raju credited campaigns like Swachh Bharat with helping India make major strides against diseases such as smallpox, leprosy and polio. He noted that sustaining higher standards of cleanliness could help eliminate such illnesses altogether, sparing the country the public health burdens seen elsewhere in the world. The drive's primary objective was to raise awareness about beach cleanliness and encourage its upkeep, given how central tourism is to Goa's economy. Officials emphasized that the Coast Guard hopes citizens will take greater ownership of their surroundings, reducing the need for organized cleanup campaigns in the future. In line with government's Swachh Bharat Abhiyan, they urge every citizen to recognize their individual responsibility and actively contribute to keeping public spaces clean. Beach pollution doesn't just harm marine ecosystems, it has a direct bearing on human life and well-being. They call for greater awareness among both tourists and

0: Fishermen to curb waste accumulation on beaches and keep pollution levels in check. For Parikrama, Mahesh Sopade, Panji.
1: The Swachhata Hi Seva journey shows a gradual expansion, Mukesh, in the meaning of cleanliness. The early editions focused on cleanliness action and volunteerism. Later editions brought plastic waste, visual cleanliness and garbage management into focus. In 2026, Swachhata Mein Sehbag places collective action and cooperation at the center.
2: तो दोस्तों, ये सिर्फ एक कैंपेन कैलेंडर नहीं है, ये खुद से ये पूछने का मौका है कि आज मैं अपनी गली, अपने मोहल्ले, अपने कार्यस्थल, अपने समुदाय को साफ सुथरा बनाने के लिए क्या कर सकता हूँ। क्योंकि साफ सुथरा माहौल सिर्फ सरकारी कामों से ही नहीं बनता, बल्कि रोजमर्रा के फैसलों और समाज की भागीदारी से भी बनता है।
1: That's so right, Mukesh. And so, well, from 17 September to 2nd October, let's turn participation into action. Let's make cleanliness a shared responsibility. मुकेश, नाउ वी ऑफ कोर्स हेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री, लेकिन उससे पहले हम आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे. आपने पैंटा का जब मैं जिक्र करती हूँ तो आपके जहन में क्या तस्वीर उभर?
2: वही जैसा जो उसका रूप होता वही नॉर्मल दिखता है,
1: मतलब काला सफेद वाला
2: जी,
1: ना?
2: जी बिल्कुल, आप लेकिन कुछ आप, नया, जी नया बताने जा रहे हैं
1: लेकिन एक रेड पैंडा भी होता है. यूजली हम लोग के तस्वीर में दैट ब्लैक एंड व्हाइट पैंटा होता है, बट ऑफकोर्स इट्स अ वेरी वेरी एंडेंजर्ड स्पीशीज एंड इंटरनेशनल रेड पैंडा डे इज ऑब्जर्व ऑन द 3rd सैटरडे ऑफ सेप्टेम्बर एवरी ईयर टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द एंडेंजर्ड रेड पैंडा एंड स्ट्रेंथन कंजर्वेशन एक्शन. द इंटरनेशनल रेड पैंडा डे फॉल्स ऑन 19 सेप्टेम्बर. लेट्स हियर अ रिपोर्ट.
3: The red panda is an arboreal mammal of high altitude forests. It has several unique physical and behavioral features that distinguish it from the giant panda. It is slightly larger than a domestic cat. It has thick reddish brown fur, black belly and limbs, white facial markings and a long bushy tail. Panda is a small mountain mammal found across the eastern Himalayas and parts of China and Myanmar. India has important red panda habitats in Sikkim, Arunachal Pradesh and northern West Bengal. Red panda became Sikkim's state animal in the 1990s. It is also the mascot of the Darjeeling Tea Festival. Red Panda Day focuses on the protection of red pandas, their bamboo-rich mountain forests and the wider Himalayan ecosystem. The red panda is classified as endangered on the International Union for Conservation of Nature Red List. It is included in Appendix 1 of Convention on International Trade in Endangered Species. This provides strict international controls against commercial international trade in the species. In India, the red panda is protected under Schedule 1 of the Wildlife Protection Act 1972, providing it with the highest level of legal protection under the Act. Almost 50% of the red panda's habitat is located in the eastern Himalayas. Loss of nesting trees and bamboos directly affects suitable habitat. The species faces habitat loss, poaching, illegal wildlife trade, infrastructure development, and competition for food. Its global population is estimated at fewer than 10,000 breeding individuals. With Sanyukta's report, Anuja Kumar for Parikrama.
1: Yes, so Mukesh, I think अगर आपने रेड पैंडा नहीं देखा है तो प्रोग्राम के फौरन बाद आप जो है गूगल करके उसकी तस्वीरें जरूर देखिएगा. एंड इफ द लिसनर्स आर ऑल्सो प्रॉब्ली नॉट अवेयर, देन वी शुड डू यू नो मोर रीडिंग अबाउट देम एंड ऑफ कोर्स हेल्प इन देयर कंजर्वेशन. और आप सोचेंगे कि जब हमारे क्या कंट्री में पैंडा नहीं होते हैं तो कैसे कंजर्व कर सकते हैं. आई थिंक ऑल ऑफ अस कैन कॉन्ट्रीब्यूट इन कंजर्विंग नेचर. अगर हैबिटेट को हम लोग जो है कहीं से भी किसी भी दुनिया में कोने में हो तो एवरीबडी इज affected, every single living creature on this earth. And well, now let's move ahead. Mukesh, to sabse pehle dekhte hain Delhi mein kya ho raha tha. Of course, the 20th Rozgar Mela was held this afternoon, Mukesh, in which the Prime Minister distributed more than 51,000 appointment letters to newly appointed youth in various government organizations.
2: और आकाशवाणी समाचार से बातचीत में नवनियुक्त कर्मियों ने अपनी खुशी जाहिर की और सरकार को धन्यवाद दिया.
4: This moment is a culmination of hard work, dedication and perseverance. I'm honored to stand before you here and I'm grateful to the Prime Minister and Finance Minister for this esteemed position.
5: मेरा नाम नेहा है और मैं हरियाणा के रोहतक जिले की निवासी हूँ. मेरा चयन आयकर विभाग में ऑफिस सुपरिटेंडेंट के पद पर हुआ है। मुझे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्ति पत्र प्राप्त करने का अवसर मिला। इसके लिए मैं अपने परिवार, अपने गुरुजनों और साथियों का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ।
6: नमस्कार, मेरा नाम वाणी बालिया है और मैं दिल्ली की निवासी हूँ। मेरा चयन आयकर विभाग में कार्यालय अधीक्षक के पद पर हुआ है। मैं प्रधानमंत्री जी का इस नियुक्ति के लिए हृदय से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। मैं आज अत्यंत खुश हूँ। मैं इस अवसर पर अपने गुरुजनों, परिवारजनों और मित्रों का भी धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे इस मुकाम तक पहुँचने में समर्थन दिया। मैं अपनी क्षमताओं का पूर्ण उपयोग करते हुए अपने देश और विभाग की उन्नति में योगदान देने का प्रयास करूँगी।
1: And well, now we have some news for cinephiles. Well, Marathi film Gondhal, written and directed by Santosh Davakar, has been selected as India's official entry for the Oscars 2027. Set in rural Maharashtra, the film tells its story over one night and centers on a traditional ritual involving a newly married couple. Let's hear more from our correspondent.
7: Gondhal is a traditional Maharashtrian religious ritual that includes devotional songs, music, storytelling and performances. It is usually performed during important family and religious occasions. The ritual is closely linked to Maharashtra's folk culture and traditions. In the film, it forms an important part of the story and the setting in which the events involving the newlywed couple unfold. The film is selected from a list of 33 films considered for India's Oscar submission. The Film Federation of India announced the selection on September 18. P. Seshadri, chairperson of the selection committee, announced Gondhal as India's entry in the Best International Feature category for the 99th Academy Awards. The film will now represent India in the Oscar race and bring a story rooted in rural Maharashtra and its traditional culture to an international audience. Nivedita for Parikrama, Mumbai.
2: और अपने श्रोताओं को बता दें कि सिलीगुड़ी में कल सचिन रमेश तेंदुलकर खेल अकादमी का उद्घाटन होगा। SF रोड स्थित प्रतिष्ठित सिलीगुड़ी हिंदी हाई स्कूल मैदान में इस अकादमी का संचालन किया जाएगा। तो सुनते हैं रिपोर्ट।
8: सचिन रमेश तेंदुलकर वेलफेयर सोसाइटी तथा हिंदी हाई स्कूल प्रबंधक के तत्वाधान में कल से सिलीगुड़ी में आरंभ होने जा रहे हैं स्पोर्ट्स अकादमी। उत्तर बंगाल में इस प्रकार की यह पहली स्पोर्ट्स अकादमी होगी जो क्रिकेट टैलेंट को बढ़ावा देगी। सचिन रमेश तेंदुलकर वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष मनीष टिवरेवाल ने बताया कि इसका मुख्य लक्ष्य क्रिकेट फॉर ऑल के बैनर तले कम्युनिटी एंगेजमेंट और ग्रासरूट क्रिकेट को बढ़ावा देना है। देश के प्रसिद्ध निशानेबाज जीतू राय ने भी पिछले वर्ष सिलीगुड़ी में जीतू राय शूटिंग अकादमी खोला है तो भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान भाईचुंग भूटिया ने फुटबॉल अकादमी खोला है तो वहीं भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान भरत छेत्री ने भी हॉकी अकादमी खोला है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पूर्वोत्तर भारत का प्रवेश द्वार भूटान, नेपाल, बांग्लादेश का त्रिजंक्शन सिलीगुड़ी आज खेल प्रतिभा के क्षेत्र में कितना महत्वपूर्ण है। परिक्रमा के लिए रोशनी छेत्री, आकाशवाणी समाचार, कर्शियंग।
1: And now we head to the north, to Leh. Well, the Sea Buckthorn Conclave cum Reverse Bioseller Meet was held at Leh Main Market. The aim was to promote the importance and benefits of sea buckthorn. Let's hear more from our correspondent.
9: The objective was to promote the importance and commercial potential of sea buckthorn, a fruit widely found in the high altitude regions of Ladakh. The mela attracted local farmers, entrepreneurs, tourists and residents. Various products made from sea buckthorn, including juice, jams, herbal products, cosmetics and other value-added items were displayed and sold at the event. The program also highlighted the health and economic benefits of sea buckthorn and encouraged local communities to explore sustainable cultivation and processing of the fruit. The mela provided a platform for local producers to showcase their products and helped spread awareness about Ladakh's unique natural resources. For Parikrama, this is Rick Zinangmo from Leh Ladakh.
2: उत्तर प्रदेश की औद्योगिक, व्यापारिक और सांस्कृतिक पहचान को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करने के उद्देश्य से यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन 25 से 29 सितंबर तक नोएडा में किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की औद्योगिक शक्ति को वैश्विक पटल पर स्थापित करने के साथ ही आयोजन प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहरों को भी विश्व स्तर पर प्रस्तुत करेगा। तो सुनते हैं रिपोर्ट।
10: ट्रेड शो के सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शुरुआत 25 सितंबर को शंख वादन एवं वैदिक मंगलाचरण से होगी। वाराणसी के विशाल कुमार की प्रस्तुति के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। इसके बाद नोएडा के पंडित चेतन जोशी का वाद्य संगीत, लखनऊ की आलोक निशा श्रीवास्तव का कथक नृत्य, प्रयागराज की पूर्णिमा का ढेड़िया लोक नृत्य और वृंदावन की आरती।

0: वेदपाल की भजन प्रस्तुति दर्शकों को आकर्षित करेगी। 26 सितंबर को पखावज युगल, भोजपुरी लोक गायन, कथक, मथुरा का लोक नृत्य और स्टार नाइट का आयोजन होगा। पखावज युगल में दिल्ली के पंडित रविशंकर उपाध्याय एवं पंडित ऋषि शंकर उपाध्याय प्रस्तुति देंगे। भोजपुरी लोक गायन में मिर्जापुर की कुसुम पांडे, जौनपुर की अवनीश तिवारी और कथक में नोएडा की मर्यादा कुलश्रेष्ठ शामिल होंगी। मथुरा की सीमा मावल लोक नृत्य प्रस्तुत करेंगी और सुल्तानपुर की निष्ठा शर्मा स्टार नाइट में प्रस्तुति देंगी। 27 सितंबर को सैक्सोफोन वाद्य संगीत, भजन, लोक गायन, झांसी का राई लोक नृत्य, भरतनाट्यम और स्टार नाइट का आयोजन किया जाएगा। 28 सितंबर को भातखंडे संस्कृत विश्वविद्यालय लखनऊ का पर्कशन एसेंबल, महोबा के जितेंद्र चौरसिया का आल्हा गायन, कथक, पीलीभीत का थारू जनजातीय नृत्य और सुल्तानपुर की रूपाली जोगू की सूफी नाइट आयोजित होगी। 29 सितंबर को वाराणसी के पद्मश्री पंडित शिवनाथ मिश्रा का सितार वादन, लखनऊ के कमाल खान का गजल गायन, गाजियाबाद की मिताली सैनी का कथक, कथक ऑफ इंडिया यूपी की कोरियोग्राफ प्रस्तुति और स्टार नाइट के साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों का समापन होगा। राज्य सरकार की पहल पर आयोजित ट्रेड शो में प्रदेश के विभिन्न अंचलों की लोक कलाओं और शास्त्रीय परंपराओं को मंच मिलना उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विविधता को प्रदर्शित करता है। परिक्रमा के लिए लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी।
1: और आइए अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल।
2: सबसे बड़ी हलचल वाली खबर तो यही है मुकेश, दैट द 20th एशियन गेम्स हैव ऑफिशियली बिगन। वेल, दे गॉट अंडरवे टुडे एट मिज़ुहो पार्क एथलेटिक स्टेडियम इन जापान विद एम्परर नारुहितो डिक्लेयरिंग द गेम्स ओपन। एंड इंडियाज़ 501 मेंबर कंटिंजेंट वाज लेड बाय डबल ओलंपिक मेडलिस्ट मनु भाकर एंड कबड्डी प्लेयर पवन सहरावत ड्यूरिंग द एथलीट्स परेड। सम इवेंट्स हैव ऑलरेडी बिगन इंक्लूडिंग वुमेन्स क्रिकेट वेयर इंडिया हैव ऑलरेडी एडवांस्ड टू द सेमीफाइनल्स आफ्टर एन 8-wicket विन ओवर जापान yesterday. India will face Bangladesh in the second semi-final in Nissan, Japan tomorrow.
1: और परिक्रमा कार्यक्रम में अब हम याद करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करेंगे उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन।
3: Today is the death anniversary of veteran freedom fighter Balwant Rai Gopalji Mehta. He died during the Indo-Pak War on 19 September 1965 when the aircraft he was traveling in along with his wife and a few others was shot down by the Pakistan Air Force. At that time, he was the Chief Minister of Gujarat. Born on 19 February 1900 in Bhavnagar, Balwant Rai Gopalji Mehta joined the freedom movement in 1920, fervently fighting back and resisting the colonial oppression. At that time, protests went widespread and it was much more difficult for the people to persist.
4: Balwant Rai Mehta, who had almost finished his degree in Bachelor of Arts, resolutely refused to accept a degree from the colonial government. After making public his stance on the imperial powers present in pre-independence India, he joined the non-cooperation movement in 1920 and promptly threw himself heart, body and soul into the battle for freedom. He founded Bhavnagar Praja Mandal in 1921 for carrying on the freedom movement in Gujarat. Later on, he participated in the civil disobedience movement from 1930 to 1932.
3: Mehta also took part in the Bardoli Satyagraha of 1928 for the farmers of Bardoli against the unjust raising of taxes. He was sentenced for 3 years in prison for participating in the Quit India movement. He spent 7 years in prison during the British Raj. A milestone in his life came along when, as the chairman of the Balwant Rai Mehta Committee in 1957, he would institute the scheme of democratic decentralization, which finally came to be known as Panchayati Raj, a scheme that revolutionized welfare at the grassroots level.
4: The committee submitted a report suggesting the building of the now famous three-tier Panchayati Raj system, giving legislative bodies complete control over planning and administration. It was a brilliant move, one whose benefits are reaped even to this day. Being one of the masterminds behind the Panchayati Raj system earned him the title of Architect of Panchayati Raj.
1: और अब हम याद कर रहे हैं चर्चित लेखिका सुमित्रा नंदन पंत की मानस पुत्री और समकालीन कवित्री रश्मि प्रभा की मां सरस्वती प्रसाद को। सरस्वती प्रसाद के प्रकाशित संग्रह नदी पुकारी सागर और एक थी तरु और प्रकाशित रचनाएं रही हैं कादम्बिनी, साप्ताहिक हिंदुस्तान और नैन्सी। और इसके बाद हम याद कर रहे हैं भारत के हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के विद्वान व्यक्ति पंडित विश्व नारायण भातखंडे को।

वैज्ञानिक पद्धति से व्यवस्थित, वर्गीकृत और मानकीकृत करने का पहला आधुनिक प्रयास किया था। उन्होंने देश भर में घूम घूम कर उस्तादों से बंदिशें एकत्र करने, विभिन्न रागों पर उनसे चर्चा करके उनके मानक रूप निर्धारित करने और संगीत शास्त्र के रहस्यों से पर्दा उठाते हुए अनेक विद्वत्तापूर्ण पुस्तकें लिखने का महत्वपूर्ण कार्य किया था।

एंड मुकेश, टुडे इज द बर्थडे ऑफ वन सिंगर जिनके पहले जैसा भी उनके जैसा कोई नहीं हो सका और मेरे ख्याल से कोई दूसरा होगा भी नहीं. वी आर टॉकिंग अबाउट लकी अली. यस, उनका नाम सुनते ही एवरीबडी प्रॉबली इंडल्जेस इन सम काइंड ऑफ नॉस्टैल्जिया बिकॉज ही हैज गिवन सम वेरी वेरी मेमोरेबल सॉन्ग्स एंड स्पेशली जो 90s के हम लोग मिलेनियल्स हैं, वी वुड रिमेंबर सम ऑफ दीज अमेजिंग सॉन्ग्स दैट केम फ्रॉम लकी अली. लेट्स लिसन टू अ मेडले.

0: तो श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए मुकेश कुमार और सायरा मुश्तबा को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कीजिए हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर।
1: That's right, and probably spent your evening listening to some very memorable Lucky Ali songs. And usi ke saath dijiye ijazat Mukesh aur Saira ko.
0: Namaskar.

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाने के लिए काम कर रही है। उन्होंने बताया कि इसके लिए करीब 1,00,000 करोड़ रुपए के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना शुरू की गई है। श्री मोदी ने आज 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि कई देशों के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौते से युवाओं के लिए नए अवसर सृजित हुए हैं।
1: भारत ने बीते कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किए हैं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA हमारे युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार बना रहे हैं। इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए नई पार्टनरशिप्स के रास्ते खुलते हैं और हमारे युवाओं के लिए करियर में नई पॉसिबिलिटीज बनती हैं।
0: इससे पहले नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य पर एक सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन में भारत का हिस्सा वैश्विक औसत से आधे से भी कम है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत ने पर्यावरण से संबंधित हर क्षेत्र में असाधारण प्रगति की है। श्री मोदी ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए भारत अन्य देशों के साथ मिलकर लगातार काम कर रहा है।
1: हम दुनिया को साथ लेकर पर्यावरण सुरक्षा के नए मापदंड स्थापित कर रहे हैं। वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड की सोच हो या इंटरनेशनल सोलर अलायंस CDRI, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, मिशन लाइफ, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, ऐसा हर एक मंच क्लाइमेट और एनवायरनमेंट पर भारत के डेडिकेटेड कमिटमेंट्स का प्लेटफॉर्म बन रहा है।
0: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि भारत की कुल स्थापित विद्युत क्षमता में अब गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों का योगदान 54% से अधिक है, जो पूर्व निर्धारित लक्ष्य से कहीं ज्यादा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड और कर्नाटक उच्च न्यायालयों में 14 न्यायिक अधिकारियों की को न्यायाधीश और अपर न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। ये नियुक्तियां मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद की गई हैं। दक्षिण तट रेलवे के 73 किलोमीटर लंबे सावल्यापुरम गुंटूर खंड पर इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम के उन्नयन के लिए 142 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजना को मंजूरी दे दी गई है। रेल मंत्रालय ने बताया कि इस खंड को 25 किलोवोल्ट की एक यूनिट से 25 किलोवोल्ट की दो यूनिट के रूप में अपग्रेड किया जाएगा। वहीं पश्चिम रेलवे के उधना उकाई सोनगढ़ खंड पर 4 लेन वाले रोड ओवरब्रिज के निर्माण के लिए भी 133 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। रेल मंत्रालय ने बताया कि पुल के हिस्से में 91 करोड़ रुपए से अधिक की अनुमानित लागत वाले ओपन वेब गर्डर सम्मिलित होगा। भारत ने नेपाल को 11 टन राहत सामग्री की एक खेप भेजी है। इसमें दवाएं, फोरेंसिक का सामान, टेंट, हाइजीन किट, स्लीपिंग बैग और अन्य आवश्यक सामग्री शामिल हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल को बाढ़ त्रासदी से उबरने में सहायता के लिए राहत सामग्री ले गया यह वायुसेना का नवा विमान था। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत नेपाल की सहायता जारी रखेगा। पिछले महीने नेपाल में भीषण बाढ़ में जान माल का व्यापक नुकसान हुआ था। नेपाल के वित्त मंत्री डॉक्टर स्वर्णिम वागले ने कहा कि भारत और नेपाल के पास मौजूदा मजबूत संबंधों के आधार पर अपनी साझेदारी को नया रूप देने का अवसर है। आज नई दिल्ली में बदलते वैश्विक माहौल में भारत नेपाल संबंधों पर नए सिरे से विचार विषय पर सेमिनार में डॉक्टर वागले ने संपर्क सुविधा और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने पर जोर दिया। एशियाई खेलों का भव्य उद्घाटन समारोह आज जापान के आइची नागोया में हुआ। भारतीय निशानेबाज मनु भाकर और कबड्डी खिलाड़ी पवन सहरावत ने 501 सदस्यीय भारतीय दल की अगुवाई की। इससे पहले टेकबॉल स्पर्धा में भारत की क्विंसी डिसोजा कल कांस्य पदक मुकाबले खेलेंगी। महिला सिंगल सेमीफाइनल में इंडोनेशिया की सुमाया ने क्विंसी डिसोजा को 2-1 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams.

5:11 आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड रेडियो स्टेशन 100.1। आपके साथ मैं सीमा वर्मा, प्रोग्राम गाते गुनगुनाते। आइए थोड़ा सा गाएं, थोड़ा सा गुनगुनाएं और आगे बढ़ें।

छुट्टी।

तो साहब, ये जो पहला गीत अभी हमने सुना, अगर आपने इनके इसके जो लिरिक्स हैं इस पर ध्यान दिया होगा, तो भाई अब यही है कि रातें जो हैं वो लंबी हो गई हैं और दिन छोटे हो गए हैं, और कुछ आम की बात की है, तो जहाँ तक आम की बात है साहब, आम के अचार तो डाल दिए गए हैं, है ना, और मार्केट में कच्चा आम जो है वो भी अच्छा खासा महंगा हो गया है, क्योंकि कच्चे आम की ज़रूरत चटनी वगैरह के लिए पड़ती है, ये एक खैर अलग बात है। अब देखिए, साधारण से बातें जो होती हैं वो ज़िंदगी में बहुत मायने रखती हैं, और जब हम इस तरह की बातें करते हैं तो भाई दिल तो हमारा एक तरह से धड़कता है ना, हमारी धड़कन की जो लय है वो एक जैसी है। और ये जो गीत अभी हमने सुना, इस गीत में कुछ रातें लंबी की बात हो रही है, तो आप देखिएगा मौसम जो है वो बहुत जल्दी जल्दी बदलता है। अभी सावन हुआ, भादो, उसके बाद अगला महीना, और 1 नवंबर को तो मुझे याद है जब हम स्कूल में हुआ करते थे तो विंटर यूनिफॉर्म कंपलसरी होती थी, चाहे गर्मी लगे चाहे जो है, विंटर यूनिफॉर्म तो पहननी है। तो अब स्कूल तो काफ़ी समय से छूटा है, लेकिन जो यंग पेरेंट्स हैं वो ये बता सकते हैं कि बच्चों के अभी भी स्कूल में ये हाल है। साहब, तात्पर्य ये है कहने का कि अब मौसम जो है वो ज़बरदस्त करवट लेने वाला है, और कुछ ही समय में, एक आध महीने में, आपको जो ठंड है वो हल्की हल्की गुलाबी ठंड महसूस होने लगेगी। यही जीवन है, यही परिवर्तन है, धीरे धीरे सब चीज़ें परिवर्तित होती हैं, फिर लौट कर आती हैं, है ना, और हम इंसान इस परिवर्तन के साथ खुद को भी परिवर्तित करते हैं, खुद को बदलते रहते हैं, और यही सच है। बातों के बीच गीतों की दिलकश दखलंदाजी, और ये दखलंदाजी दिलकश है तो इसीलिए दिल को भाती है ना।

छैया छैया करते हैं हम अपनी ज़िंदगी में। और ज़िंदगी में कई बार ऐसा होता है, हम अपने फ्रेंड से कहते हैं, हम अपने फैमिली मेम्बर से कई बार चाय की चुस्कियाँ लेते हुए कहते हैं कि अगर मैं 20 साल पहले होती तो ऐसे करती, अगर मुझे एक बार फिर से मेरे कॉलेज डेज आ जाएं या मेरे स्कूल डेज आ जाएं तो मैं वो गलतियां नहीं दोहराऊंगा, नहीं दोहराऊंगी जो मैंने की हैं। तो ये हर किसी के साथ होता है, लेकिन ये भी बात है कि ज़िंदगी जो है वो बहुत कुछ सिखा देती है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, संजीदगी बढ़ती है और एक्सपीरियंसेस बढ़ते हैं, तजुर्बे होते हैं, कुछ बड़ों की जो

इमोशंस हैं उन्हें हम सीरियसली लेते हैं और फिर हमारे जो हृदय है उसमें एक परिवर्तन आता है, हमारी सोच में परिवर्तन आता है और फिर हम अपनी ज़िंदगी को गंभीरता से लेना शुरू करते हैं। हम वो सब करने से पहले सोचते हैं, यानी आप जब छोटी उम्र के होते हैं हमने कितनी गलतियां की हैं, हमारे पेरेंट्स ने हमें कितना मना किया कि नहीं ये ऐसा नहीं करना, तो ऐसा होता है पेरेंट्स ने बोल दिया नहीं करना तो करके देखना है। लेकिन फिर वही बात है कि जब बच्चे जो हैं वो बड़े होते हैं, जवान होते हैं, खुद पेरेंट्स बनते हैं, तब उन्हें ये एहसास होता है। एक बहुत खूबसूरत शेर आपकी नज़र करती हूँ कि उफ़ कितना रोया मैं उसकी खातिर, उफ़ कितना रोया मैं उसकी खातिर, आज सोचता हूँ तो हंसी आती है। बस यही सार है मेरी कही बात का कि जब जिस वक्त हम जिस पोजीशन पर होते हैं उस समय हम खुद को संभालें ना संभाल पाएं, लेकिन कुछ समय बाद हमारी जो लय है जो बिगड़ जाती है वो फिर वापस लय आती है, फिर पटरी पर ज़िंदगी आती है और फिर खनखनाहट हमारी ज़िंदगी में लौट कर आती है ना। ये गाना भी कुछ ऐसी ही बात कह रहा है, सुने।

0: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो? इस बॉक्स में आप सब के लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
1: मैम, मेरे वाले में तो HIV से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं
2: और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
3: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है
4: और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से HIV हो सकता है।
5: मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV का ज्यादा रिस्क।
0: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं। तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ, ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
6: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री AIDS हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
7: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

वेलकम बैक जी, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड रेडियो स्टेशन 100.1। आज शनिवार की जानदार शानदार शाम आपके साथ, आपकी दोस्त सीमा वर्मा हमारे साथ। बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारे गीत, एक मेरी आवाज़ के पीछे जो आप सुन रहे हैं,

अकेले हैं तो क्या गम है, चाहे जो हमारे बस में नहीं। कहने का मतलब ये कि जब दो लोग कट जाते हैं अपने अपनों से, तो वो दो लोग अकेले ज़रूर होते हैं लेकिन एक दूसरे के लिए तो होते हैं। और उसके ऑपोजिट अगर हम देखें, कोई अकेला शख्स जो सिर्फ अकेला होता है, वो समय वो फेज़ ऐसा होता है जब आपको कुछ नहीं सोचता है और आपको लगता है कि जहाँ भी कदम बढ़ाया आगे मंजिल नहीं नज़र आ रही है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आता है, और वो क्या ट्विस्ट आता है, पहले ये गीत

गाते गुनगुनाते का सफर चल रहा है आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड 100.1 में, और शनिवार है साहब, और शनिवार को और खूबसूरत बना रहे हैं, शनिवार की शाम को और खूबसूरत बना रहे हैं ये गीत जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, और आप वहां, मैं आपकी दोस्त सीमा वर्मा यहाँ। और कभी ज़िंदगी में जब अपने मन मुताबिक कुछ नहीं होता है तो फिर लगता है कि अब किसी भी चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। हमारा दिल कहता है, ऐसा होता नहीं है लेकिन हमारा दिल कह रहा होता है कि अब जहाँ देख रहे हैं वहाँ अंधेरा है, कोई अपना नहीं है, किसी चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। और वो जो वक्त होता है साथियों, वो कांटे नहीं कटता है, ये बात तो तय है। लगता है कि समय जो है वो बड़ी धीमी चाल से चल रहा है, जबकि ट्विस्ट ये होता है कि समय तो उसी चाल से चल रहा होता है, लेकिन हमारा पूरा का पूरा फोकस जो है वो उस पॉइंट पर हो जाता है कि हम उदास हैं। अगर हम इसके विपरीत कोई बात देखते हैं तो भाई यही कहना होगा कि जब इस तरह का वक्त आए तो धैर्य से काम करना चाहिए, और धैर्य अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ होती है। हमें लगता है कि हम अकेले हैं, हमें लगता है कि नीचे देख रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ हमारे दो कदम ही हमें नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये वो वक्त होता है, ये ऐसा क्रूशल टाइम होता है जब जिस पर भी आप विश्वास रखते हैं उसने शायद आपको अपनी गोद में उठाया होता है, इसीलिए आपको सिर्फ और सिर्फ अपने दो कदम नज़र आते हैं, बाकी के दो कदम जो हैं वो नज़र नहीं आते हैं। और जानते हैं फिर अंधेरे के बाद सवेरा होना तो लाजमी है ना, हो ही नहीं सकता कि सुबह का जो सूरज है वो आपको दर्शन ना दे मुस्कुराते हुए। जिंदगी में भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी माध्यम से सूरज की रोशनी आप तक पहुंचती है, और फिर आप कहते हैं ऐसा सोचा ना था,

वेलकम बैक जी, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड रेडियो स्टेशन 100.1। आपके साथ मैं सीमा वर्मा और प्रोग्राम गाते गुनगुनाते। और अब समय जो है वो ऐसा है कि बताने का मन नहीं कर रहा, यानी आप समझ ही गए होंगे ज़्यादा समय हमारे पास नहीं है। अभी कल ही मैं किसी का लिखा हुआ, मुझे याद नहीं है मैंने कहाँ पढ़ा, लेकिन कल ही मैं कुछ पढ़ रही थी तो ये किसी ने लिखा है, आप के साथ साझा कर रही हूँ कि सिर्फ 4 महीने बचे हैं साल में, सिर्फ 4 महीने बचे हैं साल में, कोई बदलाव नहीं हुआ हमारे हाल में। पुरानी उलझने सुलझने का नाम नहीं लेती, पुरानी उलझने सुलझने का नाम नहीं लेती। हम हर दिन फंस जाते हैं एक नए जंजाल में। अब ये अपने आप में राइम कर रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें सकारात्मकता के बीज जो है वो तो बुने होंगे। पता है आपको, कई बार हमें ऐसा फील होता है, लेकिन याद करिए ये वही साल है जिसकी शुरुआत में आपने रेजोल्यूशंस ली थी और आपने खुद से वादा किया था कि आपने जो सोचा है वो आप करेंगे। अब वही बात हो गई है कि पानी जो है अगर ग्लास में आधा है तो या तो आप कहें कि ग्लास जो है वो आधा खाली है, या आप कहें जो ग्लास है वो आधा भरा हुआ है। मैं तो कहती हूँ कि जब आपके हिस्से में बहुत सारे सितारे आ जाएं, चाहे चांद ना आए, बहुत सारे सितारे आ जाएं, तो भी उन सितारों की इतनी रोशनी तो हो जाएगी कि आपको आगे बढ़ने का साहस मिल जाए, है ना।

तो साहब, एक पॉजिटिव नोट के साथ हम आपको एफएम गोल्ड के साथ छोड़े जा रहे हैं, यानी अब अपनी दोस्त सीमा वर्मा को इजाज़त दीजिए। ज़िंदगी में पॉजिटिविटी जो है उसे हमेशा गांठ बांध कर अपने साथ रखिए, क्योंकि ये हर हाल में आपका साथ निभाएगी। इजाज़त दीजिए सीमा वर्मा को, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। रहिए एफएम गोल्ड के साथ। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार निजी क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाने के लिए काम कर रही है। उन्होंने बताया कि इसके लिए करीब 1,00,000 करोड़ रुपए के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना शुरू की गई है। श्री मोदी ने आज 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि कई देशों के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौते से युवाओं के लिए नए अवसर सृजित हुए हैं।
1: भारत ने बीते कुछ

0: वर्षों में करीब 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किए हैं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA हमारे युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार बना रहे हैं। इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए नई पार्टनरशिप्स के रास्ते खुलते हैं और हमारे युवाओं के लिए करियर में नई पॉसिबिलिटीज बनती हैं।
1: इससे पहले नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य पर एक सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन में भारत का हिस्सा वैश्विक औसत के आधे से भी कम है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत ने पर्यावरण से संबंधित हर क्षेत्र में असाधारण प्रगति की है। श्री मोदी ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए भारत अन्य देशों के साथ मिलकर लगातार काम कर रहा है।
0: हम दुनिया को साथ लेकर पर्यावरण सुरक्षा के नए मापदंड स्थापित कर रहे हैं। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड की सोच हो या इंटरनेशनल सोलर अलायंस CDRI, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, मिशन लाइफ लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, ऐसा हर एक मंच क्लाइमेट और एनवायरनमेंट पर भारत के डेडिकेटेड कमिटमेंट्स का प्लेटफॉर्म बन रहा है।
1: रेलवे ने सोलापुर डिवीजन के 7 स्टेशनों पर 200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की व्यवस्था को मंजूरी दे दी है। इसके अंतर्गत मध्य रेलवे के मोहोल, मुंधेवाड़ी, बाले, सोलापुर, होटगी जंक्शन, होटगी ए कैबिन, शाहबाद और वाड़ी जंक्शन पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की व्यवस्था की जाएगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि आधुनिक सिग्नलिंग प्रणाली पूरे डिवीजन में रेलवे सिग्नलिंग बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगी और स्वदेश स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली कवच के कार्यान्वयन को सुगम बनाएगी। उत्तर पूर्व रेलवे के लखनऊ खंड में 600 से अधिक रूट किलोमीटर पर कवच 4.0 लगाने को मंजूरी दे दी गई है। इस परियोजना की लागत 250 करोड़ रुपए से अधिक है। दक्षिण तट रेलवे के 73 किलोमीटर लंबे सावल्यापुरम गुंटूर खंड पर इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्शन सिस्टम के उन्नयन के लिए 142 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजना को मंजूरी दी गई है। रेल मंत्रालय ने बताया कि इस खंड को 25 किलोवाल्ट की एक यूनिट से 25 किलोवाल्ट की दो यूनिट के रूप में अपग्रेड किया जाएगा। वहीं पश्चिम रेलवे के उधना उकाई सोनगढ़ खंड पर 4 लेन वाले रोड ओवरब्रिज के निर्माण के लिए भी 133 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। भारत ने नेपाल को 11 टन राहत सामग्री की एक और खेप भेजी है। इसमें दवाएं, फॉरेंसिक का सामान, टेंट, हाइजीन किट, स्लीपिंग बैग और अन्य आवश्यक सामग्री शामिल है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल को बाढ़ त्रासदी से उबरने में सहायता के लिए राहत सामग्री ले गया ये वायुसेना का 9वां विमान था। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत नेपाल की सहायता जारी रखेगा। पिछले महीने नेपाल में भीषण बाढ़ में जानमाल का व्यापक नुकसान हुआ था। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ डूसू चुनाव में 3 बड़े पद जीते। ABVP के यश डबास अध्यक्ष चुने गए, जबकि रिया छावड़ी सचिव और लक्ष्य राज सिंह संयुक्त सचिव बने। निर्दलीय उम्मीदवार दीपांशु शौकीन उपाध्यक्ष पद पर विजयी रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृहमंत्री अमित शाह ने डूसू चुनाव में ABVP की जीत पर बधाई दी है। एशियाई खेलों का भव्य उद्घाटन समारोह आज जापान के आईची नागोया में हुआ। भारतीय निशानेबाज मनु भाकर और कबड्डी खिलाड़ी पवन सहरावत ने 501 सदस्य भारतीय दल की अगुवाई की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi distributed more than 51,000 appointment letters to newly appointed youths in various government organizations at the 20th Rozgar Mela this afternoon through video conferencing. Speaking on the occasion, Mr. Modi said in recent years, the central government has consistently focused on equipping the youth with the skills and opportunities needed to prepare for the future.
0: आज देश के 51,000 से अधिक युवाओं को सरकारी सेवा के लिए नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं।

0: आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति विश्लेषण।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम विश्लेषण के नए अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। श्रोताओं, हर युवा चाहता है कि उसे अच्छी नौकरी मिले, अपने पैरों पर खड़ा हो और अपने परिवार की जिम्मेदारियां पूरी कर सके। रोजगार केवल आमदनी का साधन नहीं है बल्कि ये आत्मविश्वास और बेहतर भविष्य का रास्ता भी है। देश के युवाओं को रोजगार के अवसरों से जोड़ने के लिए सरकार की ओर से रोजगार मेले आयोजित किए जा रहे हैं। इन मेलों में नौकरी चाहने वाले युवाओं और नौकरी देने वाले संस्थान

0: किसानों को एक ही जगह पर लाया जाता है। इससे युवाओं को नौकरी के लिए आवेदन करने और सीधे बातचीत या साक्षात्कार का अवसर मिलता है। आज 20वें रोजगार मेले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे।
1: आज देश के 51,000 से अधिक युवाओं को सरकारी सेवा के लिए नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं। मैं आप सभी युवा साथियों को और आपके परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज आप सभी एक ऐसे समय में भारत सरकार से जुड़े हैं जब देश एक बहुत बड़े लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है और ये लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनाने का।
0: ये रोजगार मेला देश भर में 45 स्थानों पर आयोजित किया गया। इन नवनियुक्त युवाओं को राजस्व विभाग, रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग और रक्षा मंत्रालय सहित कई सरकारी विभागों में नियुक्त किया गया है। इस 20वें रोजगार मेले के साथ ही रोजगार मेलों के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में करीब 12,75,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में हम जानेंगे कि रोजगार मेले युवाओं को नौकरी से कैसे जोड़ रहे हैं, कौशल विकास के क्या अवसर मिल रहे हैं और सरकारी सेवा में शामिल होने वाले युवाओं की क्या जिम्मेदारियां हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं रोजगार मेला क्या है और युवाओं को इससे किस तरह का लाभ मिलता है।
2: श्रोताओं, रोजगार मेला एक ऐसा मंच है जहां नौकरी चाहने वाले और नौकरी देने वाले आमने सामने आते हैं। यहां युवा उपलब्ध नौकरियों के बारे में जानकारी लेते हैं, आवेदन करते हैं और जरूरत के अनुसार साक्षात्कार भी देते हैं। भारत सरकार के कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय कौशल विकास निगम यानी NSDC भी देश भर में रोजगार मेले आयोजित करने में सहयोग करता है। इसके लिए क्षेत्रीय कौशल परिषदों, प्रधानमंत्री कौशल केंद्रों और निजी कंपनियों के साथ मिलकर काम किया जाता है। रोजगार मेले मुख्य रूप से 18 से 35 वर्ष की आयु के युवाओं को ध्यान में रखकर आयोजित किए जाते हैं। इनमें 8वीं, 10वीं और 12वीं कक्षा पास युवाओं के साथ साथ ITI डिप्लोमा और स्नातक डिग्री वाले युवा भी शामिल हो सकते हैं। जिन युवाओं ने कौशल प्रशिक्षण लिया है और जरूरी मानकों के अनुसार प्रमाण पत्र प्राप्त किया है, वे भी इन रोजगार मेलों में हिस्सा ले सकते हैं। श्रोताओं, रोजगार मेले की जानकारी युवाओं तक पहुंचाने के लिए अलग अलग माध्यमों का इस्तेमाल किया जाता है। इनमें विज्ञापन, SMS, सोशल मीडिया और कॉलेज तथा विश्वविद्यालयों में आयोजित कार्यशालाएं शामिल है। रोजगार मेले में केवल नौकरी की जानकारी नहीं दी जाती, यहां युवाओं के लिए परामर्श सत्र भी आयोजित किए जाते हैं। इसके अलावा कौशल विकास प्रशिक्षण में पंजीकरण, मुद्रा ऋण की जानकारी और कौशल प्रदर्शनियां भी लगाई जाती हैं। इन मेलों का एक उद्देश्य ये भी है कि युवाओं को उनकी योग्यता और कौशल के अनुसार रोजगार के अवसर मिल सके। श्रोताओं, राष्ट्रीय रोजगार मेले की शुरुआत वर्ष 2022 में हुई थी। 22 अक्टूबर 2022 को आयोजित पहले राष्ट्रीय रोजगार मेले में 75,000 से अधिक लोगों को नियुक्ति पत्र दिए गए। इसके बाद लगातार अलग अलग चरणों में रोजगार मेले आयोजित किए गए। नवंबर 2022 में दूसरे रोजगार मेले में करीब 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए। वर्ष 2023 में भी कई रोजगार मेले आयोजित हुए और बड़ी संख्या में युवाओं को नियुक्ति पत्र मिले। फरवरी 2024 में 12वें रोजगार मेले में 1,00,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए। इसके बाद अक्टूबर और दिसंबर 2024 में आयोजित रोजगार मेलों में भी बड़ी संख्या में युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए। अप्रैल 2025 में आयोजित 15वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। जुलाई 2025 में आयोजित 16वें रोजगार मेले में भी 51,000 से अधिक युवाओं को सरकारी सेवा में नियुक्ति पत्र मिले और अब आज 20वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। श्रोताओं, इन रोजगार मेलों का एक महत्वपूर्ण पहलू ये है कि यहाँ नौकरी के साथ साथ कौशल और आगे बढ़ने के अवसरों की जानकारी भी दी जाती है। युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर केवल सरकारी नौकरियों तक सीमित नहीं है, निजी क्षेत्र, नए उद्योग और स्टार्टअप भी रोजगार के नए रास्ते खोल रहे हैं।
0: श्रोताओं, आज काम करने का तरीका तेजी से बदल रहा है, नई तकनीक आ रही है और नए तरह के काम सामने आ रहे हैं। इसलिए युवाओं के लिए केवल नौकरी पाना ही नहीं बल्कि लगातार नई चीजें सीखना भी जरूरी है। आइए अब जानते हैं कि युवाओं को भविष्य की नौकरी के लिए तैयार करने में कौशल और नई तकनीक क्या भूमिका निभा रही है। इसके साथ ही कौशल विकास, नए रोजगार के अवसर और सरकारी सेवा में आने वाले युवाओं की जिम्मेदारी किस तरह एक दूसरे से जुड़ी है।
3: श्रोताओं, युवाओं को भविष्य के रोजगार के लिए तैयार करने के लिए सरकार की ओर से राष्ट्रीय शिक्षा नीति, स्किल इंडिया मिशन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और अप्रेंटिसशिप जैसे प्रयास किए जा रहे हैं। इसी दिशा में पीएम सेतु के तहत 1000 सरकारी आईटीआई को आधुनिक बनाने के लिए 60,000 करोड़ रुपए के निवेश का प्रावधान किया गया है। इसमें उद्योगों की भागीदारी भी सुनिश्चित की जा रही है। श्रोताओं, आज छोटे शहरों और कस्बों के युवा भी अपने हुनर और नए विचारों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। भारत के करीब आधे मान्यता प्राप्त स्टार्टअप टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में है, यानी रोजगार और कारोबार के नए अवसर केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं है। निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का भी उल्लेख किया गया है। इस योजना पर करीब 1,00,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इसके जरिए करीब 2 करोड़ युवाओं को पहली बार कार्यबल का हिस्सा बनने का अवसर देने की बात कही गई है। इस योजना में पहली बार नौकरी पाने वाले युवाओं को 15,000 रुपए तक का प्रोत्साहन देने का प्रावधान है। नए रोजगार देने वाले नियोक्ताओं को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। श्रोताओं, रोजगार के अवसर बढ़ने के लिए देश की अर्थव्यवस्था का मजबूत होना बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री ने 20वें रोजगार मेले में बताया कि वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत की विकास दर 7.8% रही और निवेश में करीब 12% की बढ़ोतरी हुई। अब बात करते हैं सरकारी सेवा में नियुक्त होने वाले युवाओं की। नियुक्ति पत्र मिलने के साथ ही युवाओं के लिए एक नई जिम्मेदारी शुरू होती है। सरकारी कर्मचारी का काम सीधे आम लोगों के जीवन से जुड़ा होता है। किसी बुजुर्ग की पेंशन, किसी विद्यार्थी की छात्रवृत्ति, किसी किसान को मिलने वाली सुविधा या किसी दूसरे नागरिक का कोई काम सरकारी व्यवस्था से जुड़ा हो सकता है। ऐसे में सरकारी कर्मचारी का व्यवहार और काम करने का तरीका बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। 20वें रोजगार मेले में प्रधानमंत्री ने नए कर्मचारियों से कहा कि वे उन परेशानियों को समझें जिनसे आम लोगों को गुजरना पड़ता है और कोशिश करें कि दूसरे नागरिकों को ऐसी परेशानियों का सामना न करना पड़े। श्रोताओं, सरकारी कर्मचारियों को लगातार सीखते रहने और अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए मिशन कर्मयोगी भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसके तहत आई गॉट कर्मयोगी एक ऑनलाइन मंच है जहां सरकारी कर्मचारियों के लिए अलग अलग प्रशिक्षण और सीखने के पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं। प्रधानमंत्री ने 20वें रोजगार मेले में बताया कि इस प्लेटफॉर्म से 1,70,00,000 से अधिक सरकारी कर्मचारी जुड़ चुके हैं। नए सरकारी कर्मचारियों के लिए कर्मयोगी प्रारंभ की व्यवस्था भी की गई है। इसका उद्देश्य नए कर्मचारियों को सरकारी कामकाज और उनकी जिम्मेदारियों को समझने में मदद करना है।
0: श्रोताओं, रोजगार मेले की पूरी यात्रा हमें ये बताती है कि रोजगार केवल नियुक्ति पत्र मिलने तक सीमित नहीं है। नौकरी के साथ कौशल सीखना, नई तकनीक को समझना और अपनी जिम्मेदारी को अच्छी तरह निभाना भी जरूरी है। इसी के साथ कार्यक्रम विश्लेषण में आज के लिए बस इतना ही। इस कार्यक्रम को तैयार किया हमारे सहयोगी उत्पल कुमार ने, प्रस्तुति सहायक अरुण दीप सिंह। नमस्कार।

0: 234-231-0481 and 237-1-7106. And those of you who would be calling us from outside Delhi, please prefix 011. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Prachi Priya.
1: नमस्कार. मार्केट मंत्र में आपका अभिनंदन. श्रोताओं, व्यापार, अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार से जुड़ा कोई भी सवाल पूछने के लिए आप डायल कीजिए 2331-4444, 2331-0481 और 2371-7106. दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले दिल्ली का एसटीडी कोड 011 भी जरूर डायल करें. श्रोताओं, चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ विश्लेषक शरद कोहली. शरद जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन.
0: A warm welcome, शरद.
2: धन्यवाद प्राची, धन्यवाद राजेश, सभी आकाशवाणी के श्रोताओं को मेरा अभिवादन.
1: चर्चा शुरू करेंगे मगर आइए उससे पहले सुने सुर्खियां.
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडेक्सेस डिक्लाइन फॉर सिक्स्थ कंसेक्यूटिव वीक. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स आर ओपनिंग न्यू डोर्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर कंट्रीज यूथ. And US stock market indices wrap up week on mixed note.
1: प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांकों में लगातार छठे सप्ताह गिरावट दर्ज की गई. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुक्त व्यापार समझौते देश के युवाओं के लिए अवसर के नए द्वार खोल रहे हैं और अमेरिका के शेयर बाजार इस सप्ताह मिश्रित रुझान के साथ बंद हुए.
0: Here's a disclaimer. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: और अब जान लेते हैं श्रोताओं कि सप्ताह के अंदर अंदर किस तरीके से हमारे शेयर सूचकांकों ने व्यवहार किया, मार्केट का हाल कैसा था. तो प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांकों में लगातार छठे सप्ताह गिरावट दर्ज की गई. भू राजनीतिक तनाव, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों की बिकवाली और लंबे समय तक ऊंची ब्याज दरों के माहौल को लेकर चिंताओं ने निवेशकों को सतर्क रखा. इस सप्ताह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 487 अंक यानी लगभग 0.7% गिरकर 74,295 पर बंद हुआ. वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 52 अंक यानी 0.2% लुढ़ककर 23,346 पर बंद हुआ. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के व्यापक शेयर बाजार में मिड कैप 100 सूचकांक बिना किसी बड़े बदलाव के बंद हुआ, जबकि निफ्टी स्मॉल कैप 100 सूचकांक में सप्ताह के दौरान लगभग 0.2% की गिरावट आई. क्षेत्रीय स्तर पर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, रेल्टी और आईटी क्षेत्र में गिरावट रही. वहीं एफएमसीजी, हेल्थ केयर और मेटल में बढ़त दर्ज की गई. अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में इस सप्ताह रुपया 33 पैसे कमजोर होकर 1 अमरीकी डॉलर की तुलना में 95.88 रुपए पर बंद हुआ. और इसी बीच वेस्ट बंगाल से हमारे साथ बबलू जुड़ रहे हैं. बबलू जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए.
3: हाँ मैडम,
1: बबलू जी, आपकी तरफ से थोड़ी डिस्टर्बेंस आ रही है, आप प्लीज अच्छे नेटवर्क क्षेत्र में आकर के हमसे बात करिए.
3: क्या मैडम, मेरी आवाज आ रही है आपको?
1: हाँ जी.
3: हमें, मेरा सवाल ये है मैडम, भारत में रियल्टी सेक्टर जो भी बहुत डाउन चल रहा है, उसका क्या फ्यूचर है आगे में? क्या रियल्टी सेक्टर आगे और अच्छा करेगी या फिर वो बुरा हाल हो जाएगा रियल्टी सेक्टर का इंडिया में?
2: बबलू, देखिए, रियल एस्टेट सेक्टर का आप पूछ रहे हैं, तो रियल एस्टेट सेक्टर पूरे देश में बबलू यूनिफॉर्मली बिहेव नहीं करता है. हम पूरे देश को कहें कि वो एक साथ, आप जैसे अभी वेस्ट बंगाल में हैं, हो सकता है आप जहां रहते हो उस क्षेत्र में एक सैचुरेशन पॉइंट आया हो जिसकी वजह से आप ये सवाल पूछ रहे हैं. तो मुझे लगता है कि जो लैंड है, अभी भी प्राची और राजेश को भी बताना चाहूंगा, जो लैंड है जहां पर खासकर टाउन प्लानिंग हो रही है
1: जी,
2: जहां पर शहर एक्सपैंड करता है, वहां पर अभी भी बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट लोगों के लिए वो साबित हो रहा है. कहीं कहीं जो अपार्टमेंट्स हैं जहां पर सप्लाई ज्यादा है बबलू जी, वहां पर हमें देखने को मिल रहा है कि एक स्टैग्नेंसी आ गई है. तो ये, इसको हम यूनिवर्सली पूरे, क्योंकि आकाशवाणी तो पूरे देश में जाता है, तो मुझे लगता है मैं कुछ ऐसी बात बोलूं जो कि पूरे देश के लिए लागू हो तो वो बेहतर रहेगा. तो इसको हम यूनिवर्सली पूरे देश के लिए एक जैसा नहीं कह सकते. ऐसे ही मैं उदाहरण के तौर पर आपको बबलू बताऊं कि जो अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट है, जो बहुत महंगे वाले घर होते हैं उनमें कहीं रिसेशन नहीं है। बाकी ये आपको मैं इसका सिद्धांत बता देता

0: कि रियल एस्टेट सेक्टर कोविड के बाद से काफी बूम किया, और उसके बाद इसमें एक एक प्लेटो फेस आता है, ये एक इसकी साइकिल है, धीरे ऊपर जाता है, फिर इसमें प्लेटो फेस आता है, फिर उसके बाद थोड़ी करेक्शन होती है, तो इसको हम साइक्लिकल बोलते हैं। ये मतलब एक एक एक पूरा का पूरा साइकिल है, पहले ऊपर जाएगा फिर फ्लैट होगा। तो कुछ हो सकता है कुछ समय के लिए आपके जिस इलाके में आप हैं वहां पर आपको ऐसा महसूस हो रहा हो, तो मैं आपको सलाह दूंगा, अगर आप निवेश की दृष्टि से पूछ रहे हैं तो वैसे तो निवेश अपने आपके जो सलाहकार है उनसे करना चाहिए, पर आप किसी दूसरी स्टेट में जहां पर शहर चल रहा है वहां पर आप देख सकते हैं, शहर चलता है, आपको शायद जानकारी होगी, शहर भी चलते हैं, आपने अक्सर सुना होगा लोग जाते हैं, अरे यहाँ तो मॉल बन गया, यहाँ तो मार्केट बन गई, तो पहले था नहीं। तो मुझे लगता है उसको उस दृष्टि से आप इसको देखें और किसी दूसरे अन्य जगह पर आप ट्राई करें, मे बी आपका नजरिया बदलेगा। बाकी ओवरऑल आपके इलाके में आपकी बात सुन के लग रहा है ऐसे ही कि पर कुछ समय लगता है फिर उसको रिकवर करने।
1: जॉइनिंग अस फ्रॉम न्यू दिल्ली इज अमित झा। वार्म वेलकम अमित। हेलो Amit, can you hear us? I think we've lost touch with him. What?
2: हेलो
1: यश, या अमित?
2: सर आवाज आ रही है आपको?
1: बिल्कुल आ रही है, आप सवाल पूछे अपना।
2: हाँ सवाल सर। सर नमस्कार सर।
0: हाँ नमस्कार अमित।
2: सर मेरा प्रश्न ये है कि जैसे सर हम कोई कॉन्ट्रैक्ट है जैसे मान लीजिए एनएससी या बीएससी का, नेक्स्ट में रोल ओवर हो रहा है, रोल ओवर सर आप जानते होंगे डेरिवेटिव का।
0: हाँ जी।
2: तो रोल ओवर अगर ज्यादा हो रहा है तो इससे हम क्या अंदाजा लगा सकते हैं? और दूसरा सर, ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है या ओपन इंटरेस्ट घट रहा है, तो ये ओपन इंटरेस्ट क्या संकेत बताते हैं सर? धन्यवाद सर।
0: ओके चलिए, पहले आपने रोल ओवर का पूछा अमित, ये डेरिवेटिव्स में होता है, जब हम कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं तो उसको उसको जब जो एक्सपायरी डेट होती है उससे हम आगे बढ़ा देते हैं। तो ज्यादातर अमित देखा गया है, अगर मैं अपने तजुर्बे से बात करूं तो रोल ओवर जब होता है, जब जिस तरफ आप मार्केट को एक्सपेक्ट कर रहे थे और कॉन्ट्रैक्ट डेट पर आपको उसका उसके अनुकूल आपको नहीं लग रही है मार्केट, तो फिर आप उसको रोल ओवर करना चाहते हैं, वरना क्या होता है आपको फिर लॉस बुक करके बाहर आना पड़ता है। तो रोल ओवर यही बताता है, या फिर एक और केस में रोल ओवर होता है जहां पर जो ट्रेडर्स होते हैं बहुत बुलिश या बहुत बेरिश होते हैं, उनको लगता है कि अभी तो पूरा मुनाफा नहीं आया, अगले एक्सपायरी डेट पे और ज्यादा मुनाफा आएगा, ये भी कारण होता है रोल ओवर का। दूसरा आपने ओपन इंटरेस्ट पूछा, ओआई इसको बोलते हैं। ओपन इंटरेस्ट बताता है कि किसी पर्टिकुलर कॉल पर किसी पर्टिकुलर लेवल पर इस वक्त कितने ट्रेडर्स का ध्यान है, यानी कि कितने कॉन्ट्रैक्ट्स एक पर्टिकुलर लेवल पर बिल्डअप हो रहे हैं। क्योंकि आप ओआई पूछ रहे हैं तो मैं ये उम्मीद करता हूं अमित कि आप जानते हैं इसके बारे में कि कैसे जो ऑप्शन चेन होती है, अगर मैं ऑप्शन चेन के उदाहरण से लूं तो चेन में एक लेवल पर अगर ज्यादा ज्यादा ट्रेडर्स का वॉल्यूम बन रहा है उसको हम ओपन इंटरेस्ट कहते हैं। ओपन इंटरेस्ट हमें यह बताता है कि क्या इस लेवल पर बहुत सारे लोगों का इस समय ध्यान है, तो उसको फिर आप एक पैमाना मानकर आप अगला ट्रेड कर सकते हैं। बहुत टेक्निकल बात पूछी अमित ने, मुझे मेरे लिए थोड़ा सा रेवलेशन है कि अमित जो है डेरिवेटिव ट्रेडिंग में ट्रेड करते हैं, बहुत रेगुलर रेगुलर कॉलर है, पर थोड़ा अमित संभल के करा करिए, ये बहुत टेढ़ी खीर होती है और कभी कभी कभी कभी अक्सर धोखा भी दे जाती है, तो लॉट ऑफ पीपल बर्न देयर फिंगर्स। तो मैं उम्मीद करता हूं अमित कि आप इसको ख्याल रख के करेंगे, ध्यान से करेंगे, और ये भी उम्मीद रखता हूं ओआई और रोल ओवर आपको दोनों समझ आ गया होगा।
3: नई दिल्ली से हमारे साथ सतपाल जुड़ रहे हैं, महोदय कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
4: हेलो
3: जी सतपाल जी, अपना आप सवाल पूछिए।
4: हाँ कॉलेज जी और मार्केट मंत्रा टीम को नमस्कार।
0: नमस्कार जी,
4: मैं कॉलेज की वीडियो भी देखता हूँ, गोल्ड वाली वीडियो डेली देखता हूँ, लाइक भी करता हूँ
0: जी।
4: और मेरा क्वेश्चन ये सर, अभी जो लड़ाई चल रही है यूएस और ईरान की, इसके बीच में अभी गोल्ड का क्या सिचुएशन रहेगा? और दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो अब कौन सा सेक्टर आगे बढ़ेगा आने वाले 2 साल में, लार्ज कैप मिड कैप या स्मॉल कैप? थैंक यू।
0: चलिए आपका पहला सवाल, यूएस ईरान की लड़ाई चल रही है तो गोल्ड का, गोल्ड में तो वैसे ही सतपाल जी बहुत हलचल चल रही है आजकल, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, पर अभी यूएस के फेड ने रेट्स बढ़ाए तो गोल्ड ने उसको अच्छा डाइजेस्ट किया, उसको उसको पचाया, और गोल्ड अभी जो हमारी फ्राइडे को रात की जो सिचुएशन है उसमें कॉमेक्स में न्यूयॉर्क में काफ़ी बाय के कॉन्ट्रैक्ट्स बिल्डअप हुए हैं। तो लॉन्ग टर्म आउटलुक तो सतपाल जी गोल्ड की अच्छी है, काफ़ी शाइन का पहले ही बहुत चमकता है गोल्ड तो, और मुझे लगता है चमकने वाला है, और आपने लॉन्ग टर्म नजरिया रख के चले, पर एक डिस्क्लेमर जो शुरू में राजेश ने पढ़ा था उसका ध्यान रखें। और दूसरा आपने पूछा कौन सा सेक्टर मिड कैप या लार्ज कैप में चलेगा, मार्केट्स के लिए यू नो मैं आई एम श्योर हम डिस्कस करते हैं इसको बाद में, मार्केट्स के लिए बहुत टफ टाइम आया है। मुझे तो कई दफ़ा ऐसा लगता है मार्केट्स को किसी की नज़र लग गई है क्या हुआ है, क्योंकि 2024 के बाद से वो बिल्कुल निफ्टी ने तो नेगेटिव रिटर्न दिया। अगर निफ्टी 50 की बात करूं तो अभी सेक्टर के लिए मैं ये कहना चाहूंगा आप डिफेंस सेक्टर को देख सकते हैं, एनर्जी सेक्टर को देख सकते हैं सतपाल, पर थोड़ा सा मार्केट में संभल के चलने की इस समय जरूरत है, क्योंकि मार्केट अभी अमेरिका में जो सिचुएशन है, मार्केट्स हो क्या रहा है, हमें एक मिनट आपकी इजाजत से लेना चाहूंगा। मार्केट्स डोमेस्टिक फैक्टर्स को नहीं देख रही हैं, मार्केट जो है वो अंतर्राष्ट्रीय फैक्टर्स को देख रही है। क्रूड ऑयल की प्राइसेस हो गई अमेरिका में क्या, तो थोड़े से जो अंतर्राष्ट्रीय जियो इकोनॉमिक और जियो पोलिटिकल सिचुएशन है सतपाल जी, बहुत अच्छी नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा संभल के चलने की जरूरत है मार्केट में भी। बाकी आप डिफेंस और एनर्जी सेक्टर इस दो के आप नजर रख सकते, क्योंकि आपने सेक्टर पूछा है तो मैं बता रहा हूं। बाकी मार्केट में बहुत फूक फूक के पग धरना जिसको कहते हैं वो इस समय सिचुएशन है जी।
3: नई दिल्ली से हमारे साथ संजीव जुड़ रहे हैं। संजीव जी कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
5: हाँ नमस्कार कोहली साहब, नमस्कार टीम मार्केट मंत्रा।
0: नमस्कार संजीव बताइए।
5: हाँ कोहली साहब आपके आने का बहुत इंतजार रहता है हमें।
0: माय प्लेजर सर, मुझे आपसे बात करने का इंतजार रहता है, बताइए।
5: थैंक यू कोहली साहब, एक सवाल है। 2007 में हमने एक पेमेंट लिंक्ड फ्लैट में इन्वेस्टमेंट किया था
0: जी,
5: ज्वाइंटली
0: जी।
5: अच्छा वो प्रोजेक्ट तो थोड़ा डिले हो गया, मगर उसका ओवर द ईयर कुछ 4-5 साल पहले हमें उन्होंने सो कॉल्ड पोजेशन दे दिया।
0: अच्छा
5: प्रोजेक्शन देने के बाद उसकी रजिस्ट्री भी हो गई
0: जी
5: उस एरिया में कंसर्न
0: जी।
5: अब उसको अगर हमने बेचना है तो उसका व्हाट यू कॉल फ्रॉम डेट ऑफ प्रोजेक्शन या डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से कैपिटल गेन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से गिना जाएगा, कैसे होता कैलकुलेशन?
0: देखिए संजीव जी, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में बहुत सारे केसेस हैं कि पहले कुछ लोग रजिस्ट्री मानते थे, कुछ पोजेशन मानते थे, पर जनरली जहां बिल्डर की अलॉटमेंट होती है तो ज्यादातर जो केसेस हैं कोर्ट्स में और ट्राइब्यूनल में वो जिस डेट को आपको अलॉटमेंट होता है उस डेट से आपका मालकियत मान लेते हैं। तो आपको जब संजीव जी इस पे जब लेटर मिला होगा अलॉटमेंट का तो आप उस डेट से मान के चलेंगे, तो आप मेरे ख्याल क्योंकि 2007 का है तो मुझे लगता है आप शायद इंडेक्सेशन यूज करना चाहते होंगे, देखना चाहते होंगे, पर आपको ये पता होगा कि इंडेक्सेशन यूज करते हैं तो 20% पड़ता है, और अगर आप बिना इंडेक्सेशन के करें तो 12.5% पड़ता है। तो मैं संजीव आपको ये भी सलाह दूंगा कि दोनों ऑप्शंस को आप एक्सप्लोर करके देखें, विद इंडेक्सेशन 20%, विदाउट इंडेक्सेशन 12.5%, पर आप डेट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ द फ्लैट से आप इसको काउंट कर सकते हैं। बहुत सारे केसेस हैं, मुझे ना जाने ट्राइब्यूनल में किसी में रजिस्ट्री बोला है, किसी में पोजेशन बोला है, किसी में अलॉटमेंट बोला है, पर ज्यादातर कंसेंसस यही निकला कि इसको हम डेट ऑफ अलॉटमेंट से लेते हैं जी।
1: Hina Prasad joins us from Bengaluru. A warm welcome, Mr. Prasad.
6: Hi, good evening, Market Mantra. This is Hina Prasad from Bangalore. Hello, Rajesh ji. Hello, Priya ji.
3: Hello, sir.
6: Sharad ji, two questions.
0: Yes.
6: The first question is a lot of IPOs coming, from the leading companies.
0: Yeah.
6: One IPO is getting close on the 21st. I don't want to name the company.
0: Yeah.
6: At least in this volatile market, is it worth investing in this kind of a scenario? Is it worth in these leading companies? My second question is, this is a continuation of the question which I've asked about 2-3 weeks back.
0: Yeah.
6: So for the profit booking, now I am holding 30% of the defense sector, 20 each in banking, IT and FMCG.
0: Okay.
6: The balance 10 are in automobile and other few in this thing.
0: Okay.
6: In this, everything is in the profit, in the very good margin, except for the IT sector.
0: Okay.
6: So, which companies to be sold and how much to be sold in terms of percentage? Thank you. These are my two questions.
0: Okay. Although, Mr. Prasad, you have not named the companies, but the questions are quite, specific. But nevertheless, I'll try and answer. See, IPOs, I was reading a report on the recent IPOs which came, and it so came out that almost 4 or 5 of the IPOs are sort of listing at premium. Not all of them, So therefore, I feel that, you have to be very selective. So I can't generally, Mr. Prasad, say that what should, because some of the IPOs are quite attractive also. Whereas some of them may not be good enough. Some of them are not getting listed at their price band. They are getting listed below the issue price. So you have to, I think in an IPO, there needs to be a tick box, a checklist, who's the promoter, what are the prospects and so on. And then, of course, the market sentiment at that time also governs the

0: listing price. So, you know, a general view about IPOs, Mr. Prasad, cannot be given because I'll have to go into specific, which we don't name, as you rightly pointed out. Second is you spoke about defense sector and your IT sector. So therefore, I would not recommend, Mr. Prasad, booking a loss in IT sector. However, I would recommend booking some profit in the other sectors, like you mentioned about defense, you mentioned about FMCG, banking. So I may not hesitate to say that, you know, you can probably book profits. And I feel the situation in the market is such that if you take the profits home, you are a happy, you should be a happy man. You should be a lucky man, because a lot of people around the world at this time, at this point of time, are facing this problem. They are not able to book profits. So therefore, I would recommend how much profit to book. See, there are certain questions with Rajesh and Prachi would agree that it depends upon your overall portfolio, your requirements, your cash flow requirements, how long, what is your risk taking appetite, what's your age, what's your remaining portfolio like. So, you know, Mr. Prasad, I hope you understand that these are the things which we need to know to be able to decide that how much to exit, how much to keep, because it depends. If you don't need the money, maybe I'll say keep it for a very, very long time. But then the problem is, if I say for 10 years, then you might say, I mean, why 10 years? That's a very long period. Therefore, I will recommend in profits, wherever you are in profits, you book the profits. And wherever you are in loss, I think it is worth waiting, because as it is, you are in loss. Maybe you'll add a little more to the loss. But if you book the loss now, your loss is confirmed. So if the market rises, market is going to rise. It is right now under a depression, but then it will rise definitely in the times to come, hopefully.
1: बिहार से हमारे साथ टिंकू जुड़ रहे हैं. टिंकू जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन. कृपया अपना सवाल पूछिए. टिंकू जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी, आप अपना सवाल पूछिए.
0: पूछिए टिंकू जी.
2: हेलो.
0: हाँ जी, पूछिए, आवाज आ रही है आपकी.
2: सर, मैं ये पूछना चाहते हैं, मैं किसी कंपनी में ऐसी मैं काम करते हैं लेबर में, और मेरा सैलरी जो भी आता है मेरे कैश में मिल जाता है, ना कोई चेक है ना कुछ है, और किसी कंपनी को मैं हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहते हैं, भविष्य में ऐसा कोई दिक्कत आवे फैमिली में, इसीलिए तो मैं आम आदमी.
0: मुझे लगता है इनसे संपर्क टूट गया, पर इन्होंने अपनी बात ऑलमोस्ट कह दी. कैश में इनको सैलरी मिलती है, और शायद किसी में डेली कॉन्ट्रैक्ट टाइप शायद काम करते हैं या सैलरी मिलती है. हेल्थ इंश्योरेंस बहुत अच्छा विचार है टिंकू जी का, हेल्थ इंश्योरेंस लेने का. मुझे लगता है इसके लिए आपको, देखिए, अगर तो आप कंप्यूटर सेवी हैं तो आप ऑनलाइन जाके हेल्थ इंश्योरेंस खरीदा जा सकता है. पर अगर आपको उसमें थोड़ा सा कठिनाई महसूस होती है तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप किसी अपने इलाके में जो आपके कोई एजेंट है उनसे आप संपर्क करें, और संपर्क करके वो आपकी मदद करते.
1: दिल्ली से हमारे साथ सतीश जुड़ रहे हैं. सतीश जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन. कृपया अपना सवाल पूछिए.
3: गुड इवनिंग सर. कोहली साहब,
0: गुड इवनिंग
3: सर. मेरा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ लैब ग्रोन डायमंड, और दूसरा क्वेश्चन है कि सर ये इन्वेस्टर एजुकेशन फंड में कुछ कर नहीं रहे हैं, डेढ़ डेढ़ साल तक शेयर अटके रहते हैं
0: जी,
3: और ये लास्ट डेट क्या है सर पेपर शेयर फॉर्म की कन्वर्ट कराने की डीमैट में? थैंक यू सर.
0: लैब ग्रोन डायमंड्स, सतीश जी, अच्छा फ्यूचर है. मुझे निजी तौर पे एक दो इनॉग्रेशंस थी लैब ग्रोन डायमंड्स के शोरूम्स की, वहाँ जाने का मौका मिला, और मैंने देखा वाकई में वो देखने में ओरिजिनल डायमंड की तरह दिखाई देते हैं. बहुत अच्छा भविष्य है. जिन लोगों को डायमंड का शौक है और वो ओरिजिनल डायमंड नहीं अफोर्ड कर पाते हैं तो लैब ग्रोन डायमंड्स की तरफ देख सकते हैं.
4: प्राइस वाइज दे आर नॉट वेरी चीप.
0: नहीं, फर्क तो है, उतने महंगे तो नहीं है, इतने महंगे कैरेटेज पर डिपेंड करता है. और दूसरा इनका एक और सवाल था सतीश जी का कि हाँ, इन्वेस्टर एजुकेशन फंड का इनका काफी समय से सवाल रहता है. तो मुझे लगता है इन्वेस्टर एजुकेशन फंड में आपकी शिकायत बहुत दिन से बनी हुई है, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप एक दो बार वहां होकर आए. हम जहाँ इस समय बैठ के कार्यक्रम कर रहे हैं, इसके बिल्कुल अक्रॉस द रोड है, उनसे संपर्क करें. नॉर्मली इतनी देर लगती नहीं है क्योंकि काफी वहां पर प्रणाली सुदृढ़ है इस समय, पर मुझे नहीं पता किस कारण से आपका मामला वहां अटका हुआ है. तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप उनसे तुरंत संपर्क करें, और एक ई निवारण ऐप है, सीपी ग्राम्स करके ऐप है, उन पे भी आप डालें. वहां पर शिकायत किसी सरकारी डिपार्टमेंट के खिलाफ हो तो आप डाल सकते हैं. तो कोशिश करें सतीश जी, हम तो यही कह सकते हैं कोशिश करें. अब ये तो स्पेसिफिक मामला हमें पता हो तो हम उसकी गहराई में, तह में जाके आपको सलाह दें, तो आप ट्राई करिए. उम्मीद करते हैं कि काम बनेगा.
1: अन्य खबरों में श्रोताओं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 20वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न सरकार

0: संगठनों में 51,000 से अधिक नव आयुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पिछले कुछ वर्षों से युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए आवश्यक कौशल और अवसर उपलब्ध कराने पर लगातार ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास ये भी सुनिश्चित करना है कि देश के युवाओं की शिक्षा और कौशल बदलती अर्थव्यवस्था की जरूरतों के अनुरूप हों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ने पिछले कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते किए हैं, जिससे देश के युवाओं के लिए अवसरों के नए द्वार खुल रहे हैं।
1: भारत ने बीते कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किए हैं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA हमारे युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार बना रहे हैं। इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए नई पार्टनरशिप्स के रास्ते खुलते हैं, नए मार्केट्स के रास्ते खुलते हैं और हमारे युवाओं के लिए करियर में नई पॉसिबिलिटीज बनती हैं।
0: मुंबई से हमारे साथ SJ पवार जुड़ रहे हैं। महोदय, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
2: हेलो
0: जी,
2: मैं सीनियर सिटीजन हूँ
3: जी।
2: हाँ, मेरा इंटरेस्ट इनकम 2 लाख है
3: जी,
2: और शेयर बेस्ड में 3 लाख कमा रहा हूँ
3: जी,
2: प्रॉफिट हुआ
3: जी।
2: तो मुझे टैक्स शेयर पे गिरने है या नहीं, क्योंकि 12 लाख का तो अभी ये हुआ ना लिमिट मैक्सिमम
3: जी,
2: उस बारे में जानकारी चाहिए।
4: देखिए पवार साहब, जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है, उस बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट में जो शेयर्स का गेन होता है वो उसमें इंक्लूड हो जाता है। तो आपका मैं अगर कैलकुलेट करके देखूं तो 4 लाख से ऊपर जा रहा है बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट जो न्यू रजीम में है। तो क्योंकि वो पवार साहब चार लाख से ऊपर जा रहा है तो आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, क्योंकि अगर 4 लाख से ऊपर में, और राजेश और प्राची को भी बताऊं कि बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट रहता है, बेसिक एग्जेम्पशन में कैपिटल गेन का जो टैक्स है वो कवर हो जाता है, क्योंकि कैपिटल गेन पर एक स्पेशल रेट पर टैक्स लगता है। तो इसलिए अगर आप बेसिक एग्जेम्पशन से ऊपर जा रहे हैं तो भले ही आप 12 लाख से कम हैं तो आपको फिर उसकी रिटर्न फाइल करनी पड़ती है। तो मैं उम्मीद करता हूं पवार साहब आपको जवाब मिल गया होगा, क्योंकि कैपिटल गेन पर जो टैक्स लगता है वो स्लैब के हिसाब से नहीं लगता है, वो अलग रेट पर लगता है। तो इसलिए आपको मेरे विचार से पवार साहब आपको रिटर्न फाइल करनी चाहिए जी।
0: अन्य खबरों में, नया मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR प्रारूप 15 अक्टूबर 2026 से लागू होगा। इस प्रारूप के अंतर्गत 2,000 रुपये तक के UPI लेन देन पर कोई MDR नहीं लगेगा। इस प्रारूप का व्यक्ति से व्यक्ति लेन देन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सभी व्यक्ति से व्यक्ति लेन देन के लिए UPI पूरी तरह से निःशुल्क रहेगा, चाहे कितनी भी रकम ट्रांसफर की जाए। 75,000 रुपये और उससे ज्यादा के लेन देन के लिए MDR की सीमा प्रति ट्रांजेक्शन 300 रुपये होगी। 2,000 रुपये से अधिक के व्यक्ति से व्यापारी लेन देन पर 0.4% का मामूली MDR लागू किया जाएगा। महोदय, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि MDR क्या है, आप इसे विस्तार से हमारे श्रोताओं के लिए आप समझाइए।
4: मर्चेंट डिस्काउंट रेट इसको बोलते हैं, और ये वेंडर के ऊपर एक चार्ज लगाया जाता है। पहले भी था, क्रेडिट कार्ड जो लोग यूज करते हैं उसमें 1.5%, 2%, 2.5%, कुछ बैंक तो 2.5% लेते हैं। तो उसमें वेंडर को एक चार्ज देना पड़ता है, जो कि उसको वो सुविधा ये ग्राहक को देता है, और ग्राहक बहुत सारे नए ग्राहक उसको मिलते हैं, क्योंकि क्रेडिट कार्ड जो लेके व्यक्ति आता था
0: जी,
4: तो उसके पास कैश नहीं होता था, तो मर्चेंट डिस्काउंट रेट के जरिए बैंक एक चार्ज लगाते हैं। कुछ इसी प्रकार का UPI पे अब ये नया आया है, क्योंकि 10 साल से UPI चल रहा था, और उसको सस्टेनेबल बनाने के लिए, उसमें नई नई फीचर्स लाने के लिए, उसको अपग्रेड करने के लिए, उसको मॉडर्न बनाने के लिए एक बोझ पड़ रहा था पूरा की पूरी जो प्रणाली थी वो प्रणाली स्वचालित होनी चाहिए। उसमें 18,700 करोड़ रुपए बीच में प्रणाली खर्च कर रही थी, 2,000 करोड़ के आसपास जो है वो सरकार के भी खर्च हो रहे थे, और मुझे लगता है 10 साल हो चले थे, तो क्योंकि 10 साल हो चले हैं तो इसलिए उस पर अब ये MDR लगाया गया। और उम्मीद कर रहे हैं कि वेंडर्स इसको देंगे, प्रावधान तो यही है प्राची कि इसको वेंडर्स देंगे अपने पास से, उनका देना बनता है, और नोटिफिकेशन में भी ऐसा ही लिखा हुआ है जी।
0: जी,
5: Major US indices displayed a mixed performance yesterday. The Nasdaq Composite Index rose 0.4% and the S&P 500 added 0.2%, led by gains in semiconductor stocks. Conversely, Dow Jones Industrial Average dipped 0.2%. Meanwhile, markets wrapped up a volatile week on a mixed note as investors navigated rising treasury yields elevated oil prices and Federal Reserve's rate hike. For the week, the Dow posted third straight weekly decline, sliding 1.7% to mark its worst performance since March. The S&P 500 fell marginally by 0.1%. In contrast, Nasdaq rose 0.7%.
0: दिल्ली से हमारे साथ आरएस दहिया जुड़ रहे हैं. महोदय, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन. कृपया अपना सवाल पूछिए.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार निजी क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इसके लिए करीब 1,00,000 करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना शुरू की गई है। श्री मोदी ने आज 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। प्रधानमंत्री ने कहा कि कई देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते से युवाओं के लिए नए अवसर सृजित हुए हैं।
1: भारत ने बीते कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किए हैं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA हमारे युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार बना रहे हैं। इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए नई पार्टनरशिप्स के रास्ते खुलते हैं और हमारे युवाओं के लिए करियर में नई पॉसिबिलिटीज बनती हैं।
0: इससे पहले नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य पर एक सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन में भारत का हिस्सा वैश्विक औसत के आधे से भी कम है। श्री मोदी ने कहा

0: कि पिछले 12 वर्ष में भारत ने पर्यावरण से संबंधित हर क्षेत्र में असाधारण प्रगति की है। श्री मोदी ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए भारत अन्य देशों के साथ मिलकर लगातार काम कर रहा है।
1: हम दुनिया को साथ लेकर पर्यावरण सुरक्षा के नए मापदंड स्थापित कर रहे हैं। वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड की सोच हो या इंटरनेशनल सोलर अलायंस, CDRI, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, मिशन लाइफ, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, ऐसा हर एक मंच क्लाइमेट और एनवायरमेंट पर भारत के डेडिकेटेड कमिटमेंट्स का प्लेटफॉर्म बन रहा है।
0: रेलवे ने सोलापुर डिवीजन के 7 स्टेशन पर 200 करोड़ रुपए से अधिक की इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग व्यवस्था को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि आधुनिक सिग्नलिंग प्रणाली पूरे डिवीजन में रेलवे सिग्नलिंग बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगी और स्वदेशी स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच के कार्यान्वयन को सुगम बनाएगी। उत्तर पूर्व रेलवे के लखनऊ खंड में 600 किलोमीटर से अधिक रूट पर कवच 4.0 लगाने की मंजूरी दे दी गई है। इस परियोजना की लागत 250 करोड़ रुपए से अधिक है। दक्षिण तट रेलवे के 73 किलोमीटर लंबे सावल्यापुरम गुंटूर खंड पर इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम के उन्नयन के लिए 142 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजना को मंजूरी दी गई और पश्चिम रेलवे के उधना इकाई सोनगढ़ खंड पर 4 लेन वाले रोड ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए भी 133 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। भारत ने नेपाल को 11 टन राहत सामग्री की एक और खेप भेजी है। इसमें दवाएं, फोरेंसिक का सामान, टेंट, हाइजीन किट, स्लीपिंग बैग और अन्य आवश्यक सामग्री शामिल हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल को बाढ़ आपदा में सहायता के लिए राहत सामग्री ले गया ये वायुसेना का 9वां विमान था। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि भारत नेपाल की सहायता जारी रखेगा। पिछले महीने नेपाल में भीषण बाढ़ में जान माल का भारी नुकसान हुआ था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड और कर्नाटक उच्च न्यायालयों में 14 न्यायिक न्यायाधिकारियों की न्यायाधीश और अपर न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति किया है। ये नियुक्तियां मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद की गई हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में 3 पद जीत लिए हैं। परिषद के यश डबास अध्यक्ष, रिया छावड़ी सचिव और लक्ष्यराज सिंह संयुक्त सचिव चुने गए हैं। निर्दलीय उम्मीदवार दीपांशु शौकीन ने उपाध्यक्ष पद जीत लिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने छात्र संघ चुनावों में परिषद की जीत पर बधाई दी है। एशियाई खेलों का उद्घाटन समारोह आज जापान के आईची नगोया में हुआ। भारतीय निशानेबाज मनु भाकर और कबड्डी खिलाड़ी पवन सहरावत ने 501 सदस्यीय भारतीय दल का नेतृत्व किया। इससे पहले टेकबॉल स्पर्धा में भारत की क्विंसी डिसूजा कल कांस्य पदक के लिए खेलेंगी। महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में इंडोनेशिया की सुमाया ने क्विंसी डिसूजा को 2-1 से हराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय दल को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने आशा व्यक्त की कि भारतीय खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करेंगे और खेलों में शानदार सफलता हासिल करेंगे। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। Prime Minister Narendra Modi today distributed more than 51,000 appointment letters to newly appointed youth in various government organizations at the 20th Rozgar Mela this afternoon through video conferencing. Speaking on the occasion, Mr. Modi said that in the recent years, the central government has consistently focused on equipping the youth with the skills and opportunities needed to prepare for the future.
1: Aaj desh ke 51,000 se adhik yuvaon ko सरकारी सेवा के लिए नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं। मैं आप सभी युवा साथियों को और आपके परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज आप सभी एक ऐसे समय में भारत सरकार से जुड़े हैं जब देश एक बहुत बड़े लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है और ये लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनाने का।
2: Prime Minister Modi said the government is also working to rapidly expand employment opportunities in the private sector. He said with this objective, the Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana has been launched with an outlay of around 1 lakh crore rupees. The scheme is expected to enable nearly 2 crore young people to enter the workforce for the first time. Indian Railways has approved revision of Kavach version 4.0 on over 600 route kilometers of the Lucknow division of Northeastern Railway. The cost of the project is over 250 crore rupees. Railways Ministry said that the approved project will extend Kavach 4.0 coverage across the identified balance sections of the division, strengthening the safety infrastructure available for train operations. The government has debunked a message circulating on social media claiming that gifts are being distributed by India Post under the Dark Seva Gifts scheme. The fact-check unit of the Press Information Bureau said that the claim is fake and India Post has no connection to any gift, reward or lucky draw scheme called Dark Seva Gifts. Enforcement Directorate ED, Delhi Zonal Office, has provisionally attached equity shares of a company having current market value of more than 42 crore rupees in connection with an alleged large-scale financial fraud involving a collective investment scheme. ED initiated the investigation based on an FIR registered by the Central Bureau of Investigation. Subsequently, CBI filed a charge sheet and a supplementary charge sheet against 33 accused persons for their role in running the illegal investment scheme. Nepalese Finance Minister Dr. Swarnim Wagle has stated that India and Nepal have an opportunity to renew their partnership by building on strong ties that already exist. Addressing an international seminar on Reimagining India-Nepal Relations in an Emerging Global Order, organized by the Research and Information System for Developing Countries in New Delhi today, Dr. Wagle emphasized the importance of strengthening connectivity and economic cooperation and realizing the considerable potential that the two countries can achieve together. The Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad ABVP secured 3 major posts in the Delhi University Students Union DUSU election. ABVP's Yash Dabas won the post of president, while Riya Chavadi secured victory for secretary and Lakshya Raj Singh for joint secretary. Meanwhile, independent candidate Deepanshu Shaukhin emerged victorious for the position of vice president. Defence Minister Rajnath Singh and Home Minister Amit Shah have congratulated ABVP for the success in the DUSU elections. In a social media post, Mr. Singh said that this victory is a symbol of the unwavering faith of the youth in the nation first policy. Home Minister said that this victory reflects the unwavering trust of the youth in ABVP's ideology of nation first and its commitment to students' welfare. The 20th Asian Games officially got underway today at Mizuho Park Athletic Stadium in Japan, with Emperor Naruhito declaring the games open. The 2-hour ceremony was attended by Japan's royal family, games officials and Olympic Council of Asia President Sheikh Yuhan bin Hamad Asani. India's 501-member contingent was led by double Olympic medalist Manu Bhakar and Kabaddi player Pawan Sehrawat during the athletes' parade. Prime Minister Narendra Modi has extended his best wishes to the Indian contingent. In his message, Mr. Modi said, "Each athlete has worked incredibly hard and shown remarkable dedication and determination, and India is proud of them." He hoped that the athletes play well and shine at the Games. And that is the end of this news bulletin.
3: ये आकाशवाणी है। विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के तीसरे संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा अंत्योदय का संकल्प। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक केवी प्रसाद और आर्थिक विश्लेषक शुभमोय भट्टाचार्य जी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं मनोज पाठक।
4: एक व्यक्ति जब संकल्पित होता है अपने देश के लिए, अपने देश की माटी के लिए, अपने लोगों के लिए, और उसके मन में भावना होती है कि ये पूरी दुनिया हमारी है, भारतीयता का जो सोच रहा है आदिकाल से, सर्वे भवन्तु सुखिनः, यदि वह उसके व्यक्तित्व में आ जाए तो फिर जीवन का आयाम बदल जाता है। और समकाल में देश की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसे ही व्यक्तित्व हैं जिनके कई आयाम हैं। आरंभिक जीवन हो या बाद का जीवन या अब का जीवन, जीवन के हर अंतराल में एक स्पष्ट सोच, दूर दृष्टि और अपनी मिट्टी से प्यार, अपनी संस्थाओं के उत्थान के लिए लगातार प्रयास करना, अपने लोगों को हर स्तर पर सक्षम बनाना, आगे बढ़ने के अवसर उपलब्ध कराना, और इस क्रम में जन सेवा से देश सेवा का लक्ष्य उनके व्यक्तित्व में, उनके चरित्र में और उनके कर्म में हम पग पग पर सुदीर्घ अवधि से देखते हैं। लगभग ढाई दशक कहें, तीन दशक कहें, तीन दशक की यात्रा में नरेंद्र मोदी न केवल एक राजनीतिक कार्यकर्ता से एक सक्षम मुख्यमंत्री और उसके बाद भारतवर्ष के प्रधानमंत्री के रूप में अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जैसे क्षमतावान सशक्त छवि निज स्वयं की और उसके साथ साथ भारतवर्ष की बदलने में सफल हुए हैं वह मायने रखता है। इस श्रृंखला में हम विविध विषयों पर श्रोताओं चर्चा करेंगे जिसमें उनके साथ होने से, उनके नेतृत्व से, उनके लगातार प्रयास से किस तरह से बदलाव भारतवर्ष में आए हैं। पहले गुजरात में एक मुख्यमंत्री के रूप में हमने वाइब्रेंट गुजरात को देखा, एक ऐसा प्रदेश जहां पर उद्योग उतना सक्षम नहीं था जितना कि होना चाहिए था, वह बदलते हमने देखा और भारतवर्ष को बदलते हुए देखा है। आज इस अंक में हमने अपने अपने क्षेत्र के जाने माने नाम, राजनीतिक मामलों के देश के जाने माने विश्लेषक केवी प्रसाद और आर्थिक मामलों के जाने माने विश्लेषक शुभमय भट्टाचार्य को आमंत्रित किया है। हम विविध विषयों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले केवी प्रसाद जी, कार्यक्रम में हम आपका स्वागत करते हैं।
5: धन्यवाद मनोज जी।
4: शुभमय, आपका भी बहुत बहुत स्वागत।
5: धन्यवाद।
4: देश के उत्थान में समाज के सबसे गरीब वर्ग का योगदान जब तक सुनिश्चित नहीं होता, उन्हें ऊपर उठाने के लिए आर्थिक रूप से, शैक्षिक रूप से, सामाजिक रूप से उन्नत बनाने के लिए सही उपाय नहीं किए जाते, तब तक उनके जीवन में बदलाव नहीं आता। प्रगति के पथ पर वो आगे नहीं बढ़ पाते उसी गति से जैसे बाकी लोग। अंत्योदय वर्ग के लिए सरकार ने जो योजनाएं चलाई उनका संक्षिप्त लेखा जोखा हम आपको बताते हैं।
6: पिछले वर्षों में सरकार की अनेक पहलों में इस बात पर जोर दिखाई देता है कि विकास का लाभ केवल उन लोगों तक सीमित ना रहे जो पहले से ही मुख्यधारा से जुड़े हैं, बल्कि उन परिवारों और क्षेत्रों तक भी पहुंचे जो लंबे समय से विकास की सुविधाओं से दूर रहे हैं। वन बंधु कल्याण योजना ने आदिवासी क्षेत्रों के विकास को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवास, पेयजल और सड़क जैसी जरूरतों से जोड़कर समग्र रूप देने पर जोर दिया। आकांक्षी जिला कार्यक्रम भी इसका एक उदाहरण है। वर्ष 2018 में शुरू हुए इस कार्यक्रम के तहत 112 पिछड़े जिलों में स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि, वित्तीय समावेशन, कौशल और बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में प्रगति को लगातार मापा गया। यानी किसी क्षेत्र को केवल पिछड़ा मानकर छोड़ने के बजाय उसके विकास की कमियों की पहचान कर उन पर लगातार काम करने की व्यवस्था बनाई गई। इसी क्रम में दूरदराज और सीमावर्ती क्षेत्रों पर भी ध्यान बढ़ा। वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम के जरिए सीमा से लगे गांवों में सड़क, बिजली, दूरसंचार, आजीविका और अन्य बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने पर जोर दिया गया। मकसद यही कि देश का कोई गांव केवल अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण विकास की मुख्य धारा से दूर न रह जाए। आदिवासी समुदायों के लिए ये प्रयास और लक्षित हुआ। प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान के अंतर्गत विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों की बस्तियों में आवास, पेयजल, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका जैसी बुनियादी सुविधाएं पहुँचाई जा रही है। जून 2026 तक इसके तहत स्वास्थ्य सेवाओं की अंतिम छोर तक पहुंच के लिए 831 मोबाइल मेडिकल यूनिट्स संचालित की जा चुकी थी। अंत्योदय का मतलब केवल भौगोलिक या सामाजिक रूप से वंचित क्षेत्रों तक पहुंचना नहीं है। किसी गरीब परिवार के लिए ये भी जरूरी है कि उसे सरकारी सहायता पाने के लिए व्यवस्था के चक्कर न लगाना पड़े। इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री जनधन योजना के जरिए करोड़ों लोगों को औपचारिक बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ा गया। इसके बाद प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी DBT ने सरकारी सहायता को सीधे लाभार्थी के बैंक खाते तक पहुंचाने की व्यवस्था को मजबूत किया। जब बात जीवन की बुनियादी सुरक्षा की आती है तो स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण जरूरतों में से एक है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत पात्र परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य कवर दिया जाता है। जून 2026 तक योजना के तहत 12 करोड़ 69 लाख से अधिक अस्पताल में भर्ती मामलों को मंजूरी दी जा चुकी थी। इन सभी अलग अलग योजनाओं के पीछे एक साझा सोच है, विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, और यही अंत्योदय की भावना है जिसमें कोई परिवार, समुदाय या क्षेत्र विकास की मुख्य धारा से पीछे ना छूटे। अनिकेत की रिपोर्ट के साथ मैं जया भारती।
4: सबसे पहले तो केवी हम आपसे समझना चाहेंगे कि देश में गरीबों की संख्या, भारतवर्ष के लिए कहा जाता है किसानों का देश है, गांव में भारत की आत्मा बसती है, लेकिन बड़े पैमाने पर गरीबी हमने गांव में भी देखी, शहरों में भी देखा, और विशेष रूप से जो हमारे जंगल में रहने वाले लोग हैं उनको भी देखा। तो यदि हम दो को समझना चाहें तो गरीब कल्याण मेला और वन बंधु कल्याण योजना, इसको लेकर जो प्रधानमंत्री आए मुख्यमंत्री के रूप में हो या बाद के दशक में कह लें प्रधानमंत्री के रूप में हो, तो किस रूप में एक परिवर्तन जमीनी स्तर पर हमने देखा है।
5: भारत का जो मूलभूत जो हमारी परिकल्पना रही है वो है कि भारत एक कल्याणकारी राज्य है
4: जी।
5: और अगर हम शुरुआत से देखें, महात्मा गांधी जी ने ये बात कही थी कि जब तक अंतिम छोर में खड़ा हुआ इंसान, जब तक हम उसकी आंसू ना पहुंच पाए, तब तक भारत का जो विकास जो होगा, जो भी यात्रा है वो पूर्ण नहीं होगा। तो पिछले 10-12 साल से जिस कार्यकाल की हम बात कर रहे हैं तो इसमें इस तरफ काफी अग्रसर हुए हैं और काफी तेजी से काम हो रहे हैं और अलग अलग योजनाओं के तहत। और जिस विशेष बात रखिए जनमन या इस तरह जो जन कल्याण, उसमें हमारे जो जनजाति लोग हैं वो करीब 9% के आसपास, 10% के आसपास हमारे पूरे उसमें हैं। और लेकिन ये काफी पिछड़ रहे थे क्योंकि काफी सारी सुविधाएं वहाँ पे नहीं है। इसके पीछे दो बड़े आयाम हमने तय किए हैं। सबसे पहले देखिए, हम एक जो है अंतर्राष्ट्रीय एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो 2030 तक लक्ष्य हमने साधा है अन्य राष्ट्रों के साथ, उसकी और हमारे 17 योजनाएं हैं। तो उसमें कई सारी योजनाएं सम्मिलित होती हैं और वो जब अब 2030 में वक्त ही कितना बचा है।
4: बिल्कुल बिल्कुल।
5: दूसरा एक और ये है कि हम 2047 को अपने आप को विकसित भारत की ओर बढ़ रहे हैं
4: जी।
5: अब 20 साल उसके रह गए। विकसित भारत को उस समस्या का समाधान करना है तो आपको हर बिंदु पे फोकस करना पड़ेगा
4: जी।
5: तो उसमें ये एक अहम बिंदु है जिसमें आपके सेहत है, चाहे वहां की पढ़ाई लिखाई हो, मूलभूत सुविधाएं हो, ग्रामीण जीवन बेहतर स्तर में हो, स्वास्थ्य का तो हम बात कर ही हैं, और उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण ये भी पड़ता है कि उनके किस तरह से वो अपने आप को कमाई का साधन है
4: जी
5: उसको कर रहे। क्योंकि सीधी बात है, जब आर्थिक विकास होगा तो अन्य चीजें भी उसके साथ जुड़ती चली जाती है। तो ये एक समग्र सोच है मेरा ऐसा मानना।
4: शुभ, आपसे हम समझना चाहेंगे कि सरकार की ओर से जो विशेष रूप से योजनाएं चलाई गई हैं खासतौर से गरीबों के लिए और उसके अलावा जो वनवासी लोग हैं उनके कल्याण के लिए, उसमें किस तरह का गुणात्मक परिवर्तन आप देखते हैं? आर्थिक रूप से कितने सक्षम हुए हैं हमारे गांव के लोग, उसके अलावा शहरी लोग भी जो पिछड़े वर्ग यानी आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग में आते हैं, उसके अलावा विशेष रूप से और यदि हम थोड़ा सा पिन पॉइंट करें तो देश का जो बड़ा एक क्षेत्र है जो जंगलों में बसता है उनके कल्याण के लिए जो विभिन्न योजनाएं चलाई गई, तो आर्थिक रूप से उनके जीवन में कितना परिवर्तन आया?
7: सबसे बड़ा इन सारी योजनाओं में जो बदलाव आया है
4: जी,
7: वो ये है कि पहले हम बहुत सारी योजनाओं की बात किए हैं, उनको लागू भी किए हैं, लेकिन ज्यादातर योजनाएं एक पायलट यानी कि सीमित जगह पे ही लागू होकर रह गया है। ये अंततः मैं करीब 50 के करीब ऐसी योजना बता सकता हूँ जो शुरू हुआ, पायलट स्कीम हुआ, उसके बाद वो उसका नामो निशान नहीं रहा, वो अंतराल में चला गया। यहाँ पर जो योजनाएं लागू किए गए हैं उसमें दो बदलाव लाया गया, बेसिक बदलाव। एक हर योजना में आप सोचेंगे एक नाम दिया जाता है पीएम योजना, पीएम उदय, पीएम उज्ज्वला। इससे एक फायदा जो एक बेसिक चेंज जो आ गया वो ये कि डिपार्टमेंट्स के लिए इन योजनाओं को नजरअंदाज करके कि भाई योजना चल रहा है, योजना है, योजना में थोड़े बहुत पैसे आवंटित किए गए हैं, अगले साल अगला चीज सोचेंगे, ये इसका स्पेस नहीं रहा। योजनाओं के ऊपर पूरी तरह से उनको प्रेशर, उनको जिसे कहते हैं कार्यान्वित करने का एक प्रेशर आ गया। ये एक बहुत बड़ा चेंज है, यानी कि ओनरशिप, योजना किसका है, किसने चलाई है, किसके लिए, आप कहेंगे कि वो बहुत जरूरी है, लेकिन उसके पहले कि पीएम किसान योजना, पीएम जलधारा, ये सारे स्कीम में ये जो मॉनिकर आया है ये बहुत बड़ा एक बदलाव है कि डिपार्टमेंट्स के लिए इनको कई सारी योजनाओं में शामिल कर देना कि बस वही है योजना, वो उसका स्केल स्कोप नहीं रहा। और इसी के चलते 2017 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बहुत बड़ा बदलाव लाए, वो है कि एक्सपेंडिचर में जो बहुत सारी योजनाएं जो थे पुरानी योजनाएं उनको खत्म कर दिया गया, एक सनसेट पीरियड लाया गया और नई योजना का क्रियान्वयन उस स्टेप से किया गया कि अभी हम इन सभी योजनाओं में छोटे छोटे छोटे जो पैसे लगाए जाते थे जिसमें जैसे मैंने कहा कि खास कुछ उसका कुछ देखभाल नहीं होता था, उनको एक बड़ा शक्ति के हिसाब से उन योजनाओं को सामने लाया गया। तो इससे योजना का अपने आप में, योजना का गुणवत्ता, योजना का को लेवल, सब कुछ में बदलाव आ गया। बहुत बड़ी चीज है ये
4: जी।
7: दूसरी बात इसमें जो बदलाव लाया गया वो ये है कि योजनाओं में जब बदलाव आया गया खर्चा में, नेचुरली इसका खर्चा का जो लेवल है और एप्लीकेशन जो है वो पूरे देश का हो गया, ये सिर्फ राजस्थान का या तमिलनाडु का या असम का या कश्मीर का या उड़ीसा का नहीं रहा। ये बहुत बड़ा चेंज है। तो लोगों को समझने में और इसको क्रियान्वयन करने में बहुत ईजी हो गया, सिंपल योजनाएं, लेकिन उसके डायरेक्शन क्लियर है, उनके टारगेट क्या है वो पता है और उस पर कितने खर्च किए जाएंगे वो क्लियर है। तो कुल मिलाकर योजनाएं अपने आप में एक सशक्त डिलीवरी मॉडल

0: बन के हमारे सामने आ गए।
1: जी बहुत अच्छी बात की शुभमय, कि योजना एक मॉडल के रूप में, एक ऐसे मॉडल में जो जमीन पर उतरता हुआ साफ साफ दिखता है। यहाँ पर के भी आपसे हम समझना चाहेंगे कि जमीन पर जो ये योजनाएं उतरने लगी, यदि हम थोड़ा सा पीछे से चर्चा करें तो प्रधानमंत्री का एक सपना था जिसमें कि हर व्यक्ति फाइनेंशियली सक्षम हो, हर व्यक्ति की पहचान सुनिश्चित हो, हर व्यक्ति के पास एक खाता हो, यानी जाम ट्रिनिटी जिसे हम कहते हैं, जनधन योजना के अंतर्गत उनके पास एक बैंक का खाता हो, उनके पास एक मोबाइल हो। इस योजना ने, यानी शुभ मैंने बड़े अच्छे शब्दों में बताया कि यह योजना किसके लिए है, यह स्पष्ट हुआ। इसकी मॉनिटरिंग बढ़ी और मॉनिटरिंग के साथ साथ वो डिलीवरी प्रोडक्ट के रूप में किस रूप में समाज को फायदा पहुंचा रहा, यानी जिम्मेदारी सुनिश्चित की गई। उस जिम्मेदारी में एक लीकेज रोकने में जो जाम ट्रिनिटी है उसने किस रूप में परिवर्तन लाया और अपने आरंभ काल से अब तक यह कैसा रूप लेती दिखाई दे रही है आपको?
2: मनोज जी, इसमें दो चीज स्पष्ट है कि सबसे पहली बात है कि सरकार ने ये एहसास तो था ही कि भाई पैसा जो भारत सरकार पहुंचा रही आवंटियों को पूर्ण रूप से नहीं पहुंच पा रहा है, उसके बीच में कुछ ना कुछ, जैसे आपने कहा, तो उसको कैसे रोका जाए। क्योंकि पहले तो होता है कि पैसा आप कैश में देंगे, रोकड़ में देंगे,
1: जी जी जी,
2: तो कहीं किसी के हाथ जाएगा, जो सरकारी तंत्र है उसके तहत ही नीचे जाएगा
1: जी,
2: तो उसमें कई सारे व्यवधान आते थे इस तरह के। तो जब आपके पास टेक्नोलॉजी यानी तकनीक आ गई, इस तरह की विकसित तकनीक है जिसमें, जैसे सबसे बड़ा जिसकी आपने बात की, जनधन हुआ, चाहे जैम जिसे कहते हैं, जनधन, आधार, मोबाइल, तीनों को जोड़ के आपने, तो एक मजबूत ढांचा आपने तैयार कर रखा है आपके पास। और उसमें सबसे बहुत मुझे याद है कि आंकड़े अपने आप में स्पष्ट करेंगे, अगर आप कभी भी देखें, जो सरकारी जितने बैंक थे उनको ये कहा गया कि आप नए खाते खोले जीरो बैलेंस के,
1: जी,
2: जो आम नागरिक हैं, और सबको उनको एनकरेज किया गया आप जाके अपना एक बैंक का खाता खोलिए और उसी खाते में पैसा जाता है।
1: जी, जी,
2: और इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमने देखा जब कोविड की महामारी परेशान कर रही थी, हमारे यहाँ भी आर्थिक समस्या बढ़ गई थी, तो सरकार जो पैसा हस्तांतरण कर रही थी वो इसके जरिए कर रही थी कि सीधा सीधा लाभार्थी के खाते में चला जाए पैसा। तो इस तरह से जिसे कहते हैं, इसका एक और फायदा है, अब उसके बाद, अब तो हाल फिलहाल की बात है, हमें UPI QR कोड का जो इस्तेमाल होने लगा भीम ऐप के जरिए तमाम सारे डिजिटल पेमेंट्स के लिए।
1: जी,
2: शुरुआत में इसके बिल काफी आलोचना भी आपको याद होगा,
1: अच्छी
2: आलोचना ये हुई थी कि भाई इस तरह जहाँ पे लोगों के पास मोबाइल नहीं है, मोबाइल है तो कनेक्टिविटी नहीं है, कनेक्टिविटी है तो फिर उनको नहीं आता।
1: जी,
2: लेकिन आज तो आम बात है कि चाहे आप छोटे से छोटे व्यापारी हो, छोटा से छोटा ठेले पे जो सामान बेचता है उसके पास ये QR कोड है।
1: जी,
2: इसका एक बहुत बड़ा दूसरा फायदा है जो मेरे ख्याल से शुभ जो कि आर्थिक विशेष ज्यादा काम करें, भारत एक डिजिटाइज्ड इकोनॉमी होता जा रहा है और डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी, तो आपको बकायदा पता लगेगा, जैसे अभी हाल फिलहाल में UPI को लेकर कुछ चर्चाएं चली हैं, लेकिन आपके पास स्पष्ट आंकड़ा है। अब
1: जी,
2: पहले कुछ नहीं था कि रोकड़ में कैश में व्यवधान हो रहा है कि क्या वितरण हो रहा है, किसी को हिसाब नहीं होता था।
1: जी,
2: तो ये भारत की अर्थव्यवस्था किस दिशा में बढ़ रही है वो सब भारत सरकार और हमारे जो पॉलिसी प्लानर्स हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
1: क्या शुभ, मैं अब अगला सवाल आपसे इसी मुद्दे से जुड़ा हुआ, DBT किस रूप में गेम चेंजर साबित हुआ है भारत की अर्थव्यवस्था को, यानी काला धन सफेद धन, धन धन है लेकिन धन जो डिजिटल माध्यम से एक खाते से दूसरे खाते में जा रहा, और जो लीकेज एक बड़ी समस्या थी, लाभार्थियों तक उचित तरीके से वह धन नहीं पहुंच पाता था, उसमें DBT कैसे कहले पूरी व्यवस्था को बदलने में सक्षम हुआ। और एक बड़ी अच्छी बात के भी जी ने कही कि जिस रूप में अब हमारे पास आंकड़े आ रहे हैं वह बताते हैं कि हम तकनीकी रूप से डिजिटल भारत की ओर तेज गति से बढ़ रहे हैं, किस तरह आकलन कर रहे हैं आप?
0: बिल्कुल, ये जो आकलन की बात है ये अपने आप में बहुत बड़ा चीज है, क्योंकि गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है उसके ऊपर अगर आप कई साल का लेखा जोखा देखिए CAG का, तो पहले क्या हो रहा था कि जो स्कीम्स थे, इन सारी स्कीम्स में आकलन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि स्कीम्स किस तरीके से कितने अमाउंट पे गया है। हर साल का CAG का जो लेखा जोखा था उसमें यही चीज बार बार आता था कि खर्च तो हुए हैं लेकिन खर्च सही जगह पे नहीं हुए हैं और सही मात्रा में नहीं हुए हैं और सही लोगों को नहीं मिले हैं। तो ये जो प्रॉब्लम था, इसको भी आप एक ट्रिनिटी कह सकते हैं, बड़ा नेगेटिव ट्रिनिटी, और वो ट्रिनिटी जो हमें काफी परेशान कर रहा था वो डिजिटलाइजेशन के माध्यम से हम उस पर बहुत बड़ा अंकुश लगा सके हैं। अभी आप जैसे कोई भी लाभार्थी किसी भी स्कीम में जाते हैं तो उनको पता रहता है कि उनको कितना मिलना है, उनको बैंक खाता या पोस्ट ऑफिस के अकाउंट में उनको दिख जाता है कि वो अमाउंट आया है या नहीं, और तीसरा जो बीच में मिडलमैन बिचौलिया जो खा जाते थे उसका मात्रा काफी कम हो गया है। और इसके वजह से जो आप देख रहे हैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आ रही है कि गांव में बहुत सारे पिछड़े वर्ग के क्षेत्र में जो कंजम्पशन में जो एक जंप आया है और जिस पर अर्थशास्त्री लोगों ने बहुत बड़ा

0: पर डिस्कशन भी किए हैं, वो फर्क इसीलिए आया है कि अभी लोगों के हाथ में डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा है, तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ा बदलाव है। देखिए, हमारा पर कैपिटा इनकम हमारा 2200 से 2500 डॉलर्स के करीब हम मानते हैं जिसमें हम चलते हैं, इससे बढ़कर इंडिया में भी पर कैपिटा इनकम हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जैसे हमारी इकोनॉमी 5 ट्रिलियन हो जाएगा, 7 ट्रिलियन हो जाएगा, और उस जिसमें ज्यादा देर नहीं है, तो पर कैपिटा इनकम जिसे कहते हैं इन अ वेरी शॉर्ट टाइम लोगों का डबल हो जाता है। अब हमारे लेवल में, आपके लेवल में पर कैपिटा इनकम डबल हो जाना वगैरह, वो उतना मायने नहीं रखता है जितना मायने रखता है कि पर्सन का, जिसका मान लीजिए औसतन 80,000 रुपये इनकम है, वो अगर बढ़ के 160 हो जाए, उनकी पूरी जिंदगी का माहौल बदल जाता है। सो ये जो जैसे कहते हैं एक मूलभूत परिवर्तन, ये तभी पॉसिबल हुआ है जिसका वजह था ये जैम ट्रिनिटी, ये जनधन मुद्रा वाली योजना। तो दैट एंटायर प्रोसेस ने लोगों में एक कॉन्फिडेंस, एक एक्सपेक्टेशन और एक कंटिन्यूटी का सिस्टम बना दिया है कि ये चलेगा, इस पर हमें सोचने की जरूरत नहीं है, ये हमारे पास आएगा हर महीने में, हर 15 दिन में, जैसे भी उसका शेड्यूल है उस तरह से वो। तो कुल मिलाकर दिस इज अ वेरी वेरी कॉन्फिडेंस बूस्टिंग मेजर, जो एक बार ही सक्षम होने के बाद लोगों को गवर्नमेंट स्कीम्स की, जिसे कहते हैं स्टेबिलिटी, इस पर भरोसा आ गया है। और ये बहुत बड़ा एक जिसे कहते हैं चेंज जो पिछले कई साल में हुआ है, जो बार बार हमारे हर तरह के सर्वे में, हर तरीके का एनालिसिस में ये बनकर सामने आ रहा है। जी
1: यहाँ पर के भी आपको आमंत्रित करना चाहेंगे और समझना चाहेंगे। शुभमय कह रहे हैं कि ग्रामीण भारत मजबूत हुआ है, लोगों की खरीदने की क्षमता बढ़ी है। बेशक आमदनी के आंकड़ों पर, प्रति व्यक्ति आय के आंकड़ों पर दुनिया में हम थोड़ा पीछे भी ठहरते हों, लेकिन लगातार पिछले 10-12 वर्षों में गरीबों के उत्थान के लिए जो विभिन्न योजनाएं चली हैं, उसमें डिस्पोजेबल इनकम यानी एक गरीब व्यक्ति की आमदनी दोगुनी हो जाती है, तो वह एक व्यक्ति नहीं बल्कि उसका एक पूरा परिवार, पूरे गाँव का अर्थतंत्र और उसके समान कई सारे लोगों के अर्थतंत्र की आवश्यकताएं बदलती चली जाती हैं। तो ग्रामीण भारत में जो ये जाम ट्रिनिटी थी, उसने किस रूप में बदलाव लाया और कितना मजबूत भारत आप देख पा रहे हैं आज की तारीख में?
2: माना जाता है कि भारत के अधिकतर लोग ग्रामीण इलाके में बसते थे, ऐसा शुरुआत में थी, लेकिन वो चीज़ बदली है। फिर भी 40% के आसपास मान के चलिए, 45% के आसपास ग्रामीण इलाकों में हमारे बसे हुए हैं, रोजमर्रा अपनी जिंदगी वहीं बिताते हैं, कुछ खेती खलिहान, कुछ कुछ अपने अपने छोटे मोटे कार्य से, जो शुभ भी बात कर रहे थे और आपने भी जिक्र किया, जब सीधा पैसा आपको हर महीने या 15 दिन बाद आने लग गया
1: जी,
2: तो एक आपको पता है कि मेरे पास इतने पैसे हैं। और एक बहुत बड़े इसमें एक जिसे कहें डेवलपमेंट, प्रधानमंत्री हमेशा ये कहते हैं कि महिला का बीच में इसमें रखें स्कीम्स में, क्योंकि जैसे आपने कहा कि महिला के खाते में जब पैसा आता है तो वो पूरा परिवार को सोचती है, ये नहीं कि पुरुष नहीं सोचते हैं, लेकिन माना गया एक हमारे सोसाइटी का एक नॉर्म जिस तरह से देखा जाता है, तो वो एक फर्क पड़ा। और खासकर हमारे जो ग्रामीण इलाकों में जो बालिकाएं शिक्षा की ओर बढ़ रही हैं, तो वो एक बदलाव, क्योंकि जो हम विकास, ये विकसित भारत की बात कर रहे हैं कि विकास सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर से नहीं बढ़ेगा, एक समाज की बदलाव भी आएगा। जब तक समाज के बीच में बदलाव नहीं आएगा, सोच में बदलाव नहीं आएगा, अगर एक समाज स्वस्थ होगा विकास की ओर बढ़ेगा।
1: बिल्कुल,
2: तो इस तरह के कल्याणकारी योजना। और एक मूलभूत जो परिवर्तन ये भी देखा गया है इस सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री मोदी जब से आए उनका एक मंत्र रहा है कि होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच
1: जी,
2: क्योंकि सरकार अलग अलग विभागों में काम करती है, तो एक विभाग को दूसरे से मतलब नहीं होता था, ये तो हमारा काम नहीं है, फलाने मंत्रालय का है, तो सबको लेकर सम्मिलित कर कि लक्ष्य आधा सबने कि ये करना है आपने, तो चाहे ग्रामीण में हो, तो तमाम सारे जैसे बात हो रही थी, कई सारे अलग अलग विकास की योजनाएं थी, लेकिन उसको जैसे कहते हैं टारगेट करके एक दिशा देना कि ताकि उसको कार्यान्वित भी हो और वो जो लक्ष्य को साधा है वो पूरा भी करें। और ग्रामीण भारत इसलिए बढ़ा कि आप चाहे ऊर्जा बढ़ाएं, मतलब जो आपके इलेक्ट्रिसिटी, जो बेसिक स्वच्छ पानी
1: जी
2: और जो बाकी सब मूलभूत सुविधाएं, इस सब के भी काम हो रहा है, ठीक है, कास का स्तर अलग अलग ग्रामीण इलाकों में अलग होगा वो, क्योंकि कुछ राज्य सरकारों की भी जिम्मेदारी होती है कि वो अपने कार्य को पूरा करे, लेकिन कुल मिलाकर दबाव सब पे है।
1: यहाँ पर शुभ मैं आपको आमंत्रित करना चाहेंगे, गाँव की बात की और आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि सरकार का जो नजरिया है वह पूरा का पूरा, सरकार के सभी विभाग अपने लक्ष्य के लिए मिलकर काम करें, उस दिशा में काम होता हम देख रहे हैं। यहाँ पर हम आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, यह कार्यक्रम गाँव में किस रूप में इम्प्लीमेंट हो रहा है और इसके नतीजे कैसे निकल के आते दिख रहे हैं आपको?
0: वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम अपने आप में एक मतलब डिफिकल्ट प्रोग्राम है, लेकिन साथ में बहुत ही कारगर प्रोग्राम है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का लक्ष्य क्या है कि एवरी विलेज इन द बॉर्डर इज द फर्स्ट विलेज इन द कंट्री। तो ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो आई थिंक 2023 में शुरू कर गया।

0: कि देश के जो बॉर्डर इलाके में करीब 19 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहां पर करीब 650 के करीब विलेजेस का उन्नति किया जाएगा। इसको उन्नति करने में प्रॉब्लम क्या था कि ये चूंकि एकदम बॉर्डर में है, इसलिए इनकी तरफ कोई भी बेनिफिट ले जाना, जैसे लाइवलीहुड जनरेशन या एंटरप्रेन्योरशिप करना, या यहाँ तक कि इवन स्कूल कॉलेज स्कूल वगैरह का भी जो व्यवस्था करना, वो मुश्किल था क्योंकि एकदम काफी सारे डिफिकल्ट डिस्ट्रिक्ट्स में है, अरुणाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम, उत्तराखंड, लद्दाख। तो ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम अपने आप में एक, जिसे कहते हैं, महत्वाकांक्षी प्रोग्राम है। ये एक दूसरा रुख है सोचने का कि किस तरीके से इस तरह का इलाकों में बेनिफिट्स लाया जाए, और किस तरीके से, जैसे वो आप जैसे कह रहे थे कि हर तरीके का, मतलब सारे डिपार्टमेंट्स को एक साथ में लाकर इन जगहों में किस तरीके से इंटरवेंशन किए जाए। इनफैक्ट इसका सक्सेसफुल लॉन्च के बाद ये पिछले साल इसको और भी बढ़ाया गया है कि जितने सारे ब्लॉक्स हैं इंटरनेशनल बॉर्डर्स में, उन सभी ब्लॉक्स में इंटरनेशनल बॉर्डर्स के आसपास में जितने सारे विलेजेस हैं वहां पे इस प्रोग्राम को लागू किया जाए।
1: जी,
0: तो अपने आप में ये तो, खैर मैं आकाशवाणी के जरिए लोगों को आमंत्रित करूंगा कि वो जाके देखे कि किस तरीके का बदलाव वहां पे आया है, जैसे रोड कनेक्टिविटी, टेलीकॉम कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रिफिकेशन, इन सारी चीजों में किस तरीके का बदलाव आया है। वो अपने आप में बहुत बड़ा एक, जिसे कहते हैं, उल्लेखनीय चीज तो है और शिक्षणीय चीज भी है। जी
1: श्रोताओं, एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य की ओर इशारा कर रहे हमारे विशेषज्ञ कि सीमावर्ती भारत के गांवों में जो परिवर्तन हुए हैं, बुनियादी परिवर्तन हुए हैं, और ये परिवर्तन न केवल दिखते हैं बल्कि इनका लाभ हमें और आपको स्पष्ट मिल रहा है। देश के कई क्षेत्र जहाँ जाना कठिन था, अब वहाँ सहजता से आप पहुंच सकते हैं, और वहां पर जो एक व्यवस्थागत बदलाव आया है उसके साक्षी बन सकते हैं। यानी देशी पर्यटन को बढ़ावा देने की ओर जो हमारे वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है वो काफी अच्छी भूमिका निभा रहे हैं। विकसित भारत अपने स्थान पर, लेकिन विकसित भारत के साथ स्वस्थ भारत की दिशा में सरकार की ओर से जो योजनाएं बनाई गई और विशेष रूप से जो आयुष्मान भारत योजना चली, पीएम जेएवाई योजना चली, यह किस रूप में अपनी भूमिका निभा रही है और ग्राउंड लेवल पर क्या बदलाव नजर आता है इन योजनाओं का?
2: अगर स्वस्थ होगा राष्ट्र तो वो विकास की ओर कार्यक्रम में उसके लोग रहेंगे। लेकिन इसमें एक चीज, एक तो भारत सरकार की जो पुरानी जो स्कीम्स थी वो तो अपने कार्यान्वयन में हुए हैं, और इसी वजह से हमारे जो है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी बड़ी है।
1: जी जी जी,
2: अगर हम इंडिपेंडेंट हुए तो शायद 40-43 70 के ऊपर, 70-75 के आसपास, क्योंकि वो उसमें कई चीजें जुड़ती हैं। लेकिन उसके साथ साथ समाज के सामने एक नई समस्या भी खड़ी होगी कि जैसे जैसे लोग, वयस्क लोग बढ़ रहे हैं समाज में, उनकी स्वास्थ्य की देखभाल करना भी जरूरी है। वो भी, और अपने जी कार्यकाल में उन्होंने देश के लिए सेवा तो की है, लेकिन अब जब उम्र अलग हो गई है और समस्याओं से घिर रहे हैं, तो उनमें 2-3 कार्यक्रम लाए गए। उसके साथ साथ चाहे वो प्रधानमंत्री जन आरोग्य है, अब उसमें अलग जो दूसरा आभा स्कीम है, आपका आयुष्मान भारत स्कीम है, तो ये सब समग्रित करके कर रहे हैं, और 70 साल से ऊपर जो लोग हैं उनके लिए विशेष ध्यान दिया जा रहा है। और उसमें आप कार्ड बनवाइए 5 लाख तक परिवार में, एक आपके कोई समस्या आती है, कई सारे उसमें जो पैमाने हैं वो मापदंड है, आप सरकार को कोई खर्च नहीं हो, मतलब सरकार खर्च करेगी आपके बतौर आप, और उनके जो उनके अस्पताल है वहां जाइए, स्वास्थ्य केंद्र है। और क्योंकि हमारे यहाँ देखा गया कि चाहे वो ग्रामीण ही छोड़ दिए, कई सारे टाउन टीयर 2 सिटीज में हमारे पास स्वास्थ्य योजना तो थी लेकिन उसको कार्यान्वयन करने में समस्या आ रही थी, उसको भी इसमें कोशिश कर रहे हैं। और जो दूसरे जैसे पोर्टल, एक जैसे आभा की बात किया, उसमें भी आप डॉक्टर्स को जोड़ रहे हैं कि आप जुड़िए स्वास्थ्य कार्य में जो भी है, ताकि उनका एक रजिस्टर बने कि कौन कौन स्वास्थ्यकर्मी कहाँ कहाँ हैं। और दूसरी तरफ लोगों को एनकरेज कर रहे हैं कि आप अपना जो रिकॉर्ड है वो डिजिटल माध्यम से रखें, क्योंकि हर एक के पास रिकॉर्ड रखने की समस्या है। आप अस्पताल पहुंच गया, पता चला रिपोर्ट घर पे छूट गया, तो वो भी डिजिटाइज करने, जो आभा नंबर आप ले लीजिएगा, तो कहीं पे भी बैठे हो, चाहे आप इस एक प्रांत में और दूसरे प्रांत में कोई आपको चिकित्सक बैठा या आप कहीं चले गए तो आपके डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे हो गए। तो इस तरह से जो शुरुआत में भी बात हुई, जो टेक्नोलॉजी हमारे पास आई है उसका एक सदुपयोग कर रहे हैं।
1: यहाँ पर शुभ, मैं आपसे हम समझना चाहेंगे कि यह जो स्वास्थ्य क्षेत्र में विभिन्न योजनाएं शुरू हुई हैं, इनका मैकेनिज्म क्या है और किस रूप में यह चल रही हैं, और आम लोग इसका लाभ किस तरह उठा सकते हैं, कुल मिलाकर इससे लाभ कैसे लिया जा सकता है, इस पर थोड़ा रोशनी डालें, और जमीनी स्तर पर क्या बदलाव आया, ये तो हमारे हर चर्चा में ये हम समझना चाहते हैं आपके माध्यम से।
0: देखिए, बहुत बड़ी बदलाव जिससे इनसे आया है वो तो ऑलरेडी हमें दिख रहा है, जितना जितना जिस तरीके का हम अगर हम हर कोई भी बिंदु अगर ले जो कंजम्पशन इंडिकेटर हैं, जो बाकी इंडिकेटर्स हैं उसके तरफ, एक जैसे एक फंक्शन से एक चीज आप देख सकते हैं, जैसे पीएम आयुष्मान भारत।
1: जी
0: तो अभी बहुत बड़ी चीज हो गई है कि आयुष्मान भारत में पहले था कि ये स्कीम किसके लिए है, अब यह है कि स्कीम किसके लिए नहीं है, यानी कि ये स्कीम
1: जी जी
0: ऑल ओवर द प्लेस सबके लिए जरूरत बन गया है। सिमिलरली जैसे स्कीम्स की हम बात करते हैं, जैसे प्रधानमंत्री उज्ज्वला जो गैस प्रोग्राम प्रोवाइड करता है हर जगहों में, उस तरीके का प्रोग्राम में भी हर लोग इसका फायदा लेना अपना, जिसे कहते हैं और मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मानते हैं। ये एक बहुत बड़ा चेंज है कि लोगों को लगता है कि हम ये प्रोग्राम हमारे लिए है, हम इसको यूज करेंगे। तो ये स्कीम्स एक, जिसे कहते हैं, एक रोजमर्रा की जिंदगी में बातचीत का आइटम बन चुका है कि इसमें तो मिल जाएगा, ये वाला तो स्कीम है, ये वाला तो स्कीम है, इसके लिए ये स्कीम है, इसके लिए वो स्कीम है। तो इसके लिए कोई सरकारी जिसे कहते हैं फंक्शन में ही इसकी आलोचना नहीं होती है, इसके बारे में डिस्कशन हर जगह पे होता है। मैं फिर से हम कहूंगा जैसे पंचायत वगैरह में इनकी जो इनके बारे में जो कमेंट्रीज होती है, इनके बारे में जो डिस्कशन होती है, वही आपको बताता है कि कितना परिवर्तन का स्रोत इन चीज इन इन स्कीम्स ने तैयार किया है। एक बहुत बड़ा चीज जो किया गया है वो है जी राम जी प्रोग्राम में,
1: जी जी
0: कि का स्कीम रहेगा, स्कीम को और कितना इम्प्रूव किया जाए, वो एक बहुत बड़ा सोच का केंद्र बिंदु बन गया है। तो इन सभी चीजों को मिलाकर हम देख सकते हैं कि जो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है वो सिर्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम सिर्फ माफ इस करने के फाइल्स में नहीं रहता है, बल्कि वो उठ के लोगों की आम जिंदगी के लाइफ में इन्वॉल्व हो चुका है, उनमें समा चुका है। यही है स्कीम्स के जिसे कहते हैं हम सिग्नेचर, कार्यकर्ता की कार्य कार्यक्षमता, उसकी क्रियान्वयन, उसकी जो कैपेसिटी, ये हमें दिखी है इन स्कीम्स के सबसे बड़ा खूबी कि गवर्नमेंट के जो फंडिंग करने का जो सिस्टम है उसको भी उसके अनुरूप बदल दिया गया है। जो पीएफएमएस स्कीम्स है वगैरह, पीएफएमएस एक्चुअली स्कीम नहीं है, पीएफएमएस पब्लिक फंड मैनेजमेंट स्कीम, वो पूरा इन सारे स्कीम्स को किस तरीके से फंडिंग रखा जाए, लिक्विड रखा जाए, उसके लिए सरकार ने अपना अकाउंटिंग सिस्टम भी बदल दिया है। और ये सब बहुत बड़ी, जिसे मैं कहूंगा फेज चेंज है इन द एंटायर डिलीवरी सिस्टम, जो हमें फायदा दे रहा है। जैसे अभी पिछले कई साल में कोविड हुआ या उसके बाद ये जैसे एक के बाद एक डिस्टर्बेंस होते गए हैं, इलेक्ट्रिकल फ्यूल के क्राइसिस वगैरह बाकी सारे क्राइसिस में, तो भारत के ग्रोथ रेट में ज्यादा कुछ इफेक्ट नहीं आया है। और वो इफेक्ट इसलिए नहीं आया है क्योंकि डोमेस्टिक डिमांड को के ऊपर ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा। और वो इम्पैक्ट क्यों नहीं पड़ा, क्योंकि ये स्कीम के जरिए जो पैसा जो लोगों के पास जाना चाहिए ये जा रहा है, उसकी गति में उस स्कीम में कोई प्रॉब्लम नहीं आया। और इसीलिए दैट आई थिंक इज अ वेरी मेजर चेंज जो हम जिसके लिए वी कैन बी वेरी वेरी प्राउड।
1: जी, यहाँ पर के भी हम ये समझना चाहेंगे कि विकसित भारत 2047 का जो हमारा लक्ष्य है, और अभी 2026 के लगभग कह लें कि अंतिम चरण में, यानी अगले 3 महीने रह रहे, तो वहाँ उस दिशा में जाने के लिए हमारे पास समकाल में कौन सी चुनौतियाँ दिख रही हैं जिस पर कि हमें काम करना चाहिए, मिलकर सरकार को ध्यान देना चाहिए, विशेष रूप से ऐसे कौन से बिंदु हो सकते हैं?
2: देखिए, सबसे समस्या जो भी कहिए चुनौती है, चुनौती इसलिए है कि जब आप विकसित भारत की बात करते हैं, हम चाहते हैं कि विकासशील से हम विकसित हो जाएं,
1: जी,
2: तो उसके मापदंड और पैमाने अलग हो जाते हैं। भारत विकासशील से विकसित राष्ट्र बनना है और उसके लिए अग्रसर है, एक लक्ष्य साधा है 2047 तक जो 100 साल भारत का आज़ादी के हो जाएंगे। लेकिन जैसे मैंने कहा कि विकास अलग अलग लोगों के लिए अलग होता है, हर एक का मापदंड अलग होता है, लेकिन एक समाज को, एक राष्ट्र को विकसित होने के लिए कुछ मापदंड है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सब मानते हैं। तो उसमें मूलभूत तो है ही, स्वास्थ्य हो गया, पढ़ाई हो गई, सर के ऊपर छत हो गया, इस तरह की छोटी, ये तो शुरुआत से जिसे हम रोटी कपड़ा मकान कह लीजिएगा, पुरानी बात है, लेकिन उसके आगे और कई सारी चीजें आ गई। आज समस्या क्या है, पर्यावरण भी जुड़ गया इसमें, क्योंकि आप चाहते हैं, इसलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हमने सेटअप किया है कि विकास तो करिए लेकिन आपने पर्यावरण का भी ध्यान रखिए, क्लाइमेट चेंज की ओर रखिए, क्लाइमेट रेजिलियंस की बात कर रहे हैं, सोसाइटी में जो हमारे समाज है उसमें जो सोच है वो कैसे विकसित हो, क्योंकि कई समस्याएं हैं अभी भी समाज के अंदर, वो सामाजिक सोच, और क्या हमारे यहाँ इक्वालिटी जो कहते हैं वो तो है, इक्विटी है, जेंडर इक्विटी की बात करते हैं, मतलब जो हर किस्म के लोगों के तरफ आपका किस, तो कई सारे चीज़ें हैं। तो वो विकास जैसे मैंने आपको शुरुआत में कहा कि कई सारे हैं, जब तक आप हर बिंदु पे काम नहीं करेंगे तो वो जिसे है कि लास्ट में जैसे अगर कहें, अगर हम रेस देखते हैं 8 लेन से अलग अलग लोग चलते हैं, लेकिन अंत में जाके सब उस टेप को
1: जी
2: चाहते हैं, या तो वो लक्ष्य के लिए आपके कई सारे लेन्स में काम कर रहे हैं हम, चाहे आपने शुरुआत में हमने कहा जनजाति लोगों के लिए बात कर रहे हैं, महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं, पिछड़े वर्ग के लिए एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बात कर रहे हैं, जो बात हुई थी ग्रामीण इलाकों में जो कि सरहद पे है, उसके लिए जो है जो सोच बदलने की बात आई थी जिसके बाद शुभ कर रहे थे कि सोच क्या थी कि वो अंतिम छोर पे नहीं है, वो पहले है।
1: जी जी, जी
2: सिर्फ सोच ही बदलाव
1: है। बिल्कुल बिल्कुल।
2: तो
1: बिल्कुल,
2: ये सोच बदलाव एक कठिनाई होती है, लेकिन जब उस तरफ आप ध्यान देते हैं तो जैसे कहते हैं चुनौती है, लेकिन सरकार चुनौती जानती है और उसकी तरफ काम कर रही है। जैसे मैंने कहा अलग अलग बिंदुओं पे काम करिए, तभी तो जाके आप उस छोर पे पहुंचे।
1: बिल्कुल शुभ। प्रधानमंत्री अक्सर अपने संबोधन में सुदीर्घ अवधि से कहते आ रहे हैं कि हमें आपदा में अवसर निकालना चाहिए, और उनका ये कथन कई अवसरों पर हमने देखा है। तेल के दाम बढ़े, लेकिन हमारे यहाँ अपेक्षाकृत दुनिया के कई अन्य देशों में जितना प्रभाव पड़ा उतना हम प्रभावित होते नहीं दिख रहे हैं। और थोड़ा पीछे चले जाएं तो कोविड के समय में जो स्थितियां दुनिया के बाकी देशों में हुई, हम बेहतर थे, दुनिया को हमने दिया। यानी हम पर टैरिफ लगाया गया और टैरिफ का भी बहुत अधिक प्रभाव होता नजर नहीं आया, क्योंकि हम बड़ी विविधता से चतुराई पूर्वक समय से कदम उठाते रहे हैं प्रशासनिक स्तर पर। यहां हम समझना चाहेंगे आपके माध्यम से कि परिवर्तन हुए हैं, वह परिवर्तन किस रूप में आगे जाते आपको दिख रहे हैं। आप लगातार कह रहे हैं कि कंटिन्यूटी बनी हुई है, जो नीतियां बन रही हैं वो इंप्लीमेंट हों और वो साल दर साल इंप्लीमेंट होते रहें। उसके साथ साथ और क्या बदलाव आप देख रहे हैं?
2: मनु जी, आपने जो बात कही बहुत अहम भी है, और इस पे देखिए जैसे इससे पहले वाकई बात कही सोच बदलने की बात है, और ये इसलिए कि सरकार में जैसे था कि साइलोज में काम करते हैं, एक मंत्रालय का दूसरे मंत्रालय का, हर आदमी अपने मंत्रालय को देखता था। एक तो उसको खत्म किया कि सब मिलके करेंगे, सबके जो धन है आवंटन तो सबके अलग अलग धन होते हैं, लेकिन जब एक योजना बनती है, मैं छोटा सा अगर आपको एक यहाँ पे उदाहरण दें, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण या शहरी, अब सिर्फ घर नहीं मिलता, मतलब ये है कि ढांचा दे दिया, उसमें पानी की सुविधा, बिजली की सुविधा, पाइप गैस की सुविधा, तीन चार चीज़ें जो कि जब आप घर के अंदर प्रवेश करें, और वो घर किस नाम पर जाएगा, महिला के नाम पर होगा उसका रजिस्ट्रेशन, घर की महिला। तो एक उनको एम्पावर किया आपने। अब ये अलग अलग स्कीम से निकल के आ रहे हैं, पाइप गैस का अलग स्कीम जो सरकार की आवंटन है, पानी घर घर जल योजना, अलग अलग जो स्कीम्स बनी है उसी में से निकल के आ रहे हैं, लेकिन जब आपने आवंटन कर दिया तो आप रह सकते। तो एक ही सोच बदली कि वे कार्य करें।
1: श्रोताओं, एक होलिस्टिक बदलाव यानी जो परिवर्तन हुआ है वह संपूर्णता में बदला है, इसका बहुत अच्छा उदाहरण हमारे केवी प्रसाद जी ने दिया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना मतलब एक ढांचा घर नहीं, बल्कि उस घर में जब वो तैयार होता है तो आपको नल जल भी मिल रहा है, शौचालय की व्यवस्था भी मिल रही है, साथ साथ रसोई के लिए गैस का भी इंतजाम आपको हो रहा है, और सभी योजनाएं सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत एक जगह समन्वित होकर एकीकृत होकर देश के सबसे पिछड़े गरीब वर्ग के लोगों को अंत्योदय योजना के तहत मिल रहे हैं, ये जमीन पर दिख रहा है। हमारा ये विशेष कार्यक्रम यही संपन्न होता है। आप सभी श्रोताओं की ओर से शुभमय आपको और केवी जी आपको हम धन्यवाद देते हैं।
2: धन्यवाद मनोज जी।
3: विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के तीसरे संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा अंत्योदय का संकल्प। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक केवी प्रसाद और आर्थिक विश्लेषक शुभमोये भट्टाचार्य जी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे मनोज पाठक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।

नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपी। श्री मोदी ने कहा, सरकार निजी क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाने के लिए काम कर रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 7 न्यायाधीशों को दिल्ली उच्च न्यायालय में नियुक्ति की मंजूरी दी। दिल्ली सरकार ने दक्षिणी रिज में लगभग 1,000 एकड़ अतिरिक्त भूमि आरक्षित वन घोषित करने की मंजूरी दी। विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत मतदाता सूची में सुधार के लिए कल से 27 सितंबर तक सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर लगाए जाएंगे। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव पद जीते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार निजी क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इसके लिए करीब 1,00,000 करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना शुरू की गई है। श्री मोदी ने आज 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक

0: नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। प्रधानमंत्री ने कहा कि कई देशों के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौते से युवाओं के लिए नए अवसर सृजित हुए हैं।
1: भारत ने बीते कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किए हैं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA हमारे युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार बना रहे हैं। इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए नई पार्टनरशिप्स के रास्ते खुलते हैं और हमारे युवाओं के लिए करियर में नई पॉसिबिलिटीज बनती हैं।
0: मेले में नवनियुक्त कर्मचारियों ने नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया।
2: नमस्कार, मेरा नाम वाणी बालिया है और मैं दिल्ली की निवासी हूँ। मेरा चयन आयकर विभाग में कार्यालय अधीक्षक के पद पर हुआ है। मैं प्रधानमंत्री जी का इस नियुक्ति के लिए हृदय से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। मैं अपनी क्षमताओं का पूर्ण उपयोग करते हुए अपने देश और विभाग की उन्नति में योगदान देने का प्रयास करूँगी।
3: मेरा नाम नेहा है और मैं हरियाणा के रोहतक जिले की निवासी हूँ। मेरा चयन आयकर विभाग में ऑफिस सुपरिटेंडेंट के पद पर हुआ है। मुझे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्ति पत्र प्राप्त करने का अवसर मिला।
0: इससे पहले नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य पर एक सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन में भारत का हिस्सा वैश्विक औसत से आधे से भी कम है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में भारत ने पर्यावरण से संबंधित हर क्षेत्र में असाधारण प्रगति की है। श्री मोदी ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए भारत अन्य देशों के साथ मिलकर लगातार काम कर रहा है।
1: हम दुनिया को साथ लेकर पर्यावरण सुरक्षा के नए मापदंड स्थापित कर रहे हैं। वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड की सोच हो या इंटरनेशनल सोलर अलायंस CDRI, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, मिशन लाइफ, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, ऐसा हर एक मंच क्लाइमेट और एनवायरनमेंट पर भारत के डेडिकेटेड कमिटमेंट्स का प्लेटफॉर्म बन रहा है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड और कर्नाटक उच्च न्यायालयों में 14 न्यायिक अधिकारियों को न्यायाधीश और अपर न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। ये नियुक्तियां मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद की गई हैं। निवेदिता अनिल शर्मा और निशा सहाय सक्सेना को दिल्ली उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इसके अलावा 5 न्यायाधीशों को दिल्ली उच्च न्यायालय का अपर न्यायाधीश नियुक्त किया गया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं।
4: अपडेट रहे, आगे रहे। expert@airnewshindi और इंस्टाग्राम पर AIR न्यूज अलर्ट को फॉलो करें।
0: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दक्षिणी रिज के करीब 1000 एकड़ अतिरिक्त भूमि को आरक्षित वन के रूप में अधिसूचित करने की स्वीकृति दे दी है। इस निर्णय के बाद अधिसूचित रिज क्षेत्र बढ़कर करीब 13000 एकड़ हो जाएगा। दिल्ली की पारिस्थितिकी सुरक्षा, हरित आवरण और वायु गुणवत्ता को मजबूत करने की दिशा में सरकार ने प्रभावी कदम उठाया है। रिज राजधानी की प्राकृतिक विरासत होने के साथ साथ उसका हरित सुरक्षा कवच है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि केवल भूमि को कानूनी संरक्षण देना ही सरकार का लक्ष्य नहीं है, बल्कि रिज के पारिस्थितिक तंत्र को पुनर्जीवित करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसमें देशी प्रजातियों को बढ़ावा देने, क्षतिग्रस्त क्षेत्रों के पुनर्जीवन और आक्रामक प्रजातियों के वैज्ञानिक प्रबंधन पर विशेष जोर दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कल दिल्ली सचिवालय में विरासत क्लब योजना की शुरुआत की। योजना के पहले चरण में राजधानी के 75 CMC स्कूलों में विरासत क्लब बनाए जाएंगे। इस दौरान दिल्ली के कला, संस्कृति, भाषा विभाग के अंतर्गत अभिलेखागार की ओर से इन विरासत क्लबों के छात्रों के लिए कई व्यावहारिक और छात्र केंद्रित गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। योजना का उद्देश्य दिल्ली के छात्रों को राजधानी की समृद्ध सांस्कृतिक, स्थापत्य और ऐतिहासिक विरासत से जोड़ना है। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधु आज PS मौर्य एनक्लेव में थाना दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम नागरिकों से सीधे बातचीत करने, शिकायतें सुनने और तय समय में उनका समाधान करने का एक मंच है। श्री संधु ने कहा कि भरोसा कायम करने और दिल्ली को सुरक्षित बनाने के लिए मार्केट समिति के साथ सक्रिय साझेदारी बहुत जरूरी है। उपराज्यपाल शकुरपुर में आयोजित स्वच्छता अभियान कार्यक्रम में भी शामिल हुए। इस अभियान में दिल्ली नगर निगम के

0: कर्मचारियों के साथ वृक्षित फाउंडेशन के युवा स्वयंसेवकों ने सक्रिय भागीदारी की। उपराज्यपाल ने स्वयंसेवकों के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि बच्चों को अपने आसपास की स्वच्छता के प्रति जागरूक होकर श्रमदान के माध्यम से पार्क की सफाई करना और उसमें सकारात्मक बदलाव देखना बेहद महत्वपूर्ण है। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया है कि विशेष गहन पुनरीक्षण SIR 2026 के अंतर्गत मतदाता सूची में सुधार के लिए कल से 27 सितंबर तक सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर लगाए जाएंगे। ये शिविर सवेरे 10 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित होंगे।
1: इन शिविरों में मतदाता अपना नाम और विवरण जांचने के साथ जरूरी फॉर्म जमा करने की जानकारी भी ले सकेंगे। पात्र नागरिकों का नाम मतदाता सूची में नहीं होने पर फॉर्म 6, किसी नाम को शामिल करने या हटाने पर आपत्ति के लिए फॉर्म 7 और नाम, पता या अन्य विवरण में संशोधन के लिए फॉर्म 8 भरा जाएगा। ये फॉर्म संबंधित निर्वाचन कार्यालय BLO या ऑनलाइन माध्यम से जमा किए जा सकते हैं। किसी भी जानकारी या सहायता के लिए 1950 हेल्पलाइन पर संपर्क किया जा सकता है। नोटिस चरण और दावों या आपत्तियों का निपटान 29 अक्टूबर तक चलेगा। SIR के अंतर्गत अंतिम मतदाता सूची प्रकाशन 4 नवंबर 2026 को होगा। नितिका की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए विशेष शुक्ला।
0: अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव के पद जीत लिए हैं। यश दबास अध्यक्ष, रिया छाबड़ी सचिव और लक्ष्य राज सिंह संयुक्त सचिव बने हैं। निर्दलीय उम्मीदवार दीपांशु शौकीन उपाध्यक्ष पद पर विजयी रहे। अध्यक्ष यश दबास ने कहा कि PG और हॉस्टल की ऑडिट उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है।
2: हमारे लिए सबसे जो पहला विशेष मुद्दा रहेगा वो रहने वाला है कि हर एक PG और हॉस्टल का एक सेफ्टी ऑडिट कराया जाए, क्योंकि आप सभी ने देखा जो सत्य निकेतन पे दुर्घटना हुई थी। हम नहीं चाहते आने वाले भविष्य में ऐसी दुर्घटना किसी के भी साथ हो।
0: सचिव रिया छाबड़ी ने कहा कि परिषद को जीत युवाओं की बदौलत मिली है।
3: अपनी सीट से बहुत प्राउड फील हो रहा है और बहुत थैंकफुल फील हो रहा है अपने संगठन को, अपने जिन स्टूडेंट्स ने हमारा साथ दिया उनको, अपने टीम मेंबर्स को, अपनी फैमिली मेंबर्स को। जेंजी प्रोटेस्ट में जेंजी हमारे साथ है, तभी हम 3 सीटों से जीते हैं।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावों में इस जीत पर बधाई दी है। श्री सिंह ने कहा कि यह जीत राष्ट्र प्रथम की नीति में युवाओं के अटूट विश्वास का प्रतीक है। गृह मंत्री ने कहा कि यह जीत परिषद की विद्यार्थियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्धता में युवाओं के अटूट भरोसे को दर्शाती है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने तीनों विजेताओं को बधाई दी। दिल्ली भाजपा के पूर्व अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि यह जीत ABVP पर युवाओं के भरोसे को दर्शाती है।
4: दिल्ली विश्वविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जीत, 3 सीटों पर ABVP ने स्पष्ट रूप से जीत हासिल की है। ये दिखाता है कि आज का युवा भ्रमित नहीं है, इसलिए आज का युवा ABVP को समर्थन देता है।
0: दिल्ली के उच्च शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में सेवा फर्स्ट इनोवेशन चैलेंज 2026 का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि युवाओं को केवल कक्षा और किताबों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि समाज के बीच जाकर उसकी वास्तविक चुनौतियों को समझना और उनके समाधान विकसित करना चाहिए। श्री सूद ने बताया कि दिल्ली स्टार्टअप नीति के अंतर्गत दिल्ली में 10,000 स्टार्टअप्स और 4,00,000 रोजगार सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं।
5: आपको हर खबर से रखे अपडेट एक्सपर @AIRNewsHindi और पब्लिक पर @AIRNewsAlerts को फॉलो करें।
0: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज पंजाब में नशे के खिलाफ नशा मुक्त पंजाब यात्रा का शुभारंभ किया। उन्होंने नशे के खिलाफ निर्णायक लड़ाई का आह्वान किया। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि पंजाब के युवाओं और परिवारों को नशे के दुष्प्रभावों से बचाना सभी का दायित्व है।
6: वो युवा भाई जो इस नशे की गिरफ्त में है उनको कैसे छुड़ाया जाए, आज गांव-गांव, शहर-शहर में ये नशे का दानव अपना रूप बढ़ाता जा रहा है। अब इसे समाप्त होना होगा और ये नशा मुक्त पंजाब यात्रा उसी की शुरुआत है।
0: पूर्व केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी नेता रवनीत सिंह बिट्टू को आज पंजाब पुलिस ने हिरासत में ले लिया। वे लुधियाना में पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के पास उस समय विरोध प्रदर्शन कर रहे थे जब मुख्यमंत्री भगवंत मान का काफिला वहां से गुजर रहा था। श्री बिट्टू ने बताया कि भाजपा पंजाब से जुड़े मुद्दे उठाती रहेगी और जरूरत पड़ने पर मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों और कार्यालयों के बाहर शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शन करेगी। चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने कल चंडीगढ़

में भारत टैक्सी सेवा का शुभारंभ किया। श्री कटारिया ने कहा कि ये पहल चंडीगढ़ की विकास यात्रा में एक प्रमुख उपलब्धि है। इससे श्रम का सम्मान, सहकारी स्वामित्व, तकनीकी आत्मनिर्भरता और समावेशी विकास को बढ़ावा मिलेगा। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली जोनल कार्यालय ने वित्तीय धोखाधड़ी मामले में एक कंपनी के 42 करोड़ रुपए से अधिक के इक्विटी शेयरों को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है। निदेशालय ने

0: भारत की त्वरित सहायता की सराहना की।
1: I think close to 8 cargo planes have arrived.
2: अब तक लगभग 8 कार्गो विमान 130 टन राहत सामग्री लेकर आ चुके हैं। 50 से अधिक भारतीय कर्मी आज भी बचाव और राहत कार्यों में मदद कर रहे हैं, खासकर उन लोगों की जान बचाने और उन्हें निकालने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं जो शायद अभी भी इन पन बिजली सुरंगों में फंसे हो सकते हैं। मुझे लगता है कि भारत सरकार मदद के मुद्दे को बहुत सकारात्मक रूप से देख रही है।
1: The Indian government is looking at the issue of assistance very positive.
0: दिल्ली नगर निगम ने स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत आज राजधानी में व्यापक स्वच्छता और सफाई गतिविधियां जारी रखी। इस दौरान संवेदनशील क्षेत्रों, जेजे क्लस्टरों, प्रमुख मार्गों, सेंट्रल वर्ज और अन्य सार्वजनिक स्थलों की स्वच्छता व्यवस्था में सुधार पर विशेष ध्यान दिया गया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर सुनील कुमार बरनवाल ने कहा है कि AI आधारित टूल्स के माध्यम से विभिन्न बीमारियों की स्क्रीनिंग आसान हो गई है। राजधानी में 2 दिन के डॉक्टर AI ग्लोबल सम्मेलन में डॉक्टर बरनवाल ने कहा कि बीमारी के समय पर पहचान होने से शीघ्र उपचार संभव होगा, जिससे मरीजों को लाभ मिलेगा। इंडियन डेंटल एसोसिएशन का 2 दिन का IDA दिल्ली स्टेट कॉन्फ्रेंस आज से पश्चिम बिहार में शुरू हुआ। सम्मेलन के दौरान देश भर से आए विशेषज्ञ डेंटल क्षेत्र के आधुनिकीकरण पर विचार विमर्श करेंगे। इस दौरान कई कार्यशालाओं का भी आयोजन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के बरसाना सहित कई स्थानों पर आज राधा अष्टमी धूमधाम से मनाई जा रही है। इसके लिए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने इस अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। श्री मोदी ने कहा, सरकार निजी क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाने के लिए काम कर रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 7 न्यायाधीशों को दिल्ली उच्च न्यायालय में नियुक्ति को मंजूरी दी। दिल्ली सरकार ने दक्षिणी रिज में लगभग 1,000 एकड़ अतिरिक्त भूमि आरक्षित वन घोषित करने को मंजूरी दी। विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत मतदाता सूची में सुधार के लिए कल से 27 सितंबर तक सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर लगाए जाएंगे। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव पद जीते। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार निजी क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इसके लिए करीब 1,00,000 करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना शुरू की गई है। श्री मोदी ने आज 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। प्रधानमंत्री ने कहा कि कई देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते से युवाओं के लिए नए अवसर सृजित हुए हैं।
4: भारत ने बीते कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किए हैं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA हमारे युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार बना रहे हैं। इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए नई पार्टनरशिप्स के रास्ते खुलते हैं और हमारे युवाओं के लिए करियर में नई पॉसिबिलिटीज बनती हैं।
3: इससे पहले नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य पर एक सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन में भारत का हिस्सा वैश्विक औसत के आधे से भी कम है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत ने पर्यावरण से संबंधित हर क्षेत्र में असाधारण प्रगति की है। श्री मोदी ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए भारत अन्य देशों के साथ मिलकर लगातार काम कर रहा है।
4: हम दुनिया को साथ लेकर पर्यावरण सुरक्षा के नए मापदंड स्थापित कर रहे हैं। वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड की सोच हो या इंटरनेशनल सोलर अलायंस CDRI, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, मिशन लाइफ, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, ऐसा हर एक मंच क्लाइमेट और एनवायरमेंट पर भारत के डेडिकेटेड कमिटमेंट्स का

0: प्लेटफॉर्म बन रहा है।
1: रेलवे ने सोलापुर डिवीजन के 7 स्टेशन पर 200 करोड़ रुपए से अधिक की इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग व्यवस्था को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि आधुनिक सिग्नलिंग प्रणाली पूरे डिवीजन में रेलवे सिग्नलिंग बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगी और स्वदेशी स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच के कार्यान्वयन को सुगम बनाएगी। उत्तर पूर्व रेलवे के लखनऊ खंड में 600 किलोमीटर से अधिक रूट पर कवच 4.0 लगाने को मंजूरी दी गई है। इस परियोजना की लागत 250 करोड़ रुपए से अधिक है। भारत ने नेपाल को 11 टन राहत सामग्री की एक और खेप भेजी है। इसमें दवाएं, फॉरेंसिक का सामान, टेंट, हाइजीन किट, स्लीपिंग बैग और अन्य आवश्यक सामग्री शामिल है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल को बाढ़ आपदा में सहायता के लिए राहत सामग्री ले गया ये वायुसेना का 9वां विमान था। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि भारत नेपाल की सहायता जारी रखेगा। पिछले महीने नेपाल में भीषण बाढ़ में जानमाल का भारी नुकसान हुआ था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड और कर्नाटक उच्च न्यायालयों में 14 न्यायिक अधिकारियों को न्यायाधीश और अपर न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। ये नियुक्तियां मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद की गई। आयुष मंत्रालय आयुष ग्रिड डिजिटल प्लेटफॉर्म के आधार पर आयुर्वेद और अन्य आयुष प्रणालियों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के उपयोग को बढ़ावा दे रहा है। मंत्रालय स्वास्थ्य सेवा, अनुसंधान, शिक्षा, सूचना सेवा और निवेश को आसान बनाने के लिए एआई का इस्तेमाल करने की संभावनाओं पर काम कर रहा है। इसके लिए ऐसा इकोसिस्टम तैयार किया जा रहा है जिसमें विशेष एआई एप्लीकेशन और नेशनल एआई पहल के साथ बड़े पैमाने पर सहयोग शामिल है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में 3 पद जीत लिए हैं। परिषद के यश डबास अध्यक्ष, रिया छावड़ी सचिव और लक्ष्यराज सिंह संयुक्त सचिव चुने गए। निर्दलीय उम्मीदवार दीपांशु शौकीन ने उपाध्यक्ष पद पर जीत दर्ज की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृहमंत्री अमित शाह ने छात्र संघ चुनावों में परिषद की जीत पर बधाई दी है। एशियाई खेलों का उद्घाटन समारोह आज जापान के आईची नागोया में हुआ। भारतीय निशानेबाज मनु भाकर और कबड्डी खिलाड़ी पवन सहरावत ने 501 सदस्यीय भारतीय दल का नेतृत्व किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेशमा तिवारी। Prime Minister Narendra Modi today distributed more than 51,000 appointment letters to newly appointed youth in various government organizations at the 20th Rozgar Mela this afternoon through video conferencing. Speaking on the occasion, Mr. Modi said that in recent years, the central government has consistently focused on equipping the youth with the skills and opportunities needed to prepare them for the future.
0: आज देश के 51,000 से अधिक युवाओं को सरकारी सेवा के लिए नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं। मैं आप सभी युवा साथियों को और आपके परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज आप सभी एक ऐसे समय में भारत सरकार से जुड़े हैं जब देश एक बहुत बड़े लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है और ये लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनाने का।
2: Prime Minister Modi said the government is also working to rapidly expand employment opportunities in the private sector. He said, with this objective, the Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana has been launched with an outlay of around 1 lakh crore. The scheme is expected to enable nearly 2 crore young people to enter the workforce for the first time. The Ministry of Ayush is advancing the use of artificial intelligence in Ayurveda and other Ayush systems, building on the Ayush Grid digital platform. The Ministry has been exploring AI across healthcare, research, education, information services and investment facilitation with an emerging ecosystem that includes both specialized AI applications and broader collaborations with national AI initiatives. AI-based chatbots including MAISP, eLMS and eCharak, along with ARP Research Assistant, are being developed for citizens, researchers, students, medicinal plant trade, yoga and investment. The Election Commission will hold special camps across all polling station locations in the national capital tomorrow. The day-long drive aims to assist citizens with fresh inclusions, objections for proposed inclusions or deletions of name in electoral rolls, and corrections to particulars in the electoral rolls. Booth level officers will remain present at designated polling booths to receive applications. People can submit Form 6 for new voter enrollment, Form 7 for objections or deletion of entries, and Form 8 for any corrections or updating of details in the electoral rolls. Addressing the media regarding the ongoing SIR process in the national capital, Delhi Chief Electoral Officer Ashok Kumar has clarified that electoral registration officers can consider documents other than those listed in the notice during hearings on case-to-case basis. The Nepal government has formed a 7-member expert panel to investigate the causes behind last month's devastating floods, which killed more than 1,400 people and left over 6,000 missing. According to an official, the Ministry of Energy, Water Resources and Irrigation has formed the panel comprising experts in hydrology, glaciology, remote sensing, geology, hydropower infrastructure and disaster risk reduction. The panel will seek to determine what exactly led to the devastating flash flood in the Bhotekashi River on August 26, how the disaster unfolded and whether climate change played a role. Indian embassies in Bahrain, Kuwait and UAE organized several community-focused activities as part of Seva Pakhwara, highlighting themes such as fitness, environmental awareness, cleanliness, civic participation and community engagement. The 20th Asian Games officially got underway today at Mizuho Park Athletic Stadium in Japan, with Emperor Naruhito declaring the games open. The two-hour ceremony was attended by Japan's royal family, games officials and Olympic Council of Asia, OCA President Sheikh Joan bin Hamad Al Thani. India's 501-member contingent was led by double Olympic medalist Manu Bhakar and kabaddi player Pavan Sehrawat during the athletes' parade. And that is the end of this news bulletin.

बिल्कुल, आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड रेडियो स्टेशन, जिसे आप सुन रहे हैं एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं हूं नूपुर, साथ आपके लेकर प्रोग्राम मधुरिमा। और आज मधुरिमा में बातें करेंगे राग बहार, राग बागेश्वरी, राग बसंत बहार की, और समय मिला तो राग बागेश्वरी और बिहाग की भी। अब आप सोचेंगे कि 20 मिनट में इतनी सारी बातें कैसे, तो बातें रहेंगी संक्षिप्त में और गीत ऐसे सुनेंगे जिनके संगीत में झलक मिलेगी इनमें से किसी एक राग की। तो चलिए जल्दी से थोड़ा थोड़ा सा जान लेते हैं इन तमाम रागों के बारे में। राग बहार वसंत ऋतु और श्रृंगार भाव से जुड़ा प्रसिद्ध राग है। राग बागेश्वरी रात के समय का लोकप्रिय राग है। इसमें विरह, प्रेम और कोमल भाव बहुत सुंदर उभरते हैं। राग बसंत फिर से वसंत ऋतु का अत्यंत प्रसिद्ध राग है। राग बसंत बहार भी बसंत और बहार इन दोनों रागों के अंगों का एक सुंदर मेल है। राग बागेश्वरी बागेश्वरी से संबंधित नाम वाला राग है, लेकिन इसकी अपनी अलग स्वर, चाल और प्रस्तुति है। और राग बिहाग रात के दूसरे प्रहर में गाया जाने वाला मधुर और श्रृंगार प्रधान राग है। गीत सुनते हैं संगीत जिसका बनाया गया राग बहार की जमीन पर। ये राग मध्य रात्रि के समय गाया बजाया जाता है। चूंकि ये वसंत ऋतु का राग है, इसलिए इसे श्रृंगार रस वाला राग माना जा सकता है। गीत आप तक पहुंच रहा है फिल्म छाया से लता मंगेशकर का स्वर और संगीत सलिल चौधरी का।

0: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो, इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
1: मैम, मेरे वाले में तो HIV से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
2: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है
3: और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से HIV हो सकता है।
4: मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV का ज्यादा रिस्क।
0: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं। तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ, ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
5: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री AIDS हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
6: कैसे चुने सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

आकाशवाणी एफएम गोल्ड प्रोग्राम मधुरिमा। अगला गीत फिल्म मधुमति से है, राग बागेश्री, ताल कहरवा, संगीत निर्देशक सलील चौधरी और गायक लता मंगेशकर, गीतकार शैलेंद्र सिंह। अब ये राग बागेश्री अपने प्रेमी से पुनर्मिलन की प्रतीक्षा की भावना को व्यक्त करता है और एक अत्यंत मधुर राग होने के कारण इसने सदियों से लोकप्रियता हासिल की है। ये रात्रिकालीन राग मध्य रात्रि राग है जो काफी थाट का राग है। माँ वादी और सा संवादी, आइए सुनें।

चलिए बढ़ते हैं राग बसंत या कह लीजिए राग वसंत की ओर, जो कि शास्त्रीय संगीत की हिंदुस्तानी पद्धति का राग माना जाता है। वसंत का अर्थ वसंत ऋतु से है, तो इसे विशेष रूप से वसंत ऋतु में गाया बजाया जाता है। वैसे तो इसको कभी भी गा सकते हैं, बजा सकते हैं। इसके आरोह में 5 और अवरोह में 7 स्वर होते हैं, अतः ये ऑर्डर संपूर्ण जाति का राग है और इसमें होलियां बहुत मिलती हैं। ये प्रसन्नता का राग है, ऐसा माना जाता है कि इसके गाने और सुनने से मन प्रसन्न हो जाता है। इसका गायन समय रात का अंतिम प्रहर है, किंतु जैसा मैंने बताया दिन के किसी भी समय इस राग को गा और बजा सकते हैं। पहुंच रहा है आप तक 1961 की फिल्म स्त्री से गीत, जिसे गाया आशा भोसले ने, धुन बनाई सी रामचंद्र ने और गीतकार हैं भरत व्यास।

एक और मौसमी राग है, उसकी बात करते हैं, जो वसंत ऋतु, जीवन, प्रेम और खुशी के आगमन की घोषणा करता है। ये राग है बसंत बहार। भारतीय शास्त्रीय संगीत का एक बेहद सुंदर और लोकप्रिय मिश्रित राग है, जो राग बसंत और राग बहार के संयोजन से बनता है। आप सुन रहे हैं इसी राग को पृष्ठभूमि बनाकर बनाया गया संगीत, जिस गीत का उसको। ये गीत है फिल्म बसंत बहार से, और इसका संगीत ना जिस राग को आधार बनाया गया उसको, उस राग का नाम है बसंत बहार। ताल है एक ताल, संगीत निर्देशक शंकर जयकिशन, और गीतकार हैं मन्ना डे साहब और भीमसेन जोशी जी, और गीतकार शैलेंद्र सिंह। आप सुन रहे हैं इस गीत को, बस पहुंच रहा है गीत आप तक, और आज के प्रोग्राम का ये आखिरी गीत। जुड़े रहिए FM गोल्ड के साथ, इसके बाद आप सुनेंगे।

नमस्कार श्रोताओं, रात के 8:30 बज चुके हैं और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी की तरंगों पर खेल जगत का सबसे विश्वसनीय और आपका पसंदीदा कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन। उम्मीद, जज्बे और जुनून से सजे कार्यक्रम के आज के अंक में मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त जया भारती। श्रोताओं, आज हवाओं में अलग सा रोमांच है क्योंकि हमारे भारतीय जांबाज वैश्विक मंच पर तिरंगा लहराने को पूरी तरह से तैयार है। आज की विस्तृत चर्चा से पहले आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खेल सुर्खियों पर। जापान के नागोया में 20वें एशियाई खेलों का भव्य और रंगारंग आगाज। परेड ऑफ नेशंस में मनु भाकर और पवन सहरावत ने गर्व से लहराया तिरंगा। टेक बॉल स्पर्धा के सेमीफाइनल में भारत की क्विंसी डिसूजा को निराशा मिली। हार के बावजूद जज्बा बरकरार, कल खेलेंगी कांस्य पदक मुकाबला। समरकंद शतरंज ओलंपियाड के तीसरे दौर में कल भारत ने दोहरी जीत दर्ज की और आज चौथे दौर की बिसात पर जंग जारी। और शिलांग में चल रही नॉर्थ ईस्ट जोन इंटरस्टेट बैडमिंटन चैंपियनशिप संपन्न हुआ। असम और मेघालय की टीम ने नेशनल्स गेम्स 2027 के लिए क्वालिफाई किया। श्रोताओं, सबसे पहले बात आज के कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण की। बिल्कुल सही समझा आपने, हम बात कर रहे हैं एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह की। जापान के नागोया शहर से आज 19 सितंबर को इन ऐतिहासिक 20वें एशियाई खेलों का आधिकारिक और रंगारंग आगाज हो चुका है। लेकिन श्रोताओं, भारत का विजय अभियान आज से नहीं बल्कि कल से ही शुरू हो चुका है, इसलिए आज भले ही खेलों का औपचारिक उद्घाटन हुआ हो लेकिन हमारे खिलाड़ियों के हौसले तो कल से ही बुलंद है। और आज शाम जब नागोया के मिजोहू पार्क एथलेटिक्स स्टेडियम में परेड ऑफ नेशंस की शुरुआत हुई तो हमारे एथलीट

0: के चेहरों पर वो आत्मविश्वास साफ नजर आ रही थी।
1: सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा भारत, और सबसे आगे दो बार की ओलंपिक मेडलिस्ट मनु भाकर और कबड्डी के सुपरस्टार पवन सहरावत। ये वो लम्हा है जो आपको अंदर तक हिला देता है, आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। किसी भी एथलीट की जिंदगी में सबसे बड़ा समय, सबसे बड़ा लम्हा यही होता है जब वो तिरंगे को हाथ में लेकर के पूरी दुनिया के सामने चलते हैं।
0: पेरिस ओलंपिक की हमारी डबल ब्रॉन्ज मेडलिस्ट निशानेबाज मनु भाकर और कबड्डी के किंग पवन सहरावत ने पूरे गर्व के साथ हमारे तिरंगे को थाम कर आत्मविश्वास के साथ साफ नजर आ रही थी। और जब हमारी कबड्डी के किंग पवन सहरावत ने पूरे गर्व के साथ तिरंगे को थामे रखा था और मुस्कुराते हुए 501 सदस्यीय विशाल भारतीय दल का नेतृत्व किया, उसके बाद उद्घाटन समारोह के बाद हमारे स्टार निशानेबाज मनु भाकर ने क्या कहा, आइए सुनते हैं।
2: When I got to know yesterday, so I had all these flashback memories of my earlier days, and when I started, kabhi bhi nahi socha tha ki this is where I can reach in one day in my sport. So it definitely, it's like a very heartwarming feeling. It's I feel really proud, I feel really honored, and I really really feel so happy being chosen as the flag bearer of my homeland.
0: कबड्डी किंग पवन सहरावत ने क्या कहा, आइए सुनते हैं।
3: तो ये मेरे लिए बहुत प्राउडली मूवमेंट, अभी भी मेरे अंदर इतनी एनर्जी है कि मैं अपने नेशन का फ्लैग अपने हाथ में लेके चलूंगा। मैं उनसे पहले भी एक बार मिला हूँ, काफी मोटिवेटेड एथलीट है। मेरे लिए भी एक प्राउड मूवमेंट है कि ओलंपिक मेडलिस्ट के साथ मैं फ्लैग बैरियर में साथ जाऊंगा, वुमेन का वो कर रहे हैं, मैन का मैं कर रहा हूँ, तो मेरे लिए भी एक अच्छा मूवमेंट है इतनी बड़ी एथलीट के साथ जाऊँ।
0: श्रोताओं, रुख करते हैं खेल के मैदानों का। आज एशियाई खेलों के उद्घाटन की चमचमाती शाम से पहले मैदान पर हमारे एथलीटों ने पदक की पहली जंग भी लड़ी। दरअसल पहली बार एशियन गेम्स का हिस्सा बने खेल टेक बॉल में भारत की विश्व रैंकिंग 24 की खिलाड़ी क्विंसी जोआकिम डिसूजा आज महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में उतरी थी। हालांकि परिणाम थोड़ा निराश करने वाला रहा। इस प्रतियोगिता पर विस्तार से बात करने के लिए इस समय स्टूडियो में हमसे जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी मुकेश। मुकेश, हमारे श्रोताओं को बताइए कि वहां पर आज इस प्रतियोगिता में क्या हुआ।
4: जी हाँ जया, नागोया सिटी हिगाशी स्पोर्ट्स सेंटर में आज टेक बॉल महिला सिंगल सेमीफाइनल में क्विंसी डिसूजा का सामना इंडोनेशिया की मजबूत खिलाड़ी एमा सुमाया से था। क्विंसी ने पहले गेम में पिछड़ने के बाद दूसरे गेम में गजब की वापसी की और तीसरे निर्णायक गेम में भी 4-1 की मजबूत बढ़त बना ली, लेकिन इंडोनेशियाई खिलाड़ी ने अपने अनुभव का फायदा उठाते हुए अंत में पासा पलट दिया और 2-1 से मैच जीत लिया।
0: तो मुकेश, क्या क्विंसी के लिए पदक की उम्मीदें पूरी तरह से समाप्त हो चुकी हैं?
4: बिल्कुल नहीं जया, भले ही आज सेमीफाइनल का नतीजा निराश करने वाला रहा हो, लेकिन हमारी खिलाड़ी का प्रदर्शन और जज्बा वाकई कमाल का था, और क्विंसी का मेडल का सपना अभी टूटा नहीं है। क्विंसी कल महिला सिंगल्स और मोहम्मद अनस इमरान बेग के साथ मिक्स डबल्स में कांस्य पदक के लिए दोबारा कोर्ट पर उतरेंगी, और हमें पूरी उम्मीद है इस नए खेल में भारत का पहला ऐतिहासिक पदक जरूर आएगा।
0: बिल्कुल मुकेश, हार जीत खेल का हिस्सा है और असली मायने खिलाड़ी का जज्बा ही रखता है। और आज शाम जब उद्घाटन समारोह की परेड ऑफ नेशंस में हमारे तिरंगे को थामे भारतीय दल की अगुवाई पेरिस ओलंपिक की हमारी डबल ब्रॉन्ज मेडलिस्ट निशानेबाज मनु भाकर और कबड्डी के किंग पवन सहरावत ने की, तो खिलाड़ियों के चेहरों पर वो जज्बा साफ नजर आ रहा था। भारत के 501 सदस्यीय विशाल भारतीय दल के हौसले पूरी तरह से बुलंद हैं। श्रोताओं, अब बात करते हैं उस खेल की जो लगभग हर भारतीय के रग रग में बसता है। जैसा कि हमने शुरुआत में ही कहा था कि भले ही एशियाई खेलों का उद्घाटन आज हुआ हो, लेकिन भारत का विजय अभियान कल से ही शुरू हो चुका है। कल हमारी विमेन इन ब्लू ने जिस तरह से मेजबान जापान को हराया वह वाकई शानदार था। भारत ने 8 विकेट की विशाल जीत के साथ सीधे सेमीफाइनल में प्रवेश किया है और सेमीफाइनल में भारत का मैच कल बांग्लादेश से होना है। इस प्रतियोगिता पर अधिक जानकारी के साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे सहयोगी विशेष शुक्ला। विशेष, 8 विकेट की यह जीत और सीधे सेमीफाइनल का टिकट।
5: बिल्कुल जया, भारत रैंकिंग के आधार पर पहले क्वार्टर फाइनल में तो जगह बना ही चुका था, लेकिन जो 8 विकेट से एक तरफा मुकाबला जीता उससे सेमीफाइनल का टिकट तो मिला ही, लेकिन साथ ही साथ एक स्ट्रॉन्ग मैसेज गया है बाकी टीम्स को कि भारतीय गेंदबाजी बहुत घातक हो चुकी है। भारतीय गेंदबाजों की जितनी बात करें उतनी कम है। अभी हाल ही में हुए जो एशिया कप में भारत ने अपनी गेंदबाजी के दम पर पूरे टूर्नामेंट को एक तरफा बना दिया था, और उसकी ही कुछ झलकियां जो हैं वो हमको कल देखने को मिली। श्री चढ़नी ने शुरुआत से ही दबाव बनाकर रखा और सर्वाधिक 4 विकेट झटके। उनके अलावा शेफाली वर्मा ने 2, जो कि एक पार्ट टाइम गेंदबाज हैं, दीप्ति शर्मा और शंका पाटिल ने 1-1 विकेट अपने नाम किया और भारत ने एक आसान जीत दर्ज की।
0: बिल्कुल विशेष, कल की जीत तो आसान रही, लेकिन अब असली परीक्षा कल है। सेमीफाइनल में भारत का सामना बांग्लादेश से होना है और बांग्लादेश की टीम को हम हल्के में नहीं ले सकते।
5: बिल्कुल जया, सेमीफाइनल का मुकाबला कल है और बांग्लादेश एक ऐसी टीम है जो किसी भी दिन एक बड़ा उलटफेर करने का मादा रखती है। एशियाई परिस्थितियों में उनके पास बेहतरीन स्पिनर्स हैं जो हमारे बल्लेबाजों को परेशान कर सकते हैं। भारत के लिए चुनौती होगी कि वे कल के मैच की गलतियों को ना दोहराएं, खासकर पावर प्ले में बांग्लादेश के स्पिन आक्रमण से संभल कर रहें ताकि एक अच्छी शुरुआत भारतीय टीम को मिले।
0: बिल्कुल विशेष, और कल के नतीजों के बाद सेमीफाइनल की चारों टीमें तय हो गई हैं। क्रिकेट के इस शानदार स्थिति के बाद अब बात करते हैं हमारे राष्ट्रीय खेल हॉकी की, जिससे भारतीय प्रशंसकों को मेडल की काफी उम्मीदें हैं। एशियाई खेलों में कल से हॉकी का महाअभियान भी शुरू हो रहा है। ये मुकाबले जापान के काकामिगाहारा में स्थित गिफू प्रीफेक्चरल ग्रीन स्टेडियम में खेले जाएंगे। हॉकी के अलावा अन्य बड़े प्रतियोगिताओं का शेड्यूल भी आ गया है। जैसा कि हमने कल ही बताया था कि ये शेड्यूल वीकेंड पर जारी किए जाएंगे, और कल होने वाले प्रमुख प्रतियोगिताओं की जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शक्ति सिंह है।
6: जया, अगर कल मुकाबलों की बात की जाए तो हॉकी के भारत के कल मुकाबले खेले जाने हैं, जहां सुबह 7:30 बजे भारत की महिला टीम पूल बी में उज्बेकिस्तान से खेलेगी, जबकि पुरुष टीम पूल ए में इंडोनेशिया के खिलाफ 11:30 बजे अपना मुकाबला खेलेगी। बैडमिंटन कोर्ट में कल भारतीय महिला टीम अपने अंतिम 16 यानी कि प्री क्वार्टर फाइनल के मुकाबले खेलेगी, जहां सुबह करीब 11:30 बजे भारत का सामना कजाकिस्तान से होगा। क्रिकेट के मैदान पर भारत बांग्लादेश के साथ खेलेगा, सुबह 10:30 बजे मुकाबला खेला जाएगा। मार्शल आर्ट महिला ट्रेडिशनल में 60 किलोग्राम क्वार्टर फाइनल में सुरुचि तरियाल का मुकाबला जो है मंगोलिया की खिलाड़ी से होना है, यह मैच सुबह 7:10 पे होगा। वहीं पुरुषों के ट्रेडिशनल 77 किलोग्राम वर्ग के क्वार्टर फाइनल में वरुण सान्याल का मुकाबला खेला जाना, ये मुकाबला दोपहर करीब 2 बजे होगा। निशानेबाजी में कल कई भारतीय खिलाड़ी आपको निशाना लगाते हुए नजर आएंगे। जया, महिला 10 मीटर एयर राइफल क्वालिफिकेशन और टीम फाइनल में इला वैनिल वालावेरिन, सोनम मस्कर और विदर्श विनोद सुबह 6:15 बजे पदक के लिए मुकाबला करते हुए दिखेंगे, जबकि महिला 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत फाइनल में इला वैनिल वालारविन, सोनम मस्कर और विदर्श विनोद सुबह 11:00 बजे क्वालिफाइंग करेंगे और उसके बाद पदक के मुकाबलों के लिए दाव पेश करेंगे। टेकबॉल में भारतीय महिला सिंगल्स टीम अपना ब्रॉन्ज मेडल मैच खेलेगी, जिसमें क्विम्समी डिसूजा का मुकाबला युइना साकामोटो से होगा, जो कि जापान की खिलाड़ी है और सेमीफाइनल में प्रवेश किया है उन्होंने। ये मुकाबला सुबह करीब 6:30 बजे खेला जाना है। मिक्स्ड डबल्स में कांस्य पदक मुकाबला क्विम्स्की डिसूजा मोहम्मद अनस बेग और की जो जोड़ी है इसका मुकाबला होगा हुआंग मी तान गुएन जिया निंग त्रियान, वियतनाम के इन दोनों खिलाड़ियों से। ये मैच सुबह 7:00 बजे खेला जाना है। तो जया, ये है कल के मुकाबलों का हाल।
0: बहुत बहुत शक्ति, बहुत बहुत धन्यवाद शक्ति इस विस्तृत रिपोर्ट के लिए। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईची नागोया एशियाई खेलों में हिस्सा ले रहे भारतीय दल को शुभकामनाएं भी दी हैं। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों की कड़ी मेहनत और लगन ने देश का मान बढ़ाया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत को उन पर गर्व है और वे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें, अच्छा खेलें और देश का नाम रोशन करें। श्रोताओं, रुख करते हैं उज्बेकिस्तान के ऐतिहासिक शहर समरकंद का, जहां इस समय 46वें फिडे चेस ओलंपियाड का 4था दौर खेला जा रहा है। कल रात जब हम कार्यक्रम के अंत तक तीसरे दौर का मैच की बात कर रहे थे, तब मैच निर्णायक मोड़ पर था और तब मैंने कहा था कि कभी भी परिणाम भारत के पक्ष में आ सकता है, और ठीक ऐसा ही हुआ। कल पुरुष टीम ने इटली को 3-1 से और महिला टीम ने ग्रीस को 3.5 के मुकाबले आधे अंक से हराकर समरकंद में भारत को दोहरी जीत दिलाई। कल रात अंतिम बोर्ड नतीजों में डी गुकेश और निहाल सरीन ने अपने मुकाबले शानदार तरीके से जीते, जबकि आर प्रज्ञानंदा

0: नरेगेसी और महिला वर्ग में दिव्या देशमुख ने अपने अपने मुकाबले ड्रॉ खेले। लेकिन आज इस समय एक और अच्छी खबर आ रही है कि भारतीय पुरुष टीम ने राउंड फोर के बेहद कड़े मुकाबले में स्पेन को 3-1 से करारी शिकस्त दे दी है और इस मैच का सबसे बड़ा आकर्षण रहे वर्ल्ड चैंपियनशिप के चैलेंजर डी गुकेश, जिन्होंने बोर्ड नंबर 4 पर स्पेन के दिग्गज और आक्रामक खिलाड़ी अलेक्सी शिरो को एक बेहद रोमांचक एंड गेम में मात देकर भारत की जीत पर मुहर लगा दी है। दूसरी तरफ महिला सेक्शन में हमारी भारतीय टीम मंगोलिया के खिलाफ भी बेहद मजबूत स्थिति में आगे बढ़ रही है और जिसके अंतिम नतीजे थोड़ी ही देर में स्पष्ट हो जाएंगे। शतरंज के इन हमारे जाबाजों ने, इन शेरों ने साबित कर दिया है कि वे अपने स्वर्ण पदक बचाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अंत में बात करेंगे हमारे घरेलू खेल के मैदान की। शिलोंग में चल रही नॉर्थ ईस्ट बैडमिंटन चैंपियनशिप आज समाप्त हो गई है और इस प्रतियोगिता की पूरी जानकारी के लिए सुनते हैं शिलोंग से हमारी संवाददाता अनुमिता की रिपोर्ट।
1: 4 दिवसीय नॉर्थ ईस्ट इंटर स्टेट बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आज शिलोंग के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में समापन हुआ। प्रतियोगिता के 5 इंडिविजुअल कैटेगरी में असम के खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक अपने नाम किए। पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्यों के 270 से अधिक खिलाड़ियों ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। ये प्रतियोगिता वर्ष 2027 में मेघालय में होने वाले नेशनल गेम्स की टीम कॉम्पिटिशन्स के लिए क्वालिफाइंग प्रतियोगिता भी थी। खिलाड़ियों ने इस 4 दिवसीय प्रतियोगिता के दौरान अंडर 17, अंडर 19, सीनियर इंडिविजुअल एंड टीम चैंपियनशिप्स में हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता में मिजोरम और मणिपुर ने 2-2 स्वर्ण पदक जीते, जबकि अरुणाचल प्रदेश ने 1 स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वहीं मेजबान मेघालय को 4 ब्रॉन्ज मेडल्स मिले। आकाशवाणी समाचार के लिए अनुमिता दास, शिलोंग।
0: बिल्कुल, और इसके साथ इस टूर्नामेंट के जरिए असम और मेघालय की टीमों ने नेशनल गेम्स 2027 के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स स्कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल मैदान की हर खबर के साथ। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर अपनी राय और सुझाव हमें स्पोर्ट्स स्कैन की ईमेल आईडी sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया। 20वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र सौंपे। रेलवे ने लखनऊ डिवीजन के 607 किलोमीटर से अधिक रूट पर कवच 4.0 लगाने को मंजूरी दी। पश्चिमी रेलवे के उधना उकाई सोंगाद खंड पर 4 लेन वाले रोड ओवरब्रिज के निर्माण को भी मंजूरी। 2 दिवसीय पूर्वोत्तर शिक्षा सम्मेलन नागालैंड में संपन्न। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित किया गया। नेपाल के वित्त मंत्री डॉ स्वर्णिम वागले ने भारत नेपाल साझेदारी के नवीनीकरण का आह्वान किया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और तेलंगाना में कल तेज बारिश की संभावना। और 20वें एशियाई खेलों का जापान में आधिकारिक रूप से शुभारंभ। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर और कबड्डी खिलाड़ी पवन सहरावत ने 501 सदस्य भारतीय दल की अगुवाई की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया है। श्री मोदी ने आज 20वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पिछले कुछ वर्षों से युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए आवश्यक कौशल और अवसर उपलब्ध कराने पर लगातार ध्यान दे रही है।
1: आज देश के 51,000 से अधिक युवाओं को सरकारी सेवा के लिए नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं। मैं आप सभी युवा साथियों को और आपके परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज आप सभी एक ऐसे

0: ऐसे समय में भारत सरकार से जुड़े हैं जब देश एक बहुत बड़े लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है और ये लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनाने का।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाने के लिए भी काम कर रही है।
0: भारत ने बीते कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किए हैं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA हमारे युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार बना रहे हैं। इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए नई पार्टनरशिप्स के रास्ते खुलते हैं और हमारे युवाओं के लिए करियर में नई पॉसिबिलिटीज बनती हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है।
0: भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है और भारत की स्टार्टअप स्टोरी अब केवल बड़े शहरों की कहानी नहीं है। आज करीब आधे रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप Tier 2 और Tier 3 शहरों में है। यानी आज गांव, कस्बे और छोटे शहर का युवा भी भारत की नई इकोनॉमी में अपनी भूमिका बड़ी बना रहा है।
1: इस अवसर पर देश में विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। कोलकाता में शिक्षा और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री डॉक्टर सुकांत मजूमदार ने नवनियुक्त उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र सौंपे। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने विशाखापट्टनम में आयोजित 20वें रोजगार मेले में 200 नवनियुक्त उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र सौंपे। मुंबई में युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री रक्षा खडसे ने नवनियुक्त उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। रेलवे ने उत्तर पूर्व रेलवे के लखनऊ खंड में 600 किलोमीटर से अधिक रूट पर कवच 4.0 लगाने को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्रालय ने बताया कि स्वीकृत परियोजना खंड के चिन्हित शेष हिस्सों में कवच 4.0 का विस्तार करेगी। एक रिपोर्ट।
2: इस परियोजना की लागत 250 करोड़ रुपए से अधिक है। इसके साथ ही पश्चिम रेलवे के उधना उकाई सोनगढ़ खंड पर 4 लेन वाले रोड ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए 133 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। रेल मंत्रालय ने बताया कि पुल के हिस्से में 91 करोड़ से अधिक रुपए की अनुमानित लागत वाले ओपन वेब गर्डर सम्मिलित होगा। 4 लेन रोड ओवर ब्रिज सड़क यातायात की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करेगा। दक्षिण तट रेलवे के 73 किलोमीटर लंबे सावल्यापुरम गुंटूर खंड पर इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम के उन्नयन के लिए 142 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजना को मंजूरी दी गई है। रेल मंत्रालय ने बताया कि इस खंड को 25 किलोवाट की एक यूनिट से 25 किलोवाट की दो यूनिट के रूप में अपग्रेड किया जाएगा। वहीं सोलापुर डिवीजन के 7 स्टेशनों पर 200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। इसके अंतर्गत मध्य रेलवे के मोहोल, मुंधेवाड़ी, बाले, सोलापुर, होटगी जंक्शन, होटगी एक कैबिन, शाहबाद और वाड़ी जंक्शन पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की व्यवस्था की जाएगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि आधुनिक सिग्नलिंग प्रणाली पूरे डिवीजन में रेलवे सिग्नलिंग बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगी और स्वदेशी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली कवच के कार्यान्वयन को सुगम बनाएगी। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए X@AIRNewsHindi को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़ें।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। नागालैंड के चुमाओ के दीमा में नागा यूनाइटेड विलेज में 2 दिन का पूर्वोत्तर शिक्षा सम्मेलन आज संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में पूर्वोत्तर क्षेत्रों के नीति निर्माता, शिक्षाविद और प्रशासक शामिल हुए। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने पर चर्चा की।
4: यह सम्मेलन नागालैंड सरकार ने भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर आयोजित किया था। इसका विषय था NEP 2020 को लागू करना, पूर्वोत्तर राज्यों के लिए परिकल्पना, चुनौतियां और अवसर। समापन समारोह में आज त्रिपुरा के उच्च शिक्षा, पंचायत और सामान्य प्रशासन मंत्री किशोर बर्मन ने कहा कि पूर्वोत्तर भारत में शिक्षा को अधिक कौशल उन्मुख और भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिए। सम्मेलन में ये भी प्रस्ताव रखा गया कि पूर्वोत्तर राज्यों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को प्रभावी ढंग से लागू करने में मदद

0: भारत के लिए प्रधानमंत्री के विशेष वित्तीय पैकेज पर विचार किया जा सकता है। कोहिमा से असुनियों की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से परिभाषित सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन को बदल रहा है। आज की इस कड़ी में आपको जानकारी दे रहे हैं कि कैसे प्रगति प्लेटफॉर्म के जरिए इस विजन को हकीकत में बदला गया है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2015 में प्रगति प्लेटफॉर्म की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य विकास परियोजनाओं, सरकारी योजनाओं और लोगों की शिकायतों का तेजी से समाधान करना है। इस प्लेटफॉर्म के जरिए प्रधानमंत्री खुद केंद्र सरकार के मंत्रालयों और राज्यों के साथ सीधे समीक्षा करते हैं। पिछले 10 वर्षों में प्रगति ने कई महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में देरी की वजह से होने वाली समस्याओं को दूर करने और तेजी से फैसले लेने में मदद की है। इससे अधिकारियों में जवाबदेही की भावना भी मजबूत हुई है। इस साल फरवरी में राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि प्रधानमंत्री स्तर पर विस्तृत निगरानी के कारण 85 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं को आगे बढ़ाने और उनमें तेजी लाने में मदद मिली है।
3: हमने एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म बनाया, हर महीने बैठा और लगातार उस काम करते करते और संबंधित राज्यों को भी बिठाया, हर एक की बारीकी से देखा और आज मैं गर्व से कह सकता हूँ कि इस प्रगति के इम्प्लीमेंटेशन को बारीकी से प्रधानमंत्री के स्तर पर देखे जाने के कारण 85 लाख करोड़ रुपीज का काम को गति मिली। देश की कितनी बड़ी शक्ति को अनलॉक किया हमने, इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है ये हमने करके देखा है।
2: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स बीवी नगर हैदराबाद की कार्यकारी निदेशक डॉक्टर अमिता अग्रवाल ने बताया कि प्रगति तंत्र की मदद से एम्स से जुड़े पानी और बिजली की आपूर्ति जैसी महत्वपूर्ण समस्याओं को हल करने में मदद मिली।
4: कि हमारे पास दो मेजर इश्यूज थे, एक पावर सप्लाई का और एक वाटर सप्लाई, जो कि दोनों बहुत अहम होते हैं अस्पताल के लिए। और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की इंटरवेंशन, सेंट्रल गवर्नमेंट की इंटरवेंशन और साथ में स्टेट गवर्नमेंट का हेल्प से ये प्रॉब्लम्स दोनों धीरे धीरे करके सॉल्व हो गए।
2: प्रगति प्लेटफॉर्म सहकारी संघवाद का भी एक उदाहरण है। इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकारें और केंद्र के विभिन्न मंत्रालय एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मिलकर काम करते हैं। अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रगति की 53 बैठकों की अध्यक्षता कर चुके हैं। आनंद कुमार के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: नेपाल के वित्त मंत्री डॉक्टर स्वर्णिम वागले ने कहा है कि भारत और नेपाल के पास मजबूत संबंधों के आधार पर अपनी साझेदारी को नया रूप देने का अवसर है। आज नई दिल्ली में भारत नेपाल संबंधों पर एक सेमिनार में डॉक्टर वागले ने संपर्क सुविधा और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने तथा दोनों देशों द्वारा मिलकर हासिल की जा सकने वाली बड़ी संभावनाओं को साकार करने पर बल दिया। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में उन्होंने नेपाल में हाल ही में बाढ़ के बाद भारत से त्वरित राहत और बचाव सहायता की भी सराहना की।
5: I think close to 8 cargo planes have arrived.
6: अब तक लगभग 8 कार्गो विमान 130 टन राहत सामग्री लेकर आ चुके हैं। 50 से अधिक भारतीय कर्मी आज भी बचाव और राहत कार्यों में मदद कर रहे हैं, खासकर उन लोगों की जान बचाने और उन्हें निकालने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं जो शायद अभी भी इन पन बिजली सुरंगों में फंसे हो सकते हैं। मुझे लगता है कि भारत सरकार मदद के मुद्दे को बहुत सकारात्मक रूप से देख रही है।
5: The Indian government is looking at the issue of assistance very positively.
1: इस बीच भारत ने नेपाल को 11 टन राहत सामग्री की एक और खेप भेजी है। इसमें दवाएं, फॉरेंसिक का सामान, टेंट, हाइजीन किट, स्लीपिंग बैग और अन्य आवश्यक सामग्री शामिल हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल को बाढ़ आपदा में सहायता के लिए राहत सामग्री ले गया ये वायुसेना का 9वां विमान था। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि भारत नेपाल की सहायता जारी रखेगा। नेपाल सरकार ने पिछले महीने विनाशकारी बाढ़ के कारणों की जांच के लिए 7 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में 3 पद जीत लिए हैं। परिषद के यश डबास अध्यक्ष, रिया छावड़ी सचिव और लक्ष्य राज सिंह संयुक्त सचिव चुने गए। निर्दलीय उम्मीदवार दीपांशु शौकीन ने उपाध्यक्ष पद पर जीत दर्ज की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने छात्र संघ चुनावों में परिषद की जीत पर बधाई दी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता रवनीत सिंह बिट्टू को आज पंजाब पुलिस

0: वाड़ा पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्र, पूर्वी राजस्थान, झारखंड, कोंकण, गोवा, ओडिशा और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में कल गरज के साथ बारिश और बिजली चमकने की संभावना है। एशियाई खेलों का भव्य उद्घाटन समारोह आज जापान के आईची नागोया में हुआ। भारतीय निशानेबाज मनु भाकर और कबड्डी खिलाड़ी पवन सहरावत ने 501 सदस्य भारतीय दल की अगुवाई की। टेक बॉल स्पर्धा के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में आज भारत की क्विंसी डिसूजा को इंडोनेशिया की सुमाया से 1-2 से हार का सामना करना पड़ा। क्विंसी कल कांस्य पदक मुकाबला खेलेंगी। भारतीय महिला क्रिकेट टीम भी कल सेमीफाइनल खेलेगी। सेमीफाइनल में भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। एक अन्य सेमीफाइनल में पाकिस्तान और श्रीलंका आमने सामने होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के भारतीय दल को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने आशा प्रकट की कि भारतीय खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करेंगे और खेलों में शानदार सफलता हासिल करेंगे। राधा अष्टमी के शुभ अवसर पर आज मंदिरों में श्रद्धालुओं ने भक्तिभाव के साथ राधा अष्टमी मनाई। उत्तर प्रदेश के बरसाना, मथुरा, वृंदावन और ब्रज क्षेत्र के अन्य हिस्सों में श्री राधा रानी मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित हुए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया। 20वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र सौंपे। रेलवे ने लखनऊ डिवीजन के 607 किलोमीटर से अधिक रूट पर कवच 4.0 लगाने को मंजूरी दी। 2-दिवसीय पूर्वोत्तर शिक्षा सम्मेलन नागालैंड में सम्पन्न। नेपाल के वित्त मंत्री डॉ स्वर्णिम वागले ने भारत नेपाल साझेदारी के नवीनीकरण का आह्वान किया। और 20वें एशियाई खेलों का जापान में आधिकारिक रूप से शुभारंभ। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi emphasizes pivotal role of youth in building a developed and self-reliant India, distributes more than 51,000 appointment letters at 20th Rozgar Mela. Railway approves provision of coverage version 4.0 on 607.7 route kilometers of Lucknow division, also gives nod to construction of four-lane road overbridge on Udna Ukai Songarh section of Western Railway. 2-day Northeast Education Conclave 2026 concludes in Nagaland, focuses on implementation of National Education Policy 2020. Nepalese Finance Minister Dr. Swarnim Wagle calls for renewed India-Nepal partnership. Heavy rainfall likely over Andaman and Nicobar Islands, coastal Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala, Maharashtra, Tamil Nadu and Telangana tomorrow. And 20th Asian Games officially open in Japan. Double Olympic medalist Manu Bhakar and Kabaddi player Pavan Sehrawat lead India's 501-member contingent during athletes' parade. Prime Minister Narendra Modi today distributed more than 51,000 appointment letters to newly appointed youth in various government organizations at the 20th Rozgar Mela this afternoon through video conferencing. Speaking on the occasion, Mr. Modi emphasized the pivotal role of youth in building a developed and self-reliant India. He said in recent years, the central government has consistently focused on equipping the youth with skills and opportunities needed to prepare for the future.
2: आज देश के 51,000 से अधिक युवाओं को सरकारी सेवा के लिए नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं। मैं आप सभी युवा साथियों को और आपके परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज आप सभी एक ऐसे समय में भारत सरकार से जुड़े हैं जब देश एक बहुत बड़े लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है और ये लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनाने का।
1: Prime Minister Modi said the government is also working to rapidly expand employment opportunities in the private sector. He said with this objective, the Pradhan Mantri Vikasit Bharat Rozgar Yojana has been launched with an outlay of around 1 lakh crore rupees. The scheme

0: ये आकाशवाणी है, आइए सुने राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती।
1: साइलेंस, लाइट्स, साउंड, कैमरा, एक्शन।

0: नमस्कार, राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती में आपका स्वागत है। चित्र भारती के इस अंक में संपादकीय 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, विशेष रूपक हिंदी साहित्य और सिनेमा, रुपहला पर्दा रुपहली बातें, इस श्रृंखला में गायिका आशा भोसले की एक अनमोल रिकॉर्डिंग, और स्मृति शेष में नमन निर्देशक कुकू कोहली को। तो सबसे पहले संपादकीय 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सरकार द्वारा दिए जाने वाले देश के सबसे बड़े अवार्ड हैं। इनकी शुरुआत हुई थी सन 1954 में। ये पुरस्कार माननीय राष्ट्रपति के हाथों प्रदान किए जाते हैं। समय के साथ इन पुरस्कारों की संख्या में भी बढ़ोतरी होती चली गई है। ये पुरस्कार 3 वर्गों में दिए जाते हैं, फीचर फिल्में, गैर फीचर फिल्में और सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन। फीचर और गैर फीचर वर्ग में उत्कृष्ट सिनेमा को पुरस्कृत किया जाता है, जबकि सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन खंड में सिनेमा के अध्ययन और उसके विश्लेषण पर केंद्रित कृतियों को सम्मानित किया जाता है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का मकसद है बेहतर सिनेमा को प्रोत्साहित करना। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 22 सितंबर को एकता नगर गुजरात में प्रदान किए जाएंगे। इसे पहले केवड़िया के नाम से जाना जाता था। आपको बता दें कि ये पुरस्कार साल 2024 के लिए दिए जा रहे हैं। इन पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार आर्टिकल 370 को दिया जा रहा है। इसके निर्देशक हैं आदित्य सुहास जांभले। इसी फिल्म के लिए अभिनेत्री यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया जा रहा है। बेहतरीन मनोरंजन देने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म के लिए पुरस्कार इस बरस दिया जाएगा नाग अश्विन सिंह रेड्डी की फिल्म कल्कि 2898 AD को।
1: ये

0: 6000 सालों पहले देखा था।
1: वो शक्ति वापस आ गई।
2: किसी नए निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार फिल्म स्वातंत्र वीर सावरकर को दिया जाएगा। इसे बनाया है जाने माने अभिनेता रणदीप हुडा ने। राष्ट्रीय सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार तमिल फिल्म कैप्टन मिलर को दिया जाएगा। इसके निर्देशक हैं अरुण माथेश्वरन, जबकि सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का पुरस्कार तेलुगु फिल्म 35 चिन्ना काथा कादू को दिया जाएगा। इसके निर्देशक हैं नंदकिशोर ईमानी। साल 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार राजकुमार पेरियासामी को दिया जाएगा, उनकी तमिल फिल्म अमरन के लिए। ये फिल्म शिव अरूर की पुस्तक इंडियाज मोस्ट फियरलेस ट्रू स्टोरीज ऑफ मॉडर्न मिलिट्री हीरोज पर आधारित थी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया जाएगा संयुक्त रूप से अभिनेता ममूटी और कार्तिक आर्यन को। ममूटी को मलयालम फिल्म ब्रह्मयुगम में उनके अभिनय के लिए सम्मानित किया जा रहा है, जबकि कार्तिक आर्यन को कबीर खान निर्देशित फिल्म चंदू चैंपियन के लिए सम्मानित किया जाएगा। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार संजय मिश्रा को हिंदी फिल्म भक्षक के लिए मिल रहा है, जबकि सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार तमिल फिल्म महाराजा के लिए सचना नामिदास को दिया जाएगा। उन्हें यह पुरस्कार अभिनेत्री रूपाश्री वरकाडी के साथ संयुक्त रूप से दिया जाएगा, जिन्होंने कन्नड़ फिल्म मिथ्या के लिए यह पुरस्कार जीता है। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का पुरस्कार दिया जा रहा है अभय जोधपुरकर को मराठी फिल्म घरात गणपति के इस गाने के लिए। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका का पुरस्कार वाइकोम विजयालक्ष्मी को मलयालम फिल्म ARM के इस गाने के लिए दिया जाएगा। सर्वश्रेष्ठ छायाकार का पुरस्कार दिया जा रहा है शहनाज जलाल को तमिल फिल्म ब्रह्मयुगम के लिए। सर्वश्रेष्ठ पटकथा का पुरस्कार संयुक्त रूप से 3 लोगों को दिया जा रहा है। ये हैं तेलुगु फिल्म पुष्पा द रूल पार्ट 2 के लेखक बांडरेड्डी सुकुमार, मराठी फिल्म स्वर गंधर्व सुधीर फड़के के पटकथा लेखक योगेश देशपांडे और तेलुगु फिल्म लखी बस्कार के लेखक वेंकी अटुलुरी। बेस्ट साउंड डिजाइन का पुरस्कार फिल्म भूल भुलैया 3 के लिए मानस चौधरी को दिया जाएगा और बेस्ट एडिटिंग का पुरस्कार दिया जाएगा तमिल फिल्म अमरन के लिए आर कलाई वन्नन को। सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का पुरस्कार भी संयुक्त रूप से दिया जा रहा है हिंदी फिल्म आर्टिकल 370 के गानों के लिए शाश्वत सचदेव को और तमिल फिल्म अमरन के बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए GV प्रकाश कुमार को। सर्वश्रेष्ठ गीतकार का पुरस्कार मनोज मुंतशिर को फिल्म मैदान के इस गाने के लिए दिया जाएगा।

0: 74वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल सभी क्षेत्रीय भाषाओं की फीचर फिल्मों को भी पुरस्कार दिया जा रहा है। सर्वश्रेष्ठ नॉन फीचर फिल्म का पुरस्कार सुमीरा राय की फिल्म भंगार को दिया जाएगा। रविराज मुर्मू को किसी निर्देशक की पहली नॉन फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया जाएगा उनकी संथाली फिल्म आंगेन के लिए। नॉन फीचर फिल्म कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार आनंद एल राय को दिया जा रहा है उनकी फिल्म स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एकता का प्रतीक के लिए। आपको एक बार फिर बता दें कि इस बार पहली बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह नई दिल्ली में न होकर एकता नगर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में दिए जा रहे हैं। ये समारोह 22 सितंबर को आयोजित किया जाएगा जहां भारत की माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विजेताओं को पुरस्कार प्रदान करेंगी। भारतीय सिनेमा के दिग्गज अभिनेता अनंत नाग को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किए जाने का ऐलान हुआ है। अनंत नाग का नाम उन कलाकारों में शामिल है जिन्होंने अपने अभिनय का जलवा न सिर्फ कन्नड़ सिनेमा में दिखाया बल्कि हिंदी में भी वो नजर आए और कई अन्य भारतीय भाषाओं की फिल्मों में भी उन्होंने अपनी अनूठी पहचान बनाई। आपको बता दें अनंत नाग का जन्म 4 सितंबर 1948 को हुआ था। उनका पूरा नाम है अनंत नागर कट्टे। यूं तो अनंत नाग कन्नड़ फिल्मों के अभिनेता के तौर पर जाने जाते हैं पर जानकारी के लिए ये बता देना चाहिए कि वो हिंदी तेलुगु तमिल मलयालम मराठी और अंग्रेजी फिल्मों में नजर आ चुके हैं।
1: सरकार को कुछ होने क्या
2: पता चल गया तुझे वो कहाँ है?
1: नहीं मालूम कहाँ गया माटी मिला
2: मालूम नहीं वापिस आएगा भी या नहीं।
0: उन्होंने अपने लंबे करियर में तकरीबन 300 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया है जिनमें 250 से ज्यादा फिल्में कन्नड़ रही हैं। वैसे अनंत नाग ने अभिनय के सारे आयामों को अपनाया है चाहे वो रंगमंच हो सिनेमा हो या टेलीविजन। चूंकि टेलीविजन का जिक्र चला है तो ये बता देना बहुत जरूरी है कि अनंत नाग आर के नारायण की कहानियों पर आधारित दूरदर्शन के बेहद लोकप्रिय सीरियल मालगुड़ी डेज में नजर आए थे और तब उन्हें घर घर पहचान मिली थी। अनंत नाग के लंबे करियर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि उन्होंने अपने किरदारों में बहुत ज्यादा विविधता रखी है। हर तरह के किरदार उन्होंने निभाए हैं। अनंत नाग की शुरुआत कन्नड़ सिनेमा से हुई थी। फिल्म संकल्प में वो बतौर लीड एक्टर नजर आए थे। हाल ही में फिल्म KGF में वो नजर आए और नई पीढ़ी ने उन्हें पहचाना।
3: गरुड़न नोड़दागा रॉकेट कंफर्म आयतो। Here is a man who comes from that powerful place. अदक्के अवकाश इद्रू अवनन मुगसाकलिल्ला।
0: अनंत नाग ने ब्लॉकबस्टर फिल्म KGF चैप्टर 1 में वरिष्ठ पत्रकार और लेखक आनंद इंगलागी का किरदार निभाया था। दरअसल ये किरदार फिल्म का सूत्रधार भी है। हिंदी में अनंत नाग अंकुर भूमिका कालीचरण और जुर्म जैसी फिल्मों में नजर आए हैं। सिनेमा और कला के क्षेत्र में योगदान के लिए भारत सरकार ने साल 2025 में अनंत नाग को देश के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से नवाजा था। अनंत नाग को दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिलने के लिए ढेर सारी बधाइयां। ये था संपादकीय अब विशेष रूपक हिंदी साहित्य और सिनेमा।
4: हम अपने दोस्त और नवाब बुरहानुल मुल्क के रिश्तेदार के नगर पोते मीर रोशन अली में
5: जरा होश में आइए हुजूर जरा। हाँ सुनिए मेरी बात सुनिए यहाँ से भाग निकलते हैं।
0: सिनेमा और साहित्य दो अलग अलग धाराएं हैं लेकिन दोनों का आपसी रिश्ता बड़ा गहरा है। जब कहानी पर आधारित फिल्में बननी शुरू हुईं, तो इसका आधार साहित्य बना। बहुत कम लोग जानते होंगे कि दादा साहेब फाल्के ने भारत की जो पहली फीचर फिल्म बनाई थी वो भारतेंदु हरीश्चंद्र के नाटक हरीश्चंद्र से प्रेरित और उस पर आधारित थी। साहित्यिक कृतियों पर समय समय पर फिल्में बनती रहती हैं, लेकिन ज्यादातर ये कहा जा सकता है कि मुंबई के फिल्मकार साहित्यिक कृतियों पर फिल्में बनाने से बचते हैं। आपको ये जानकर हैरत हो सकती है कि मुंबई की अजंता मूवी टोन कंपनी ने सन 1933 के आसपास प्रेमचंद को मुंबई आमंत्रित किया था फिल्मों में लिखने के लिए। प्रेमचंद की कहानी पर मोहन भावनानी ने फिल्म बनाई मिल मजदूर। निर्देशक ने मूल कहानी में थोड़े बदलाव किए जो प्रेमचंद को पसंद नहीं आए। इस फिल्म में मजदूरों की क्रांति की बात की गई थी। कराची में कोई घटना हो गई और फिर फिल्म पर प्रतिबंध लगा दिया गया। सन 1934 में प्रेमचंद की कृतियों नवजीवन और सेवा सदन पर फिल्में बनी और ये फ्लॉप हो गईं। सन 1941 में भगवती चरण वर्मा के उपन्यास चित्रलेखा पर केदार शर्मा ने इसी नाम से एक फिल्म बनाई। ये फिल्म कामयाब रही। इसके बाद सन 1964 में केदार शर्मा ने इस फिल्म को दोबारा बनाया। इस बार फिल्म में रोशन का संगीत था। इस फिल्म को एक उत्कृष्ट कृति पर बनी एक उत्कृष्ट फिल्म के रूप में याद किया जाता है।

0: सन 1960 में चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी पर बनी फिल्म उसने कहा था। निर्देशक थे मोनी भट्टाचार्य, कलाकार थे सुनील दत्त और नंदा।
1: क्या नाम है तेरा?
2: कमली।
1: कमली, बड़ा प्यारा नाम है।
2: मेरा नाम नंदू है।
1: अच्छा नाम है ना?
3: और बारह पत्रा नहीं।
1: चल, तू इधर रोज आती है?
2: हाँ।
1: कल आना, मैं तुझे बड़े बड़े अमरूद दूंगा।
2: अच्छा, मैं जाऊँ? बड़ी देर हो गई है, मामा बिगड़ेंगे।
1: संभल के जाना। कमली,
4: गल सुन।
2: क्या?
1: तेरी कुमाई हो गई?
0: आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के उपन्यास धर्मपुत्र पर बी आर चोपड़ा ने फिल्म बनाई। सन 1961 में आई इस फिल्म धर्मपुत्र के निर्देशक थे यश चोपड़ा, कलाकार थे माला सिन्हा और शशि कपूर, और इस फिल्म ने 9वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार

मुंशी प्रेमचंद भले ही सिनेमा से निराश होकर लौट गए, लेकिन उनकी कृतियों पर फिल्में बनने का सिलसिला जारी रहा। सन 1963 में त्रिलोक जेटली लेकर आए फिल्म गोदान, जिसमें संगीत पंडित रविशंकर का था।

0: सन 1966 में ऋषिकेश मुखर्जी लेकर आए फिल्म गबन, फणीश्वरनाथ रेणु की मशहूर कहानी मारे गए गुलफाम पर फिल्म तीसरी कसम बनी। इसे प्रोड्यूस किया जाने माने गीतकार शैलेंद्र ने और इसके निर्देशक थे बासु भट्टाचार्य, कलाकार थे राज कपूर और वहीदा रहमान। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भले ही कामयाब न रही हो लेकिन 14वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला।
1: एक बात का गुस्सा तो नहीं कीजिएगा?
2: नहीं, बोलो।
1: बात यह है, मेले में चोर पॉकेटमार बहुत आते हैं।
2: सो तो आते हैं फिर?
1: और देखिए, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, 1600 रुपया है, आप संभाल के रख लीजिए। तो
2: अगर मैं मार लूं तो?
0: फिल्मों के लिए कई कहानियां लिख चुके और कई फिल्में बना चुके राजेंद्र सिंह बेदी की कृति एक चादर मैली सी पर बनी फिल्म फ्लॉप हो गई थी। प्रेमचंद की कहानी पर सत्यजीत रे ने अपनी हिंदी फिल्म बनाई शतरंज के खिलाड़ी। ये फिल्म साल 1977 में आई थी।
3: हाँ, सब हो गया।
4: क्या हुआ?
3: आज वो घर पर ही है, दीवान खाने में बैठे खेल रहे हैं।
4: खेल रहे हैं?
3: शतरंज मिर्जा साहब के साथ। इससे पहले कभी घर पर तो नहीं खेली? अल्लाह मेरा तो जी होला जाता है, कहीं उन्हें शक तो नहीं हो गया?
4: तो माओ जान शतरंज खेल रहे हैं,
3: कहीं कुछ ऊंच नीच हो गई तो?
4: हो ही नहीं सकती, जब खुली बिसात सामने हो तो सिवाय मोहरों के और कुछ दिखाई नहीं देता।
3: अरे हाँ, ये तो वो भी कह रहे थे।
0: दरअसल हिंदी की साहित्यिक कृतियों पर सफल फिल्म न बनने के कई कारण हैं। सिनेमा का अपना व्याकरण, अपना ढांचा है और सिनेमा एक पेशेवर इलाका है। जाहिर है कि फिल्में बनाने में पैसे लगते हैं और फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर कामयाब होना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए साहित्यिक कृतियों में बदलाव किए जाते हैं जो साहित्यकार को मंजूर नहीं होते। फिर भी दुनिया भर में साहित्यिक कृतियों पर अच्छी फिल्में बनाने का सिलसिला जारी रहा है। राजेंद्र यादव के उपन्यास सारा आकाश पर बासु चटर्जी ने 1969 में फिल्म बनाई थी। मनु भंडारी की कहानी यही सच है पर उन्होंने बनाई रजनीगंधा। साल था 1974।
5: यूं ही महके प्रीत पिया की, मेरे अनुरागी मन में।
0: कमलेश्वर की लंबी कहानी आगामी अतीत पर गुलजार ने बनाई मौसम। 1975 में कमलेश्वर के उपन्यास काली आंधी पर बनी फिल्म आंधी।
6: ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है।
0: इन दिनों सिनेमा किताबों को अपना तो रहा है, ये किताबें अंग्रेजी की होती हैं या अन्य भाषाओं की और उन पर पेशेवर फिल्में बनाई जाती हैं, जैसे थ्री इडियट्स बनी थी चेतन भगत के उपन्यास पर। हिंदी कृतियों पर अच्छे सिनेमा का इंतजार दर्शकों को हमेशा

रहता है। ये था विशेष रूपक हिंदी साहित्य और सिनेमा, रुपहला पर्दा रुपहली बातें। इस श्रृंखला में आज हम लेकर आए हैं गायिका आशा भोसले की एक अनमोल रिकॉर्डिंग। आशा भोसले का जन्म 8 सितंबर 1933 को सांगली में हुआ था। उन्होंने अपना करियर सन 1943 में फिल्म माजाबाड़ के एक गाने के जरिए शुरू किया था। संगीत दत्ता दावजेकर का था। हिंदी में उनका पहला गीत था फिल्म चुनरिया के लिए। संगीतकार थे हंसराज बहल। आशा भोसले ने अपनी बड़ी बहन लता मंगेशकर से अलग अपनी अनूठी छवि बनाई और हर तरह के गीत गाए।

0: उन्होंने 7 बार सर्वश्रेष्ठ गायिका का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। 2 बार उन्हें सर्वश्रेष्ठ गायिका का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। फिल्म उमराव जान के लिए
1: जान लीजिए
0: और फिल्म इजाजत के लिए
1: मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा।
0: साल 2000 में उन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो सुनते हैं आशा भोसले की ये अनमोल रिकॉर्डिंग।
2: आकाशवाणी एक ऐसा नाम है जो बचपन से हमारे साथ जुड़ा हुआ है। जब छोटे थे हम लोग और जब रेडियो चालू हुआ था वो जमाना अंग्रेजों का था और उस समय छोटे छोटे रेडियो सबके घर में होते थे। रिकॉर्ड्स तो कम होते थे, बहुत बड़े लोगों के पास होते, लेकिन शाम होती थी और हम कुछ भी काम हो छोड़ के, दौड़ना हो सब छोड़ के जाके गाना सुनते थे। और हेमंत कुमार, जगमोहन, पंकज मलिक, नूरजहान, ये तो लोग याद हैं बिल्कुल, क्योंकि मैं तब से हेमंत जी के बिल्कुल जबरदस्त फैन के मेरे बेटे का नाम भी हेमंत रखा मैंने। उनका गाना बताती हूँ आपको, बहुत चलता था उस वक्त। आंचल से क्यों बांध लिया मुझ परदेसी का प्यार, ये गाना तब मैं सुना करती थी और मैं बिल्कुल उनके प्यार में थी, छोटी सी थी प्यार में, कि कभी हेमंत कुमार जी का आवाज मैं सुनती हूँ। ये आकाशवाणी नहीं होती तो कभी दुनिया को पता नहीं लगता कि कौन सिंगर अच्छा है, कौन सिंगर बढ़िया है और किसके गाने अच्छे हैं, कौन म्यूजिक डायरेक्टर है, मतलब म्यूजिक किसी को पता ही नहीं लगता। ये पूरा काम जो है हमारी आकाशवाणी ने चालू किया, उस आकाशवाणी पे गाने आते थे, उससे लोगों को पता लगता था कि ये सिंगर बढ़िया है या कैसे हैं, अच्छे हैं बुरे सब, या सिर्फ प्लेबैक सिंगर ही नहीं, क्लासिकल सिंगर, उनके शो होते थे यहाँ पर, एक एक घंटा रात को वो लोग गाते थे, बड़े गुलाम अली हो, आमिर खान साहब हो, और ये सब गाते थे और लोग सुनते थे। तो ये आकाशवाणी हमारे जीवन का एक हिस्सा है। मैं बड़ी खुश हूँ क्योंकि मेरा पहला जो कदम था गाने की तरफ जाने का वो रेडियो में हुआ। रेडियो में मुझे बुलाया तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि जाओ, पास हो गई तो घर आना, नहीं तो आना ही नहीं घर। मैंने जाके अपने पिताजी के गाने गाए, वो गाने क्लासिकल ढंग के गाने, तो तब दिनकर अम्बल करके उनके स्टेशन डायरेक्टर थे, वो आए, उन्होंने गाना सुना और कहा, अरे ये दिना की लड़की है। ज्यादा सुना ही नहीं, मेरे सर पे हाथ रखा और कहा इस महीने में वो शो देते हैं ना, सुबह 7 बजे आके गाओ, दोपहर को 2 बजे गाओ, रात को कुछ 4 बजे गाओ, ऐसे शो दे दिए। और मैं कांपते कांपते घर गई कि मैं कहीं गाऊंगी कैसे, छोटी थी। और रेडियो, और रेडियो का जो सब लाइट लगता था, लाल लाइट के रिकॉर्डिंग शुरू हो गई, मतलब लाइव, तो वो लाइट देखते ही तो पसीने पसीने हो जाता इंसान। लेकिन ईश्वर की मर्जी थी, यहाँ तक लाना था, पिताजी का आशीर्वाद, मंगेश शिव का आशीर्वाद है कि आज मैं उसी आकाशवाणी में बैठी हूँ। तब मैं 14-15 की थी, अभी भी मैं गा रही हूँ, स्टेज पे जाती हूँ, 3 घंटे खड़े होकर गाती हूँ, रिकॉर्डिंग करती हूँ। इशारों इशारों में दिल लेने वाले, अब ऐसा सीधा सीधा रफी साहब गा रहे थे, तो मैंने बोला ऐसे नहीं, अगर ऐसे गए तो इशारों इशारों में दिल लेने, इशारों इशारों, हरकत दे दे के उसको ऊपर ले जाना। तो ये हमने काम किया। मैं जब गाना सुनती हूँ तो वो वक्त, वो सामने रिकॉर्डिंग थिएटर सब आ जाता,

0: स्मृति शेष स्मृति शेष में आज हम नमन कर रहे हैं जाने माने निर्देशक कुकू कोहली को। कुकू कोहली का 25 अगस्त को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वो 77 साल के थे। कुकू कोहली का असली नाम था अवतार कोहली। उनका जन्म 4 जून 1949 को पेशावर में हुआ था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की राज कपूर के साथ बतौर सहायक। कई बरस तक राज कपूर के साथ उन्होंने फिल्म निर्माण के गुर सीखे। सनी देओल की फिल्म बेताब में वो असिस्टेंट डायरेक्टर थे। फिल्म अर्जुन में भी वो असिस्टेंट डायरेक्टर रहे। इसके बाद उन्होंने निर्देशन की दुनिया में कदम रखा और बनाई धर्मेंद्र अभिनीत फिल्म कोहराम। सन 1991 में उन्होंने फिल्म फूल और कांटे का निर्देशन किया। इस फिल्म के जरिए अभिनेता अजय देवगन ने रुपहले पर्दे पर अपना पहला कदम रखा।
1: मैंने प्यार तुम्हीं से किया है, मैंने दिल भी तुम्हीं को दिया है।
0: इसके बाद उन्होंने फिल्म सुहाग बनाई, जिसके सितारे थे अजय देवगन, अक्षय कुमार, करिश्मा कपूर और नगमा।

कुकू कोहली की आखिरी फिल्म थी वो तेरा नाम था, जिसमें अर्जुन बाजवा और कंची कौल ने अभिनय किया था। विनम्र नमन, ये था राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती का सितंबर महीने का अंक। शोध, आलेख, स्वर और संपादन यूनुस खान, प्रस्तुति अनुश्री पाठक। राष्ट्रीय प्रसारण के लिए फिल्म पत्रिका चित्र भारती का निर्माण विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के मुंबई स्थित स्टूडियोज में किया गया।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया है। श्री मोदी ने आज 20वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पिछले कुछ वर्षों से युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए आवश्यक कौशल और अवसर उपलब्ध कराने पर लगातार ध्यान दे रही है।
1: आज देश के 51,000 से अधिक युवाओं को सरकारी सेवा के लिए नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं। मैं आप सभी युवा साथियों को और आपके परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज आप सभी एक ऐसे समय में भारत सरकार से जुड़े हैं जब देश एक बहुत बड़े लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है और ये लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनाने का।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाने के लिए भी काम कर रही है।
1: भारत ने बीते कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किए हैं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स FTA हमारे युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार बना रहे हैं। इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए नई पार्टनरशिप्स के रास्ते खुलते हैं और हमारे युवाओं के लिए करियर में नई पॉसिबिलिटीज बनती हैं।
0: इस अवसर पर देश में विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। रेलवे ने उत्तर पूर्व रेलवे के लखनऊ खंड में 600 किलोमीटर से अधिक रूट पर कवच 4.0 लगाने को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्रालय ने बताया कि स्वीकृत परियोजनाओं खंड के चिन्हित शेष हिस्सों में कवच 4.0 का विस्तार करेगी। इस परियोजना की लागत 250 करोड़ रुपए से अधिक है। इसके साथ ही पश्चिम रेलवे के उधना उकाई सोनगढ़ खंड पर 4 लेन वाले रोड ओवरब्रिज के निर्माण के लिए 133 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। नागालैंड के चुमोइके देमा में नागा यूनाइटेड विलेज में 2 दिन का पूर्वोत्तर शिक्षा सम्मेलन आज संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में पूर्वोत्तर क्षेत्रों के नीति निर्माता, शिक्षाविद और प्रशासक शामिल हुए। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने पर चर्चा की। ये सम्मेलन नागालैंड सरकार ने भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर आयोजित किया था। इसका विषय था NEP 2020 को लागू करना, पूर्वोत्तर राज्यों के लिए परिकल्पना, चुनौतियां और अवसर। समापन समारोह में आज त्रिपुरा के उच्च शिक्षा पंचायत और सामान्य प्रशासन मंत्री किशोर बर्मन ने कहा कि पूर्वोत्तर भारत में शिक्षा को अधिक कौशल उन्मुख और भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से परिभाषित सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन से

0: इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। नेपाल के वित्त मंत्री डॉक्टर स्वर्णिम वागले ने कहा है कि भारत और नेपाल के पास मजबूत संबंधों के आधार पर अपनी साझेदारी को नया रूप देने का अवसर है। आज नई दिल्ली में भारत नेपाल संबंधों पर एक सेमिनार में डॉक्टर वागले ने संपर्क सुविधा और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने तथा दोनों देशों द्वारा मिलकर हासिल की जा सकने वाली बड़ी संभावनाओं को साकार करने पर बल दिया। भारत ने नेपाल को 11 टन राहत सामग्री की एक और खेप भेजी है। इसमें दवाएं, फोरेंसिक का सामान, टेंट, हाइजीन किट, स्लीपिंग बैग और अन्य आवश्यक सामग्री शामिल है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल को बाढ़ आपदा में सहायता के लिए राहत सामग्री ले गया यह वायुसेना का नवा विमान था। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि भारत नेपाल की सहायता जारी रखेगा। एशियाई खेलों का भव्य उद्घाटन समारोह आज जापान के आईची नागोया में हुआ। भारतीय निशानेबाज मनु भाकर और कबड्डी खिलाड़ी पवन सहरावत ने 501 सदस्यीय भारतीय दल की अगुवाई की। इससे पहले टेकबॉल स्पर्धा में महिला सिंगल सेमीफाइनल में आज भारत की क्विंसी डिसोजा को इंडोनेशिया की सुमाया से हार का सामना करना पड़ा। क्विंसी कल कांस्य पदक मुकाबले खेलेंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi distributed more than 51,000 appointment letters to newly appointed youth in various government organizations at the 20th Rose Guard Mela this afternoon through video conferencing. Speaking on the occasion, Mr. Modi emphasized the pivotal role of youth in building a developed and self-reliant India. He said in recent years the central government has consistently focused on equipping the youth with the skills and opportunities needed to prepare for the future.
2: मैं आप सभी युवा साथियों को और आपके परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज आप सभी एक ऐसे समय में भारत सरकार से जुड़े हैं जब देश एक बहुत बड़े लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है और ये लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनाने का।
1: Prime Minister Modi said the government is also working to rapidly expand employment opportunities in the private sector. He said with this objective, the Pradhan Mantri Vikasit Bharat Rozgar Yojana has been launched with an outlay of around 1 lakh crore rupees. The scheme is expected to enable nearly 2 crore young people to enter the workforce for the first time. The Prime Minister said India has signed free trade agreements with nearly 40 countries in the past few years, which is opening new doors of opportunity for the country's youth. Prime Minister Modi said India is the world's third largest startup ecosystem today. The Ministry of Rural Development will begin training nearly 34,000 rural youth under Deen Dayal Upadhyay Grameen Kaushalya Yojana 2.0 across most states and union territories from next month. Preparedness for the commencement of training batches was reviewed with 14 states and UTs including Bihar, Madhya Pradesh, Rajasthan, West Bengal, Himachal Pradesh and Tamil Nadu in the first phase. The ministry said over 3,57,000 rural youth will be trained by the 31st of December next year. The Indian Railways has approved provision of coverage version 4.0 on over 600 route kilometres of the Lucknow division of Northeastern Railway. The cost of the project is over 250 crore rupees. Railways Ministry said the approved project will extend coverage 4.0 coverage across the identified balance sections of the division, strengthening the safety infrastructure available for train operations. Railways has approved 133 crore rupees for the construction of a four-lane road overbridge on Udhna Ukai Songar section of Western Railway. The two-day Northeast Education Conclave 2026 concluded today at Naga United Village, Chumukadima in Nagaland, with discussions on the implementation of the National Education Policy, NEP 2020, in the northeastern states. Policymakers, educators and administrators from across the Northeast attended the conclave. Delhi Police has carried out a district-wide special drive against illegal and overstaying foreign nationals residing

0: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत का प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन वैश्विक औसत से आधे से भी कम है। भारत एकमात्र G20 देश है जिसने COP21 की प्रतिबद्धताओं को समय से पहले पूरा किया है। नेपाल के वित्त मंत्री डॉ स्वर्णिम बागले ने भारत नेपाल साझेदारी के नवीनीकरण का आह्वान किया है। भारत ने बाढ़ से उबर रहे नेपाल के लिए 11 टन राहत सामग्री भेजी। संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तान को अफगान शरणार्थियों को जबरन निर्वासित करने के खिलाफ चेतावनी दी। और 20वें एशियाई खेलों का जापान में आधिकारिक रूप से शुभारंभ। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर और कबड्डी खिलाड़ी पवन सहरावत ने 501 सदस्यीय भारतीय दल की अगुवाई की। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन में भारत का योगदान वैश्विक औसत के आधे से भी कम है। आज नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि भारत G20 का एकमात्र ऐसा देश है जिसने पेरिस में आयोजित COP21 शिखर सम्मेलन में की गई प्रतिबद्धताओं को समय से पहले सफलतापूर्वक पूरा किया है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत ने पर्यावरण से संबंधित हर क्षेत्र में असाधारण प्रगति की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए भारत अन्य देशों के साथ मिलकर लगातार काम कर रहा है।
1: हम दुनिया को साथ लेकर पर्यावरण सुरक्षा के नए मापदंड स्थापित कर रहे हैं। वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड की सोच हो या इंटरनेशनल सोलर अलायंस CDRI, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, मिशन लाइफ, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, ऐसा हर एक मंच क्लाइमेट और एनवायरनमेंट पर भारत के डेडिकेटेड कमिटमेंट्स का प्लेटफॉर्म बन रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आज स्वच्छ परिवहन और हरित हाइड्रोजन जैसे क्षेत्रों में तेजी से काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत की पवन ऊर्जा क्षमता में 3 गुना वृद्धि हुई है। श्री मोदी ने कहा कि नया भारत परमाणु ऊर्जा उत्पादन पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है। इस अवसर पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि भारत की कुल स्थापित विद्युत क्षमता में अब गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों का योगदान 54% से अधिक है, जो पूर्व निर्धारित लक्ष्य से कहीं अधिक है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा आयोजित ये 2 दिवसीय सम्मेलन पर्यावरण विशेषज्ञों, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों को एक साथ ला रहा है। इसमें 17 क्षेत्रों देशों के प्रतिष्ठित न्यायाधीश और न्यायिक प्रतिनिधि भी शामिल हो रहे हैं। नेपाल के वित्त मंत्री डॉ स्वर्णिम बागले ने कहा है कि भारत और नेपाल के पास मजबूत संबंधों के आधार पर अपनी साझेदारी को नया रूप देने का अवसर है। आज नई दिल्ली में भारत नेपाल संबंधों पर एक सेमिनार में डॉ बागले ने संपर्क सुविधा और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने तथा दोनों देशों द्वारा मिलकर हासिल की जा सकने वाली बड़ी संभावनाओं को साकार करने पर बल दिया। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में उन्होंने नेपाल में हाल ही में बाढ़ के बाद भारत से त्वरित राहत और बचाव सहायता की भी सराहना की।
2: I think close to 8 cargo planes have arrived.
3: अब तक लगभग 8 कार्गो विमान 130 टन राहत सामग्री लेकर आ चुके हैं। 50 से अधिक भारतीय कर्मी आज भी बचाव और राहत कार्यों में मदद कर रहे हैं, खासकर उन लोगों की जान बचाने और उन्हें निकालने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं जो शायद अभी भी इन पन बिजली सुरंगों में फंसे हो सकते हैं। मुझे लगता है कि भारत सरकार मदद के मुद्दे को बहुत सकारात्मक रूप से देख रही है।
2: The Indian government is looking at the issue of assistance very positive.
0: भारत ने नेपाल को 11 टन राहत सामग्री की एक और खेप भेजी है। इसमें दवाएं, फॉरेंसिक का सामान, टेंट, हाइजीन किट, स्लीपिंग बैग और अन्य आवश्यक सामग्री शामिल हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि भारत नेपाल की सहायता जारी रखेगा। पिछले महीने नेपाल में भीषण बाढ़ में जानमाल का भारी नुकसान हुआ था। नेपाल सरकार ने पिछले महीने विनाशकारी बाढ़ के कारणों की जांच के लिए 7 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। समिति में ऊर्जा, जल संसाधन और सिंचाई मंत्रालय ने जल विज्ञान, हिमनद विज्ञान, रिमोट सेंसिंग, भू विज्ञान, जल विद्युत अवसंरचना और आपदा जोखिम न्यूनीकरण के विशेषज्ञ शामिल हैं। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने अफगान शरणार्थियों को जबरन उनके देश वापस भेजने पर पाकिस्तान को चेतावनी दी है और अधिकारियों से कहा है कि शरणार्थियों को निर्वासित करने से पहले ये आकलन किया जाना चाहिए कि क्या अफगानिस्तान में ऐसे लोगों को उत्पीड़न, यातना या अन्य गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों का खतरा है। विशेषज्ञों ने पाकिस्तान के चिकित्सा और दंत चिकित्सा संस्थानों को अफगान छात्रों को वापस भेजने के निर्देश पर भी चिंता व्यक्त की है। रिपोर्ट के अनुसार 100 अफगान छात्र, जिनमें 20 से 40 महिलाएं शामिल हैं, इससे प्रभावित हैं। बहरीन, कुवैत और संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय दूतावासों ने सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत कई सामुदायिक गतिविधियों का आयोजन किया। इनमें फिटनेस, पर्यावरण जागरूकता, स्वच्छता, नागरिक भागीदारी और सामुदायिक सहभागिता जैसे विषयों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। एक रिपोर्ट।
4: बहरीन में भारतीय दूतावास ने विकसित भारत दौड़ का आयोजन किया। इसमें संस्कृति बहरीन के सदस्यों सहित प्रवासी भारतीय समुदाय के लगभग 200 सदस्य शामिल हुए। 3 किलोमीटर की दौड़ के बाद विकसित भारत की सामूहिक प्रतिज्ञा ली गई और स्वच्छता ही सेवा अभियान चलाया गया। इस दौरान समुदाय के सदस्यों ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत वृक्षारोपण अभियान का भी आयोजन किया। संयुक्त अरब अमीरात में अबुधाबी स्थित भारतीय दूतावास ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारतीय दूतावास के सदस्यों के साथ सेवा पर्व मनाया। भारतीय समुदाय ने इन कार्यक्रमों में एकता की भावना के साथ हिस्सा लिया। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से जया भारती।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा के जरिए विदेशी कर्मचारियों को अमेरिका लाने वाले नियोक्ताओं पर लगाए गए $1,00,000 के शुल्क को 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। घोषणा के अनुसार वर्ष 2025 में $1,00,000 का शुल्क लगाए जाने के बाद IT कंपनियों के H-1B वीजा पंजीकरण में 92% की कमी आई है। श्री ट्रंप ने कहा कि शुल्क की अवधि बढ़ाने से अमेरिका के आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा हितों की रक्षा होगी, जबकि अमेरिकी कर्मचारियों और स्नातकों के लिए रोजगार के अवसर बेहतर होंगे। एशियाई खेलों का भव्य उद्घाटन समारोह आज जापान के आईची नागोया में हुआ। भारतीय निशानेबाज मनु भाकर और कबड्डी खिलाड़ी पवन सहरावत ने 501 सदस्यीय भारतीय दल की अगुवाई की। इससे पहले

0: बॉल स्पर्धा के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में आज भारत की क्विंसी डिसिजा को इंडोनेशिया की सुमाया से 1-2 से हार का सामना करना पड़ा। क्विंसी कल कांस्य पदक मुकाबला खेलेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के आईजी नागोया में एशियाई खेलों की शुरुआत के अवसर पर भारतीय दल को शुभकामनाएं दी हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत का प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन वैश्विक औसत से आधे से भी कम है। भारत एकमात्र G20 देश है जिसने COP21 की प्रतिबद्धताओं को समय से पहले पूरा किया है। नेपाल के वित्त मंत्री डॉ. स्वर्णिम वागले ने भारत नेपाल साझेदारी के नवीनीकरण का आह्वान किया है। भारत ने बाढ़ से उबर रहे नेपाल के लिए 11 टन राहत सामग्री भेजी। संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तान को अफगान शरणार्थियों को जबरन निर्वासित करने के खिलाफ चेतावनी दी। और 20वें एशियाई खेलों का जापान में आधिकारिक रूप से शुभारंभ। 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर और कबड्डी खिलाड़ी पवन सहरावत ने 501 सदस्यीय भारतीय दल की अगुवाई की। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani. I am Reshma Tiwari with the World News. The headlines. Prime Minister Narendra Modi highlights India's per capita carbon emissions is less than half the global average. Says India is the only G20 country to have fulfilled its COP21 commitments ahead of schedule. Nepal's Finance Minister Dr. Swarnim Wagle calls for renewed India-Nepal partnership. India dispatches 11 tons of fresh relief material to flash flood recovering Nepal. UN warns Pakistan against forcibly deporting Afghan refugees. And 20th Asian Games officially open in Japan. Double Olympic medalist Manu Bhakar and Kabaddi player Pavan Sehrawat lead India's 501-member contingent during Athletes Parade. Prime Minister Narendra Modi has said that India's contribution to per capita carbon emissions is less than half of global average, inaugurating the International Conference on the Future of Environment and Climate Dynamics in New Delhi today. Mr. Modi said that developing countries have often been unfairly held responsible for carbon emissions.
2: Carbon emission ki zimmedari galat tarike se vikasshil deshon par dali jati rahi hai. जबकि ऐतिहासिक सच्चाई ये है, आज भी प्रति व्यक्ति कार्बन एमिशन में भारत का योगदान ग्लोबल एवरेज के आधे से भी कम है। विकसित देशों में भारत की तुलना में 6 गुना ज्यादा प्रति व्यक्ति कार्बन एमिशन हो रहा है। भारत ये तथ्य मजबूती के साथ वैश्विक मंचों पर रखता है।
1: The Prime Minister highlighted that India is the only country in the G20 that has successfully fulfilled the commitments made at the COP21 summit in Paris ahead of schedule.
2: पर्यावरण से जुड़े हर क्षेत्र में, हर सेक्टर में भारत ने असाधारण प्रगति की है। हमारा बड़ा फोकस रिन्यूएबल एनर्जी पर रहा है और इसने पर्यावरण सुरक्षा में बड़ी भूमिका निभाई है। भारत G20 में इकलौता ऐसा देश है जिसने पेरिस में COP21 समिट में जो भी कमिटमेंट्स किए थे, उन सारे कमिटमेंट्स को समय से पहले पूरा करके दिखाया है।
1: Nepalese Finance Minister Dr. Swarnim Wagle has stated that India and Nepal have an opportunity to renew their partnership by building on the strong ties that already exist. Addressing an international seminar on reimagining India-Nepal relations in an emerging global order, organized by the Research and Information System for Developing Countries, RIS, in New Delhi today, Dr. Wagle emphasized the importance of strengthening connectivity and economic cooperation and realizing the considerable potential that the two countries

हर गली अच्छी लगी, हर घर अच्छा लगा, वो जो आया शहर में तो शहर भर अच्छा लगा। ये गली और ये दर है एफएम गोल्ड की और प्रोग्राम है हर सिंगार। आपके साथ मैं हूं विकास, स्वागत आप सबका।

पर्दे पर नजर आते हैं प्रदीप कुमार और साथ में आती है नजर निशी। रेल में फिल्माया गया ये गीत लिखा था असद भोपाली ने। म्यूजिक इस फिल्म का तैयार किया था संगीतकार रवि ने और फिल्म का नाम था तू नहीं और सही। प्रोग्राम का अगला गीत पहुंचता है आप तक 1958 की ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म अदालत से। लता जी की आवाज, राजेंद्र कृष्ण का लिखा हुआ ये गीत और मदन मोहन साहब का करिश्मा।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

10:40 हो चुके हैं। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज के साथ जुड़े हैं आप और प्रोग्राम चल रहा है हर सिंगार, और आपके साथ इस सफर में मैं विकास। बीते दिनों किसी ने एक बेहद दिलचस्प सी बात मुझसे कही और मुझे पढ़ने में मिली। उन्होंने कहा कि विकास लगता है कि श्रीलंका से होकर आए हैं, और जब मैंने ये बात पढ़ी तो मुझे बड़ी हंसी आई, और वो इसलिए भी क्योंकि एक पल में मुझे समझ आया कि वो ये ऐसा क्यों कहना चाहते हैं। असल में इसका बैकग्राउंड अगर मैं ये बताऊं तो श्रीलंका में एक मशहूर रेडियो स्टेशन है और वो अपने अनसुने नगमों के लिए जाना और पहचाना जाता है, और अक्सर कुछ ऐसे गीत जब हम और आप सुनते हैं तो होता है ना, हम सबके साथ उस एक पुराने दौर को हम कुछ पल के लिए ही लेकिन जी जरूर लेते हैं। अरुण जनाब ने भी यही बात कुछ ऐसे ही गीतों के साथ जोड़ दी जो शायद उस दिन मैंने आप तक पहुंचाए थे। प्रोग्राम का अगला गीत भी कुछ कुछ हमें उसी दौर में ले जाता है। फिल्म का नाम है फरेब। 1968 की ये फिल्म है और सुमन कल्याणपुर का ये गीत है। असद भोपाली ने इसे लिखा है और उषा खन्ना ने इस फिल्म में संगीत दिया है।

लता जी की आवाज और लक्ष्मी प्यारे का संगीत। साहिर ने इस नगमे को लिखा और फिल्म का नाम था दीदार यार। पर्दे पर अगर नजर डालें तो वहां हमको टीना मुनिम और ऋषि कपूर की जोड़ी नजर आती है। गीत को देखेंगे तो पाएंगे कि ऋषि कपूर एक बुजुर्ग के गेटअप में नजर आते हैं और टीना मुनिम सफेद चमकदार कपड़ों में पियानो के सामने इस गजलनुमा गीत को गुनगुना रही है। अब की बात करें, यानी हाल फिलहाल की बात करें, तो पियानो और बाकी के इंस्ट्रूमेंट्स पर्दे पर दिखना ना कम हो गए हैं। जैसे हम पुराने गीतों में देखते थे ना, तो वहाँ कभी संतूर, कभी सितार, कभी हारमोनियम वगैरह दिख जाते थे और वो गीत के साथ ना जाते भी थे और गीत की रंगत भी बढ़ाते थे। बहरहाल, प्रोग्राम का अगला गीत इसी तरह के नगमे को, यानी कि जो भी गीत आपने सुना तुमको देखा, तो इसी गीत को कुछ कुछ अलग अंदाज में गुनगुनाता है।

आशा जी की आवाज और जानिसार अख्तर का लिखा हुआ ये गीत सी अर्जुन की तर्ज। इस आखिरी गीत के साथ छोड़े जा रहा हूं मैं आपको। प्रोग्राम चल रहा था हर सिंगार, आपके साथ था मैं विकास, और थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे समाचार, लेकिन आप जुड़े रहिएगा FM गोल्ड के साथ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया है। श्री मोदी ने आज 20वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पिछले कुछ वर्षों से युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए आवश्यक कौशल और अवसर उपलब्ध कराने पर लगातार ध्यान दे रही है।
1: आज देश के 51,000 से अधिक युवाओं को सरकारी सेवा के लिए नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं। मैं आप सभी युवा साथियों को और आपके परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज आप सभी एक ऐसे समय में भारत सरकार से जुड़े हैं जब देश एक बहुत बड़े लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है, और ये लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनाने का।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाने के लिए भी काम कर रही है।
1: भारत ने बीते कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किए हैं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स FTA हमारे युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार बना रहे हैं। इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए नई पार्टनरशिप्स के रास्ते खुलते हैं और हमारे युवाओं के लिए करियर में नई पॉसिबिलिटीज बनती है।
0: इस अवसर पर देश में विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। रेलवे ने उत्तर पूर्व रेलवे के लखनऊ खंड में 600 किलोमीटर से अधिक रूट पर कवच 4.0 लगाने को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्रालय ने बताया कि स्वीकृत परियोजना खंड के चिन्हित शेष हिस्सों में कवच 4.0 का विस्तार करेगी। इस परियोजना की लागत 250 करोड़ रुपए से अधिक है। इसके साथ ही पश्चिम रेलवे के उधना उकाई सोनगढ़ खंड पर 4 लेन वाले रोड ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए 130 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। नागालैंड के चुमोकेमिटा में नागा यूनाइटेड विलेज में 2 दिन का पूर्वोत्तर शिक्षा सम्मेलन आज सम्पन्न हुआ। इस सम्मेलन में पूर्वोत्तर क्षेत्रों के नीति निर्माता, शिक्षाविद और प्रशासक शामिल हुए। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने पर चर्चा की। ये सम्मेलन नागालैंड सरकार ने भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर आयोजित किया था। इसका विषय था NEP 2020 को लागू करना, पूर्वोत्तर राज्यों के लिए परिकल्पना, चुनौतियों और अवसर। समापन समारोह में आज त्रिपुरा के उच्च शिक्षा पंचायत और सामान्य प्रशासन मंत्री किशोर बर्मन ने कहा कि पूर्वोत्तर भारत में शिक्षा को अधिक कौशल उन्मुख और भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से परिभाषित सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। नेपाल के वित्त मंत्री डॉ स्वर्णिम वाग्ले ने कहा है कि भारत और नेपाल के पास मजबूत संबंधों के आधार पर अपनी साझेदारी को

0: Good evening and welcome to Market Mantra. Today being Saturday, we'll be taking calls from you on matters related with business and market. But do remember that we do not address stock or company specific queries. The numbers to call us on are 2331-4444, 2331-0481, and 2371-7106. And those of you who would be calling us from outside Delhi, please prefix 011. My name is Rajesh Lake, and with me is my co-anchor in Hindi, Prachi Priya.
1: नमस्कार मार्केट मंत्र में आपका अभिनंदन श्रोताओं व्यापार अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार से जुड़ा कोई भी सवाल पूछने के लिए आप डायल कीजिए 2331-4444 2331-0481 और 2371-7106 दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले दिल्ली का एसटीडी कोड 011 भी जरूर डायल करें श्रोताओं चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ विश्लेषक शरद कोहली शरद जी कार्यक्रम में आपका अभिनंदन
0: वार्म वेलकम शरद
2: धन्यवाद प्राची धन्यवाद राजेश सभी आकाशवाणी के श्रोताओं को मेरा अभिवादन
1: चर्चा शुरू करेंगे मगर आइए उससे पहले सुने सुर्खियां
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडेक्सेस डिक्लाइन फॉर सिक्स्थ कंसेक्यूटिव वीक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स आर ओपनिंग न्यू डोर्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर कंट्रीज यूथ And US stock market indices wrap up week on mixed note.
1: प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांकों में लगातार छठे सप्ताह गिरावट दर्ज की गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुक्त व्यापार समझौते देश के युवाओं के लिए अवसर के नए द्वार खोल रहे हैं और अमेरिका के शेयर बाजार इस सप्ताह मिश्रित रुझान के साथ बंद हुए
0: Here's a disclaimer. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: और अब जान लेते हैं श्रोताओं कि सप्ताह के अंदर अंदर किस तरीके से हमारे शेयर सूचकांकों ने व्यवहार किया मार्केट का हाल कैसा था तो प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांकों में लगातार छठे सप्ताह गिरावट दर्ज की गई भू राजनीतिक तनाव विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों की बिकवाली और लंबे समय तक ऊंची ब्याज दरों के माहौल को लेकर चिंताओं ने निवेशकों को सतर्क रखा इस सप्ताह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 487 अंक यानी लगभग 0.7% गिरकर 74,295 पर बंद हुआ वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 52 अंक यानी 0.2% लुढ़ककर 23,346 पर बंद हुआ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के व्यापक शेयर बाजार में मिड कैप 100 सूचकांक बिना किसी बड़े बदलाव के बंद हुआ जबकि निफ्टी स्मॉल कैप 100 सूचकांक में सप्ताह के दौरान लगभग 0.2% की गिरावट आई क्षेत्रीय स्तर पर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स रेल्टी और आईटी क्षेत्र में गिरावट रही वहीं एफएमसीजी हेल्थ केयर और मेटल में बढ़त दर्ज की गई अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में इस सप्ताह रुपया 33 पैसे कमजोर होकर एक अमरीकी डॉलर की तुलना में 95.88 रुपए पर बंद हुआ और इसी बीच वेस्ट बंगाल से हमारे साथ बबलू जुड़ रहे हैं बबलू जी कार्यक्रम में आपका अभिनंदन कृपया अपना सवाल पूछिए बबलू जी आपकी तरफ से थोड़ी डिस्टरबेंस आ रही है आप प्लीज अच्छे नेटवर्क क्षेत्र में आकर के हमसे बात करिए
3: क्या मैडम मेरी आवाज आ रही है आपको
1: जी
3: हमें मेरा सवाल ये है मैडम भारत में रियल्टी सेक्टर जो भी बहुत डाउन चल रहा है उसका क्या फ्यूचर है आगे में क्या रियल्टी सेक्टर आगे और अच्छा करेगी या फिर बुरा हाल हो जाएगा रियल्टी सेक्टर का इंडिया में
2: बबलू देखिए रियल एस्टेट सेक्टर का आप पूछ रहे हैं तो रियल एस्टेट सेक्टर पूरे देश में बबलू यूनिफॉर्मली बिहेव नहीं करता है हम पूरे देश को कहें कि वो एक साथ आप जैसे अभी वेस्ट बंगाल में हैं हो सकता है आप जहां रहते हो उस क्षेत्र में एक सैचुरेशन पॉइंट आया हो जिसकी वजह से आप ये सवाल पूछ रहे हैं तो मुझे लगता है कि जो लैंड है अभी भी प्राची और राजेश को भी बताना चाहूंगा जो लैंड है जहां पर खासकर टाउन प्लानिंग हो रही है
1: जी।
2: जहां पर शहर एक्सपैंड करता है वहां पर अभी भी बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट लोगों के लिए वो साबित हो रहा है कहीं कहीं जो अपार्टमेंट्स हैं जहां पर सप्लाई ज्यादा है बबलू जी वहां पर हमें देखने को मिल रहा है कि एक स्टैग्नेंसी आ गई है तो ये इसको हम यूनिवर्सली पूरे क्योंकि आकाशवाणी तो पूरे देश में जाता है तो मुझे लगता है मैं कुछ ऐसी बात बोलूं जो कि पूरे देश के लिए लागू हो तो वो बेहतर रहेगा। तो इसको हम यूनिवर्सली पूरे देश के लिए एक जैसा नहीं कह सकते। ऐसी मैं उदाहरण के तौर पर आपको बबलू बताऊं कि जो अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट है, जो बहुत महंगे वाले घर होते हैं, उनमें कहीं रिसेशन नहीं है। बाकी ये आपको मैं इसका सिद्धांत बता देता हूं कि रियल एस्टेट सेक्टर कोविड के बाद से काफी बूम किया और उसके बाद इसमें एक एक प्लैटो फेस आता है, ये एक इसकी साइकिल है, धीरे ऊपर जाता है फिर इसमें प्लैटो फेस आता है फिर उसके बाद थोड़ी करेक्शन होती है। तो इसको हम साइक्लिकल बोलते हैं, ये मतलब एक एक एक पूरा का पूरा साइकिल है, पहले ऊपर जाएगा फिर फ्लैट होगा। तो कुछ हो सकता है कुछ समय के लिए आपके जिस इलाके में आप हैं वहां पर आपको ऐसा महसूस हो रहा हो, तो मैं आपको सलाह दूंगा अगर आप निवेश की दृष्टि से पूछ रहे हैं तो वैसे तो निवेश अपने आपके जो सलाहकार है उनसे करना चाहिए, पर आप किसी दूसरी स्टेट में जहां पर शहर चल रहा है वहां पर आप देख सकते हैं, शहर चलता है, आपको शायद जानकारी होगी शहर भी चलते हैं। आपने अक्सर सुना होगा लोग जाते हैं, अरे यहाँ तो मॉल बन गया, यहाँ तो मार्केट बन गई, तो पहले था नहीं। तो मुझे लगता है उसको उस दृष्टि से आप इसको देखें और किसी दूसरे अन्य जगह पर आप ट्राई करें, मे भी आपका नजरिया बदलेगा। बाकी ओवरऑल आपके इलाके में आपकी बात सुन के लग रहा है ऐसे ही कि पर कुछ समय लगता है फिर उसको रिकवर करने।
0: जॉइनिंग अस फ्रॉम न्यू दिल्ली इज अमित झा, अ वार्म वेलकम अमित। Hello, Amit, can you hear us? I think we've lost touch with him.
4: Hello.
0: Yash, yeah, Amit?
4: Sir, आवाज आ रही है आपको?
0: बिल्कुल आ रही है, आप सवाल पूछे अपना।
4: हाँ, सवाल है। सर, सर, नमस्कार सर।
2: हाँ, नमस्कार अमित।
4: सर, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे सर हम कोई कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे मान लीजिए एनएससी या बीएससी का, नेक्स्ट में रोल ओवर हो रहा है, रोल ओवर सर आप जानते हो डेरिवेटिव का,
2: हाँ,
4: तो रोल ओवर अगर ज्यादा हो रहा है तो इससे हम क्या अंदाजा लगा सकते हैं? और दूसरा सर, ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है या ओपन इंटरेस्ट घट रहा है, तो ये ओपन इंटरेस्ट क्या संकेत बताते हैं सर? धन्यवाद सर।
2: ओके, चलिए पहले आपने रोल ओवर का पूछा अमित, ये डेरिवेटिव्स में होता है, जब हम कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं तो उसको उसको जब जो एक्सपायरी डेट होती है उससे हम आगे बढ़ा देते हैं। तो ज्यादातर अमित देखा गया है, अगर मैं अपने तजुर्बे से बात करूं तो रोल ओवर जब होता है, जब जिस तरफ आप मार्केट को एक्सपेक्ट कर रहे थे और कॉन्ट्रैक्ट डेट पर आपको उसका उसके अनुकूल आपको नहीं लग रही है मार्केट, तो फिर आप उसको रोल ओवर करना चाहते हैं, वरना क्या होता है आपको फिर लॉस बुक करके बाहर आना पड़ता है। तो रोल ओवर यही बताता है, या फिर एक और केस में रोल ओवर होता है जहां पर जो ट्रेडर्स होते हैं बहुत बुलिश या बहुत बेरिश होते हैं, उनको लगता है कि अभी तो पूरा मुनाफा नहीं आया, अगले एक्सपायरी डेट पे और ज्यादा मुनाफा आएगा, ये भी कारण होता है रोल ओवर का। दूसरा आपने ओपन इंटरेस्ट पूछा, ओआई इसको बोलते हैं, ओपन इंटरेस्ट बताता है कि किसी पर्टिकुलर कॉल पर किसी पर्टिकुलर लेवल पर इस वक्त कितने ट्रेडर्स का ध्यान है, यानी कि कितने कॉन्ट्रैक्ट्स एक पर्टिकुलर लेवल पर बिल्डअप हो रहे हैं। क्योंकि आप ओआई पूछ रहे हैं तो मैं ये उम्मीद करता हूं अमित कि आप जानते हैं इसके बारे में कि कैसे जो ऑप्शन चेन होती है, अगर मैं ऑप्शन चेन के उदाहरण से लूं तो चेन में एक लेवल पर अगर ज्यादा ज्यादा ट्रेडर्स का वॉल्यूम बन रहा है उसको हम ओपन इंटरेस्ट कहते हैं। ओपन इंटरेस्ट हमें यह बताता है कि क्या इस लेवल पर

0: बहुत सारे लोगों का इस समय ध्यान है, तो उसको फिर आप एक पैमाना मानकर आप अगला ट्रेड कर सकते हैं। बहुत टेक्निकल बात पूछी अमित ने, मुझे मेरे लिए थोड़ा सा रेवलेशन है कि अमित जो है डेरिवेटिव ट्रेडिंग में ट्रेड करते हैं, बहुत रेगुलर कॉलर है, पर थोड़ा अमित संभल के करा करिए, ये बहुत टेढ़ी खीर होती है और कभी कभी कभी कभी के अक्सर धोखा भी दे जाती है, तो लॉट ऑफ पीपल बर्न देयर फिंगर्स। तो मैं उम्मीद करता हूं अमित कि आप इसको ख्याल रख के करेंगे, ध्यान से करेंगे, और ये भी उम्मीद रखता हूं ओआई और रोल ओवर आपको दोनों समझ आ गया होगा।
1: नई दिल्ली से हमारे साथ सतपाल जुड़ रहे हैं, महोदय कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
2: हेलो
1: जी सतपाल जी, अपना सवाल पूछिए।
2: हाँ कोहली जी और मार्केट मंत्रा टीम को नमस्कार।
0: नमस्कार जी,
2: मैं कोहली जी की वीडियो भी देखता हूँ, गोल्ड वाली वीडियो डेली देखता हूँ, लाइक भी करता हूँ
0: जी।
2: और मेरा क्वेश्चन ये सर, अभी जो लड़ाई चल रही है यूएस और ईरान की, इसके बीच में अभी गोल्ड का क्या सिचुएशन रहेगा? और दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो अब कौन सा सेक्टर आगे बढ़ेगा आने वाले दो साल में, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप? थैंक यू।
0: चलिए आपका पहला सवाल, यूएस ईरान की लड़ाई चल रही है तो गोल्ड का, गोल्ड में तो वैसे ही सतपाल जी बहुत हलचल चल रही है आजकल, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, पर अभी यूएस के फेड ने रेट्स बढ़ाए तो गोल्ड ने उसको अच्छा डाइजेस्ट किया, उसको उसको पचाया, और गोल्ड अभी जो हमारी फ्राइडे को रात की जो सिचुएशन है उसमें कॉमेक्स में न्यूयॉर्क में काफ़ी बाय के कॉन्ट्रैक्ट्स बिल्डअप हुए हैं, तो लॉन्ग टर्म आउटलुक तो सतपाल जी गोल्ड की अच्छी है, काफ़ी शाइन के पहले ही बहुत चमकता है गोल्ड तो, और मुझे लगता है चमकने वाला है, और आपने लॉन्ग टर्म नज़रिया रख के चले, पर एक डिस्क्लेमर जो शुरू में राजेश ने पढ़ा था उसका ध्यान रखें। और दूसरा आपने पूछा कौन सा सेक्टर मिड कैप या लार्ज कैप में चलेगा, मार्केट्स के लिए यू नो मैं आई एम श्योर हम डिस्कस करते हैं इसको बाद में, मार्केट्स के लिए बहुत टफ टाइम आया है, मुझे तो कई दफ़ा ऐसा लगता है मार्केट्स को किसी की नज़र लग गई है क्या हुआ है, क्योंकि 2024 के बाद से वो बिल्कुल निफ्टी ने तो नेगेटिव रिटर्न दिया, अगर निफ्टी 50 की बात करूं तो अभी सेक्टर के लिए मैं ये कहना चाहूंगा आप डिफेंस सेक्टर को देख सकते हैं, एनर्जी सेक्टर को देख सकते हैं सतपाल, पर थोड़ा सा मार्केट में संभल के चलने की इस समय जरूरत है, क्योंकि मार्केट अभी अमेरिका में जो सिचुएशन है, मार्केट्स हो क्या रहा है, या मैं एक मिनट आपकी इजाजत से लेना चाहूंगा, मार्केट्स डोमेस्टिक फैक्टर्स को नहीं देख रही है, मार्केट जो है वो अंतर्राष्ट्रीय फैक्टर्स को देख रही है, क्रूड ऑयल की प्राइसेस हो गई अमेरिका में क्या, तो थोड़े से जो अंतर्राष्ट्रीय जियो इकोनॉमिक और जियो पोलिटिकल सिचुएशन है सतपाल जी बहुत अच्छी नहीं है, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा संभल के चलने की जरूरत है मार्केट में भी, बाकी आप डिफेंस और एनर्जी सेक्टर इस दो के आप नजर रख सकते, क्योंकि आपने सेक्टर पूछा है तो मैं बता रहा हूं, बाकी मार्केट में बहुत फूक फूक के पग धरना जिसको कहते हैं वो इस समय सिचुएशन है जी।
1: नई दिल्ली से हमारे साथ संजीव जुड़ रहे हैं, संजीव जी कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
3: हाँ नमस्कार कोहली साहब, नमस्कार टीम मार्केट मंत्रा।
0: नमस्कार संजीव बताइए।
3: हाँ कोहली साहब, आपके आने का बहुत इंतजार रहता है हमें।
0: माय प्लेजर सर, मुझे आपसे बात करने का इंतजार रहता है, बताइए।
3: थैंक यू कोहली साहब, एक सवाल है, 2007 में हमने एक पेमेंट लिंक्ड फ्लैट में इन्वेस्टमेंट किया था
0: जी,
3: ज्वाइंटली
0: जी।
3: अच्छा वो प्रोजेक्ट तो थोड़ा डिले हो गया, मगर उसका ओवर द ईयर कुछ 4-5 साल पहले हमें उन्होंने सो कॉल्ड पोजेशन दे दिया।
0: अच्छा,
3: प्रोजेक्शन देने के बाद उसकी रजिस्ट्री भी हो गई
0: जी
3: उस एरिया में कंसर्न
0: जी।
3: अब उसको अगर हमने बेचना है तो उसका व्हाट यू कॉल फ्रॉम डेट ऑफ प्रोजेक्शन या डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से कैपिटल गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से गिना जाएगा, कैसे होता कैलकुलेशन?
0: देखिए संजीव जी, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में बहुत सारे केसेस हैं कि पहले कुछ लोग रजिस्ट्री मानते थे, कुछ पोजेशन मानते थे, पर जनरली जहां बिल्डर की अलॉटमेंट होती है तो ज्यादातर जो केसेस हैं कोर्ट्स में और ट्राइब्यूनल में, वो जिस डेट को आपको अलॉटमेंट होता है उस डेट से आपका आपका मालकियत मान लेते हैं, तो आपको जब संजीव जी इस पे जब लेटर मिला होगा अलॉटमेंट का तो आप उस डेट से मान के चलेंगे, तो आप मेरे ख्याल क्योंकि 2007 का है तो मुझे लगता है आप शायद इंडेक्सेशन यूज करना चाहते होंगे, देखना चाहते होंगे, पर आपको ये पता होगा कि इंडेक्सेशन यूज करते हैं तो 20% पड़ता है, और अगर आप बिना इंडेक्सेशन के करें तो 12.5% पड़ता है, तो मैं संजीव आपको ये भी सलाह दूंगा कि दोनों ऑप्शंस को आप एक्सप्लोर करके देखें, विद इंडेक्सेशन 20%, विदाउट इंडेक्सेशन 12.5%, पर आप डेट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ द फ्लैट से आप इसको काउंट कर सकते हैं। बहुत सारे केसेस हैं, मुझे ना जाने ट्राइब्यूनल में किसी में रजिस्ट्री बोला है, किसी में पोजेशन बोला है, किसी में अलॉटमेंट बोला है, पर ज्यादातर कंसेंसस यही निकला कि इसको हम डेट ऑफ अलॉटमेंट से लेते हैं जी।
4: हिना प्रसाद joins us from Bengaluru. A warm welcome, Mr. Prasad.
5: Hi, good evening, Market Mantra. This is Hina Prasad from Bangalore. Hello, Raj.

0: किसी अपने इलाके में जो आपके कोई एजेंट है उनसे आप संपर्क करें और संपर्क करके वो आपकी मदद करते हैं।
1: दिल्ली से हमारे साथ सतीश जुड़ रहे हैं। सतीश जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
2: गुड इवनिंग सर, कोहली साहब।
0: गुड इवनिंग
2: सर, मेरा पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ लैब ग्रोन डायमंड, और दूसरा क्वेश्चन है कि सर ये इन्वेस्टर एजुकेशन फंड में कुछ कर नहीं रहे, डेढ़ डेढ़ साल तक शेयर अटके रहते हैं
0: जी,
2: और ये लास्ट डेट क्या है सर पेपर शेयर फॉर्म की कन्वर्ट कराने की डीमैट में? थैंक यू सर।
0: लैब ग्रोन डायमंड्स, सतीश जी, अच्छा फ्यूचर है। मुझे निजी तौर पे एक दो इनॉग्रेशंस थी लैब ग्रोन डायमंड्स के शोरूम्स की, वहाँ जाने का मौका मिला और मैंने देखा वाकई में वो देखने में ओरिजिनल डायमंड की तरह दिखाई देते हैं। बहुत अच्छा भविष्य है। जिन लोगों को डायमंड का शौक है और वो ओरिजिनल डायमंड नहीं अफोर्ड कर पाते हैं तो लैब ग्रोन डायमंड्स की तरफ देख सकते
3: हैं। प्राइस वाइज दे आर नॉट वेरी चीप।
0: नहीं, फर्क तो है, उतने महंगे तो नहीं है जितने महंगे, कैरेटेज पे डिपेंड करता है। और दूसरा इनका एक और सवाल था सतीश जी का कि हाँ इन्वेस्टर एजुकेशन फंड का इनका काफी समय से सवाल रहता है, तो मुझे लगता है इन्वेस्टर एजुकेशन फंड में आपकी शिकायत बहुत दिन से बनी हुई है, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप एक दो बार वहां होकर आए। हम जहाँ इस समय बैठ के कार्यक्रम कर रहे हैं इसके बिल्कुल अक्रॉस द रोड है, उनसे संपर्क करें। नॉर्मली इतनी देर लगती नहीं है क्योंकि काफी वहां पर प्रणाली सुदृढ़ है इस समय, पर मुझे नहीं पता किस कारण से आपका मामला वहां अटका हुआ है, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप उनसे तुरंत संपर्क करें। और एक ई निवारण ऐप है, सीपी ग्राम्स करके ऐप है, उनपे भी आप डालें, वहां पर शिकायत किसी सरकारी डिपार्टमेंट के खिलाफ हो तो आप डाल सकते हैं। तो कोशिश करें सतीश जी, हम तो यही कह सकते हैं कोशिश करें। अब ये तो स्पेसिफिक मामला हमें पता हो तो हम उसकी गहराई में तह में जाके आपको सलाह दें, तो आप ट्राई करिए, उम्मीद करते हैं कि काम बनेगा।
1: अन्य खबरों में श्रोताओं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 20वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नव आयुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पिछले कुछ वर्षों से युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए आवश्यक कौशल और अवसर उपलब्ध कराने पर लगातार ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास ये भी सुनिश्चित करना है कि देश के युवाओं की शिक्षा और कौशल बदलती अर्थव्यवस्था की जरूरतों के अनुरूप हों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ने पिछले कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते किए हैं, जिससे देश के युवाओं के लिए अवसरों के नए द्वार खुल रहे हैं।
4: भारत ने बीते कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किए हैं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA हमारे युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार बना रहे हैं। इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए नई पार्टनरशिप्स के रास्ते खुलते हैं, नए मार्केट्स के रास्ते खुलते हैं और हमारे युवाओं के लिए करियर में नई पॉसिबिलिटीज बनती हैं।
1: मुंबई से हमारे साथ SJ पवार जुड़ रहे हैं। महोदय, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
5: हेलो
1: जी,
5: मैं सीनियर सिटीजन हूँ
0: जी।
5: हाँ, मेरा इंटरेस्ट इनकम 2 लाख है
0: जी,
5: और शेयर बेस्ट में 3 लाख कमा रहा हूँ
0: जी,
5: प्रॉफिट हुआ
0: जी।
5: तो मुझे टैक्स शेयर पे गिरने है या नहीं, क्योंकि 12 लाख का तो अभी ये हुआ ना लिमिट मैक्सिमम
0: जी,
5: तो उस बारे में जानकारी चाहिए।
0: देखिए पवार साहब, जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है, उस बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट में जो शेयर्स का गेन होता है वो उसमें इंक्लूड हो जाता है। तो आपका, मैं अगर कैलकुलेट करके देखूं तो 4 लाख से ऊपर जा रहा है बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट जो न्यू रेजीम में है। तो क्योंकि वो पवार साहब 4 लाख से ऊपर जा रहा है तो आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, क्योंकि अगर 4 लाख से ऊपर में, और राजेश और प्राची को भी बताऊं कि बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट रहता है, बेसिक एग्जेम्पशन में कैपिटल गेन का जो टैक्स है वो कवर हो जाता है ऊपर, क्योंकि कैपिटल गेन पर एक स्पेशल रेट पर टैक्स लगता है। तो इसलिए अगर आप बेसिक एग्जेम्पशन से ऊपर जा रहे हैं तो भले ही आप 12 लाख से कम है तो आपको फिर उसकी रिटर्न फाइल करनी पड़ती है। तो मैं उम्मीद करता हूं पवार साहब आपको जवाब मिल गया होगा, क्योंकि कैपिटल गेन पर जो टैक्स लगता है वो स्लैब के हिसाब से नहीं लगता है, वो अलग रेट पर लगता है। तो इसलिए आपको, मेरे विचार से पवार साहब, आपको रिटर्न फाइल करनी चाहिए जी।
1: अन्य खबरों में, नया मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR प्रारूप 15 अक्टूबर 2026 से लागू होगा। इस प्रारूप के अंतर्गत 2000 रुपए तक के UPI लेन देन पर कोई MDR नहीं लगेगा। इस प्रारूप का व्यक्ति से व्यक्ति लेन देन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सभी व्यक्ति से व्यक्ति लेन देन के लिए UPI पूरी तरह से निःशुल्क रहेगा, चाहे कितनी भी रकम ट्रांसफर की जाए। 75,000 रुपए और उससे ज्यादा के लेन देन के लिए MDR की सीमा प्रति ट्रांजेक्शन 300 रुपए होगी। 2000 रुपए से अधिक के व्यक्ति से व्यापारी लेन देन पर 0.4% का मामूली MDR लागू किया जाएगा। महोदय, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि MDR क्या है, आप इसे विस्तार से हमारे श्रोताओं के लिए आप समझाइए।
0: मर्चेंट डिस्काउंट रेट इसको बोलते हैं और ये वेंडर के ऊपर एक चार्ज लगाया जाता है। पहले भी था, क्रेडिट कार्ड जो लोग यूज करते हैं उसमें 1.5%, 2%, 2.5%, कुछ बैंक तो 2.5% तक लेते हैं, तो उसमें वेंडर को एक चार्ज देना पड़ता है जो कि उसको वो सुविधा ये ग्राहक को देता है। और ग्राहक, बहुत सारे नए ग्राहक उसको मिलते हैं क्योंकि क्रेडिट कार्ड जो लेके व्यक्ति आता था
1: जी,
0: तो उसके पास कैश नहीं होता था, तो मर्चेंट डिस्काउंट रेट के जरिए बैंक एक चार्ज लगाते हैं। कुछ इसी प्रकार का UPI पे अब ये नया आया है, क्योंकि 10 साल से UPI चल रहा था और उसको सस्टेनेबल बनाने के लिए, उसमें नई नई फीचर्स लाने के लिए, उसको अपग्रेड करने के लिए, उसको मॉडर्न बनाने के लिए एक बोझ पड़ रहा था। पूरा की पूरी जो प्रणाली थी वो प्रणाली स्वचालित होनी चाहिए। उसमें 18,700 करोड़ रुपए बीच में प्रणाली खर्च कर रही थी, 2,000 करोड़ के आसपास जो है वो सरकार के भी खर्च हो रहे थे, और मुझे लगता 10 साल हो चले थे, तो क्योंकि 10 साल हो चले हैं तो इसलिए उस पर अब ये MDR लगाया गया। और उम्मीद कर रहे हैं कि वेंडर्स इसको देंगे, प्रावधान तो यही है प्राची कि इसको वेंडर्स देंगे अपने पास से, उनका देना बनता है और नोटिफिकेशन में भी ऐसा ही लिखा हुआ है।
1: जी।
3: Major US indices displayed a mixed performance yesterday. The Nasdaq Composite Index rose 0.4% and the S&P 500 added 0.2%, led by gains in semiconductor stocks. Conversely, Dow Jones Industrial Average dipped 0.2%. Meanwhile, markets wrapped up a volatile week on a mixed note as investors navigated rising treasury yields, elevated oil prices, and Federal Reserve's rate hike. For the week, the Dow posted third straight weekly decline, sliding 1.7% to mark its worst performance since March. The S&P 500 fell marginally by 0.1%. In contrast, Nasdaq rose 0.7%.
1: दिल्ली से हमारे साथ आरएस दहिया जुड़ रहे हैं। महोदय, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
6: मैडम नमस्कार, कोहली जी को स्पेशल नमस्कार।
0: नमस्कार दहिया सर,
6: मेरा क्वेश्चन ये है कोहली साहब से कि स्मॉल इन्वेस्टर्स आर गोइंग थ्रू वेरी बैड टाइम फॉर लास्ट 2.5 years।
0: जी,
6: व्हेन विल आर निफ्टी इंडेक्स एंड BSE सेंसेक्स will reach its all-time high level or somewhere closer to that, maybe plus 15% from here.
3: I wish you knew.
0: All right. well, if wishes were horses, we would have ridden them, as they say. Dahiya Saab, it is true that it's been almost 2.5 years. You rightly said that, we've been the indices. But I feel that people who are, you are a very mature investor, Mr. Dahiya, and I feel these are the cycles which normally come in any investor's, overall career, I would say, overall span, should I say. So I think let's keep our fingers crossed, and we need to see that the geopolitical and geoeconomic situation around the world, Mr. Dahiya, is not letting the market go up. The Indian parameters are fine, but then somehow the markets are looking at the global picture, the global crude oil bond yields, crude dollar index, and so on and so forth. So let's hope for the best. I think once the war ends and Strait of Hormuz and Bab al-Mandeb, these routes open, the crude oil prices cool down, and we will see the market. So I think patience is a virtue, I would say. So aapne itna dhairya rakha hai Dahiya sahab, to thoda sa aur dhairya rakhe, baki aapke muh mein ghee shakkar 15% kab badhegi, hum to kehte hain ki jaldi badhe, aapki baat, aapke vachan satya hon.
3: US President Donald Trump has signed a law expanding sanctions against Russia and providing for tariffs of up to 100% on major buyers of Russian oil and gas, while extending US sanctions authority against Iran for 5 years. The White House said the measure authorizes and expands statutory sanctions, tariffs, and prohibitions on Russia. Global crude oil prices displayed mixed trend this week. During the week, Brent crude November futures dropped 0.7% to settle at $103.87 per barrel. West Texas Intermediate crude October futures added 0.2% to end at $100.30 per barrel. Oil prices eased in the last few trading sessions as markets anticipated that the closure of

0: Saudi Arabia's key pipeline will have a smaller impact on supplies than initially feared.
1: शरद जी कार्यक्रम में आने के लिए, क्योंकि हमारे पास तो समय की सीमा है भाई
2: जी,
1: तो आज हम इतना डिस्कस कर पाए जो कि बहुत ही अच्छी बात है.
0: थैंक यू शरद फॉर बीइंग विद अस.
2: थैंक यू सो मच.
0: बिफोर वी क्लोज द हेडलाइंस वंस अगेन, बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसेस डिक्लाइन फॉर सिक्स कंसेक्यूटिव वीक. प्राइम मिनिस्टर सेज फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स आर ओपनिंग न्यू डोर्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर कंट्रीज यूथ. एंड यूएस स्टॉक इंडिसेस रैप अप वीक ऑन मिक्स्ड नोट. दैट्स ऑल वी हैव इन दिस एडिशन ऑफ मार्केट मंत्रा. टिल टुमारो, गुड बाय.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं. आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें.
4: यू आर लिसनिंग टू अ रिपीट ब्रॉडकास्ट ऑफ टुडेज मार्केट मंत्रा प्रोग्राम, ओरिजिनली एयर्ड एट 6:30 PM.

11:41 मिनट हो चुके हैं आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्वागत है आप सबका प्रोग्राम गीत मेरे मनमीत।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

प्रोग्राम का यह आखिरी गीत सोनू निगम की आवाज के साथ छोड़े जा रहा हूँ आपको, लेकिन इस वादे के साथ कि आप रखिएगा अपना ख्याल और उनका ख्याल जो रखते हैं आपका ख्याल। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया है। श्री मोदी ने कल 20वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पिछले कुछ वर्षों से युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए आवश्यक कौशल और अवसर उपलब्ध कराने पर लगातार ध्यान दे रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाने के लिए भी काम कर रही है।
1: भारत ने बीते कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किए हैं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA हमारे युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार बना रहे हैं। इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए नई पार्टनरशिप्स के रास्ते खुलते हैं और हमारे युवाओं के लिए करियर में नई पॉसिबिलिटीज बनती हैं।
0: सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने चेन्नई में केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संगठनों के लिए चयनित 285 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र बांटे। कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने कहा कि सरकारी सेवा में शामिल होने वाले नए युवा 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण को पूरा करने में अहम भूमिका निभाएंगे। उन्होंने नवनियुक्त उम्मीदवारों से कहा कि वे अपनी जिम्मेदारियों को सिर्फ नौकरी पाने के तौर पर न देखें, बल्कि देश की सेवा करने और उसके सर्वांगीण विकास में योगदान देने के मौके के तौर पर देखें। रेलवे ने उत्तर पूर्व रेलवे के लखनऊ खंड में 600 किलोमीटर से अधिक रूट पर कवच 4.0 लगाने को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्रालय ने बताया कि स्वीकृत परियोजना खंड के चिन्हित शेष हिस्सों में कवच 4.0 का विस्तार करेगी। इस परियोजना की लागत 250 करोड़ रुपए से अधिक है। इसके साथ ही पश्चिम रेलवे ने उधना उकाई सोनखंड पर 4 लेन वाले रोड ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए 133 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। नेपाल के वित्त मंत्री डॉ स्वर्णिम वागले ने कहा है कि भारत और नेपाल के पास मजबूत संबंधों के आधार पर अपनी साझेदारी को नया रूप देने का अवसर है। कल नई दिल्ली में भारत नेपाल संबंधों पर एक सेमिनार में डॉ वागले ने संपर्क सुविधा और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने तथा दोनों देशों द्वारा मिलकर हासिल की जा सकने वाली बड़ी संभावनाओं को साकार करने पर बल दिया। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में उन्होंने नेपाल में हाल ही में बाढ़ के बाद भारत से त्वरित राहत और बचाव सहायता की भी सराहना की। भारत ने नेपाल को 11 टन राहत सामग्री की एक और खेप भेजी है। इसमें दवाएं, फॉरेंसिक का सामान, टेंट, हाइजीन किट, स्लीपिंग बैग और अन्य आवश्यक सामग्री शामिल हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि भारत नेपाल की सहायता जारी रखेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों और वित्त सचिवों के सम्मेलन की पहली बैठक के समापन सत्र में हिस्सा लिया। ये सम्मेलन विकसित भारत की ओर भारत की यात्रा के लिए वित्त पोषण विषय पर आयोजित किया गया था। वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर एक बयान में कहा कि सत्रों में समिष्ट आर्थिक दृष्टिकोण, कृषि क्षेत्र में बदलाव के लिए वित्त पोषण और ऊर्जा क्षेत्र में बदलाव के लिए वित्त पोषण जैसे अहम विषयों पर चर्चा की गई। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, माहे, मध्य महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पुदुचेरी, करैकला और तेलंगाना में आज तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। मराठवाड़ा, पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्र, पूर्वी राजस्थान, झारखंड, कोंकण, गोवा, ओडिशा और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में आज गरज के साथ बादल बरसने और बिजली चमकने की संभावना है।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का चैनल FM गोल्ड और आप हमें सुन पा रहे हैं FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। ये कार्यक्रम है पानी पर लिखी कहानी। मैं हूं आपके साथ रश्मि कुकरेती, स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार। और इस कार्यक्रम में जिसका नाम है पानी पर लिखी कहानी, आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ उसका नाम है अंग वस्त्र। ये कहानी आपके लिए लिखी है नीलम ए कुमार ने। तो आइए सुनते हैं ये कहानी अंग वस्त्र।

राज आज मुझे शॉपिंग के लिए ले जाना, मुझे कुछ ड्रेसेस खरीदनी है। भाई की शादी जो आ रही है और होने वाली भाभी के लिए कुछ साड़ियाँ और ड्रेसेस भी चाहिए मुझे, राज की पत्नी ने किचन से बाहर आते हुए कहा। ठीक है, मैं आज शाम को ऑफिस से जल्दी घर आ जाऊंगा और फिर चलेंगे। वैसे जाना कहाँ है? अरे ये जो मार्केट है ना, यहीं एक बहुत मशहूर और बहुत अच्छा बुटीक है, उसका नाम है अंग वस्त्र। मेरी फ्रेंड बता रही थी दूसरे शहरों से भी लोग आते हैं वहाँ कपड़े खरीदने, बहुत ही अच्छी क्वालिटी और वैरायटी है उनके पास। अब मैं सोच रही हूँ वहीं चलते हैं।

राज शाम को ऑफिस से जल्दी घर आ गया। कुछ आधे घंटे में ही वो बुटीक में पहुंच गया जिसका नाम था अंगवस्त्र। एक आलीशान बुटीक, 50-60 वर्कर तो थे ही उनके पास। एक से बढ़कर एक ड्रेस, साड़ी और लहंगे टंगे हुए थे शोकेस में, बहुत ही मनमोहक डिजाइन। राज की पत्नी एक साड़ी काउंटर पर जाकर साड़ी देखने लगी। तभी बाहर एक बड़ी सी कार आकर रुकी और उसमें एक बहुत ही खूबसूरत और आकर्षक व्यक्तित्व की महिला बाहर उतरी। गोरा रंग, काले लंबे बाल, शिफॉन की सफेद साड़ी, हाई हील और आंखों पर सनग्लासेस लगाए हुए। वो जैसे ही बुटीक में दाखिल हुई, सारे वर्कर्स और मैनेजर खड़े होकर उसको ग्रीट करने लगे। राज ने एक सेल्समैन से पूछा, ये कौन है? तो वो बोला, अरे यही तो है इस बुटीक की मालकिन। राज ने उस महिला की ओर मुड़कर देखा, जैसे ही उसने अपने सनग्लासेस उतारे, राज देखता ही रह गया। मधु, तुम? मधु ने राज को पहचान लिया। राज को देखकर वो बहुत विचलित हो गई। वो अपने केबिन में चली गई जहां उसका ऑफिस था। मधु आंखें बंद कर कुर्सी पर बैठ गई और अपने अतीत की यादों में डूब गई।

मधु अपना 12वीं का परिणाम देखकर खुश हो गई। CBSE के 12वीं में उसने टॉप किया था। बहुत ही होशियार और मेहनती लड़की थी मधु। परिणाम देखकर वापस घर लौटते ही उसने अपनी माँ को गले से लगा लिया। अरे इतना खुश क्यों हो, पास हो गई क्या? पास नहीं माँ, मैंने टॉप किया है, मधु ने खिलखिलाते हुए अपनी माँ का चेहरा अपने हाथों में लेकर कहा। मधु की माँ की आंखों में आंसू छलक आए। मधु जब 5 बरस की थी तभी एक सड़क दुर्घटना में उसके पिता की मौत हो गई थी। उसकी माँ एक सरकारी स्कूल में आया का काम करती थी। बड़ी ही कठिनाइयों से वो मधु और उसके छोटे भाई का पालन पोषण कर रही थी। रात को लोगों के कपड़े सिल कर वो किसी तरह से गुजर बसर करती थी। दिन भर मेहनत कर वो उनकी शिक्षा, खानपान और सुख सुविधाओं को किसी तरह से पूरा कर रही थी। मधु बहुत ही खूबसूरत किशोरी थी। पतली, लंबी, तीखे नैन नक्श, लंबे घने और घुंघराले बाल और बड़ी बड़ी कजरारी आंखें थी उसकी। बहुत ही मनमोहक लगती थी। स्कूल समय से ही मधु एक लड़के राज को पसंद करती थी। राज उसके पड़ोस में ही रहता था। वो ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में पढ़ता था। स्कूल के बहुत सारे प्रोजेक्ट में राज ने मधु की मदद की थी। आज राज ने मधु को मिलने एक बाग में बुलाया था। ठीक 5 बजे वो वहाँ पहुँच गया और एक हार सिंगार के पेड़ के नीचे बैठकर मधु का इंतजार करने लगा। नीचे छोटे छोटे सफेद फूल झड़ रहे थे, मानो जैसे इस पेड़ के फूल मधु और राज का स्वागत कर रहे हों। तभी वहाँ मधु आ गई और उसके पास बैठ गई।

सुनो राज, पता है मैंने आज परीक्षा में टॉप किया है। राज चुपचाप बैठा था, खोया खोया सा। क्या तुम्हें यह सुनकर खुशी नहीं हुई? चुप क्यों हूँ, बोलते क्यों नहीं? मधु, तुम जानती हो मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं रहती, और उनकी दुकान तो है ही। वो चाहते हैं कि मैं पढ़ाई छोड़कर उनकी दुकान में हाथ बटाऊं। साथ ही वो चाहते हैं कि मैं शादी कर लूं। उन्होंने मेरे लिए एक रिश्ता तक देख लिया है। मैंने उन्हें तुम्हारे बारे में बताया, पर उन्होंने मेरी एक भी न सुनी। अगले महीने की 11 तारीख को मेरी शादी तय कर दी गई है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। ये सुनते ही मधु की आंखों में आंसू आ गए, वो कुछ नहीं बोल पाई। राज भी कुछ देर तक चुप बैठा रहा, फिर बोला, क्यों ना हम कहीं दूर चले जाए। नहीं नहीं, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती। अगर ऐसा हुआ तो मेरी माँ जीते जी मर जाएगी। राज, उसे बहुत मुसीबतें उठाकर मेरा और मेरे भाई का पालन पोषण किया है। राज ने मधु को समझाया, मधु देखो, हम दोनों अपनी जिंदगी साथ बिताना चाहते हैं। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। अब हार कर मधु ने राज की बात मान ली। अगले दिन मधु घर नहीं लौटी। जब मधु बहुत देर तक घर नहीं आई तो उसकी माँ व्याकुल हो उठी। सब जगह ढूंढा पर मधु कहीं नहीं मिली। कहाँ गई होगी? रात के 8 बज चुके थे। मधु की माँ का रो रो कर बुरा हाल था। उसने पड़ोसियों की सलाह मानकर मधु के गुम हो जाने की रिपोर्ट पुलिस में लिखवा दी और साथ में उसके मामा को भी सूचित कर दिया।

इधर मधु और राज एक अस्पताल के बाहर बैठे थे। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ जाएं। दोनों को कुछ सूझ नहीं रहा था। रात के 12 बज चुके थे। राज बोला, मधु चलो घर वापस चलते हैं। बहुत बड़ी गलती की घर से भागकर। क्या कह रहे हो तुम? मैं अब घर वापस कैसे जाऊं? किस मुंह से जाऊं? अपनी माँ का सामना कैसे करूं? वो तो मुझे कभी माफ नहीं करेगी। मेरे कारण उसका समाज में जीना मुश्किल हो जाएगा। लोग ताने मारेंगे। मैं ये सब नहीं देख पाऊंगी। कुछ नहीं होगा, थोड़े दिन में सब भूल जाएंगे। नहीं नहीं राज, मैं वापस घर नहीं जा सकती। तो फिर ठीक है, मैं वापस जा रहा हूँ। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हारे भरोसे पर ही मैंने अपना घर छोड़ा है। तुम मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात नहीं कर सकते। मधु ने ऐसा कहकर राज का हाथ कसकर पकड़ लिया। राज को उम्मीद थी कि मधु आएगी तो वो अपनी माँ के गहने और कुछ ना कुछ रकम लेकर जरूर आएगी। पर जब उसने देखा कि मधु के पास तो कुछ भी नहीं है, तो उसे समझ में आ गया कि आगे का रास्ता बहुत कठिन हो जाएगा। उसने बड़ी निर्दयता से मधु से अपना हाथ छुड़ाया और अपने घर वापस चला गया।

इधर अस्पताल के पास मधु को रोता देख एक आदमी उसके पास आया और इस वक्त यहां होने और रोने का कारण पूछा। मधु ने सारी बात रोते रोते उस आदमी को बता दी। कोई बात नहीं, मेरा घर यहाँ पास में ही है, मेरा परिवार भी वहीं रहता है। इतनी रात हो गई है, तुम यहाँ कैसे वक्त बिताओगी? मेरे साथ चलो, मैं कल सुबह तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आऊंगा। मधु पहले तो थोड़ा हिचकिचाई, पर जब उस आदमी ने भरोसा दिया तो उसके साथ चल दी। जैसे ही उस आदमी के घर पर पहुंचे तो मधु ने देखा कि वो तो एक छोटा सा कमरा था, वहां तो परिवार का कोई सदस्य नजर ही नहीं आ रहा था। यहां तो कोई भी नहीं है, आपका परिवार किधर है? मधु ने थोड़ा घबरा कर पूछा। वो आदमी जोर जोर से हंसने लगा, उसने मधु को धक्का मारा और वो जमीन पर जा गिरी। उस आदमी ने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और ताला लगा दिया। मधु को समझ में आ गया था कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है। इधर मधु के मामा ने राज को बुलाकर अपनी पूछताछ शुरू कर दी। उन्होंने पूछा कि मधु को उसने कहां छोड़ा था। फिर मधु के मामा ने उस एरिया के आसपास मधु को ढूंढना शुरू किया और 2-3 घंटे के अंदर ही पुलिस ने मधु के मोबाइल फोन को ट्रैक कर उसको बचा लिया और उस आदमी को गिरफ्तार कर लिया। मधु को उसकी माँ के सुपुर्द कर दिया। मधु ने अपनी आप बीती माँ को बताई और उससे लिपट गई। माँ ने मधु को गले से लगा लिया। दोनों माँ बेटी बिलख बिलख कर रोने लगी।

मधु का दिल टूट चुका था। कहां वो पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती थी, पर अब उसके सपने बिखर चुके थे। समय बीतता गया, मधु को पता चल गया कि राज की शादी एक बहुत अच्छे खानदान में बहुत सुंदर और सुशील लड़की से हो गई थी और वो खुशी खुशी अपना वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रहा था। इधर मधु की माँ ने भी अपनी बेटी की शादी करने का फैसला

ले लिया। लेकिन मधु ने साफ इनकार कर दिया। बोली, माँ मेरा भरोसा अब इन संबंधों से उठ गया है, तो क्या उम्र भर ऐसे ही बैठी रहोगी? इतना लंबा जीवन है, अकेले कैसे काटोगी बेटा? माँ, जीवन में शादी ही सब कुछ नहीं है, मैं ऐसे नहीं बैठूंगी, कुछ करके दिखाऊंगी, तुम चिंता मत करो। मधु ने फैशन डिजाइनिंग का डिग्री कोर्स किया और एक डिजाइनर बन गई। बहुत सारी महिलाओं को अपने साथ जोड़ा जो कि सिलाई का काम जानती थी। मधु की माँ पहले से ही सिलाई के काम में होशियार थी। ऐसे कई स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को उसने अपने साथ जोड़ा जो कि सिलाई का, कढ़ाई का और काज बटन का काम जानती थी। धीरे धीरे उसका व्यवसाय बढ़ने लगा, कई महिलाओं को काम मिलने लगा, बहुत सारे कारीगर उसकी दुकान से जुड़ गए। इसमें उसको अपनी माँ की बहुत सहायता मिली। उसका बुटीक अंग वस्त्र धीरे धीरे प्रसिद्ध हो चला था। मधु ने दिन रात मेहनत कर अपने उस छोटे से बुटीक को इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया कि आज अंग वस्त्र पूरे शहर में जाना माना बुटीक बन चुका था। दूसरे शहरों से भी लोग वहां खरीदारी करने आने लगे थे। उसके बुटीक के कपड़े दूसरे शहरों में और विदेशों में भी एक्सपोर्ट होने लगे थे। आज मधु एक संपन्न और आत्मनिर्भर महिला बन चुकी थी। मैडम देखिए, ये ड्रेस तैयार हो गई है, ठीक है ना? अगर आपका अप्रूवल मिल जाता है तो बाकी ड्रेसेस भी बनने भेज देंगे। ये ऑर्डर हमें जल्दी से जल्दी डिलीवर करना है, मधु के मैनेजर ने मधु से कहा। मधु ने हड़बड़ाकर आंखें खोली और ड्रेस देखकर बोली, हाँ हाँ, एकदम परफेक्ट, आप ऑर्डर तैयार करवाइए। वो उठ खड़ी हुई अपनी पूरी हिम्मत और जोश के साथ। मधु ने बाहर झांका तो देखा राज मुंह लटकाए हुए उसके बुटीक अंग वस्त्र से बाहर जा रहा है। उसके चेहरे पर पछतावा और शर्मिंदगी साफ दिखाई दे रही थी। उसके अंदर इतना साहस नहीं था कि अब वो एक सशक्त मधु का सामना भी कर पाए। मधु जानती थी कि उसने अपने जीवन की कठिनाइयों, संघर्षों और पीड़ा को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया, बल्कि उसे अपनी ताकत बनाया। ऐसी ताकत जिसके बल पर वो आज जमीन से उठकर आसमां तक पहुंच गई।

कितनी ही ऐसी लड़कियां होती हैं दोस्तों, जो जीवन में कठिनाइयों के बाद हिम्मत हार जाती हैं। याद रखिए, तरह तरह की जो कठिनाइयां होती हैं वो हमारी परीक्षाएं लेने के लिए ही आती हैं। यदि आप हिम्मत बनाए रखेंगी तो यकीन मानिए, आप दुनिया को जीत सकती हैं। ये कहानी कुछ ऐसा ही हमें सिखाती है, किसी भी परिस्थिति में जीवन के दुखों और परेशानियों से हार नहीं माननी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी कहानी अंगवस्त्र, जिसे आपके लिए लिखा था नीलम ए कुमार ने। इसी के साथ ये कार्यक्रम, जिसका नाम है पानी पर लिखी कहानी, इसको समेटने की इजाजत दीजिए रश्मि कुकरेती को। नमस्कार।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया है। श्री मोदी ने कल 20वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पिछले कुछ वर्षों से युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए आवश्यक कौशल और अवसर उपलब्ध कराने पर लगातार ध्यान दे रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाने के लिए भी काम कर रही है।
1: भारत ने बीते कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किए हैं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA हमारे युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार बना रहे हैं। इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए नई पार्टनरशिप्स के रास्ते खुलते हैं और हमारे युवाओं के लिए करियर में नई पॉसिबिलिटीज बनती हैं।
0: सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने चेन्नई में केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संगठनों के लिए चयनित 285 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र बांटे। कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने कहा कि सरकारी सेवा में शामिल होने वाले नए युवा 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण को पूरा करने में अहम भूमिका निभाएंगे। उन्होंने नवनियुक्त उम्मीदवारों से कहा कि वे अपनी जिम्मेदारियों को सिर्फ नौकरी पाने के तौर पर न देखें, बल्कि देश की सेवा करने और उसके सर्वांगीण विकास में योगदान देने के मौके के तौर पर देखें। रेलवे ने उत्तर पूर्व रेलवे के लखनऊ खंड में 600 किलोमीटर से अधिक रूट पर कवच 4.0 लगाने को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्रालय ने बताया कि स्वीकृत परियोजना खंड के चिन्हित शेष हिस्सों में कवच 4.0 का विस्तार करेगी। इस परियोजना की लागत 250 करोड़ रुपए से अधिक है। इसके साथ ही पश्चिम रेलवे के उधना उकाई सोनखड़ खंड पर 4 लेन वाले रोड ओवरब्रिज के निर्माण के लिए 133 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। नेपाल के वित्त मंत्री डॉ स्वर्णिम वागले ने कहा है कि भारत और नेपाल के पास मजबूत संबंधों के आधार पर अपनी साझेदारी को नया रूप देने का अवसर है। कल नई दिल्ली में भारत नेपाल संबंधों पर एक सेमिनार में डॉ वागले ने संपर्क सुविधा और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने तथा दोनों देशों द्वारा मिलकर हासिल की जा सकने वाली बड़ी संभावनाओं को साकार करने पर बल दिया। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में उन्होंने नेपाल में हाल ही में बाढ़ के बाद भारत से त्वरित राहत और बचाव सहायता की भी सराहना की। भारत ने नेपाल को 11 टन राहत सामग्री की एक और खेप भेजी है। इसमें दवाएं, फॉरेंसिक का सामान, टेंट, हाइजीन किट, स्लीपिंग बैग और अन्य आवश्यक सामग्री शामिल हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि भारत नेपाल की सहायता जारी रखेगा। दिल्ली पुलिस ने द्वारका जिले में विदेशी नागरिकों के खिलाफ एक विशेष अभियान चलाया। इसका मकसद अवैध और तय समय से ज्यादा समय तक रुके विदेशी नागरिकों की पहचान करना, उनके अप्रवासन की स्थिति की जांच करना, आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों का पता लगाना और संबंधित अधिकारियों के साथ मिलकर उचित कार्रवाई करना था। इस सिलसिले में 150 पुलिसकर्मियों की कुल 25 टीमें बनाई गई और उन्हें कुल 43 जगहों पर तैनात किया गया। अभियान के दौरान 40 विदेशी नागरिकों को हिरासत में लिया गया और उनकी जांच की गई। इसमें 31 नाइजीरियाई, 4 युगांडा के, 3 तंजानिया के और 2 आइवरी कोस्ट के नागरिक थे। अभियान के तहत 10 विदेशी नागरिकों के खिलाफ देश से वापस भेजने की कार्रवाई शुरू की गई है। एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है। सेमीफाइनल में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। इससे पहले अन्य सेमीफाइनल में पाकिस्तान और श्रीलंका आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Akhila.

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हमसफर मंजू। वक्त हुआ है 1:11 और 8 सेकंड। गीत सुहाने प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कार्यक्रम की शुरुआत लता मंगेशकर की आवाज़ के साथ।

वैसे कितनी अच्छी फीलिंग होती है ना जब किसी इंसान की वजह से हम मुस्कुराते हैं और कोई इंसान हमारी वजह से मुस्कुराता है ना। गीत की बात करें तो आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गीत, और फिल्म का नाम था पतीता, संगीत था शंकर जयकिशन का और गीतकार थे शैलेंद्र साहब। ये फिल्म 1953 में आई थी और इस फिल्म का निर्माण और निर्देशन किया था अमिया चक्रवर्ती ने। फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी देवानंद, उषा किरण, आगा और ललिता पवार ने। अगला गीत लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाज़ में।

इसे बिच्छू ने इश्क का खुमार कहते हैं। गीत आप सुन रहे थे मधुमति फिल्म से लता मंगेशकर और बन्ना डे की आवाज में। संगीत सलील चौधरी का था और गीतकार थे शैलेंद्र साहब। ये फिल्म आई थी 1958 में और इस फिल्म के निर्माता और निर्देशक थे बिमल रॉय। फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी दिलीप कुमार, वैजयंती माला और जॉनी वॉकर ने। इस फिल्म को फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार से भी नवाजा गया था। अगला गीत आप तक पहुंच रहा है रफ़ी साहब की आवाज़ में।

बार बार देखो नहीं, बार बार सुनो, क्योंकि हम बोलते हैं आप ही के लिए। गीत आप सुन रहे थे रफ़ी साहब की आवाज़ में, फिल्म का नाम चाइना टाउन, संगीत रवि का और गीतकार थे मजरू सुल्तानपुरी। ये फिल्म आई थी 1962 में और इस ये एक रोमांटिक कॉमेडी थ्रिलर फिल्म थी जिसका निर्देशन और निर्माण किया था शक्ति सामंता ने, और इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी शमी कपूर, शकीला और हेलेन ने। अगला गीत किशोर कुमार की आवाज़ में आप ही के लिए।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

100.1 MHz पर आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ, और मैं हूं आपके साथ मंजू। वक्त हुआ है 1:40 और 3 सेकंड और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गीत सुहाने। अगला गीत लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाज़ में।

लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाज़ में सुन रहे थे आप ये सदाबहार गीत फिल्म उजाला से। संगीत था शंकर जयकिशन का और गीतकार थे हसरत जयपुरी साहब। ये फिल्म आई थी 1959 में और ये एक रोमांटिक क्राइम फिल्म थी जिसमें मुख्य भूमिका निभाई थी शमी कपूर, माला सिन्हा, राजकुमार, लीला चिटनिस और टुनटुन ने। इस फिल्म को लिखा और निर्देशित किया था नरेश सैगल ने। और अभी जो गीत मैंने आपको सुनवाया था, इस गीत को पिक्चराइज किया गया था शमी कपूर और माला सिन्हा पर। इस फिल्म के संदेश की बात करें तो ये इस फिल्म ने संदेश दिया कि ईमानदारी की हमेशा

जीत होती है। इसलिए जिंदगी में हमेशा ईमानदारी करते रहिए। अगला गीत आप तक पहुंच रहा है मुकेश की आवाज में, मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज में।

लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ में सुन रहे थे आप ये सदाबहार गीत। फिल्म का नाम ओपेरा हाउस और संगीत था चित्रगुप्त का, गीतकार थे मजरू सुल्तानपुरी। ये फिल्म आई थी 1961 में और इस फिल्म का निर्देशन किया था पीएल संतोषी ने। फिल्म में अभिनय किया था अजीत, बी सरोजा देवी, केएन सिंह और ललिता पवार ने। अगला गीत अब तक पहुंच रहा है मन्ना डे की आवाज़ में और फिल्म का नाम है तीसरी कसम।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया है। श्री मोदी ने कल 20वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र

0: सरकार निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाने के लिए भी काम कर रही है।
1: भारत ने बीते कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किए हैं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA हमारे युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार बना रहे हैं। इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए नई पार्टनरशिप्स के रास्ते खुलते हैं और हमारे युवाओं के लिए करियर में नई पॉसिबिलिटीज बनती है।
0: इस अवसर पर देश में विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने चेन्नई में केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संगठनों के लिए चयनित 285 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र बांटे। कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने कहा कि सरकारी सेवा में शामिल होने वाले नए युवा 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण को पूरा करने में अहम भूमिका निभाएंगे। उन्होंने नवनियुक्त उम्मीदवारों से कहा कि वे अपनी जिम्मेदारियों को सिर्फ नौकरी पाने के तौर पर न देखें, बल्कि देश की सेवा करने और उसके सर्वांगीण विकास में योगदान देने के मौके के तौर पर देखें। नेपाल के वित्त मंत्री डॉ स्वर्णिम वागले ने कहा है कि भारत और नेपाल के पास मजबूत संबंधों के आधार पर अपनी साझेदारी को नया रूप देने का अवसर है। कल नई दिल्ली में भारत नेपाल संबंधों पर एक सेमिनार में डॉ वागले ने संपर्क सुविधा और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने तथा दोनों देशों द्वारा मिलकर हासिल की जा सकने वाली बड़ी संभावनाओं को साकार करने पर बल दिया। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में उन्होंने नेपाल में हाल ही में बाढ़ के बाद भारत से त्वरित राहत और बचाव सहायता की भी सराहना की। भारत ने नेपाल को 11 टन राहत सामग्री की एक और खेप भेजी है। इसमें दवाएं, फॉरेंसिक का सामान, टेंट, हाइजीन किट, स्लीपिंग बैग और अन्य आवश्यक सामग्री शामिल हैं। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि भारत नेपाल की सहायता जारी रखेगा। चुनाव आयोग ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को मतदाता सूची में नोटिस दिए जाने की खबरों पर स्थिति स्पष्ट की है। आयोग के अनुसार मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत तथ्यों और दस्तावेजों के उचित सत्यापन के बाद उनका नाम अद्यतन व मान्य कर लिया गया है। इसे 4 नवंबर को आधिकारिक रूप से प्रकाशित होने वाली शालीमार बाग विधानसभा क्षेत्र की अंतिम मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। आयोग ने पारदर्शी भागीदारी वाली और समावेशी पुनरीक्षण प्रक्रिया के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। जापान में शुरू हुए 20वें एशियाई खेल 2026 में आज कई भारतीय खिलाड़ी अलग अलग स्पर्धाओं में पदक जीतने की कोशिश करेंगे। टेकबॉल खिलाड़ी क्विंसी डिसूजा सुबह 6:30 बजे कांस्य पदक के लिए जापान की युइना साकामोटो से मुकाबला करेंगी। इसके बाद भारतीय निशानेबाज इलावेलिन वलारिवन, सोनम मस्कर और विदर्शा विनोद महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में पदक जीतने की कोशिश करेंगी। ये तीनों खिलाड़ी व्यक्तिगत और टीम स्पर्धा में पदक के लिए मुकाबला करेंगी। भारतीय महिला हॉकी टीम भी अपने अभियान की शुरुआत करेगी और ग्रुप स्टेज के पहले मैच में उज्बेकिस्तान का सामना करेगी। पुरुष हॉकी टीम टूर्नामेंट के अपने पहले मैच में सुबह 11:30 बजे इंडोनेशिया से भिड़ेगी। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, माहे, मध्य महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और तेलंगाना में आज तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अखिला। Prime Minister Narendra Modi distributed more than 51,000 appointment letters to newly appointed youth in various government organizations at the 20th Rozgar Mela yesterday. Speaking on the occasion, Mr. Modi emphasized the pivotal role of youth in building a developed and self-reliant India. He said that in recent years, the central government has consistently focused on equipping the youth with the skills and opportunities needed to prepare for the future. Mr. Modi said that India is world's third largest startup ecosystem.
1: भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। और भारत

कैसे कहूँ कि याद आ रही है कि तुम्हें भी आने लगे मेरी उतनी ही याद। कैसे कहूँ कि याद आ रही है कि तुम्हें भी आने लगे मेरी उतनी ही याद। जितनी कितनी बार कहूँ चले आओ, कितनी बार कहूँ चले आओ बिना ये सोचे कि क्या कहेगी ये दुनिया। स्वादिष्ट प्लो एक मेगाहर्ट्ज़ पर आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ, और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हम सफर मंजू। वक्त हुआ है 2:12 और 18 सेकंड। शुरू हो चुका है प्रोग्राम गीत सुहाने। प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ के साथ।

वैसे गाने से आपने अंदाजा लगा ही लिया होगा कि आज का प्रोग्राम किस दिशा में जाने वाला है। जी हाँ, प्यार की गलियों में यानी साजन की गलियों में। तो चलिए फिर देर किस बात की, अगला गीत आप ही के लिए।

ये शबा खैर का नहीं बल्कि जुड़ने का वक्त है, तो जल्दी से जुड़िए मेरे साथ यानी 100.1 मेगाहर्ट्ज के साथ आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर, क्योंकि ये वो वक्त है जब दो दिल एक साथ सोचते हैं, समझते हैं और शायद महसूस भी एक जैसा ही करते हैं। अगला गीत आप ही के लिए।

कितनी खूबसूरत बात है ना कि फूल कितने भी खूबसूरत क्यों ना हो, कितने भी सुंदर क्यों ना हो, अगर मन हमारा किसी अपने से मिलने का कर रहा हो तो फिर बाकी चीज़ें फीकी लगने लगती है ना। और जब बात हो साजन से मिलने की तो इंतज़ार की घड़ियाँ और ज़्यादा मुश्किल हो जाती हैं। चलिए, जब तक साजन से मुलाकात नहीं होती हम साजन को ख़त लिखते हैं। क्या कहते हैं आप, मुझे मालूम है आप मेरे साथ हैं। अगला गीत आप ही के लिए, अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में।

प्रेम करते हुए कभी कभी मैंने महसूस किया है कि तुम्हारा कोई हिस्सा मेरे अंदर आ चुका है।

कभी कभी मैंने तुम्हें मुझसे बर्ताव करते हुए देखा है। इस प्रमाण के साथ मैं ये बताना चाहती हूँ कि प्रेम दो व्यक्तियों को एक दूसरे के भीतर अमर कर जाता है। हंड्रेड पॉइंट वन मेगाहर्ट्ज़ पर आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ, और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हम सफ़र मंजू। वक्त हुआ है 2:41 और 34 सेकेंड। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रात सुरमई। अगला गीत रफ़ी साहब की आवाज़ में।

वैसे ये बात तो सच है कि किसी किसी की आंखों में हमें इतना प्यार मिलता है कि कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आंखें इतना कुछ कह देती हैं, एक नज़र मिलती है और दिल की न जाने कितनी बातें बयां हो जाती है। और शायद इसीलिए ही मोहब्बत में कहा जाता है कि ज़बान की आंखों से ज़्यादा आंखों की बातों का ज़्यादा मतलब होता है, महत्व होता है। गीत अब तक पहुँच रहा है अगला, शैलेंद्र सिंह की आवाज़ में।

रात सुरमई में आज के लिए बस इतना ही। अब से थोड़ी देर में यानी 3 बजे आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। 3:10 पर हमराही प्रोग्राम लेकर आपके साथ रहेंगी रूपा धवन। मुझे यानी अपनी रात की हम सफर मंजू को दीजिए इजाज़त।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया है। श्री मोदी ने कल 20वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पिछले कुछ वर्षों से युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए आवश्यक कौशल और अवसर उपलब्ध कराने पर लगातार ध्यान दे रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार

0: सरकार निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाने के लिए भी काम कर रही है।
1: भारत ने बीते कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किए हैं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA हमारे युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार बना रहे हैं। इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए नई पार्टनरशिप

0: आयोजित किए गए। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुर्गन ने चेन्नई में केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संगठनों के लिए चयनित 285 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र बांटे। कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने कहा कि सरकारी सेवा में शामिल होने वाले नए युवा 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण को पूरा करने में अहम भूमिका निभाएंगे। उन्होंने नवनियुक्त उम्मीदवारों से कहा कि वे अपनी जिम्मेदारियों को सिर्फ नौकरी पाने के तौर पर न देखें, बल्कि देश की सेवा करने और उसके सर्वांगीण विकास में योगदान देने के मौके के तौर पर देखें। रेलवे ने उत्तर पूर्व रेलवे के लखनऊ खंड में 600 किलोमीटर से अधिक रूट पर कवच 4.0 लगाने को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्रालय ने बताया कि स्वीकृत परियोजना खंड के चिन्हित शेष हिस्सों में कवच 4.0 का विस्तार करेगी। इस परियोजना की लागत 250 करोड़ रुपए से अधिक है। इसके साथ ही पश्चिम रेलवे के उधना उकाई सोनगढ़ खंड पर 4 लेन वाले रोड ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए 133 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। नेपाल के वित्त मंत्री डॉक्टर स्वर्णिम बागले ने कहा है कि भारत और नेपाल के पास मजबूत संबंधों के आधार पर अपनी साझेदारी को नया रूप देने का अवसर है। कल नई दिल्ली में भारत नेपाल संबंधों पर एक सेमिनार में डॉक्टर वागले ने संपर्क सुविधा और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने तथा दोनों देशों द्वारा मिलकर हासिल की जा सकने वाली बड़ी संभावनाओं को साकार करने पर बल दिया। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में उन्होंने नेपाल में हाल ही में बाढ़ के बाद भारत से त्वरित राहत और बचाव सहायता की भी सराहना की। भारत ने नेपाल को 11 टन राहत सामग्री की एक और खेप भेजी है। इसमें दवाएं, फॉरेंसिक का सामान, टेंट, हाइजीन किट, स्लीपिंग बैग और अन्य आवश्यक सामग्री शामिल हैं। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि भारत नेपाल की सहायता जारी रखेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों और वित्त सचिवों के सम्मेलन की पहली बैठक के समापन सत्र में हिस्सा लिया। ये सम्मेलन विकसित भारत की ओर भारत की यात्रा के लिए वित्त पोषण विषय पर आयोजित किया गया था। वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर एक बयान में कहा कि सत्रों में समिष्ट आर्थिक दृष्टिकोण, कृषि क्षेत्र में बदलाव के लिए वित्त पोषण और ऊर्जा क्षेत्र में बदलाव के लिए वित्त पोषण जैसे अहम विषयों पर चर्चा की गई। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू कल नई दिल्ली के त्यागराज इंडोर स्टेडियम में कॉर्फबॉल प्रीमियर लीग 2026 के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री रिजिजू ने कहा कि भारत में कॉर्फबॉल के प्रति बढ़ता उत्साह देखना बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि इस तरह के खेल युवाओं के लिए नए रास्ते खोलते हैं, सेहत और मिलकर काम करने की भावना को बढ़ाते हैं। इसके साथ ही भारत में खेल पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करते हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अखिला। Prime Minister Narendra Modi distributed more than 51,000 appointment letters to newly appointed youth in various government organizations at the 20th Rozgar Mela yesterday. Speaking on the occasion, Mr. Modi emphasized the pivotal role of youth in building a developed and self-reliant India. He said that in recent years, the central government has consistently focused on equipping the youth with the skills and opportunities needed to prepare for the future. Mr. Modi said that India is the world's third largest startup ecosystem.
2: भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है और भारत की स्टार्टअप स्टोरी अब केवल बड़े शहरों की कहानी नहीं है। आज करीब आधे रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप टीयर टू और टीयर थ्री शहरों में है। यानी आज गांव, कस्बे और छोटे शहर का युवा भी भारत की नई इकोनॉमी में अपनी भूमिका बड़ी बना रहा है।
1: सेमिकॉन इंडिया 2026, द फिफ्थ एडिशन ऑफ इंडियाज फ्लैगशिप सेमीकंडक्टर कॉन्फ्रेंस कंक्लूडेड सक्सेसफुली एट यशोभूमि इन न्यू दिल्ली। The three-day conference under the theme Silicon to Systems, Building the Ecosystem featured over 600 exhibitors. These included around 3

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। वक्त हुआ है 3:11 और 18 सेकंड। आप हैं अपने ही दोस्त रूपा धवन के साथ और रूपा आपके लिए लाई है बेहद ही हसीन पलों की बहुत ही

खूबसूरत से गीत और ये गीतों से सजा गुलदस्ता आप सुन रहे हैं अपने ही चैनल पसंदीदा चैनल पर आपके अपने आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। तो बहुत ही प्यार भरा नमस्कार स्वीकार कीजिए।

साथियों, 60 के दशक के गीतों की लोकप्रियता आज भी अपने चरम पर होने की एक बेहद खास वजह है। वो वजह है उसका बेहतरीन संगीत, जिसे हर प्रशंसक दिल से अपना कर उसके सुरों में डूब जाते हैं। यही कारण है कि इन गीतों का जलवा दशकों के बाद भी आज कायम है हम सबके दिलों में। समय की दीवारें तोड़कर ये गीत आज भी अपनी खुशबू से सबको ताज़ा तरीन कर देते हैं। आइए सुनते हैं ऐसा ही एक और लाजवाब गीत, जिसे हम शामिल कर रहे हैं अनाड़ी फिल्म से, मुकेश साहब और लता जी के स्वर में।

दो दिलों का मिलना और मुलाकात की खुमारी ऐसी कि मुलाकात के बाद उनकी बातें यादें बनकर एक दूसरे के कानों में गूंजने लगती हैं। उस मुलाकात के बाद क्या हुआ, क्या बातें हुई, अक्सर दिल ये भी भूल जाता है।

कैसे चुने सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमराही कार्यक्रम में। समय हुआ है 3:37 आप हैं हमराही में रूपा के साथ और लुत्फ ले रहे हैं कुछ मधुर से तरानों का। अगला गीत आप सभी के लिए गुमनाम फिल्म से मोहम्मद रफी साहब और शारदा जी की आवाज़ में।

साथियों, फिल्म जगत में प्यार की रोमानियों को दर्शाने के लिए अथक प्रयास किए जाते थे। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इंसान और प्रकृति एक दूसरे के पूरक हैं। नायक नायिका जब पेड़ों के इर्द गिर्द झूमते हैं, गाते हैं, तो वो नज़ारा कुछ और ही खास रंगों से भर जाता है। ये नज़ारा दर्शकों को और भी मोहित कर देता है। फिल्म महबूबा का ये गीत लता जी और किशोर साहब की आवाज़ में।

तेरे बिना ये ज़िंदगी एक उल्फत सी लगती है, तेरे बिना ये ज़िंदगी एक उल्फत सी लगती है, लम्हे की जुदाई मुद्दत सी लगती है। इतने वक्त बाद मुझे महसूस हुआ कि हर पल तेरी ज़रूरत सी लगती है।

सफर कितना भी लंबा हो, अगर साथ दो दिलों का सच्चा हो तो बातें कभी खत्म नहीं होती। दो दिल एक दूसरे के लिए कुछ भी करने को, कुछ भी बनने को तैयार हो जाते हैं।

तो दूर होकर भी इतना पास लगता है, दिल के हर कोने में तेरा एहसास रहता है। जी हाँ, वैसे हम तो आपके दिल के करीब रहते ही हैं और इसके लिए हमें और आपको कोई सबूत नहीं चाहिए। जी हाँ, प्यार भरा रिश्ता, सच्चा रिश्ता एक अलग ही दुनिया को कायम करता है। हमराही का सफ़र फिलहाल इतना ही। अभी रूपा विदा लेती है, अरुणिमा के सफ़र पर आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार। अब से कुछ ही देर में सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया है। श्री मोदी ने कल 20वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पिछले कुछ वर्षों से युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए आवश्यक कौशल और अवसर उपलब्ध कराने पर लगातार दे रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाने के लिए भी काम कर रही है।
1: भारत ने बीते कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किए हैं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA हमारे युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार बना रहे हैं। इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए नई पार्टनरशिप्स के रास्ते खुलते हैं और हमारे युवाओं के लिए करियर में नई पॉसिबिलिटीज बनती हैं।
0: इस अवसर पर देश में विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए।

सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने चेन्नई में केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संगठनों के लिए चयनित 285 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र बांटे। कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने कहा कि सरकारी सेवा में शामिल होने वाले नए युवा 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण को पूरा करने में अहम भूमिका निभाएंगे। उन्होंने नवनियुक्त उम्मीदवारों से कहा कि वे

0: नेपाल के वित्त मंत्री डॉक्टर स्वर्णिम वागले ने कहा है कि भारत और नेपाल के पास मजबूत संबंधों के आधार पर अपनी साझेदारी को नया रूप देने का अवसर है। कल नई दिल्ली में भारत नेपाल संबंधों पर एक सेमिनार में डॉक्टर वागले ने संपर्क सुविधा और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने तथा दोनों देशों द्वारा मिलकर हासिल की जा सकने वाली बड़ी संभावनाओं को साकार करने पर बल दिया। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में उन्होंने नेपाल में हाल ही में बाढ़ के बाद भारत से त्वरित राहत और बचाव सहायता की भी सराहना की। भारत ने नेपाल को 11 टन राहत सामग्री की एक और खेप भेजी है। इसमें दवाएं, फॉरेंसिक का सामान, टेंट, हाइजीन किट, स्लीपिंग बैग और अन्य आवश्यक सामग्री शामिल हैं। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि भारत नेपाल की सहायता जारी रखेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों और वित्त सचिवों के सम्मेलन की पहली बैठक के समापन सत्र में हिस्सा लिया। ये सम्मेलन विकसित भारत की ओर भारत की यात्रा के लिए वित्त पोषण विषय पर आयोजित किया गया था। वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर एक बयान में कहा कि सत्रों में समिष्ट आर्थिक दृष्टिकोण, कृषि क्षेत्र में बदलाव के लिए वित्त पोषण और ऊर्जा क्षेत्र में बदलाव के लिए वित्त पोषण जैसे अहम विषयों पर चर्चा की गई। चुनाव आयोग आज राष्ट्रीय राजधानी के सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर लगाएगा। दिन भर के इस अभियान का उद्देश्य नागरिकों की मदद करना है ताकि वे मतदाता सूची में नाम जुड़वा सकें, प्रस्तावित नामों को जोड़ने या हटाने पर आपत्ति प्रकट कर सकें और अपने विवरण में सुधार करवा सकें। आवेदन लेने के लिए बूथ लेवल ऑफिसर संबंधित मतदान केंद्रों पर मौजूद रहेंगे। लोग नया नाम दर्ज कराने के लिए फॉर्म 6, प्रविष्टि पर आपत्ति या नाम हटाने के लिए फॉर्म 7 और मतदाता सूची के विवरण में सुधार या अपडेट के लिए फॉर्म 8 जमा कर सकते हैं। राष्ट्रीय राजधानी में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया के बारे में मीडिया से बातचीत में दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने स्पष्ट किया है कि चुनाव पंजीकरण अधिकारी मामले की सुनवाई के दौरान नोटिस में शामिल सूची के अलावा अन्य दस्तावेजों पर भी विचार कर सकते हैं। एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है। सेमीफाइनल में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अखिला। Prime Minister Narendra Modi distributed more than 51,000 appointment letters to newly appointed youth in various government organizations at the 20th Rozgar Mela yesterday. Speaking on the occasion, Mr. Modi emphasized the pivotal role of youth in building a developed and self-reliant India. He said that in recent years, the central government has consistently focused on equipping the youth with the skills and opportunities needed to prepare for the future. Mr. Modi said that India is world's third largest startup ecosystem.
2: भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है और भारत की स्टार्टअप स्टोरी अब केवल बड़े शहरों की कहानी नहीं है। आज करीब आधे रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप टीयर टू और टीयर थ्री शहरों में है, यानी आज गांव, कस्बे और छोटे शहर का युवा भी भारत की नई इकोनॉमी में अपनी भूमिका बड़ी बना रहा है।
1: सेमिकॉन इंडिया 2026, द फिफ्थ एडिशन ऑफ इंडियाज फ्लैगशिप सेमीकंडक्टर कॉन्फ्रेंस कंक्लूडेड सक्सेसफुली एट यशोभूमि इन न्यू दिल्ली यस्टरडे। The three-day conference under the theme Silicon to Systems, Building the Ecosystem featured over 600 exhibitors. These included around 300 international participants, representatives from 52 countries and over 150 speakers. The three-day witnessed 56 MOUs, announcements and strategic initiatives spanning semiconductor design, fabrication, advanced packaging, equipment and materials, power electronics and artificial intelligence. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw cautioned that the semiconductor industry should be prepared for cyber attacks and any kind of disruption by countries that do not want India to move up the semiconductor value.

तारों की छिटकती चांदनी में अरुणिमा कार्यक्रम सुन रहे हैं आप आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय हुआ है 4:11:25। आप हैं इस सफर में, इस खूबसूरत से सफर में अपनी दोस्त रूपा धवन के साथ। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। आगाज करते हैं इस खूबसूरत से गीत के साथ, अब्दुल्ला फिल्म से, जिसे हम शामिल कर रहे हैं मोहम्मद रफ़ी साहब के स्वर में।

0: अरुणिमा में एक नई शुरुआत, ऊर्जावान से भरा उजाला, तैयार हैं हम सकारात्मकता और उम्मीदों का कारवा लेकर। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। आइए इसके प्रकाश के साथ मन के हर कोने को खुशियों के उजालों सा प्रकाशित कर दें, ऐसा प्रकाशित कर दें कि ये इतना हसीन लगे कि जिंदगी का रूप ही अलग सा निखर कर आए।
1: आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है, मेरा दिल

साथियों, हमारे दैनिक जीवन में सकारात्मक सोच का प्रभाव बहुत गहरा असर डालता है। अब सोचिए ना, जब हम किसी भी बात को लेकर मायूस हो जाते हैं, तब किसी का एक ऐसा शब्द या वाक्य हमारी हताशा को एक नई उम्मीद में बदल देता है। फिलहाल आपको सुना रहे हैं ये खूबसूरत सा गीत लता जी और किशोर साहब के स्वर में, फिल्म दासी।

स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अरुणिमा कार्यक्रम में, जिसे आप सुन रहे हैं अपने ही मनपसंद चैनल आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय हुआ है 4:33 और 57 सेकंड।

ये सच है कि सबकी चाहत कभी पूरी नहीं होती। ये भी सच है कि किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। बस जितना है उसके लिए शुक्रिया और आगे बढ़ने की कोशिश करना ही जिंदगी का नाम है। किसी ने खूब कहा है, हर कार्य या हर चाहत मुश्किल जरूर होती है, पर मुमकिन जब होती है तो एक अलग ही खुशी का एहसास होता है, और वो खुशियों की बहार होती है समय।

हम लोग जिंदगी में अपना कोई ना कोई एक लक्ष्य सोच कर रखते हैं कि हमें ये लक्ष्य पाना है, और लक्ष्य जितना बड़ा होगा तकलीफें भी उतनी बड़ी होंगी। इसलिए लक्ष्य से ध्यान ना हटाकर बाधाओं को पार करते रहना ही है, और आगे बढ़ने से हमारी जिंदगी मंजिल पर पहुंच ही जाती है। सुन रहे हैं आप अरुणिमा कार्यक्रम अपनी दोस्त रूपा के साथ आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। बातें हो रही हैं सकारात्मक विचारों की, जुड़ रहे हैं हम सकारात्मक रूप से इन बातों से, और साथ ही साथ आपको सुनवा रहे हैं कुछ हसीन नगमे।

सच्चाई की डगर माना नहीं आसान, सच्चाई की डगर माना नहीं आसान, चुनौतियों से हारना ये नहीं हमारी पहचान। जी हाँ, माना कि सच्चाई का रास्ता कठिन होता है, पर अक्सर चुनौतियों का सामना करके ही हम आत्मविश्वास, साहस और सफलता की ओर अग्रसर होते हैं। सुनते हैं काजल फिल्म का ये गीत महेंद्र कपूर और आशा जी के स्वर में।

मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं, देखते हैं कल क्या होगा, हौसले भी तो जिद्दी हैं। जी हाँ, हौसले बनाए रखिए और प्यारी सी एक मुस्कान भी बनाए रखिए जो आपको हिम्मत देगी आगे बढ़ने के लिए। फिलहाल अरुणिमा का सफ़र यहीं तक, रूपा विदा लेती है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार, भोर सुहानी लेकर फिर से आपके साथ रहूँगी। तब तक के लिए नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया है। श्री मोदी ने कल 20वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पिछले कुछ वर्षो से युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए आवश्यक कौशल और अवसर उपलब्ध कराने पर लगातार ध्यान दे रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाने के लिए भी काम कर रही है।
1: भारत ने बीते कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किए हैं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स FTA हमारे युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार बना रहे हैं। इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए नई पार्टनरशिप्स के रास्ते खुलते हैं और हमारे युवाओं के लिए करियर में नई पॉसिबिलिटीज बनती हैं।
0: इस अवसर पर देश में विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। सूचना प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने चेन्नई में केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संगठनों के लिए चयनित 285 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र बांटे। कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने कहा कि सरकारी सेवा में शामिल होने वाले नए युवा 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण को पूरा करने में अहम भूमिका निभाएंगे। उन्होंने नवनियुक्त उम्मीदवारों से कहा कि वे अपनी जिम्मेदारियों को सिर्फ नौकरी पाने के तौर पर न देखें, बल्कि देश की सेवा करने और उसके सर्वांगीण विकास में योगदान देने के मौके के तौर पर देखें। नेपाल के वित्त मंत्री डॉ स्वर्णिम बागले ने कहा है कि भारत और नेपाल के पास मजबूत संबंधों के आधार पर अपनी साझेदारी को नया रूप देने का अवसर है। कल नई दिल्ली में भारत नेपाल संबंधों पर एक सेमिनार में डॉ बागले ने संपर्क सुविधा और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने तथा दोनों देशों द्वारा मिलकर हासिल की जा सकने वाली बड़ी संभावनाओं को साकार करने पर बल दिया। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में उन्होंने नेपाल में हाल ही में बाढ़ के बाद भारत से त्वरित और

0: टेंट, हाइजीन किट, स्लीपिंग बैग और अन्य आवश्यक सामग्री शामिल है। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि भारत नेपाल की सहायता जारी रखेगा। चुनाव आयोग आज राष्ट्रीय राजधानी के सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर लगाएगा। दिन भर के इस अभियान का उद्देश्य नागरिकों की मदद करना है ताकि वे मतदाता सूची में नाम जुड़वा सके, प्रस्तावित नामों को जोड़ने या हटाने पर आपत्ति प्रकट कर सकें और अपने निविवरण में सुधार करवा सकें। आवेदन लेने के लिए बूथ लेवल ऑफिसर संबंधित मतदान केंद्रों पर मौजूद रहेंगे। उत्तर पूर्व रेलवे के लखनऊ खंड में 600 से अधिक रूट किलोमीटर पर कवच 4.0 लगाने पर की मंजूरी दे दी है। इस परियोजना की लागत 250 करोड़ रुपए से अधिक है। रेल मंत्रालय ने कहा कि स्वीकृत परियोजना खंड के चिन्हित शेष हिस्सों में कवच 4.0 का विस्तार करेगी। इससे रेल परिचालन के लिए उपलब्ध सुरक्षा अवसंरचना और मजबूत होगी। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरला, माहे, तमिलनाडु, तेलंगाना और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के तटीय क्षेत्रों में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। मौसम विभाग ने के अनुसार मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में कल तक गरज चमक के साथ तेज हवा चलने का अनुमान है। विभाग ने मछुआरों को आज से अगले सोमवार तक अंडमान सागर और अगले तीन दिनों तक पूर्वी मध्य और उससे सटे उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी में न जाने की सलाह दी है। सऊदी अरब ने पुष्टि की है कि यमन के हौसी विद्रोहियों ने बैलिस्टिक मिसाइल से उसकी राजधानी रियाद पर हमला करने की कोशिश की। हौसी विद्रोहियों से लड़ रहे सऊदी नेतृत्व वाले इस गठबंधन ने सुबह हुई इस कोशिश के काफी देर बाद बयान जारी किया। जापान में शुरू हुए 20वें एशियाई खेल 2026 में आज कई भारतीय खिलाड़ी अलग अलग स्पर्धाओं में पदक जीतने की कोशिश करेंगे। टेकबॉल खिलाड़ी क्विंसी डिसूजा सुबह 6:30 बजे कांस्य पदक के लिए जापान की युइना साकामोटो से मुकाबला करेंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अखिला। Prime Minister Narendra Modi has distributed more than 51,000 appointment letters to newly appointed youth in various government organizations at the 20th Rozgar Mela through video conferencing. Speaking on the occasion, Mr. Modi emphasized the pivotal role of youth in building a developed and self-reliant India. He said that in recent years, the central government has consistently focused on equipping the youth with the skills and opportunities needed to prepare for the future.
2: मैं आप सभी युवा साथियों को और आपके परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज आप सभी एक ऐसे समय में भारत सरकार से जुड़े हैं जब देश एक बहुत बड़े लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है और ये लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनाने का।
1: Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw cautioned that the semiconductor industry should be prepared for cyber attacks and any kind of disruption by countries that do not want India to move up the semiconductor value chain. Talking to a media house in New Delhi today, Mr. Vaishnaw said India has to continuously be watchful of the potential geopolitical risks that will arise because it is now emerging as a country that can design and manufacture chips. The Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat 100 Weeks Nasha Mukt Yuva Abhiyan will witness a major nationwide youth mobilization today. The Ministry of Youth Affairs and Sports said that the Rashtriya Sankalp Samaroh is being organized across 1,067 locations in the country. It added that this program will be organized across 471 district My Bharat offices along with 596 locations of partner organizations. The samaroh will bring the campaign's message directly to young people through Nasha Mukt Pledge, signature campaign, thematic street plays, slogan writing and youth-led discussions. The ministry highlighted that this major initiative is powered by a massive national network combining government youth chapters, spiritual groups, top business chambers, colleges and local organizations to run programs across hundreds of locations. The event will serve as a significant nationwide movement of youth participation, bringing together My Bharat, partner organizations and young people around a shared commitment to a healthier choices and a Nasha Mukt future. This event follows a nationwide

नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। साथियों, सुबह का उजाला अज्ञानता के अंधेरे से ज्ञान की ज्योत को प्रज्वलित करके सद्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। ये महज उजाला नहीं है, जी हाँ। आइए आज की भोर को एक नई उमंग के साथ स्वागत करें।

जीवन पथ पर जीवन की राहें चाहे कितने भी कठिन हो, अगर हमारे मन का विश्वास हौसला बुलंद है तो हम दुनिया पर विजय भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके उदाहरण दुनिया के हर कोने में हैं।

सुन रहे हैं आप आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। भोर सुहानी में आज आपके साथ हूं मैं, आप ही की दोस्त रूपा धवन। नमस्कार, सुप्रभात।

जी हाँ, मन की शक्ति और हमारी कोशिश, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये तो हम सभी ने सुना है और हम सभी जानते हैं। तो फिर भी हम क्यों इस छोटे से लफ्ज़ को हमेशा भूल जाते हैं। जी हाँ, ज़रा सी कोई भी दिक्कत आती है, परेशानी आती है, तो हम हताश होकर, मायूस होकर बैठ जाते हैं। लेकिन जब हम अपनी पुरजोर कोशिश करते हैं तो उस मुश्किलों का सामना हम हंसते हुए, खिलखिलाते हुए कर लेते हैं। और फिर उसके बाद तो दिल गुनगुनाने की सदाएं देने लगता है एक नई ऊर्जा के साथ। जी हाँ, भोर सुहानी दस्तक दे रही है, संदेश दे रही है आपको कि भोर हो गई है और अब एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए संदेश के साथ आज के दिन को शुरू करें।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। समय हुआ है 5:30 और 7 सेकंड। आप हैं इस वक्त अपने ही दोस्त रूपा के साथ भोर सुहाने में। दोस्तों, हमारे मन की शक्ति सद्मार्ग पर चलने की प्रेरणा दूसरों के प्रति सम्मान और प्रेम भाव को, और इसके साथ साथ अपने मन पर विजय पाने को, इन जीवन मूल्यों से हमें परिचित कराती है। इन जीवन मूल्यों को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। और अगर जिंदगी की बात करें, आज की भोर की बात करें, तो देखते हैं आज ये हमें कौन सी दिशा में लेकर चलती है, कौन से गांव में, कौन सी जगह पर हमारा इंतज़ार है, या हम कहाँ जाना चाहते हैं। देखते हैं आज क्या होता है। खैर, जो भी होगा अच्छा ही होगा।